था, जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और तेल की कीमतें भारी उछाल आया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिला। ताजा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते 4 महीने में सबसे नीचे आ चुका है।

0: अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। यूएस ईरान पीस डील के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, यानी पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे कच्चे तेल के तेवर अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइस बीते चार महीने में सबसे नीचे आ चुका है। युद्ध के दौरान $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचकर दुनिया को डराने वाला ये तेल अब $77 से भी नीचे आ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस समुद्री रास्ते से तेल टैंकर्स की आवाजाही एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है।
1: अब हॉर्मुज संकट का समाधान आते ही ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थिति होते ही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं और अनुमान ये भी जताया गया है कि अगर ये स्थिति जिस तरह 60 दिनों की अनुमति दी गई है, वैसे में ईरान की ओर से जो कच्चा तेल कई सालों से प्रतिबंधित था वो खुले बाजार में आ चुका है, तो ईरान की ओर से एक तो समय भी कम लगेगा, तेल भी पहुंच पाएगा, तो ऐसे में कीमतें और भी नीचे गिर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
0: यूएस ईरान डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया है और अमेरिकी WTI क्रूड भी $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ये कच्चे तेल की कीमतों का बीते चार महीने का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और दुनिया अब कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह है। वहीं बाजार में सप्लाई बढ़ाने की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की छूट दे दी। अब भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरी समेत दुनिया भर के खरीदार सीधे ईरान से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैध खरीद कर पाएंगे।
1: ईरान और अमेरिका में शांति समझौते पर सहमति के बाद एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, तो उसका असर सकारात्मक रूप से वैश्विक बाजार पर दिख रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 1.1% से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली है, WTI क्रूड में देखने को मिली है। यहां तक कि जो वैश्विक बेंचमार्क है वो डेटा ये बताता है कि वायदा भाव अगस्त में 0.45% गिरकर $76.73 प्रति बैरल पर आ गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अब एक रास्ता ये खुल जाता है, दरअसल अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है, यानी वो भी अगले 60 दिनों तक अपना कच्चा तेल दुनिया के बाजार में बेच पाएगा, तो उससे असर क्या हो रहा है। अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो WTI जो ट्रेड है उसमें आज भी अगर जो कीमतें गिरी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब ये 72.52 पर आ चुका है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $77 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
0: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन और भारत तक में तेल गैस का भारी संकट देखने को मिला। भारत की बात करें तो क्रूड महंगा होने के कारण करीब 4 साल सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और ये एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया। अब जबकि क्रूड के दाम क्रैश हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल प्राइस कट की उम्मीद भी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
1: इसका एक असर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ₹74 की कमी की है तो डीजल की कीमतों में भी ₹64 की कमी है, भारी कटौती की है। हालांकि उसको लेकर के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा फायदा जनता को वहां की सरकार ने दिया है। तो भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि पर जो डॉलर बैरल की कीमत है वो अगर नीचे आ रही है तो हाल फिलहाल में हमने जो कीमतें देखी हैं डीजल पेट्रोल में उसमें कोई कमी आ जाए, तो क्या वो कमी आएगी, क्या इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई फैसला लेंगी, क्योंकि राहत की जब बात होगी तो सरकार ये देखेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान की अगर भरपाई हो चुकी है तो अब सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ब्रेंट ऑयल वो अगर 77 के नीचे हैं तो ऐसे में दुनिया की नज़र इस पर होगी कि उनकी सरकारें क्या अब लोगों पर वो फायदा जो है पहुंचाएंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी फायदा अगर होगा तो क्या जनता की जेब पर भी होगा।
0: बीते 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की शुरुआत की थी और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। साथ ही दुनिया की तेल गैस जरूरतों के 20% की भरपाई करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज होने के बाद अचानक अप्रैल महीने के दौरान कच्चा तेल $120 के आसपास पहुंच गया। इसका असर ये हुआ कि तमाम देशों में ईंधन गैस की कीमतों में तगड़ा इजाफा हो गया, महंगाई की मार पड़ी और इससे खुद अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति के बाद तेल की कीमतों में अचानक गिरावट शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और तेल कंपनीज को हो रहे घाटे के चलते उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था, तो क्या अब तेल सस्ता होने से ईंधन की कीमतों में भी कटौती की जाएगी?
1: अगर आज आप देखें तो WTI क्रूड जो है वो 73 बाज आ चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 77 के नीचे आ चुका है। और अगर ये परिस्थितियां बनती रही तो एक वैश्विक रिपोर्ट ये भी दरअसल कहती है कि प्रगति का ये जो संकेत है ये मार्केट पर, यानी अभी कम से कम 3% ये और नीचे ले जा सकता है, यानी 60 दिनों की जो अवधि है। ऐसे में हमने देखा कि भारत के कई सारे जो जहाज हैं LNG लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के, वो रवाना हुए हैं। आमतौर पर प्रतिदिन अब 90 से 95 जहाज जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जो सप्लाई लाइन है वो सकारात्मक हो चुकी है, यानी भारत का जो ऊर्जा संकट वो भी खत्म होने के आसार हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जहां इसकी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करना पड़ता है। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं।
2: जब से अमेरिका और ईरान के बीच में MOUs दस्तखत हुआ है, साइन हुआ है, तब से जो तेल के बाजार के अंदर थोड़ी राहत मिली है, और राहत जो इस समय थोड़ी ज्यादा ही है, और लग रहा है उनको कि भाई शायद शांति रहने वाली है। बहुत दिनों से तनाव चल रहा था, जब बहुत लगातार तनाव रहे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, बहुत शोर हो, बहुत बमबारी हो, उसके बाद एक शांति का MOU साइन हो जाए तो बाजार के अंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए तेल आप देख रहे हैं जो ब्रेंट है, कच्चा तेल जो ब्रेंट है, जो भारत में जिस उसको यूज कराया जाता है पैरामीटर को, तो वो तो अब लगभग $75 पर बैरल पे आ गया है। मैं इसको कहूंगा ये उत्सव की कीमत है ये।
0: अब सवाल ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि सामरिक महत्व भी है। दुनिया का करीब 25-30% कच्चा तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों का कच्चा तेल इसी जलमार्ग से निर्यात होता है। माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है।
2: हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं हम। लगभग अपनी जरूरत का 89% तेल आयात करते हैं, और हमारा जो चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए ऊपर बोझ पड़ता है अगर जब तेल महंगा हो जाता है। तो अब तेल चूंकि सस्ता है, वजह उसकी MOU साइन हो गया वो है, एक बाजार के अंदर उत्सव का माहौल है, तो कीमतें $75 के आसपास आ गई, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी कम हो जाए।
0: एक तरफ जहां तेल की कीमतों का गिरना राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर एक नई आशंका ने भी जन्म ले लिया है। ईरान और ओमान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यानी दोनों देशों की मंशा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम है। इस साल चारधाम के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 लाख

0: रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ धाम में भी 12 लाख से कहीं ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहां इस बार श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रियों की ड्रोन डॉग स्क्वाड से सुरक्षा की तैयारी है, साथ ही यात्रा की निगरानी CCTV से की जाएगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस ने सघन जाँच अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर में साईं भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साईं भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषणों का भी दान करते हैं। अब तक साईं बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 7030 किलो चांदी का दान किया जा चुका है। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की गिनती की जाती है। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर वधु की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल परिवार ही नहीं बल्कि शादी के कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय और विवाह आयोजन से जुड़े दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर मेट्रो के 5वें चरण के तहत विकसित किया जा रहा है और मैजेंटा लाइन के विस्तार का हिस्सा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केंद्रीय सचिवालय स्टेशन होगा, जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय में आने जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
1: वेलकम टू द जंगल का नया गाना 13 पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज से पहले चर्चा में है। फिल्म का नया गाना 13 पैसा मेरा पैसा लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज दी। गाने में फरहाद भिवंडी वाला, रुबई और संगीतकार विक्रम मोन्ट्रोस भी शामिल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 25 जून को इसके पेड प्रीव्यूज रखे गए हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में खुशहाली कुमार दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आकाश आदित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फैमिली एंटरटेनर एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जो अपने खास मिशन पर निकलती है। फिल्म में पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में है। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांगराना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि विदेशी बाजारों में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विभाजन के पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है।

0: जवेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। ये गाना दोस्ती, प्यार और रिश्तों की भावनात्मक झलक पेश करता है। फिल्म से अमन इंद्र कुमार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान जल्द ही एक बड़े पीरियड ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से वो काफी प्रभावित हैं। फिल्म में वो इतिहास के एक बेहद लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक और बॉडी पर खास मेहनत करनी होगी। फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होने की संभावना है।
1: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि बादल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
1: चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चीन के हैनान में समुद्री दुनिया की एक शानदार झलक देखने को मिली। मशहूर मरीन वंडरलैंड में ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण पानी के भीतर खूबसूरत मर्मेड परफॉर्मेंस यानी जल परियों का अद्भुत नृत्य रहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद लोगों को पेंगुइन्स को करीब से देखने और उन्हें खाना खिलाने का एक बेहद अनोखा अनुभव भी मिला। हैनान का ये मरीन पार्क पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यह सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। चीन के सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। लाइनशाइन ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि चीन ने बिना किसी अमेरिकी चिप के सिर्फ साधारण दिखने वाले CPUs की बदौलत ये करिश्मा कर दिखाया है। इससे पहले अमेरिका के AI कैप्टन नाम का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पर था। स्पेन में पारंपरिक सेंजुआन फेस्टिवल बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार्सिलोना का पूरा तट रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। नाइट ऑफ फायर यानी आग की इस जादुई रात को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए लाखों सैलानी समंदर किनारे जमा हुए। मान्यता है कि इस रात समंदर किनारे बॉनफायर करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। बाइबल के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का प्रतीक है। लोग संगीत की धुन पर थिरकते हैं, आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं और पूरी रात बार्सिलोना के समुद्र तट पर रोशनी, संगीत और आस्था का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन चिड़ियाघर में नन्हे जिराफ का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। जिसके जन्म के साथ ही कोपेनहेगन जू ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया। पिछले महज 12 महीनों के भीतर यहां जन्म लेने वाला ये तीसरा बेबी जिराफ है। चिड़ियाघर के विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरे बेबी जिराफ का जन्म और उनका पूरी तरह स्वस्थ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये जू के बेहतरीन माहौल और उनकी शानदार देखरेख का नतीजा है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में जंगलों के कटने और अवैध शिकार के कारण दुनिया भर में जिराफों की आबादी तेजी से घटी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोपेनहेगन जू की ये कामयाबी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक शो में लुई विटॉन ने अपनी खास थीम को लॉन्च किया, जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। इस खास शो की थीम कॉर्पोरेट लाइफ और समंदर के एडवेंचर का एक अनोखा मेल था, जिसको पूरी दुनिया के फैशन लवर्स देखते रह गए। इस विशेष शो में कई मॉडल्स सर्फ बोर्ड और स्केट बोर्ड के साथ वॉक करते नजर आए। डिजाइनर फेरल विलियम्स ने इस शो को तैयार किया था। इस नई कलेक्शन में गहरे रंग के ढीले ढाले सूट, कैप और जैकेट के साथ जीन्स और शर्ट्स शामिल थी। शो की खासियत इसके लिए तैयार किया गया सेट भी रही, जिसे एक विशाल आर्टिफिशियल वेव जैसा तैयार किया गया था, जिसने गर्मियों में आयोजित इस शो को एक खास कूल एहसास दिया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको यकीनन बेहद प्रभावित करेगी। सेंटोरिनी का ये खूबसूरत और वायरल हो रहा सनसेट एक बार फिर से साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नजारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं।

0: सफेद रंग के घर, नीला समंदर और खूबसूरत सनसेट। ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप एक बार फिर दुनिया भर से आए पर्यटकों से गुलजार है। शाम होते ही सैकड़ों लोग यहाँ का स्पेशल सनसेट को देखने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर पर्यटकों के बकेट लिस्ट में ये नज़ारा जरूर होता है।
1: माँ बेटी की जोड़ी के रूप में ये अनुभव हमारी बकेट लिस्ट में लंबे समय से शामिल था। इसे साथ मिलकर जीना हमारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला खास अनुभव रहा। यहाँ हर मिनट भरपूर आनंद भरा रहा।
0: सेंटोरिनी के पत्थरों से बनी संकरी गलियाँ, पहाड़ियों पर बने घर और एजियन सागर का अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मंगलवार को तेज धूप और गर्मी के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या ने सभी को दंग कर दिया। जानकारों का कहना है कि यूरोप में तापमान की दुश्वारियों के बावजूद सेंटोरिनी जैसे पर्यटन स्थल अपनी अनूठी प्राकृतिक खूबसूरती और यादगार अनुभवों की वजह से दुनिया भर के यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं। समुद्र में धीरे धीरे समाता सूरज और सफेद घरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और कैमरों में कैद होते खूबसूरत पल। सेंटोरिनी का ये सनसेट एक बार फिर साबित कर रहा है कि प्रकृति के कुछ नज़ारे सचमुच हमेशा याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: क्या निर्जला एकादशी पर बिना जल के ही उपवास रखना चाहिए? क्या बीमार व्यक्ति निर्जला एकादशी का उपवास न रखें? क्या निर्जला एकादशी पर किसी दान का विशेष महत्व है? क्या है निर्जला एकादशी की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त, स्नान दान कर रहे हैं और भगवान की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरस रहे हैं राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक से दो दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों को करेगा कवर, जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचेगा दिल्ली NCR, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जल भराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी। आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक, 26 जून तक होगी मीटिंग, भारत की मेजबानी में आयोजन। वडोदरा काकवी दुला काक सरकारी स्कूल बना मिसाल, बच्चों के एडमिशन के लिए बड़ी डिमांड, सीटें फुल, फिर भी बच्चों के एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं पेरेंट्स। सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तत्पर सुरक्षा एजेंसी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है। विद्वान का मतलब वो जानता तो है मानता नहीं है, जानकारी है नॉलेज है मानता नहीं है, और हनुमान जी जानते भी है मानते भी है। तो नॉलेज में और ज्ञानी में अंतर क्या? जानने वाला नॉलेज वाला होता है, पर ज्ञानी कौन? जो उसको अनुभव करके समझ ले वो ज्ञानी। एक बात और, बहुत से लोग तर्क करने लगते ज्ञान और विज्ञान अलग अलग है। नहीं भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक। जान लेना ज्ञान है तो उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना अगर ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। प्रकट कर दिया हृदय में भक्ति को, मूर्छा अवस्था खोल दी भागवत जी ने, इसलिए ज्ञानमय ग्रंथ भी है और विज्ञानमय ग्रंथ भी है। बोलो सीताराम। नारद जी धीरे से बोले, महाराज एक बात बताओ, ये केवल सोए हुए लोगों को जगाती है भागवत के, बाकी और भी कुछ काम करती धरती है? सनत कुमार बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये काम धाम नहीं करती, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है भागवत है भागवत। और भागवत का मतलब संसार में भाग मत, इसलिए बन गई है भागवत। हाँ, इधर उधर मत भाग, एक ही जगह कल्याण हो जाएगा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलो सीताराम। अब सुनो, नारद जी बोले, महाराज ये कल्याण किस किस का करती, भला किसका करती, ये बताओ। कोई कैटेगरी है कि फलाने आदमी को ही मिलेगा इतने नंबर? कोई है गिनती विनती है? हाँ सुनो नारद जी, कोई गिनती नहीं, ये धर्मात्माओं का तो भला करती है, पर कोई महापापी रहा हो, जिंदगी भर पाप के अलावा उसने कुछ ना किया हो, और सुनो पाप करते करते मर भी गया हो, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा का ग्रंथ का आप पारायण करवा दो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जिंदा की छोड़ो, मरे हुए का भी कल्याण कर देती। सोई हाथ जोड़ करके नारद जी बोले, महाराज केवल बातें बता रहे हो कि कोई प्रैक्टिकल हुआ भी है? बोले हुआ है। अच्छा कहां हुआ, जरा विस्तार पूर्वक आप हमें प्रेम पूर्वक बताइए। तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मुस्कुराते हुए बोले, सुनो भारत के दक्षिण क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा था, उस नगर में सब प्रसन्न रहते थे। उसी नगर के बीच में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ करवे, नित्य नियम से रहवे, कर्मकांड करवे, जितने भी धर्मात्मा इनकी घरवाली उतनी उल्टी, बड़ी विपरीत। इनका नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधली, नाम ही धुंधली है। महाराज पंडित जी जब तक पूजा ना कर ले तब तक भोजन नहीं करते थे, और पंडितानी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई में नहीं घुसती थी, इतनी खतरनाक, रोज लड़ती, दिन भर लड़ती, जब मौका मिले सो लड़ती। और तो दूर की बात है, लड़ाई में इतनी माहिर कि जब भी लड़ाई हो गए सो पानी का मटका बाहर लेके आ जाए। तो कोई पूछा कि और तो सब ठीक है, लड़ाई में ये पानी का मटका लेके क्यों आती? बोले बा गाली बकते तो गला सूखता ना, तो पानी की जरूरत पड़ती। अरे तो भाई पानी की जरूरत पड़ती हो, घर जाके पी लो, भीतर मटका लेके क्यों आते? बोले वाह, जब तक पानी पीने जाएंगे तब तक तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे, सोई हम पानी की व्यवस्था बगल में रखते, बड़ी कृपा, ऐसी खतरनाक देवी, भगवान की कृपा से घर पे सब कुछ, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, एक कमी है, क्या? संतान नहीं है। ब्राह्मण बड़े परेशान, क्या करें, खूब जब तब नियम धर्म किया पर बेटा नहीं हुआ, और भाग्य इतना खराब कि पेड़ लगावे तो फल देना बंद कर देवे, गाय लावे तो बछड़े देना बंद कर देवे, इतना भाग्य खराब। अब तो और टेंशन में ब्राह्मण देवता, मरने के काजे जंगल चले गए। जंगल को एक भाषा में कहते हैं वन, क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पहले के जमाने में जो भी वन जाते थे वो बन जाते थे, वो बन जाते थे, जो भी बन जाते थे। राम जी बन गए सो बन गए, राम जी बन गए
तभी तो बन गए भगवान, नहीं तो यहां तो राजकुमार ही कहलाते। तो बन गए, आत्मदेव ब्राह्मण भी बन चले गए। क्यों? मरेंगे। एक पेड़ के नीचे आंखों में आंसू भर कर रोने लगे।

ब्राह्मण रोते हुए कहने लगे, हमारा इस प्रभु के बिना इस जगत में कौन है। नैनों में आंसू भरे, आहा, फूट फूट कर रोने लगे। इतने में एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने देखा, अरे कोई ब्राह्मण बैठा है, मस्तक पर तिलक है, माला लिए रो रहा है, लगता भगवान का भगत है, जरा देख लें पूछ लें क्या बात है। महात्मा नजदीक आए, भाई कौन हो, क्यों रो रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान की याद में रो रहे हो? हाथ जोड़ करके पंडित जी ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। हाँ, क्यों रो रहे हो? महाराज और तो आपकी कृपा से सब है, बस बेटा नहीं है। महात्मा का दिमाग खराब हो गया, हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा के लिए रो रहा है, बड़ा उल्टा आदमी। अरे पागल हो गया, बेटा बेटा के चक्कर में मत पड़ो पंडित जी, ये बेटा किसी के नहीं भाई, हो भी जाएंगे तो फिर रोओगे, बेटा काहू के नहीं भाई, भगवान को अपना मानो, वही अपने हैं। अब भाई जिसको जो शुद्ध लगी हो वही अच्छा लगता है। तो ही पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप तो ठहरे महात्मा, आप क्या जानो बेटे का सुख, जब पापा पापा कहता हुआ गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है, बेटे का सुख तो हम ही जान सकते हैं महाराज। पंडित जी के माथे की तरफ महात्मा ने देखा, बोले सुनो, सत्य जन्मावधि नैवचा नैवचा, एक जन्म तो छोड़ो, सात जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। सोई माथा पटक दिया फटाक से जमीन में। क्या हुआ महाराज, माता क्यों जमीन में पटक दिया? महात्मा से पंडित जी बोले, महाराज पहले तो एक गुना दुख था, अब तो सात गुना और प्लस हो गए, अब तो मरेंगे। और सुनो महाराज, हम तो मर रहे, आत्महत्या तुम्हें लगी। महात्मा बोले, लोग कहां खाम कहां खाज ले ली मोल, अच्छे खासे हम जा रहे थे और ये पंडित जी मर जाएंगे, आत्महत्या लगी। भैया हमें क्यों आत्महत्या लगेगी, महाराज तुमने ही हमारा दुख बढ़ाया है, सात गुना कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज चला दिया है। महात्मा बोले, कोई उपाय है? हाँ एक उपाय, क्या? हमने सुना महात्माओं की वाणी पर परमात्मा भी विचार करता है, आप आशीर्वाद दे दो कि बेटा हो जाए तो ही हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम मर रहे। दे पटाक, खपड़िया फोड़ दी। ए रुक जा पंडित जी, रुको रुको रुको रुको महाराज, रुको रुको, खपड़िया मत पटको, चलो ऐसी बात है, ये लो फल, अपनी घरवाली को खिला दियो, भगवान की कृपा से जाओ, तुम्हारे घर पर बेटा होगा। जय हो महाराज। सोई फल लिया, घर आ गए, पत्नी का नाम धुंधली, लो देवी फल खा लो, महात्मा का प्रसाद है, परमात्मा कृपा करेंगे, बेटा होगा बेटा। पत्नी बोली, महाराज जो आज्ञा, पर पत्नी भी इतनी खतरनाक, पति देव तो चले गए ब्राह्मण गांव में बताने, अब ये फल लेके बैठी, खाऊं के ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, अरे बहन क्या कर रही हो तुम बैठी बैठी? बहन तू ठीक आ गई, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, सुबह ते कहा है गई? बहन मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी ये फल लेके आए हैं, कह रहे थे फल खा लेना बेटा हो जाएगा, तू बता खाऊं या ना खाऊं? अरे पागल है, तेरे वंश नहीं है, कोई खानदान में है नहीं है, दिया जलाने वाला हो जाएगा, अच्छी बात है, फल है खा ले, क्या बिगड़ना है तेरा? पर एक दो बातें बड़ी चिंता कर रही, क्या? मैं सोच रही मैं फल तो खा लूंगी पर गर्भवती है जाऊंगी, गर्भवती है जाऊंगी तो एक बड़ी टेंशन है, कौन सी टेंशन? मैं दौड़ नहीं लगा पाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, तुझे कौन सा मिलिट्री में भर्ती होने जाना है, आर्मी में भर्ती थोड़ी होना है जो दौड़ लगाना है। ना ना ना ना, मैं सोच रही हूं अगर मैं गर्भवती है गई तो दौड़ नहीं पाऊंगी, और धोखे से घर में आग लगी तो सब तो भग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, ये गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी। तो धुंधली बोली, तू गारंटी ले लेके आग ना लगे। पड़ोसन ने सोचा, कहीं मैंने गारंटी ले ली कि आग नहीं लगेगी, कल के दिन कहीं यही ना धर दे आग, तो गारंटी विफल हो जाएगी। बोली, बहन ऐसा नहीं है, पर जरूरी थोड़ी। अच्छा चल एक और बात बता, क्या? मैंने सुना जो स्त्री गर्भवती होती है उसका पुनर्जन्म होता है प्रसव पीड़ा के बाद। हाँ वो तो भगवान की देन है, उसमें क्या लेना देना, तू टेंशन मत ले, बेफिजूली की बातें मत कर, तू तो फल पा ले। तीसरी बात और बता, क्या? अगर मैं गर्भवती हो गई तो काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो तू चिंता मत कर, अपनी ननंद को बुला लेना, नंद आ जाएगी तेरी। अरे उसको ना बुलाऊं मैं, क्यों? बड़ी चोरनी है, काम काज के बहाने आएगी, पूरे घर का सारा सामान लेके भग जाएगी, उसको नहीं मैं बुलाऊं। अब पड़ोसन बोली, जो तुझको करना है सो तू कर, तुझसे तो भगवान ही हारे। चली गई।
लेकिन धुंधली की बहन आई तब तक महाराज उस पर बड़ी कृपा भगवान की। चार बच्चे तो वो घर छोड़ के आई, दो बच्चे आगे चल रहे, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा, खुद के ही हैं ये। एक बच्चा को उसने गोद में ले रखा, एक अभी अभी गर्भ में पल रहा। आई, अरे बहन राम राम, धुंधली राम राम राम राम, आजा बहन तू ठीक आ गई। अरे बहन धुंधली क्या बात है, तू बड़ा मुंह लटकाए, पूरी कहानी बता दी। और धुंधली की बहन तो चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, ताकि एक दो बच्चे हमारे सेट हो जाए। यार सुन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़िए, बाबा बैरागी है ना जाने कौन सा मंत्र मार के फल दे दे, तू पागल हो जाए, छोड़ दे सब झंझट। तो मैं पति को क्या जवाब दूं, उन्होंने तो कहा है कि बस फल खाओ, जय जय हो जाएगी, बेटा होगा। अरे तू टेंशन ना ले, ये फल खिला दे, ये जो गाय बंधी ना बहुत दिन से, इसको खिला दे। फिर मैं पति को क्या जवाब दूं, कोई जवाब नहीं देना, तू झूठ मूठ का गर्भवती होने का नाटक कर, भगवान की कृपा से अभी हाल मेरे कोख में बच्चा आया है, तू कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद करा दूंगी, जो भी होगा मैं तुझे रातों रात सौंप दूंगी, मेरे ही घर पे तू चल के रह, तो ले तुझे झंझट भी नहीं लेना पड़ेगा मोल, और बेटा का बेटा या संतान की संतान मिल जाएगी भगवान की कृपा। ये बहुत बढ़िया है। अधुंधली देवी भी बड़ी खतरनाक, उसने वो गाय को फल खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक करती हुई बहन के घर चली गई। कालांतर में बहन को बेटा हुआ, बेटा को बहन को दे दिया, धुंधली को दे दिया, धुंधली बेटा को लेकर घर पर आई, पति देव से बोली महाराज आपकी जय हो, बेटा हुआ है। ओहो पंडित जी तो खुश हो गए, ढोल नगाड़े बुलाए, खूब जय जयकार हुआ। कुछ दिन ढोल नगाड़े बजे, जय जयकार हुई, प्रसन्नता बंद ही नहीं हुई, तब तक महाराज जो फल गाय को खिलाया था उसको भी बेटा हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पूरा मनुष्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ, बस संत का आशीर्वाद था, तो कान गऊ जैसे हुए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा हो गया। अब तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी पंडित जी के घर, बताओ तो, पहले तो एक बेटा नहीं थे, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा। एक दिन पंडित जी नामकरण करने लगे, जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए गौकर्ण उसका नाम गौकर्ण रखा। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, तब तक धुंधली आ गई, महाराज क्या कर रहे हो, बेटे का नाम रख रहे हैं, 9 महीना दुख हमने झेलो है गर्भ में बच्चे को लेने को, इसलिए नाम रखने को अधिकार भी हमको दियो। हाँ तू धल्ले देवी, बस मुस्कुरा, हंसी खुशी रहे, भगवान की कृपा है। अच्छा महाराज हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम है आज से धुंधकारी। पंडित जी बोले जय हो, अपने ही नाम पे धल लिया तूने, और हुआ क्या गो

0: गोकरण तो पंडित भय पर धुंधकारी नंबर एक का खल हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ तो बचपन से ही खतरनाक धुंधकारी हुआ। गोकर्ण तो गुरुकुलम में पढ़ने चले गए पर धुंधकारी बड़े होते ही छोटे छोटे बच्चों को पीट देता। कोई बच्चा पलना में सो रहा हो सो जोर से चौंटियां ले आए, चार पांच चांटा मारे आए। कोई अंधा आदमी रास्ता पूछे तो कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। इतना खतरनाक हुआ पड़ोसी के घर से सामान उठावे, दूसरे पड़ोसी के घर घर धर देवे, दोनों की चोरी के नाम पे लड़ाई हो जावे, ये कोने में बैठ के मजे लेवे हैं। इतना खतरनाक हुआ महाखल। बड़ा हुआ एक दो नहीं पांच वेश्याएं रख ली, जितना घर का धन था सब जाके देने लगा। एक दिन पिताजी की सुटाई कर दी, बताओ मटेरियल कहां है, माल पानी बताओ कहां है। पिताजी बोले बेटा जितना तो दे दिया है, दे पटा दे चाटा चटा दे चाटा चटा। तो आत्मदेव ब्राह्मण के आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से एक व्यक्ति कान में बोला, एक दिन और रो रहे थे, रो रहे थे पहले भी, क्यों? बेटा नहीं था, आज क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण बोले बेटा क्यों है, यही सबका हाल है। हाँ, सबका हाल है, दोनों हालत में ही आदमी रोता है। मिल जाए देखो जितने जितने यहां पर बैठे हुए बिना शादी वाले, सब सोच रहे हे भगवान शादी हो जाए, जिनकी हो जाएगी और जिनकी हो गई उनसे पूछो हे महाराज हम तो सन्यासी हो जाए। आओ, इससे बढ़िया तो यही था शादी ना होती, बढ़िया। सन्यास जितना विवाह के बाद प्रकट होता है पहले नहीं प्रकट होता है। हाँ, संन्यास तो विवाह के बाद ही प्रकट होता है। जब झंझट देखो, पहले साल बढ़िया शादी होवे तो पहले साल तो पत्नी लगती है चंद्रमुखी। महाराज चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, अच्छा बहुत बढ़िया है। लेकिन दो तीन साल शादी के गुजर जाए सो लगती है भद्रमुखी, भद्दा चेहरा लगने लगता। जहां पांच छह साल बीते छोटे छोटे पंगा पप्पू भय, तो जो पहले साल चंद्रमुखी लग रही थी दूसरे तीसरे साल भद्रमुखी लग रही थी वही पर ज्वालामुखी नजर आने लगती है। हाँ, बड़ी हालत। आज फिर ब्राह्मण देवता रोने लगे, बेटा क्यों है? इतने में गोकर्ण जी आ गए, उन्होंने पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी आप रो मत। क्यों रो रहे हो, क्या बताएं? देहेन्स मांस रुधिरे विमतिम त्यज। ये शरीर किसी काम का नहीं, ये तन किसी काम का नहीं, पिताजी आप सावधान हो जाओ। ये सारा संसार नश्वर है, ना सुख है ना दुख है, सब माया है। अच्छा बुरा ना मानना, आप लोग हमारी बात सुनकर के भी इतने बैरागी मत हो जाना कि सब माया है, माया के बिना भी काम नहीं चलना है। हाँ, बहुत ज्यादा बैराग्य धारण मत कर लेना कि तुम कल से ही काम धाम बंद करो, सब माया है। ना ना ना, रहना जो कर रहे वही करना, पर एक काम करना, संसार में रहकर संसार के मत रहना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त, स्नान दान कर लोग कर रहे हैं भगवान की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरस रहे हैं राहत के बादल, सुहारे मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 1 से 2 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों को करेगा कवर, जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचेगा दिल्ली NCR, मौसम विभाग का अनुमान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़, स्नान दान और पूजा पाठ में लगे भक्त, सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी है मशहूर। बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का मिलता है पुण्य फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की उपासना से पूरी होती है मनोकामना, पांडवों से जुड़ा है इस एकादशी का इतिहास। दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना, गरज बरज के साथ कल शाम राजधानी के कई हिस्सों में बरसे बादल। राजधानी में राहत की बारिश के बीच गर्मी से मिली निजात, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। रिमझिम बारिश के बीच कुछ कुछ जगह धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार, बारिश के कारण ट्रैफिक पर दिखा असर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए दिल्ली एनसीआर में जारी किया येलो अलर्ट, रुक रुक कर बारिश और आंधी तूफान की जताई आशंका। जून के आखिर तक राजधानी समेत आसपास के इलाकों में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना, इस हफ्ते आंधी बारिश के तौर पर जारी रहेगी मौसम की आंख मिचोली। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जल भराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर। दिल्ली सरकार ने मॉनसून 2026 के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया, बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में होती रहेगी बरसात। मॉनसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मॉनसून होगा और मजबूत, 25 से 26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। भारी बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे, पानी में जमकर की मस्ती। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेन्स की आवाजाही हुई प्रभावित। अमरावती में मॉनसून की एंट्री, जबरदस्त बारिश के बीच गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं लोग। सतारा के कोयना नगर में पहली बारिश से दिखा प्रकृति का खूबसूरत नजारा, उझड़े झरने का बड़ा जलस्तर। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, कई नदियों में उफान से सड़कें और मार्ग बंद। अरुणाचल के केई पेन्योर जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, बड़े पैमाने पर पानी भरने के कारण 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त। अचानक आई बाढ़ से नेपको परियोजना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र हुए प्रभावित, भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध। प्राकृतिक आपदा के बीच बचाव और राहत कार्य जारी, प्रभावित स्थान पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से कर रही है काम, अलर्ट पर एनडीआरएफ। बाढ़ और भूस्खलन के बीच पेन्योर बांध के बीच फंसे एक व्यक्ति और डॉग, तस्वीरें हुई वायरल। पूर्वोत्तर राज्यों में बीते 48 घंटे से ज्यादा समय से हो रही लगातार बारिश, बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड। अब और आधुनिक और टिकाऊ होंगी दिल्ली की सड़कें, रेखा सरकार ने 658 करोड़ रुपए की लागत से 270 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास को दी मंजूरी। बिहार में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का होगा विस्तार, अब 12 शहर होंगे सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित। समस्तीपुर के प्रसिद्ध चकोटी मठ पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पूजा अर्चना कर राज्य में सुख शांति समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विष्णु महायज्ञ और संत महाकुंभ कार्यक्रम में भी हुए शामिल, श्री महाविष्णु जी के 24 अवतार धाम का किया लोकार्पण। क्रिकेटर आकाशदीप की शादी संपन्न, वाराणसी में अक्षिता राज के साथ लिए फेरे, बिहार के रोहतास से धूमधाम से निकली बारात। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत, डीएमआरसी ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। नए मेट्रो कॉरिडोर से सेंट्रल विस्ता में बढ़ेगी मेट्रो की कनेक्टिविटी, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हब पहुंचना होगा आसान। सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, डीएमआरसी का नया अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर अहम सरकारी इलाकों को जोड़ेगा। लगभग 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में होंगे कुल 9 भूमिगत स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाईकोर्ट, वडोदरा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल। नए मेट्रो प्रोजेक्ट से केंद्रीय कर्मचारियों का सफर होगा आसान, दिल्ली के प्रशासनिक और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम। राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले जय मुंदड़ा आयरलैंड की T20 क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में आयरलैंड की ओर से खेलेंगे। 26 और 28 जून को डबलिन में भारत के खिलाफ मैच, आक्रामक बॉलिंग और शानदार बैटिंग के लिए जय का आयरलैंड की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन। टोंक शहर में रहने वाले उनके परिवार में खुशी का माहौल, मां ने कहा बेटे ने सच किया सपना। अट्ठाईस साल के जय 2021 में एमटेक की पढ़ाई करने स्टूडेंट वीजा पर गए थे आयरलैंड, इसी दौरान वहां नौकरी की और साल 2025 में उन्हें मिली आयरलैंड की नागरिकता। वडोदरा के कवि दुला काक सरकारी स्कूल में सीटें फुल, लंबी वेटिंग लिस्ट, पहली पसंद बना सरकारी स्कूल। शिक्षा की सफलता का मॉडल बना ये सरकारी स्कूल, हर सुविधा से है परिपूर्ण, रिजल्ट भी रहता है खास। पंजाब के ऑब्जर्वेशन होम में पहली बार शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जेल पहुंचे बच्चे अतीत को पीछे छोड़कर बना सकेंगे अपनी नई पहचान। लद्दाख का एमएस फेस्टिवल की धूम, गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है आयोजन। हर साल जून से जुलाई में हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, बौद्ध संस्कृति की दिखती है झलक। अलवर के डीएसपी ऑफिस से पकड़ा गया 8 फीट लंबा सांप, आधे घंटे चला सांप का रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा गया। आगरमालवा में सलोनी जैन की शादी बनी चर्चा का विषय, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया विशाल आशियाना। छह मंजिला है पक्षियों के लिए बनाया गया आशियाना का नाम टावर, हर मंजिल पर पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर, रोज दाना डालने जाता है परिवार। हर मंजिल पर बनाई गई है एक छत जिसे पक्षियों को मिलती है छांव, साथ ही तालाब किनारे होने के कारण पक्षियों के लिए पानी की भी पूरी व्यवस्था। श्रद्धालुओं का विश्वनाथ धाम आना भी होगा आसान, वाराणसी में जल्द शुरू होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। मात्र 50 रुपए होगा वाराणसी कैंट से गदौलिया चौक तक की यात्रा का किराया, काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी किराए में 20% की विशेष छूट। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जुआओ महोत्सव, शानदार डोंगी परेड का भी किया गया आयोजन। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका। सैंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है ये त्योहार, मॉनसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है पर्व। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण, खिलाड़ियों को भी किया सम्मानित।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium. I'm a rebel, just for kids. Jack, you're killing me.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
12: तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खुशी का महत्व क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, साल में वैसे तो बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं, लगभग 24 एकादशी, अधिक मास में 26 हो जाती हैं, तो उसमें दो एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के एक भाई थे भीम, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने केवल मात्र एक बार इसी एकादशी का उपवास रखा और मारे भूख के बेहाल होकर मूर्छित हो गए। तो भीम के नाम पर निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर वास्तव में आप बिना जल के निर्जल उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूजा, उपासना, ध्यान और साधना अगर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी पर तपती गर्मी में व्रत रखना बिना जल के एक बड़ी कठोर तपस्या है। जब आप ये तपस्या करके प्रार्थना करते हैं शुद्ध और सात्विक मन से, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना जो रीजनेबल हो उसे पूरी कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले कम से कम स्नान कर लें और स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें, जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरिहि। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, जल पिलाएं, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करना अच्छा होगा। देखिए, नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर आप जल नहीं पिएंगे। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल की एक घूंट पिए, बिना कुछ खाए हुए आप उपवास रखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप बीमार हैं, आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है, बीपी की दवाई चल रही है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड ले सकते हैं, नींबू पानी, दूध, फलों का रस या फल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है और निर्जल उपवास रखें, पता चला बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, शुगर लो हो गया, बीपी शूट अप हो गई, ये सब मत करिएगा। यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तभी निर्जल उपवास रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो लिक्विड ग्रहण करके, फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम करें, क्या क्या करें। निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए निर्जल उपवास रखिए। और अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दोनों समय सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। रात में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो विशेष लाभ होगा। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप करने में और ध्यान में इस दिन लगाएं। भगवान विष्णु का मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, इस नाम का भी मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा। जल का दान करिएगा निर्जला एकादशी पर, बहुत शुभ होगा। लोगों को ठंडा पानी, शरबत, फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को जल पिलाएं। और आप जल के पात्र का भी दान कर सकते हैं, लोटा है, गिलास है, सुराही है, घड़ा है, इसका दान करना भी बहुत शुभ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि निर्जला एकादशी की महिमा इसलिए है कि ज्येष्ठ के महीने में ये व्रत रखना एक तपस्या है, और ज्येष्ठ के प्रचंड गर्मी के महीने में लोगों को जल पिलाना पुण्य अर्जित करने का काम है। लोगों को जल पिलाइए, पुण्य लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती का पर्व भी आता है। क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी या पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग एकादशी को मनाते हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर भी गायत्री जयंती मनाई जाती है। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, वेद की आत्मा है। इसीलिए हमने इस मंत्र को मातृवत समझा है, माता के समान करुणा करने वाला समझा, और इस मंत्र से वेद माता गायत्री को जोड़ा गया। तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा को वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, ज्ञान देने वाला, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाला, भौतिक जीवन में संपन्नता देने वाला माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी पर यानी गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है, वो गुरु की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई सद्गुरु मिले और भव सागर से पार करा दे, मुक्ति मोक्ष का द्वार दिखा दे। जिनको भी गुरु प्राप्ति की कामना है वो निर्जला एकादशी पर गायत्री जयंती वाले दिन 11 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करेंगे सुबह के समय। और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला या जितना आप कर सकें यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिएगा, परमात्मा की विशेष कृपा होगी और सद्गुरु की प्राप्ति होगी। देखिए, साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी पर उपवास रखें या न रखें लेकिन जल का या जलीय पदार्थों का दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, लस्सी छाछ पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। लोगों को जल का दान अगर निर्जला एकादशी पर करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। कि अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती हों तो क्या करेंगे, रोज सुबह एक पात्र में, कटोरी गिलास या लोटे में शुद्ध जल ले लें। इसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल लेंगे और जल को सामने रख करके एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ के 10 मिनट के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर निरंतर करें तो आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका मन भी पवित्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त, स्नान दान कर रहे हैं और भगवान की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरस रहे हैं राहत के बादल, सुहाने मौसम से खिले सैलानियों के चेहरे। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक से दो दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों को करेगा कवर, जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचेगा दिल्ली एनसीआर, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में।

0: देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक 26 जून तक होगी मीटिंग, भारत की मेजबानी में आयोजन। वडोदरा काकवी दुला काक सरकारी स्कूल बना मिसाल, बच्चों के एडमिशन के लिए बड़ी डिमांड, सीटें फुल, फिर भी बच्चों के एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं पेरेंट्स। सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तत्पर सुरक्षा एजेंसी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। किस तरीके से, कौन सा वो तरीका है जिस तरीके से हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और गायत्री जयंती का निर्जला एकादशी से क्या है संबंध, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी पर उपवास रखें या न रखें, लेकिन जल का या जलीय पदार्थों का दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, लस्सी छाछ पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। लोगों को जल का दान अगर निर्जला एकादशी पर करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं 25 जून 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:09 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:29 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं क्या है निर्जला एकादशी और क्या है इसका महत्व।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, साल में वैसे तो बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं, लगभग 24 एकादशी, अधिक मास में 26 हो जाती हैं। तो उसमें दो एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के एक भाई थे भीम, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने केवल मात्र एक बार इसी एकादशी का उपवास रखा और मारे भूख के बेहाल होकर मूर्छित हो गए। तो भीम के नाम पर निर्जला एकादशी को भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर वास्तव में आप बिना जल के निर्जल उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूजा उपासना ध्यान और साधना अगर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी पर तपती गर्मी में व्रत रखना बिना जल के एक बड़ी कठोर तपस्या है। जब आप ये तपस्या करके प्रार्थना करते हैं शुद्ध और सात्विक मन से, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना जो रीजनेबल हो उसे पूरी कर सकते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, घर में कोई शुभ कार्य होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि क्या है विधि निर्जला एकादशी के उपवास की, हमें किस तरह से ये व्रत रखना चाहिए।
1: अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले कम से कम स्नान कर लें और स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें, जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, जल पिलाएं, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करना अच्छा होगा। देखिए नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर आप जल नहीं पिएंगे। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल की एक घूंट पिए, बिना कुछ खाए हुए आप उपवास रखेंगे। लेकिन देखिए अगर आप बीमार हैं, आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है, बीपी की दवाई चल रही है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड ले सकते हैं, नींबू पानी, दूध, फलों का रस या फल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है और निर्जल उपवास रखें, पता चला बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, शुगर लो हो गया, बीपी शूट अप हो गई, ये सब मत करिएगा। यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तभी निर्जल उपवास रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो लिक्विड ग्रहण करके, फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव से इस समय बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न रागिनी जी ने हमें लिखा है और रागिनी जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1995। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान है सोनीपत, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का योग क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रागिनी, आपकी कुंडली में विवाह होने का योग चल रहा है और आपका विवाह अब किसी भी समय तय हो सकता है, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। जब भी विवाह करिए कुंडली एक बार जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि आपके शुक्र के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बार कुंडली मिला करके अगर आप विवाह करेंगी तो जीवन बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका आपको जवाब दें, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, अगला प्रश्न धर्मवीर ने हमें लिखा है और धर्मवीर जी हमें मेल लिखते हैं जोधपुर राजस्थान से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 10 अप्रैल 2004, जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म स्थान है जोधपुर। ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे साथ मिलकर के व्यापार करे, तो क्या बेटे को मेरे व्यापार में लाना ठीक होगा या बेटे को कोई अलग से व्यापार कराना चाहिए। देखिए धर्मवीर जी, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि वो अपने पिता के साथ मिलकर के पिता के व्यापार को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लोहा, मशीनरी, इस तरह के क्षेत्रों में इनके व्यापार करने की संभावना बनती है। आपके बेटे की कुंडली में दुर्घटनाओं के योग बहुत हैं जिससे इनको बचना चाहिए, तो आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और अपने पुत्र से कहें कि रोज सुबह शाम एक एक बार अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें विशेष लाभ हो सकता है।
1: अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम करें, क्या क्या करें। निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए निर्जल उपवास रखिए, और अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दोनों समय सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। रात में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो विशेष लाभ होगा। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप करने में और ध्यान में इस दिन लगाएं। भगवान विष्णु का मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, इस नाम का भी मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा। जल का दान करिएगा निर्जला एकादशी पर, बहुत शुभ होगा। लोगों को ठंडा पानी, शरबत, फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को जल पिलाएं। और आप जल के पात्र का भी दान कर सकते हैं, लोटा है, गिलास है, सुराही है, घड़ा है, इसका दान करना भी बहुत शुभ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि निर्जला एकादशी की महिमा इसलिए है कि ज्येष्ठ के महीने में ये व्रत रखना एक तपस्या है, और ज्येष्ठ के प्रचंड गर्मी के महीने में लोगों को जल पिलाना पुण्य अर्जित करने का काम है। लोगों को जल पिलाइए, पुण्य लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं क्या है गायत्री जयंती की महिमा।
1: देखिए, निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती का पर्व भी आता है। क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी या पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग एकादशी को मनाते हैं, और कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर भी गायत्री जयंती मनाई जाती है। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, वेद की आत्मा है। इसीलिए हमने इस मंत्र को मातृवत समझा है, माता के समान करुणा करने वाला समझा, और इस मंत्र से वेद माता गायत्री को जोड़ा गया। तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा को वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, ज्ञान देने वाला, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाला, भौतिक जीवन में संपन्नता देने वाला माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी पर यानी गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है, वो गुरु की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई सद्गुरु मिले और भव सागर से पार करा दे, मुक्ति मोक्ष का द्वार दिखा दे। जिनको भी गुरु प्राप्ति की कामना है वो निर्जला एकादशी पर गायत्री जयंती वाले दिन 11 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करेंगे सुबह के समय, और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला या जितना आप कर सकें यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिएगा। परमात्मा की विशेष कृपा होगी और सद्गुरु की प्राप्ति होगी।
0: और गुडलक में आप जानेंगे आज के अंतिम राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में।
1: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न निधि जी ने हमें लिखा है और निधि जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1982, दोपहर में 1 बजे, जन्म स्थान है आगरा। निधि जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में मेरे दिक्कतें बहुत रहती हैं और पति परिवार पर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, इधर उधर के चक्करों में लगे रहते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो, पति मेरे ऊपर बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकें। देखिए निधि, आपकी कुंडली में जो बृहस्पति के हालात हैं उसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और बृहस्पति के हाल गड़बड़ होने की वजह से मैरिटल लाइफ में चैन नहीं है, सकून नहीं है। तो अगर बृहस्पति को बेहतर किया जाए तो मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और एक ओपल लगभग 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें तो आपकी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो जाएंगी।
0: गुड लक। में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न मोहन लाल जी ने हमें लिखा है और मोहन लाल जी हमें हरियाणा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1970, शाम के 7:35, जन्म स्थान है हरियाणा, चंडीगढ़ लिखा है इन्होंने, चंडीगढ़ का जन्म है इनका। तो ये पूछ रहे हैं मोहन जी कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी। मोहनलाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्ज के हालात में अक्टूबर 2026 के बाद सुधार होगा, चीजें बेहतर होने लगेंगी और अगस्त 2027 के बाद से चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, संभव हो तो मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को गुड़ का दान करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: पंडित जी, एक सवाल था, लोगों का ऐसा मानना है कि एकादशी पर व्रत करने से, दान पुण्य करने से उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से क्या हमें सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है?
1: जी देखिए, एकादशी की तिथि पर अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं तो निसंदेह आपका मन पवित्र होता है और पवित्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है या पवित्र मन से आप ईश्वर से जल्दी जुड़ पाते हैं। कोई भी एकादशी हो, निर्जला एकादशी तो खैर साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसीलिए अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, मन को शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं, तो आप इतना जरूर करिए कि निर्जला एकादशी पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। पूरी गीता तो संभवतः नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए और निर्जला एकादशी पर जल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप शरबत, ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को पिलाएं, लोगों को दान करें। अगर ये दो काम करें तो पापों का प्रायश्चित भी होगा, मन और विचारों की शुद्धि भी होगी।
0: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 25 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, करियर और धन के मामलों में सुधार होगा, इस साल संपत्ति के लाभ होने के योग भी बन रहे हैं, पूरे साल भर काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
1: देखिए, आज की जिज्ञासा है नाम राशि, महीने की राशि या चंद्र राशि में से किसका असर सबसे ज्यादा होता है। देखिए, जो राशि आपकी कुंडली में लिखी है यानी चंद्रमा जिस राशि में है, चंद्र राशि जो है उसका असर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपकी कुंडली नहीं है, चंद्र राशि पता नहीं है, तो इसके अभाव में नाम राशि का प्रयोग करना चाहिए। जो महीने के हिसाब से राशि देखते हैं, सन साइन, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है।
0: और आइए अब जानते हैं 25 जून 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और संतान संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि राशियों की विशिष्टता क्या है। आज की गुडलक राशि है कुंभ। ये अत्यधिक बुद्धिमान और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन

0: इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर निरंतर करें तो आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका मन भी पवित्र होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: It's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज
2: यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: और चलिए बात कर लेते हैं राम वन गमन मार्ग की, जो बनकर करीब करीब तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से हो सकता है। अयोध्या से चित्रकूट तक बनने वाला ये राम वन गमन मार्ग प्रयागराज से होकर गुजर रहा है, जिसे श्रृंगवेरपुर धाम से जोड़ा गया है। ये वही धाम है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण रुके थे।
11: श्रृंगवेरपुर धाम, ये वही जगह है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण गुजरे थे। यही वो अपने मित्र निषाद राज से मिले थे। माता सीता ने यहीं पर गंगा मैया की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। केवट राज ने इसी जगह से राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी। इसलिए कहा जाता है कि श्रृंगवेरपुर धाम से भगवान राम का गहरा नाता है। इतनी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह को भी राम वन गमन मार्ग से जोड़ा गया है, जिससे इलाके के लोग बेहद खुश हैं।
12: राम भक्तों के लिए तो आप समझिए कि सोने पे सुहागा है। अब जो चित्रकूट जाते थे, अब वो एक अयोध्या से श्रृंगवेरपुर धाम, चित्रकूट तीनों का दर्शन करेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि का, और यहाँ पर जहाँ भगवान ने राम ने विश्राम किया उसका, और चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी का, और अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन, तीनों एक साथ हो जाएंगे, एक ही रूट पे है।
13: राम भक्तों के लिए अच्छी पहल।
12: राम भक्तों के लिए आप समझिए कि उनके लिए प्राण तत्व जैसे होता है ना, कि हमारे लिए वो मिल गया जो हमको चाहिए था। अब मतलब एक सहज रूप से हमारा चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर धाम और अयोध्या तीनों का दर्शन सहज हो जाएगा।
11: आपको बता दें कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जिन जगहों से होकर गुजरे, उन्हें मिलाकर राम वन गमन मार्ग बनाया जा रहा है। यूपी में ये राम वन गमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबे इस राम वन गमन मार्ग को बनाने की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जिसका काम अब पूरा होने को है। इस मार्ग पर दो पुल भी पड़ते हैं, जिनमें से एक पुल श्रृंगवेरपुर में लगभग बनकर तैयार है। गंगा नदी पर बने इस पुल की लंबाई 1100 मीटर है और इसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। राम वन गमन मार्ग का बचा हुआ काम भी तेजी से निपटाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।
14: राम गमन मार्ग बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। इस रामगमन मार्ग की खास बात, 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी रखी गई है। सबसे बड़ी बात, भगवान राम ने वनवास के दौरान जिन जगहों पर रुके थे, उन जगहों को एक ही रास्ते पर कनेक्ट किया गया है, यानी अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं को अब कोई अलग रास्ता नहीं, बल्कि रामगमन मार्ग से होकर दर्शन करना होगा। यानी ये रामगमन मार्ग भगवान राम में आस्था रखने वालों के लिए गिफ्ट है, और भगवान राम के हर एक जगह जहां पर उन्हें वनवास के दौरान रुके थे, उन जगहों को कनेक्ट किया गया है।
11: अयोध्या से चित्रकूट तक राम वन गमन मार्ग के पूरा होने से इन इलाकों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ही आर्थिक लिहाज से भी तस्वीर बदलेगी। इसका एक फायदा ये भी होगा कि भक्तों को राम मंदिर के साथ साथ राम वन गमन के पूरे पथ को देखने और समझने का मौका भी मिलेगा।
15: पहले तो घूम के जाते थे हर एक जगह पे, अब ये है कि अब एक ही जगह पे, एक ही रोड से जहाँ जहाँ राम भगवान गए थे वहाँ वहाँ दर्शन आराम से कर सकते हैं। अयोध्या है, श्रृंगवेरपुर है, चित्रकूट है, हम लोग पहले घूम के जाते थे, उल्टा हम लोग को पड़ जाता था। अब है एक ही रोड से हर एक जगह के दर्शन कर सकते हैं। अब जब से ये अच्छा बन गया, एक रोड से ही घूम लेते हैं, अब श्रृंगवेरपुर आते हैं, अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, हम लोग को बहुत बहुत अच्छा, यानी बहुत सबके लिए अच्छा हो गया।
16: पहले हम लोग को जब अयोध्या जाना होता था, चित्रकूट जाना होता था तो हम अलग अलग मार्गों से जाते थे, लंबी दूरी तय करते थे। लेकिन केंद्र सरकार, या तो ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो ये राम वन गमन मार्ग बना हुआ है, हम लोगों को एक ही मार्ग से पहुँचा दे रहा है अयोध्या। और ये जो दूरी थी पहले वह कम हो चुकी है, अब राम भक्त आसानी से और बहुत ही आस्था के साथ अयोध्या पहुंच सकते हैं और सीधे न केवल अयोध्या बल्कि श्रृंगवेरपुर धाम में दर्शन करते हुए सीधे चित्रकूट जा सकते हैं।
11: इस राम वन गमन मार्ग के बनने से श्रृंगवेरपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट जैसे स्थलों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में न सिर्फ भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि इन शहरों में विकास तेज होगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere.
13: From breaking news.
17: After multiple assassination attempts, they can't even get.
18: They're reliable.
19: Always when I need them.
13: To live sports action.
20: One hand jam by LeBron on the break.
21: That's another three, Steph Curry.
13: And your favorite music.
22: Well, the dawn begins to crack.
13: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
10: पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: आज है निर्जला एकादशी. पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त. स्नान दान कर लोग कर रहे हैं भगवान की पूजा. मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद.
24: तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदमनाथर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन. बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल.
10: तेजी से बढ़ रहा है मॉनसून. 1 से 2 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बचे हिस्से करेगा कवर. जुलाई के शुरू में ही दिल्ली पहुंचने के आसार.
24: मुंबई में तेज बारिश का सिलसिला जारी. गर्मी से मिली राहत, नदियों का जलस्तर बढ़ा. पहाड़ों में भी भारी बारिश. सुहाने मौसम से सैलानी खुश.
10: महाराष्ट्र के हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में हैंड वॉश, साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य. एफडीए ने जारी की गाइडलाइंस.
24: वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें वायरल।
0: अल्ट्रा गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
10: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना, वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: तो आज वो पावन दिन है जो आपको साल भर की एकादशी का पुण्य दे सकता है। आज निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, यानी इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करते हैं और ना ही भोजन करते हैं। क्या है इस व्रत की महिमा और कैसी है निर्जला एकादशी पर पवित्र नदियों के घाटों की रौनक, आगे आपको दिखाएंगे।
24: तो वहीं आपको हम भारत और चाइना की सीमा पर स्थित देवताल की सैर पर भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर एडवेंचर का रोमांच और आध्यात्म का नाद है। ये ताल हिमालय की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। अगर आप भी जाना चाहते हैं कि देवताल, तो हम आपको बताएंगे राह, बस बने रहिए हमारे साथ।
10: तो भोलेनाथ की नगरी काशी को जल्द रोपवे का तोहफा मिलने वाला है। इससे दर्शन के लिए आने वाले शिव भक्तों को जाम से निजात मिल जाएगा, मतलब बिना किसी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ के भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। कब से होगी रोपवे की शुरुआत और क्या क्या रहेगा खास, आगे आपको बताएंगे।
24: आपको गुजरात के वडोदरा लेकर भी चलेंगे, जहां पर एक सरकारी स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सरकारी स्कूल में दाखिले फुल हो चुके हैं, मगर लोग अभी भी दाखिले की उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। ये स्कूल सरकारी शिक्षा की सफलता का मॉडल बन गया है। शिक्षा और सुविधाओं के मामले में इस स्कूल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कैसे हुआ ये चमत्कार, ये भी जानेंगे।
10: तो शुभ समाचार में आपको कॉमेडी के जंगल में लेकर चलेंगे, जहां के किंग हैं अक्षय कुमार। उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल कल देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, मगर उससे एक दिन पहले यानी आज शाम को फिल्म का पेड प्रीव्यू देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में दिखाए जाएंगे। इस फिल्म पर भी हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे के 9 गुड न्यूज का।
24: गोवा में मॉनसून की शुरुआत के प्रतीक के रूप में पारंपरिक साओ जोआओ उत्सव के हजारों स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बहुत धूमधाम से मनाया। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित इस पर्व में लोगों ने चपोरा नदी पर रंग बिरंगी डोंगी परेड और कुओं में छलांग लगाकर जश्न को मनाया। उत्सव में चपोरा नदी के किनारे शानदार डोंगी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ सजी हुई नावें शामिल थी।
10: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 40 लाख से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 14 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
24: बाबा विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे जल्द शुरू होने जा रहा है, और इसे कैंट से गोदोलिया तक का 45 मिनट का सफर मात्र 15 से 16 मिनट में पूरा हो सकेगा, और इस मार्ग के लिए किराया 10 रुपए से लेकर अधिकतम 50 रुपए तक निर्धारित किया गया है।
10: महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर में साई भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर साल यहां 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अलावा साई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप नकदी के अलावा सोने और चांदी की वस्तुएं आभूषण का भी दान करते हैं। अब तक साई बाबा की तिजोरी में लगभग 550 किलो सोना और 70,730 किलो चांदी का दान किया जा चुका है।
24: मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ ही छतों का बाजार भी पूरी तरह से गुलजार हो गया है, और इस बार साधारण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक छतों की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। बटन दबाते ही खुलने और बंद होने वाले छाते अब लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक है। सिर्फ छाते ही नहीं बल्कि जो शू रेनकोट हैं और वन टाइम यूज रेनकोट हैं, वो भी बाजार में धूम मचा रहे हैं।
10: शिमला में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बदला हुआ मौसम सैलानियों को भी खूब भा रहा है। लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं और बारिश के बीच शिमला की वादियों में घूम रहे हैं। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत मिलने की तलाश में शिमला पहुंचे पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है।
24: आईसीसी वनडे रैंकिंग टीम में टीम इंडिया के वनडे कैप्टन शुभमन गिल ने लंबी छलांग लगाई है। आपको बता दें 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन रैंकिंग में अब नंबर 2 पर जगह बना चुके हैं। गिल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जो अब एक पायदान नीचे खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बने हुए हैं। और इसके अलावा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल 7वें स्थान पर है।
10: तो स्पेन में पारंपरिक सैन जुआन फेस्टिवल बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार्सिलोना का पूरा तट रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। नाइट ऑफ फायर यानी आग की इस जादुई रात को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से आए लाखों सैलानी समंदर किनारे जमा हो गए।
24: इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में दुनिया भर से 48 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म की नेट कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है।

और शुभ समाचार में आज बात निर्जला व्रत की होगी, जो साल भर की एकादशी का पुण्य दे सकता है। भीषण गर्मी, तपता सूरज और गले को सुखा देने वाली प्यास, लेकिन आस्था ऐसी कि भक्त पूरे दिन जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। ये है निर्जला एकादशी का महाव्रत, जिसे सनातन परंपरा में तप, त्याग और आत्मसंयम की सर्वोच्च साधना माना गया है। मान्यता है कि इस एक व्रत का पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान फलदायी होता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के रहना, अर्थात इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करते हैं और ना ही भोजन। ये व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सब एकादशी में इसे काफी अहम माना जाता है। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस दिन व्रत, उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है।

0: आज निर्जला एकादशी का व्रत है। जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने वाला व्रत, सौभाग्य और पुण्य देने वाला व्रत, सब एकादशी में सबसे अहम माना जाता है कि ये वो शुभ दिन है जब नारायण भक्तों पर महाकृपा बरसाते हैं। इसीलिए इस दिन को ज्योतिष में इतना महत्व दिया जाता है। निर्जला एकादशी पर उपवास या व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस कठिन व्रत को करने की सही विधि क्या है। सुबह स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्रीहरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किसी गरीब को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाता दान करें। इस दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। निर्जला एकादशी की विशेष साधना के अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिससे श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सके। प्रातः और सायंकाल भगवान विष्णु की उपासना करें। रात्रि में जागरण करके श्रीहरि की उपासना अवश्य करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभ कार्य होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को बताया था। माना जाता है कि इसी प्रतापी व्रत से भीम को धैर्य और अनुशासन मिला, सुखों को त्याग कर संकल्पों को पूर्ण करने की सिद्धि मिली, महर्षि वेदव्यास और मधुसूदन का मार्गदर्शन मिला। इस व्रत से जुड़ी जो सबसे प्रामाणिक कथा मिलती है वो कहती है कि महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। इस पर भीम ने वेदव्यास से पूछा कि मैं तो एक प्रहर भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। तब महर्षि ने भीम से कहा कि आप साल में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जल व्रत करें तो साल की सभी एकादशी का पुण्य फल मिलेगा। भीम ने न केवल व्रत का संकल्प लिया बल्कि बिना खाए व्रत भी किया। अगले दिन सूर्योदय होने पर भीम पांडवों को मूर्छित मिले। व्रत में भोजन न करने और जल ग्रहण न करने से भीम मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद पांडवों ने भीम को तुलसी दल, गंगा जल और पंचामृत पिलाकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी मन को निर्मल करने वाली है, मन को नियंत्रित कर कर्तव्यों के प्रति सचेत करने वाली है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर जिसने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया उसे फिर जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता, क्योंकि श्रीहरि जगत के पालनहार हैं। वो सर्वव्यापी हैं, हमारे अंतर मन को जानने वाले हैं। धर्मशास्त्री बताते हैं कि अगर आपने साल भर में एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया है और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत आप विधि विधान से कर लेते हैं तो इससे न केवल आपको सभी एकादशी का फल मिल जाता है, साथ ही आपके जीवन के पाप संताप भी मिट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हरिद्वार हरि का धाम है और आज का दिन श्री हरि की पूजा के लिए बेहद खास है। आज निर्जला एकादशी है और भक्त इस मौके पर स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। सुबह से गंगा घाटों पर अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। स्नान दान का सिलसिला लगातार जारी नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2: बहुत बढ़िया हो रहा है, आज निर्जला एकादशी है, बहुत बढ़िया स्नान हो रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
3: आज के दिन स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है और आज हम यहाँ पे आए, हमने गंगा आरती अटेंड की, तो काफी भीड़ है यहाँ पे और हमें स्नान करके काफी अच्छा लगा।
1: रामनगरी अयोध्या में निर्जला एकादशी पर भक्त सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर पूजा पाठ किया जा रहा है। सूर्य को अर्घ देने के साथ यहां दिन की शुरुआत हुई। अब दिन भर स्नान दान यूं ही चलता रहेगा। तो तो ये तस्वीरें आप देखिए अयोध्या में किस तरह भक्त जो है वो सुबह सुबह स्नान के लिए पहुंच चुके हैं और आज निर्जला एकादशी का पावन दिन जिस पर भक्त सुबह सुबह स्नान और दान के लिए घाटों पे पहुंच चुके हैं।
4: आज एकादशी नवमी है, निर्जला निरंकर से भी वो मानेंगे से मिलेगा।
5: आज निर्जला एकादशी है, अयोध्या धाम में पधारे हुए हैं। सरयू जी का बहुत बड़ा पुण्य होता है, जैसे कहते हैं कि कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुलैन तुलसीदा। एक निमिष का इतना महत्व होता है जितना किसी भी भारतवर्ष में कहीं भी जितना सरयू जी का महत्व है वो कहीं नहीं। आज निर्जला एकादशी है, पूरा जीवन निकल गया। आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमको निर्जला एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य अयोध्या धाम में प्राप्त।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और लुप्त सरस्वती का संगम है और ऐसे में यहाँ निर्जला एकादशी पर स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है। और आपको बता दें साथ ही मान्यता है कि पितरों की तृप्ति होती है इससे और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। सुबह से त्रिवेणी के अलग अलग घाटों पर भक्त पहुंचे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है, स्नान करते हुए पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
6: आज भीमसेन एकादशी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और साल भर में जो एकादशी छूट जाती हैं और उन छूटने से क्या कहते हैं, आज की एकादशी का आप व्रत लेंगे, निर्जला व्रत लेंगे तो पूरे साल भर का वो माना जाता है। तो आज बड़ा सहयोग रहा और इसलिए संगम में मैं आप आया नहाने।
7: आज निर्जला एकादशी है, व्रत में सब पत्नी हम लोग स्नान किए हैं, दान दक्षिणा किए हैं, पंडित जी किए हैं, दान दक्षिणा करके अब जा रहे हैं।
8: आज भीमसेनी एकादशी है जिसको निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। जैसा कि कहा गया है, अरे एकादशी व्रत कोई करिए, एकादशी सब कोई करिए, व्रत है बड़ा

0: जी का व्रत है।
1: और भारत चीन सीमा पर स्थित माणा के पास में 18,600 फीट की ऊंचाई पर विराजमान देवताल हिमालय की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर ये पवित्र सरोवर अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पसंदीदा मंजिल बन चुका है। रोजाना 100 से 200 यात्री देवताल पहुंच रहे हैं।
2: देवताल, वो सरोवर, वो झील जहाँ देवता स्नान करने आते हैं, भले ही एक मान्यता है लेकिन इसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आपका मन भी से मानने को कर जाएगा। चांदी से चमकते पहाड़, रूई के फाहों से बिछी बर्फ और आसमान से बातें करती हिमालय की चोटियाँ, नजारा ऐसा माने ईश्वर धरती और आकाश के बीच बैठा कोई पेंटिंग बना रहा हो। और ये जगह धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं। शांत, शीतल, सुंदर, मनमोहक, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं, बस सुकून है जो हर तरफ फैला हुआ है। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर बसा भारत का आखिरी गांव माणा, और माणा के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर है देवताल झील, देश की सबसे ऊंची झीलों में से एक, जो न केवल श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है बल्कि सैलानियों के लिए सुकून के कुछ लम्हे समेटने की सबसे सुंदर जगह है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर ये पवित्र सरोवर इन दिनों पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पसंदीदा जगहों में शुमार है।
3: 18,600 फीट की ऊंचाई पर देवताल, जो कि भारत चीन सीमा पर बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अब यहाँ तक मार्ग खुल चुका है, तो जो देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचता है, खासकर वो लोग जो भारत सीमा दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। अब रोजाना यहाँ पे जो ऑनलाइन परमिट है, इनर लाइन पास मिलता है यहाँ पे, खासकर अब जो उत्तराखंड सरकार है, जो प्रशासन है, उन्होंने इस नियम को बहुत ही आसान बना दिया है, ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में यहाँ तक जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंचने लगे हैं।
2: देवताल सरोवर साल के करीब 8 महीने भारी बर्फ की चादर में लिपटा रहता है। इन दिनों भी एक तरफ सरोवर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, जबकि दूसरी तरफ नीला पानी आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। चारों ओर बर्फीली चोटियां, निर्मल पानी और नीरव वातावरण मन को मोह लेता है। देवताल केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, फिर भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पवित्र जल अपने साथ घर ले जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मन को अथाह शांति और सुकून मिलता है। मान्यता है कि सरस्वती नदी का उद्गम यहीं से होता है। देवताल से सरस्वती नदी माणा गांव के केशवप्रयाग तक स्पष्ट दिखाई देती है। केशवप्रयाग में सरस्वती अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। 1965 तक यहाँ पर आवाजाही आसान होती थी, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते थे, लेकिन भारत तिब्बत व्यापार बंद होने के साथ ही यहाँ आवाजनंदा में विलीन हो जाती हैं। 1965 तक यहाँ पर आवाजाही आसान होती थी, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते थे, लेकिन भारत तिब्बत व्यापार बंद होने के साथ ही यहाँ आवाजाही मुश्किल और पूरी तरह बंद कर दी गई थी, जिस कारण पहले यहाँ पहुँचना काफी कठिन था, लेकिन अब भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की सीमा दर्शन योजना के तहत देवताल पर्यटन को बढ़ावा मिला है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इनर लाइन परमिट आसानी से मिल रहा है। परमिट के लिए मेडिकल चेकअप और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। जांच में फिट पाए जाने पर ही किसी को अनुमति दी जा रही है। परिणाम स्वरूप अब रोजाना 100 से 200 यात्री देवताल पहुंच रहे हैं। साल 2015 में पहली बार एक दल देवताल पहुंचा था, उसके बाद धीरे धीरे मार्ग और सुविधाएं विकसित की गईं। आज सीमा दर्शन योजना के अंतर्गत आम श्रद्धालु भी इस दिव्य स्थल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। देवताल हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा अनमोल खजाना है जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चमोली से कमल लेंसरोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: काशी में कनेक्टिविटी को बेहतर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आज से वाराणसी दिल्ली देश की पहली हब एंड स्पोक विमान संचालन व्यवस्था शुरू हो रही है और इस मौके पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती की गई, बाबा विश्वनाथ का पूजन किया गया और इस व्यवस्था के लागू होने से वाराणसी देश का प्रमुख एविएशन नेटवर्क बनकर उभरेगा। इस सेंट्रल हब के जरिए पूर्वांचल के यात्रियों को देश और दुनिया के अलग अलग शहरों में एयर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सिविल एविएशन क्षेत्र में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। काशीवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात इसके जरिए दी गई है। कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा सुचारू बनाया गया है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में काशी अब एक नई उड़ान भरने जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और इसी के साथ काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की गई और आज इसी के साथ इसकी शुभ शुरुआत हुई है। देश की पहली हब एंड स्पोक विमान व्यवस्था आज से शुरू हो चुकी है। तो भोलेनाथ की नगरी काशी को विकास की एक नई सौगात मिलने वाली है। अगस्त महीने में रोपवे की शुरुआत होने जा रही है जिससे लोग वाराणसी कैंट से सीधे गोदौलिया जा सकेंगे और वहां से आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि दूरी महज 16 मिनट में की जा सकेगी, वो भी बिना किसी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ के। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोपवे के सेवा के किराए को भी तय कर दिया है जो कि काफी हद तक बजट फ्रेंडली है।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा था उस ख्वाब को साकार करने में बाबा भोलेनाथ की नगरी में बन रहा ये रोपवे एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। बनारस एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा शहर होगा जहां घनी आबादी के बीच लोग जल्द ही रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। रोपवे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। कैंट से गोदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। माना जा रहा है अगस्त से इसका संचालन शुरू हो जाएगा।
5: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतर कर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहां से बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहां पहुंचने वाले यात्री तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
4: काशी की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक वाले शहर के विकास में गोंडोला राइड गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक की जिस दूरी को पूरा करने में अभी 45 मिनट का वक्त लगता है, रोपवे के जरिए उसे महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस आसमानी सफर से पर्यटकों को न सिर्फ काशी का विहंगम दृश्य दिखाई देगा बल्कि काशी विश्वनाथ का दर्शन अब और भी आसान और सुलभ हो सकेगा।
6: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर आएंगे तब।
7: बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए।
1: और चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कॉमेडी के जंगल की झलक।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature? Today.
8: उसके साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त, स्नान दान कर सुख समृद्धि का मांग रहे हैं आशीर्वाद। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदमनाथन मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। तेजी से बढ़ रहा है मॉनसून, 1 से 2 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बचे हिस्से करेगा कवर, जुलाई के शुरू में ही दिल्ली पहुंचने के आसार। मुंबई में तेज बारिश का सिलसिला जारी, गर्मी से मिली राहत, नदियों का जलस्तर बढ़ा, पहाड़ों में भी भारी बारिश, सुहाने मौसम में सैलानी खुश। महाराष्ट्र के हर होटल, रेस्टो और ढाबों में हैंडवॉश, साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य, FDA ने जारी की गाइडलाइंस। वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें वायरल।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ समाचार में। और अब एक अहम खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, यहाँ सभी रेस्टोरेंट, होटल्स और ऐसी ही जगहों पर कस्टमर्स को मुफ्त पीने का पानी दिया जाएगा। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। इस फैसले के बाद अब कोई भी रेस्टोरेंट कस्टमर्स को बॉटल वाला पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। FDA कमिश्नर ने कहा कि सेफ खाना और पानी मिलना एक बुनियादी अधिकार है। साथ ही ये भी कहा कि FDA अधिकारी ये ध्यान दें कि फूड सेफ्टी नियम पूरे साल लगातार लागू रहे, वो सिर्फ समय समय पर होने वाले स्पेशल ड्राइव पर ही निर्भर ना रहे। साथ ही सभी फूड सर्विसेज देने वाली जगहों के पास FSSAI के तहत वैलिड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसे साफ साफ दिखाना होगा। इसके अलावा FDA ने अखबारों में खाना परोसने पर भी रोक लगा दी है, जबकि कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए किस तरह से होटल रेस्टोरेंट पर लागू हो गया ये नियम, और इसे जो है FSSAI के द्वारा लागू किया गया है, और सिर्फ समय समय पर होने वाले स्पेशल ड्राइव पर ही ये निर्भर नहीं रहेगा। सभी फूड सर्विसेज देने वाली जगहों के पास FSSAI के तहत वैलिड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है और इसे साफ साफ दिखाना भी होगा। इसके अलावा FDA ने अखबारों में खाना परोसने पर भी रोक लगा दी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अखबारों में खाना परोस दिया जाता है, स्पेशली जो स्ट्रीट फूड होता है अखबारों में उसे दिया जाता है, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई है, जबकि कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार कोई चीज बनाते हैं और उस ऑयल को दोबारा यूज करते हैं, तिबारा यूज करते हैं, लेकिन अब उस पर भी प्रतिबंध लग चुका है FDA की तरफ से। तो ये खबर जो है सभी के लिए जरूरी है कि बोतल जो है वो आप यूज ना करें। लगातार जो तेल उसमें रखा जाता है, स्पेशली प्लास्टिक की बॉटल्स में हम तेल रखते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं, तो एक बार के यूज के बाद उसको दोबारा यूज ना किया जाए। और ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है, यहाँ सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ऐसी जगहों पर कस्टमर्स को मुफ्त पीने का पानी दिया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के जंगल 2 की, जहां अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसकी जानकारी आपको बता दें अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल कल देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। और उससे एक दिन पहले यानी कि आज शाम को फिल्म का पेड प्रीव्यू देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में आज दिखाई जाएगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और अब तक वेलकम टू द जंगल ने 2 करोड़ की कमाई कर ली है। इस बीच मुंबई से लेकर मुरादाबाद तक फिल्म का जोरदार प्रमोशन जारी है।
2: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
3: एक जबरदस्त कहानी है।
4: और टाइटल क्या है फिल्म का?
3: वेलकम टू द जंगल।
2: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
3: एक जबरदस्त कहानी है।
4: और टाइटल क्या है फिल्म का?
3: वेलकम टू द जंगल।
5: स्टार कास्ट है।
6: आज शाम जंगल में आप सभी का स्वागत है। ये हम नहीं, वेलकम टू द जंगल की टीम कह रही है, जिसका पेड प्रीव्यू फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले यानी आज शाम को रखा गया है। बॉलीवुड में इस साल पेड प्रीव्यू का ट्रेंड काफी बढ़ा है। वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए देश भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में पेड

0: म्हणजे टॉप का हिरो होता, टॉप का हिरो।
1: शाम 7:30 बजे के बाद वेलकम टू द जंगल के शो सिनेमा घरों में दिखाए जाएंगे। इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रेटेजी ये है कि फिल्म कल यानी 26 जून को रिलीज होगी।
2: ये कोई पेंटिंग है
3: घोड़े के ऊपर गधा?
4: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
5: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार।
1: 26 जून को वैसे तो शुक्रवार है ही, जब फिल्में आमतौर पर रिलीज होती हैं। दूसरे शुक्रवार को ही मुहर्रम की छुट्टी है। मेकर्स को उम्मीद है कि पेड प्रीव्यू के जरिए फिल्म को माउथ पब्लिसिटी मिलेगी, जिससे शुक्रवार को फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिल सकती है।
6: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: मुझे छपरी ने किया ना, अपने को भी करने का है।
1: वैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग 22 जून से शुरू हो चुके हैं। ट्विटर ट्रैकर सकनिल के मुताबिक वेलकम टू द जंगल ने पेड प्रीव्यूज और ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग को मिलाकर अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस बीच वेलकम टू द जंगल का जोरदार प्रमोशन जारी है। फिल्म के एक गाने घिस घिस में अक्षय के साथ डांस कर लाइमलाइट बटोर रही भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर और मां मुंबा देवी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची और फिल्म की कामयाबी की कामना की।
8: इनको असलियत बतानी पड़ेगी।

0: शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचे।
1: चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है।
2: गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए, तू बस कर, हाँ तो तू रिक्शा कर जा, बाहर में जाओ तुम लोग।
0: लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें एयरपोर्ट के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। जगदीश पाटनी ने बताया कि मंगलवार सुबह बेटी दिशा ने अचानक फोन किया। उसने कहा अक्षय जी घर का खाना खाना चाहते हैं, इसलिए दोपहर में बरेली एयरपोर्ट पर खाना लेकर आ जाए। तुरंत मनपसंद देसी खाना बनवाया गया, जिसमें कढ़ी, दही, मिक्स सब्जी, रोटी आदि शामिल थे। मुरादाबाद का इवेंट खत्म कर टीम वापस बरेली एयरपोर्ट लौटी। अक्षय कुमार को जब ये जानकारी मिली कि दिशा के पापा को एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं दिया गया, तो पूरी टीम के साथ वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए, जिसके बाद पूरी टीम ने घर के खाने का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
1: मेंढक की तरह फुदक रहा है।
2: गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए, तू बस कर, हाँ तो तू रिक्शा कर जा, बाहर में जाओ तुम लोग। आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल।
3: ट्रेलर खत्म।
4: और अगर 32 नामी गिरामी एक्टर्स अगर एक फिल्म में हो तो डायरेक्टर के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। डायरेक्टर अहमद खान ने कैसे इस चुनौती का सामना किया और कैसे उन्होंने फरीदा जलाल को एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर फिल्म में शामिल किया। अक्षय कुमार और फरीदा जलाल ने ऐसे तमाम सवालों के बड़े ही दिलचस्प जवाब दिए। देखिए खास इंटरव्यू।
5: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
6: एक जबरदस्त कहानी है।
7: और टाइटल क्या है फिल्म का?
6: वेलकम टू द जंगल।
8: ये 3 इडियट्स आई थी, बहुत बड़ी हिट थी। ये 32 इडियट्स है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड इट्स अ फन फिल्म। ये जो कहानी आपने कही, फेक फिल्म, 2000 करोड़, एंड क्या होता है देख, मैं इसके बारे में ना, मैं जितनी इतनी जानकारी दे सकता हूँ कि बस कि एक फिल्म बन रही है जिसको 2000 करोड़ रुपए दे के उसको फ्लॉप करना है, उसमें खर्चा करके फ्लॉप करना है, और फिर उसके अंदर क्या होता है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और उसके अंदर रियल कैरेक्टर्स कैसे आ जाते हैं। यानी कि रियल कैरेक्टर्स मैं जब कह रहा हूँ वो हैं ये फरीदा जी, रियल कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है विदाउट रियलाइजिंग कि ये रियल है और हम फेक हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर, एंड वो कंफ्यूजन आपका तभी सॉल्व होगा जब आप 250 रुपए देखे पिक्चर पर देखे।
9: आप क्या करें, आपने तो जान लिया आधी सच्चाई।
8: इसमें जानने की बात नहीं है, इन्होंने इनको पता ही है कि ये कॉमेडी फिल्म है, तो आपकी भी छवि मस्ती वाली ही होगी।
9: होगी, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन, वो तो है। अब देखिए आप जाके फिल्म कि किस किस्म की मस्ती है, क्या टोन है, क्या रिदम है, क्या डायलॉग है, क्या एक्शन है, बस देखते जाइए।
8: एक मुझे बात बताइए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने फरीदा जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हमने इनको हमेशा सीरियस रोल, हमने इनको ट्रेजेडी, रोना धोना, उन सब रोल, इमोशनल रोल्स में हमेशा देखा है। यहाँ तक मुझे याद है ये इन्होंने मेरी एक माँ का रोल, मेरी माँ का रोल भी किया था, ऐलान फिल्म, वन ऑफ द वेरी वेरी वेरी गुड फिल्म विच आई विल ऑलवेज रिमेम्बर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सो लेकिन इनका कभी हमने कॉमेडी में रूप नहीं देखा है। मैं ये कह सकता हूँ, और इतने सारे एक्टर हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे एक्टर हैं, आप फिल्म देखने के बाद सबसे पहले आप इन्हीं को याद करेंगे कि क्या कॉमेडी की है। इन्होंने कभी कॉमेडी ज्यादा की नहीं है, लेकिन इस फिल्म के अंदर इन्होंने जो कॉमेडी की है वो अलग बात है। थोड़ा सा इनके हाथ पैर जोड़ने पड़े थे कि ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने जो करके दिखाया वो।
9: अब आप जब फिल्म देखे तब आप समझोगे कि क्या कह रहे हैं। That's very understand. सबसे बड़ी बात तो अहमद सर आए थे हमारे घर, वो मेरा बेटा है, ही इज जस्ट लाइक अ सन टू मी, एंड उनके लिए तो मुझे करना ही था, चाहे कुछ भी था, बट व्हेन ही नरेटेड समथिंग ऑफ द फिल्म आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई सेड यस विद फुल जोश एंड फुल कमिटमेंट।
4: गोवा का जिक्र जब होता है तो आमतौर पर हमारे जहन में समंदर और बीच की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन आज हम आपको गोवा की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो गोवा की संस्कृति और परंपरा का अद्भुत मेल दिखाती है। 24 जून को गोवा में बेहद रोमांचक साओ जुआओ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे एक ओर मानसून के आने का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मोत्सव के तौर पर

0: से मनाया जाता है।
1: गोवा की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपरा का अनूठा संगम है साओ जुआओ। जून के महीने में मनाया जाने वाला सबसे चर्चित और अनोखा उत्सव, जिसे मॉनसून की शुरुआत का प्रतीक कहा जाता है। हर साल की तरह 24 जून को कैथोलिक ईसाई समुदाय ने इसे बेहद उत्साह के साथ मनाया। वैसे तो ये उत्सव पूरे गोवा में ही मनाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोवा के सियोलिम गांव में इसका सबसे भव्य और पारंपरिक आयोजन होता है। यहां सजी धजी पारंपरिक नावों की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत का जश्न देखने लायक होता है। परंपरा के मुताबिक लोग ताजी पत्तियां, लताओं और फूलों से बने खूबसूरत और रंगीन मुकुट पहनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोपेल कहा जाता है। ये प्रकृति की प्रचुरता और हरियाली के प्रति आभार जताने का तरीका है।
2: बढ़िया फेस्टिवल है, एंजॉयमेंट है, पूरा पब्लिक भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे
3: हैं।
1: ये उत्सव ईसा मसीह के समकालीन संत जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत चर्च में प्रार्थनाओं के साथ हुई, जिसके बाद एक ब्रास बैंड ने जुलूस को आयोजन स्थल या इलाके के तालाब तक पहुंचाया। उत्सव के दौरान कई युवा पारंपरिक वेशभूषा में नावों पर नाचते नजर आए, तो कई लोग किनारे मस्ती करते इस उत्सव का गवाह बने। परंपरा के मुताबिक लोग संत जॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए कुओं, नदियों और तालाबों में कूदते हैं। इसे खुशी की छलांग कहा जाता है। इस त्योहार के जरिए परिवारों और ग्रामीणों को नवविवाहित बेटियों के पतियों के साथ घुलने मिलने और जश्न मनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। गोवा से रावाजी दत्ताराम देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो आमतौर पर निजी स्कूलों का ही नाम लिया जाता है, लेकिन वडोदरा का कवि दुला का प्राथमिक स्कूल सरकारी शिक्षा की सफलता का मॉडल बन गया। शिक्षा और सुविधाओं के मामले में स्कूल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आलम यह है कि स्कूल की सीटें फुल हैं और एडमिशन के लिए लंबी लाइन है। स्कूल को नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ रहा है।
1: गुजरात के वडोदरा में यह है कवि दुला काग प्राइमरी स्कूल। स्कूल सरकारी है, लेकिन पढ़ाई और सुविधाओं के मामले में बड़े बड़े निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। तभी तो ये स्कूल वडोदरा में माता पिता की पहली पसंद है। एडमिशन के लिए लाइन लगी है, लेकिन यहाँ सीटें पहले से फुल हैं। कवि दुला काग स्कूल वडोदरा ने शाला प्रवेशोत्सव 2026 से पहले ही नो एडमिशन बोर्ड लगा दिया है, क्योंकि सीटें भर चुकी हैं।
4: स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक हमें पूरे जो रूम गवर्नमेंट्स की ओर से दिए गए हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके मुताबिक हमने एडमिशन बच्चों को दिया है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट हमें और सुविधाएं देगी तो हम और एडमिशन भी कर सकेंगे। इस बार फर्स्ट टाइम हमने ये बोर्ड लगाया, लेकिन दो साल से बच्चों की 200 प्लस वेटिंग हमारे स्कूल में रहता ही है। अंग्रेजी मीडियम में 225 वेटिंग है और गुजराती मीडियम में भी 200 प्लस वेटिंग है।
1: असल में बात जब क्वालिटी एजुकेशन की आती है तो आमतौर पर निजी स्कूलों का ही नाम सामने आता है, लेकिन वडोदरा के कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल ने ये धारणा तोड़ दी है। 2010 में स्थापित और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित इस स्कूल ने लगातार अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन, आधुनिक ढांचागत सुविधाओं और विद्यार्थियों के विकास के सर्वांगीण दृष्टिकोण के लिए अपनी पहचान बनाई है।
5: अभी अभी न्यू शिफ्ट हुई हूं यहां पर मुंबई से, तो अभी मैंने तो ये ऑनलाइन सर्च किया था स्कूल, तो मुझे लगा नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल जैसा रहेगा यहाँ पर, तो मैंने तो ये सोचा कि चलो पैसे भी बच जाएंगे और ये सब सोच के मैंने इधर डाला था। पर इधर तो एकदम प्राइवेट से भी, मतलब जैसे प्राइवेट में फैसिलिटी रहता है ऐसा ही इसमें, और यहाँ पे अच्छा खाना देते हैं बच्चे लोग को, खाना और फिर नाश्ता भी रहता है और सुखड़ी देते, मतलब वो तो कितना हेल्दी रहता है ना, जैसे घी और उसके अंदर घी इतना डाला हुआ रहता है और काजू बादाम पिस्ता, मतलब वो मैंने भी खुद खाया हुआ है घर पे, बच्चे डिब्बे में लेके आती है, तो मेन फूड क्वालिटी भी अच्छा है और टीचर भी बहुत यहाँ पे सपोर्टिव है।
1: स्कूल की इन उपलब्धियों के कारण इसे गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना में भी शामिल किया गया है। सुविधाओं की बात करें तो 1700 स्टूडेंट्स वाले इस प्राइमरी स्कूल में एयर कंडीशनड कंप्यूटर और साइंस लैब, मॉडर्न लाइब्रेरी, इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासरूम, खेल का मैदान, औषधि बोटैनिकल गार्डन और हरा भरा सुंदर सुव्यवस्थित स्कूल परिसर, 3 बिल्डिंग और 24 क्लासरूम है। 9 और क्लासरूम अभी और मिलने वाले हैं। जाहिर है स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ेगी और इसके 2000 तक हो जाने की उम्मीद है।
6: जैसे कि यहाँ पे गेमिंग लेक्चर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए टूल्स है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड सॉक्स शूज इटीसी चीज़ें हमको दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे हमको बहुत मतलब मज़ा आता है पढ़ने में। यहाँ के टीचर्स वेल एजुकेटेड है और यहाँ पे जो टीचर्स हैं हम उनसे फ्रेंडली रहते हैं और हम उनसे कोई भी क्वेश्चन बिना किसी डर के या फिर बिना किसी तकलीफ के पूछ सकते हैं।
1: बच्चे से स्कूल में आकर खुश हैं, जो बाहर हैं वो यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई की आधुनिक सुविधाओं के लिए मोटी फीस नहीं भरनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब बात होगी फीफा वर्ल्ड कप की। कल ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया और इसी के साथ ब्राजील ने नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली है। और आपको बता दें मैच के दौरान ब्राजील के फैंस का जोश देखने लायक था। बारिश के बावजूद ब्राजील के मशहूर पीले और हरे रंग के कपड़े पहने हुए समर्थक मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही बीच पर बनी जगह पर जमा हो गए थे। उन्होंने संगीत, डांस और नारों के साथ जश्न का माहौल बना दिया। मैच में ब्राजील के हर गोल के बाद प्रशंसक खुशी से झूम उठे और झंडे ले और इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में पीछे नहीं है। देखिए नारायणी शास्त्री की फनी इंस्टा स्टोरी।
7: किसका फोन है?
8: अरे यार अननोन नंबर है।
7: इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ।
8: उठाना पड़ेगा?
7: हाँ जी।
8: हेलो।
9: हेलो,
8: मेरी बीवी पास में बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है?
9: सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर।
0: समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
11: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं गोलमाल। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
12: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
13: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
14: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
13: to live sports action.
15: To the near side corner, to wraparound, he scores!
13: And your favorite music.
16: You and I stargazing.
13: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
18: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
17: आज वाराणसी से पहली अंतर्राष्ट्रीय हब एंड स्पोक हवाई सेवा का शुभारंभ। उद्घाटन से पहले वाराणसी में विशेष गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ की पूजा। मुरादाबाद बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर, मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इंतजाम। महाराष्ट्र के हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में हैंड वॉश, साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना अनिवार्य हुआ, एफडीए ने जारी की गाइडलाइंस। रांची में नशा मुक्ति संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त, स्नान दान कर सुख समृद्धि का मांग रहे हैं आशीर्वाद। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदमनाथर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:09 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:29 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, साल में वैसे तो बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं, लगभग 24 एकादशी, अधिक मास में 26 हो जाती हैं। तो उसमें दो एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के एक भाई थे भीम, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने केवल मात्र एक बार इसी एकादशी का उपवास रखा और मारे भूख के बेहाल होकर मूर्छित हो गए। तो भीम के नाम पर निर्जला एकादशी को भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर वास्तव में आप बिना जल के निर्जल उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूजा, उपासना, ध्यान और साधना अगर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी पर तपती गर्मी में व्रत रखना बिना जल के एक बड़ी कठोर तपस्या है। जब आप ये तपस्या करके प्रार्थना करते हैं शुद्ध और सात्विक मन से, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना जो रीजनेबल हो उसे पूरी कर सकते हैं। मेष राशि। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, घर में कोई शुभ कार्य होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव से इस समय बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले कम से कम स्नान कर लें और स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें, जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, जल पिलाएं, अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करना अच्छा होगा। देखिए, नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर आप जल नहीं पिएंगे। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल की एक घूंट पिए, बिना कुछ खाए हुए आप उपवास रखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप बीमार हैं, आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है, बीपी की दवाई चल रही है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड ले सकते हैं, नींबू पानी, दूध, फलों का रस या फल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है और निर्जल उपवास रखें, पता चला बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, शुगर लो हो गया, बीपी शूट अप हो गई, ये सब मत करिएगा। यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तभी निर्जल उपवास रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो लिक्विड ग्रहण करके, फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम करें, क्या क्या करें। निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए निर्जल उपवास रखिए, और अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दोनों समय सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। रात में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो विशेष लाभ होगा। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप करने में और ध्यान में इस दिन लगाएं। भगवान विष्णु का मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, इस नाम का भी मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा। जल का दान करिएगा निर्जला एकादशी पर, बहुत शुभ होगा। लोगों को ठंडा पानी, शरबत, फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को जल पिलाएं। और आप जल के पात्र का भी दान कर सकते हैं, लोटा है, गिलास है, सुराही है, घड़ा है, इसका दान करना भी बहुत शुभ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि निर्जला एकादशी की महिमा इसलिए है कि ज्येष्ठ के महीने में ये व्रत रखना एक तपस्या है, और ज्येष्ठ के प्रचंड गर्मी के महीने में लोगों को जल पिलाना पुण्य अर्जित करने का काम है। लोगों को जल पिलाइए, पुण्य लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती का पर्व भी आता है। क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी या पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग एकादशी को मनाते हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर भी गायत्री जयंती मनाई जाती है। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, वेद की आत्मा है। इसीलिए हमने इस मंत्र को मातृवत समझा है, माता के समान करुणा करने वाला समझा, और इस मंत्र से वेद माता गायत्री को जोड़ा गया। तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा को वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, ज्ञान देने वाला, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाला, भौतिक जीवन में संपन्नता देने वाला माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी पर यानी गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है। वो गुरु की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई सदगुरु मिले और भवसागर से पार करा दे, मुक्ति मोक्ष का द्वार दिखा दे। जिनको भी गुरु प्राप्ति की कामना है वो निर्जला एकादशी पर गायत्री जयंती वाले दिन 11 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करेंगे सुबह के समय। और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला या जितना आप कर सकें यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिएगा। परमात्मा की विशेष कृपा होगी और सद्गुरु की प्राप्ति होगी। देखिए, साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी पर उपवास रखें या न रखें, लेकिन जल का या जलीय पदार्थों का दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, लस्सी छाछ पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। लोगों को जल का दान अगर निर्जला एकादशी पर करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। कि अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती हों तो क्या करेंगे? रोज सुबह एक पात्र में, कटोरी गिलास या लोटे में शुद्ध जल ले लें, इसमें दो पत्ते तुलसी के डाल लेंगे और जल को सामने रख करके एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ के 10 मिनट के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर निरंतर करें तो आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका मन भी पवित्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं गोलमाल। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

विद्वान है। विद्वान का मतलब वो जानता तो है मानता नहीं है, जानकारी है नॉलेज है मानता नहीं है। और हनुमान जी जानते भी है मानते भी है। तो नॉलेज में और ज्ञानी में अंतर क्या? जानने वाला नॉलेज वाला होता है, पर ज्ञानी कौन? जो उसको अनुभव करके समझ ले वो ज्ञानी। एक बात और, बहुत से लोग तर्क करने लगते ज्ञान और विज्ञान अलग अलग है। नहीं भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक। जान लेना ज्ञान है तो उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना अगर ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। प्रकट कर दिया हृदय में भक्ति को, मूर्छा अवस्था खोल दी भागवत जी ने, इसलिए ज्ञानमय ग्रंथ भी है और विज्ञानमय ग्रंथ भी है। बोलो सीताराम। नारद जी धीरे से बोले, महाराज एक बात बताओ, ये केवल सोए हुए लोगों को जगाती है भागवत के बाकी और भी कुछ काम करती धरती है? सनत कुमार बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये काम धाम नहीं करती, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भागवत है भागवत। और भागवत का मतलब संसार में भाग मत, इसलिए बन गई है भागवत। हाँ, इधर उधर मत भाग, एक ही जगह कल्याण हो जाएगा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलो सीताराम। अब सुनो, नारद जी बोले, महाराज ये कल्याण किस किस का करती, भला किसका करती, ये बताओ। कोई कैटेगरी है कि फलाने आदमी को ही मिलेगा इतने नंबर? कोई है गिनती विनती है? हाँ सुनो नारद जी, कोई गिनती नहीं। ये धर्मात्माओं का तो भला करती है, पर कोई महापापी रहा हो, जिंदगी भर पाप के अलावा उसने कुछ ना किया हो, और सुनो पाप करते करते मर भी गया हो, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा का ग्रंथ का आप पारायण करवा दो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जिंदा की छोड़ो, मरे हुए का भी कल्याण कर देती। सोई हाथ जोड़ करके नारद जी बोले, महाराज केवल बातें बता रहे हो कि कोई प्रैक्टिकल हुआ भी है? बोले हुआ है। अच्छा कहां हुआ, जरा विस्तार पूर्वक आप हमें प्रेम पूर्वक बताइए। तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मुस्कुराते हुए बोले, सुनो भारत के दक्षिण क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा था। उस नगर में सब प्रसन्न रहते थे। उसी नगर के बीच में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ करवे, नित्य नियम से रहवे, कर्म कांड करवे, जितने भी धर्मात्मा इनकी घरवाली उतनी उल्टी, बड़ी विपरीत। इनका नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधली, नाम ही धुंधली है। महाराज पंडित जी जब तक पूजा ना कर लें तब तक भोजन नहीं करते थे, और पंडितानी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई में नहीं घुसती थी, इतनी खतरनाक। रोज लड़ती, दिन भर लड़ती, जब मौका मिले सो लड़ती, और तो दूर की बात है, लड़ाई में इतनी माहिर कि जब भी लड़ाई होवे सो पानी का मटका बाहर लेके आ जाए। तो कोई पूछा कि और तो सब ठीक है, लड़ाई में ये पानी का मटका लेके क्यों आती? बोले बा गाली बकते तो गला सूखता ना, तो पानी की जरूरत पड़ती। अरे तो भाई पानी की जरूरत पड़ती, घर जाके पी लो, भीतर मटका लेके क्यों आते? बोले वाह जब तक पानी पीने जाएंगे तब तक तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे, सोई हम पानी की व्यवस्था बगल में रखते, बड़ी कृपा। ऐसी खतरनाक देवी, भगवान की कृपा से घर पे सब कुछ, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, एक कमी है। क्या? संतान नहीं है। ब्राह्मण बड़े परेशान, क्या करें? खूब जब तब नियम धर्म किया पर बेटा नहीं हुआ, और भाग्य इतना खराब कि पेड़ लगावे तो फल देना बंद कर देवे, गाय लावे तो बछड़े देना बंद कर देवे, इतना भाग्य खराब। अब तो और टेंशन में ब्राह्मण देवता, मरने के काजे जंगल चले गए। जंगल को एक भाषा में कहते हैं वन, क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पहले के जमाने में जो भी वन जाते थे वो बन जाते थे, वो बन जाते थे, जो भी बन जाते थे। राम जी बन गए सो बन गए, राम जी बन गए तभी तो बन गए भगवान,
नहीं तो यहां तो राजकुमार ही कहलाते, तो बन गए आत्मदेव ब्राह्मण भी बन चले गए। क्यों मरेंगे? एक पेड़ के नीचे आंखों में आंसू भर कर रोने लगे।

ब्राह्मण रोते हुए कहने लगे, हमारा इस प्रभु के बिना इस जगत में कौन है। नैनों में आंसू भरे, आहा, फूट फूट कर रोने लगे। इतने में एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने देखा, अरे कोई ब्राह्मण बैठा है, मस्तक पर तिलक है, माला लिए रो रहा है, लगता भगवान का भगत है, जरा देख लें पूछ लें क्या बात है। महात्मा नजदीक आए, भाई कौन हो, क्यों रो रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान की याद में रो रहे हो? हाथ जोड़ करके पंडित जी ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। हाँ, क्यों रो रहे हो? महाराज और तो आपकी कृपा से सब है, बस बेटा नहीं है। महात्मा का दिमाग खराब हो गया, हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा के लिए रो रहा है, बड़ा उल्टा आदमी। अरे पागल हो गया, बेटा बेटा के चक्कर में मत पड़ो पंडित जी, ये बेटा किसी के नहीं भाई, हो भी जाएंगे तो फिर रोओगे, बेटा काहू के नहीं भाई, भगवान को अपना मानो, वही अपने हैं। अब भाई जिसको जो शुद्ध लगी हो वही अच्छा लगता है। तो ही पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप तो ठहरे महात्मा, आप क्या जानो बेटे का सुख, जब पापा पापा कहता हुआ गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है, बेटे का सुख तो हम ही जान सकते हैं महाराज। पंडित जी के माथे की तरफ महात्मा ने देखा, बोले सुनो, सत्य जन्मावधि नैवचा नैवचा, एक जन्म तो छोड़ो, सात जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। सोई माथा पटक दिया फटाक से जमीन में। क्या हुआ महाराज, माता क्यों जमीन में पटक दिया? महात्मा से पंडित जी बोले, महाराज पहले तो एक गुना दुख था, अब तो सात गुना और प्लस हो गए, अब तो मरेंगे। और सुनो महाराज, हम तो मर रहे, आत्महत्या तुम्हें लगी। महात्मा बोले, लोग कहां खाम कहां खाज ले ली मोल, अच्छे खासे हम जा रहे थे, ये पंडित जी मर जाएंगे, आत्महत्या लगे। भैया हमें क्यों आत्महत्या लगेगी, महाराज तुमने ही हमारा दुख बढ़ाया है, सात गुना कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज चला दिया है। तो महात्मा बोले, कोई उपाय है? हाँ एक उपाय, क्या? हमने सुना महात्माओं की वाणी पर परमात्मा भी विचार करता है, आप आशीर्वाद दे दो कि बेटा हो जाए तो ही हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम मर जाए। पटाक खपड़िया फोड़ दी। रुक जा पंडित जी, रुको महाराज, रुको खपड़िया मत पटको, चलो ऐसी बात है, ये लो फल, अपनी घरवाली को खिला दियो, भगवान की कृपा से जाओ, तुम्हारे घर पर बेटा होगा। जय हो महाराज। सोई फल लिया, घर आ गए, पत्नी का नाम धुंधली, लो देवी फल खा लो, महात्मा का प्रसाद है, परमात्मा कृपा करेंगे, बेटा होगा बेटा। पत्नी बोली, महाराज जो आज्ञा, पर पत्नी भी इतनी खतरनाक, पति देव तो चले गए ब्राह्मण गांव में बताने, अब ये फल लेके बैठी, खाऊं के ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, अरे बहन क्या कर रही है तू बैठी बैठी? बहन तू ठीक आ गई, मैं तो बड़ी चिंता में हूं सुबह से, कहा है गई? बहन मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी ये फल लेके आए हैं, कह रहे थे फल खा लेना बेटा हो जाएगा, तू बता खाऊं या ना खाऊं? अरे पागल है, तेरे वंश नहीं है, कोई खानदान में है नहीं है, दिया जलाने वाला हो जाएगा, अच्छी बात है, फल है खा ले, क्या बिगड़ना है तेरा? पर एक दो बातें बड़ी चिंता कर रही, क्या? मैं सोच रही मैं फल तो खा लूंगी पर गर्भवती है जाऊंगी तो एक बड़ी टेंशन है। कौन सी टेंशन? मैं दौड़ नहीं लगा पाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, तुझे कौन सा मिलिट्री में भर्ती होने जाना है, आर्मी में भर्ती थोड़ी होना है जो दौड़ लगाना है। ना, मैं सोच रही हूं अगर मैं गर्भवती है गई तो दौड़ नहीं पाऊंगी, और धोखे से घर में आग लगी तो सब तो भग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, ये गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी। तो धुंधली बोली, तू गारंटी ले लेके आग ना लगे। पड़ोसन ने सोचा, कहीं मैंने गारंटी ले ली कि आग नहीं लगेगी, कल के दिन कहीं यही ना धर दे आग, तो गारंटी विफल हो जाएगी। बोली, बहन ऐसा नहीं है, पर जरूरी थोड़ी। अच्छा चल एक और बात बता, क्या? मैंने सुना जो स्त्री गर्भवती होती है उसका पुनर्जन्म होता है प्रसव पीड़ा के बाद। हाँ वो तो भगवान की देन है, उसमें क्या लेना देना, तू टेंशन मत ले, बेफिजूली की बातें मत कर, तू तो फल पा ले। तीसरी बात और बता, क्या? अगर मैं गर्भवती हो गई तो काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो तू चिंता मत कर, अपनी ननंद को बुला लेना, नंद आ जाएगी तेरी। अरे उसको ना बुलाऊं मैं, क्यों? बड़ी चोरनी है, काम काज के बहाने आएगी, पूरे घर का सारा सामान लेके भग जाएगी, उसको नहीं मैं बुलाऊं। अब पड़ोसन बोली, जो तुझको करना है सो तू कर, तुझसे तो भगवान ही हारे। चली गई।
लेकिन धुंधली की बहन आई तब तक महाराज उस पर बड़ी कृपा भगवान की। चार बच्चे तो वो घर छोड़ के आई, दो बच्चे आगे चल रहे, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा, खुद के ही हैं ये। एक बच्चा को उसने गोद में ले रखा, एक अभी अभी गर्भ में पल रहा। आई, अरे बहन राम राम, धुंधली राम राम राम राम, आजा बहन तू ठीक आ गई। अरे बहन धुंधली क्या बात है, तू बड़ा मुंह लटकाए, पूरी कहानी बता दी। और धुंधली की बहन तो चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, ताकि एक दो बच्चे हमारे सेट हो जाए। यारी सुन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़िए, बाबा बैरागी है ना जाने कौन सा मंत्र मार के फल दे दें, तू पागल हो जाए, छोड़ दे सब झंझट। तो मैं पति को क्या जवाब दूं, उन्होंने तो कहा है कि बस फल खाओ, जय जय हो जाएगी, बेटा होगा। अरे तू टेंशन ना ले, ये फल खिला दे, ये जो गाय बंधी ना बहुत दिन से, इसको खिला दे। फिर मैं पति को क्या जवाब दूं, कोई जवाब नहीं देना, तू झूठ मूठ का गर्भवती होने का नाटक कर, भगवान की कृपा से अभी हाल मेरे कोख में बच्चा आया है, तू कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद करा दूंगी, जो भी होगा मैं तुझे रातों रात सौंप दूंगी, मेरे ही घर पे तू चल के रह, तो ले तुझे झंझट भी नहीं लेना पड़ेगा मोल, और बेटा का बेटा या संतान की संतान मिल जाएगी भगवान की कृपा। ये बहुत बढ़िया है। अधुंधली देवी भी बड़ी खतरनाक, उसने वो गाय को फल खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक करती हुई बहन के घर चली गई। कालांतर में बहन को बेटा हुआ, बेटा को बहन को दे दिया, धुंधली को दे दिया, धुंधली बेटा को लेकर घर पर आई, पति देव से बोली महाराज आपकी जय हो, बेटा हुआ है। ओहो, पंडित जी तो खुश हो गए, ढोल नगाड़े बुलाए, खूब जय जयकार हुआ। कुछ दिन ढोल नगाड़े बजे, जय जयकार हुई, प्रसन्नता बंद ही नहीं हुई, तब तक महाराज जो फल गाय को खिलाया था उसको भी बेटा हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पूरा मनुष्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ, बस संत का आशीर्वाद था तो कान गऊ जैसे हुए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा हो गया। अब तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी पंडित जी के घर, बताओ तो, पहले तो एक बेटा नहीं थे, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा। एक दिन पंडित जी नामकरण करने लगे, जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए गौकर्ण, उसका नाम गौकर्ण रखा। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे तब तक धुंधली आ गई, महाराज क्या कर रहे हो, बेटे का नाम रख रहे हैं, 9 महीना दुख हमने झेलो है गर्भ में बच्चे को लेने को, इसलिए नाम रखने को अधिकार भी हमको दियो। हाँ तू धल्ले देवी, बस मुस्कुरा, हंसी खुशी रहे, भगवान की कृपा है। अच्छा महाराज हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम है आज से धुंधकारी। पंडित जी बोले जय हो, अपने ही नाम पे धल लिया तूने, और हुआ क्या गो

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नच तो कहीं गोलमाल। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime. I still remember that. And Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
5: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
4: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
8: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
4: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
4: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
11: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
4: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
12: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए।

0: फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
1: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
5: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
6: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
7: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
8: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
9: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद कर करता है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
11: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
14: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
15: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
9: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: आज वाराणसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय हब एंड स्पोक हवाई सेवा का शुभारंभ. उद्घाटन के पहले वाराणसी में विशेष गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ की पूजा. मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर. तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर. मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी है इंतजाम. महाराष्ट्र के हर होटल रेस्टोरेंट और ढाबों में हैंड वॉश साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य। एफडीए ने जारी की गाइडलाइंस। रांची में नशा मुक्ति संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा और छात्र। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। आज है निर्जला एकादशी। पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। स्नान दान कर सुख समृद्धि का मांग रहे हैं आशीर्वाद। निर्जला एकादशी पर बाबू खाटू श्याम का दो दिवसीय मेला शुरू। देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त। बाबा श्याम का आम से किया गया लौकिक श्रृंगार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: आज है निर्जला एकादशी। पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़। स्नान दान और पूजा पाठ में लगे भक्त। सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है निर्जला एकादशी। भीमसेनी एकादशी के नाम से भी है मशहूर। बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का मिलता है पुण्य फल। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की उपासना से पूरी होती है सभी मनोकामनाएं। पांडवों से जुड़ा है इस एकादशी का इतिहास। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की उतारी आरती। विधि विधान से की पूजा अर्चना। हरिद्वार में भी निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की पूजा पाठ। निर्जला एकादशी पर गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। घाटों पर तैनात दिखे एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय पुलिस। अयोध्या में भी निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई डुबकी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में तैयारियां। 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल। यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदंबनाथर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं इसमें शामिल। महाकुंभ अभिषेकम में वेदों के मंत्रोच्चार और पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ मंदिरों के गोपुरम और मूर्तियों का किया गया शुद्धिकरण। महाकुंभ अभिषेकम के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया मंदिर का गेट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तमिलनाडु के मयिलादुथुरई के वरसिद्धि विनयगर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम अनुष्ठान। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल। महाकुंभाभिषेकम के बाद वरसिद्धि विनयगर मंदिर में भगवान की उतारी गई विशेष आरती। भक्तों ने जमकर लगाई जयकार। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत। डीएमआरसी ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। नया मेट्रो कॉरिडोर से सेंट्रल विस्टा में बढ़ेगी मेट्रो कनेक्टिविटी। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हब पहुंचना होगा अब इससे और आसान। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन। डीएमआरसी का नया अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर अहम सरकारी इलाकों को जोड़ेगा। करीब 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में होंगे कुल 9 भूमिगत स्टेशन। शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्र सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बदौड़ा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ में है शामिल। नए मेट्रो प्रोजेक्ट से केंद्र कर्मचारियों का सफर होगा अब आसान। दिल्ली के प्रशासनिक और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम। शिक्षा की सफलता का मॉडल बनाई सरकार का स्कूल, हर सुविधा से युक्त, रिजल्ट भी रहता है खास।

0: पंजाब के ऑब्जर्वेशन होम में पहली बार शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट कोर्स। जेल पहुंचे बच्चे अतीत को पीछे छोड़कर बना सकेंगे अपनी नई पहचान। लद्दाख के हेमिस फेस्टिवल की धूम। गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है इसका आयोजन। हर साल जून जुलाई में हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। बौद्ध संस्कृति के दिखते हैं झलक। वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाश दीप। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर वायरल। दिल्ली में स्लोवेनिया गणराज्य का दूतावास पर धूमधाम से मनाया गया स्लोवेनिया का राष्ट्र दिवस। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल। भोपाल में साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने की इसमें शिरकत। दिल्ली में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हुए इसमें शामिल। वाराणसी में बन रहे लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का केंद्रीय मंत्री किंजरपुर राम मोहन नायडू ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अलवर के डीएसपी कार्यालय में घुसा 8 फीट लंबा सांप। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का किया सफल रेस्क्यू। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सेंटर। मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी है इंतजाम। रांची में नशा मुक्ति के संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का हुआ आयोजन। मंत्री सुदिव्य कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया सिरवाना। जयपुर में सीएम भजन लाल ने 631 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा विकास की गति को मिलेगी इससे रफ्तार। वाराणसी में इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट्स की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किंजरपुर राम मोहन नायडू हुए इसमें शामिल। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड कर लिया आनंद। राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले जय मुंद्रा आयरलैंड की T20 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ। भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में आयरलैंड की ओर से खेलेंगे। छब्बीस और 28 जून को डबलिन में भारत के खिलाफ होगा मैच। आक्रामक बॉलिंग और शानदार बैटिंग के लिए जय का आयरलैंड की क्रिकेट टीम में हुआ सिलेक्शन। टोंक शहर में रहने वाले उनके परिवार में खुशी का माहौल। मां ने कहा बेटे ने सच किया सपना। 28 साल के जय साल 2021 में एमटेक की पढ़ाई करने स्टूडेंट वीजा पर गए थे आयरलैंड। इसी दौरान वहां नौकरी की और साल 2025 में उन्हें मिली आयरलैंड की नागरिकता। वडोदरा के कवि दूला काग सरकारी स्कूल में सीटें फुल। लंबी वेटिंग लिस्ट। पहली पसंद बना सरकारी स्कूल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नच तो कहीं गोलमाल। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
6: जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: Good news today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय
12: पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: आज वाराणसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय हब एंड स्पोक हवाई सेवा का शुभारंभ। उद्घाटन से पहले वाराणसी में विशेष गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ की पूजा। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे के सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर। मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी है इंतजाम। महाराष्ट्र के हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में हैंड वॉश, साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य। FDA ने जारी की गाइडलाइंस। रांची में नशा मुक्ति संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा और छात्र। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। स्नान दान कर सुख समृद्धि का मांग रहे हैं आशीर्वाद। निर्जला एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू। देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त। बाबा श्याम का आम से किया गया लौकिक श्रृंगार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब मुश्किल 7 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो देखिए, साफ है कि श्रद्धालु इस बार निर्भय होकर बिना किसी डर के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अभूतपूर्व तैयारियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: ट्रक की तलाशी ले लो।
1: तीन जुलाई से शुरू हो रही अद्भुत अलौकिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ग की सरगोशी करने वाली परलौकिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन की हसरत 10 दिन बाद हकीकत में बदलने वाली है। तीर्थ यात्री जहां उत्साह में है, तो वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षित, सुगम और सकुशल यात्रा सम्पन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल और सेना ने हीला हवाला की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए इस बार पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ तक यात्रा मार्ग पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा में 10 दिन से भी कम अब समय बच गया है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब की बार न सिर्फ अमरनाथ यात्रा की सड़कों के आसपास बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और बालटाल से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इस कवच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना भी तैनात रहेगी।
1: पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर गाइड, पालकी संचालक, घोड़े वाले या दुकानदार के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके, इसके लिए इस बार तकनीक आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। तीर्थ यात्रियों को सर्विस देने वाले गाइड, पालकी संचालक और दूसरे कर्मियों और सेवादारों की पहचान के लिए QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम प्रयोग में लाया गया है। इसके तहत सभी संबंधित लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सभी दर्शनार्थियों को इस सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अधिकृत लोगों से सेवा ले सकें।
2: अब की बार अमरनाथ यात्रियों के पहचान पत्र के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में काम करने वाले घोड़े वालों, दुकानदारों और मजदूरों को भी एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया है, जिस पर उन सभी लोगों की सभी जानकारियां जो है वो एकजुट की गई है और सभी लोग वेरिफाइड हैं।
1: कुल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है। इस हाईवे के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, जम्मू में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सघन निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और दोनों रास्तों यानी पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दोनों सड़कों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF और ITBP के अलावा भारतीय सेना भी तैनात रहेगी। न सिर्फ ये सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच देंगी, बल्कि साथ ही साथ यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर तैयार रहेंगी।
1: आपको बता दें कि पहलगाम या बालटाल दोनों ही मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले श्रद्धालु देश और दुनिया के तमाम हिस्से से आकर सबसे पहले जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में ठहरते हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मंगलवार को यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी। तेज तर्रार जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने तरह तरह से मॉक ड्रिल की।
0: जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियां होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखिए जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहां पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं।

0: देख सकते हैं कि बंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो 2400 घंटे यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सके किसी संदिग्ध हरकत पर। यहाँ देखिए कैमराज लगातार लगाए गए हैं, तो हर स्थान पर यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, तो हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये यात्री निवास भवन का परिसर है, पूरे यात्री निवास भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है और सुरक्षा संबंधित बैठकें भी जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, सुरक्षा की समीक्षा भी हो रही है और जगह जगह जो सुरक्षा बल है वो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं।
1: सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने सोमवार को पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। डीजीपी नलीन ने मातहत अधिकारियों को किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे।
0: जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो पारंपरिक मार्ग है वो पहलगाम से होकर जाता है और पहलगाम जो है अनंतनाग जिले में ही आता है, इसीलिए ये बैठक जो है वो अनंतनाग में हुई और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद थे और एक तरह से जो सुरक्षा की जो है समीक्षा की गई। तो अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। ये उनको जिम्मा दिया जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान।
1: साफ है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और अमरनाथ गुफा तक किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी 57 दिनों तक चलेगी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। भोले के भक्तों को कश्मीर के पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। देखिए आमतौर पर ये रास्ता काफी वीरान होता है लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक देखने को मिलती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यहाँ पहुंच जाते हैं और यात्रा खत्म होने तक यहीं रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरे पर थकान और तनाव नहीं होता बल्कि मानव सेवा का सुकून होता है।

3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इस बीच बाबा बर्फानी ने पवित्र गुफा में अपना स्वरूप विस्तार शुरू कर दिया है। इस साल बाबा बर्फानी का ये पहला अलौकिक दर्शन है। एक ओर देश और दुनिया में बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ श्वेत आभा के साथ बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं की अगवानी में गुफा के अंदर अपना अलौकिक आकार ग्रहण कर रहे हैं। ये जय घोष है अनादिकाल से।

0: की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी ना पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेल पटरी पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके मासल आए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेल पटरी पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग मग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर एलजी साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थयात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की, और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना, और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं, और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जल्दी होने वाली है, इसे लेकर भोले बाबा के जो भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
4: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluff Mobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on Spin Quest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on Tune In.
7: पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
3: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे, तो कुछ को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा भी होता है। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्याल लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
5: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
6: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देशभर की पवित्र नदियों में किया जा रहा स्नान, सुख समृद्धि का मांग रहे वरदान। निर्जला एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू, देशभर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त, बाबा श्याम का आम से किया गया अलौकिक श्रृंगार। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर। मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इंतजाम।
6: महाराष्ट्र के हर होटल रेस्टोरेंट और ढाबों में हैंड वॉश साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य। एफडीए ने जारी की गाइडलाइन।
7: गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हुआ। आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी। आदेश तत्काल रूप से लागू।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट अच्छे से अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। स्नान दान और पूजा पाठ में लगे तमाम भक्त, सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। हरिद्वार में निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर किया पूजा पाठ। अयोध्या में निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ।
6: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदंबनाथर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। तमिलनाडु के मयिलादुथूरई के वरसिद्धि विनयागर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम अनुष्ठान, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल की धूम मची, गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है आयोजन।
7: मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर तमाम सुविधाओं के साथ लैस है ये सेंटर। मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इंतजाम। रांची में नशा मुक्ति के संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में सीएम भजन लाल ने 631 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा विकास की गति को मिलेगी रफ्तार। वाराणसी में इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट्स की शुरुआत हुई, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू इसमें शामिल हुए। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का मजा लिया।
6: मुंबई में सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई, कई इलाकों में जलभराव। वाशी में मूसलधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। जलगांव में भी जोरदार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। अमरावती में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, निचले इलाकों में भरा पानी। अकोला में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे।
7: फिल्म मिर्जापुर का आज टीजर होगा रिलीज। फिल्म के किरदारों में मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया के पोस्टर्स जारी। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने थाईलैंड में मनाई शादी की दूसरी सालगिरह, एक दूसरे की आंखों में डूबे नजर आए। प्रेग्नेंट समंथा रूथ ने मैटरनिटी ब्रेक का ऐलान किया, एक्ट्रेस ने कंफर्म की प्रेगनेंसी, बोली मैं जल्द वापस आऊंगी। अगले साल 25 जून 2027 को रिलीज होगी पंजाबी फिल्म रन्ना द धन्ना, दिलजीत दोसांझ निभाएंगे अहम किरदार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
9: 25 अच्छी खबरों के बाद खबर विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
7: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
9: आज निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ रहे भक्त, स्नान दान कर सुख समृद्धि का मांग रहे आशीर्वाद।
7: दिल्ली में मानसून से पहले सरकार अलर्ट, प्रगति टनल और मिंटो ब्रिज समेत 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर रहेगी नजर, यमुना में जलस्तर बढ़ते ही जारी होगी चेतावनी।
9: मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर, हर सुविधा से है लैस, स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय भी है मौजूद, मनोरंजन का खास इंतजाम।
7: और कल है फिल्मी फ्राइडे, सिनेमाघर और ओटीटी पर एक साथ रिलीज हो रही 16 फिल्में।
9: वहीं वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें वायरल।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ करते हैं। हर दिन हम में से कोई ना कोई घर से बाहर खाना खाने जाता है। कभी परिवार के साथ जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ जाते हैं, तो कभी ऑफिस के लंच ब्रेक में साथ में बैठते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में बैठते ही सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है, नॉर्मल वाटर या फिर मिनरल वाटर? और कई बार बिना पूछे ही टेबल पर पानी की बोतल रख दी जाती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में ऐसा करना महंगा पड़ सकता है,
1: क्योंकि FDA ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों को बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अखबार में खाना परोसने और इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा प्रयोग करने पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। FDA कमिश्नर ने कहा है कि सेफ खाना और पानी मिलना एक बुनियादी अधिकार है।
0: और साथ ही ये भी कहा गया है कि FDA अधिकारी ये ध्यान दें कि फूड सेफ्टी नियम पूरे साल लगातार लागू रहे। आखिर क्या है नए नियम और ग्राहकों को इससे फायदा क्या होने वाला है, पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: रेस्टोरेंट की टेबल पर रखी पानी की बोतल और बिल में जुड़ते अतिरिक्त रुपये। अब इस पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र एफडीए ने नया नियम बना दिया है। एफडीए के इस आदेश के बाद अब महाराष्ट्र में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर फूड सर्विस देने वाली जगह ग्राहकों को पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने साफ कर दिया है कि किसी भी ग्राहक को बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। होटल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी फूड सर्विस देने वाली जगह ग्राहकों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। यानी अब रेस्टोरेंट में ग्राहक के सामने सिर्फ एक विकल्प नहीं होगा, अगर ग्राहक सामान्य पीने का पानी चाहते हैं तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ मुनाफे के लिए पानी की बोतल बेचने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। हालांकि एफडीए की ये पहल केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा रेस्टोरेंट की टेबल से लेकर किचन के अंदर तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र एफडीए ने खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। पानी की बोतल से शुरू हुई ये पहल अब पूरी थाली तक पहुंच चुकी है। साफ पानी, सुरक्षित खाना, वैध लाइसेंस और अखबार पर खाना परोसने, इस्तेमाल किए हुए तेल पर रोक भी इस आदेश में शामिल है। दरअसल सड़कों और ढाबों पर अक्सर आपने देखा होगा कि समोसे, पकौड़े या अन्य खाद्य पदार्थ अखबार पर रखकर परोस दिए जाते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में इस पर भी सख्ती होगी। एफडीए ने अखबार में खाना परोसने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वजह है अखबार की स्याही में मौजूद केमिकल जो खाने के संपर्क में आकर शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र एफडीए का संदेश साफ है, ग्राहक सिर्फ पैसे देकर खाना नहीं खरीदता, बल्कि वो सुरक्षा, गुणवत्ता और भरोसा भी खरीदता है। ऐसे में अब रेस्टोरेंट की चमक दमक से ज्यादा उसकी स्वच्छता मायने रखेगी। मेन्यू की लंबाई से ज्यादा जरूरी होंगे सुरक्षा मानक और मुनाफे से पहले ग्राहक की सेहत को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अच्छी सेवा का मतलब सिर्फ स्वादिष्ट खाना परोसना नहीं, बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भोजन उपलब्ध कराना भी है। और अगर कोई रेस्टोरेंट, होटल या कैफे या फिर अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटर इन फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि गंभीर या बार बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द भी हो सकता है। जाहिर है एफडीए ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों पर किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा महाराष्ट्र से हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए एफडीए की तरफ से ये जो नए नियम लागू किए गए हैं काफी अच्छे नियम हैं, लोगों को काफी पसंद आए हैं, लेकिन धर्मेंद्र सवाल यही है कि आखिर इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसका ख्याल कैसे रखा जाएगा, कौन देखरेख करेगा इनकी?
2: देखिए सबसे पहले आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एफडीए ने एक मीटिंग रखी थी, कमिश्नर खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट चलता है रेस्टोरेंट का, एक जो कमेटी है जिसे वो आहार कहते हैं, जिसका सर्टिफिकेट लेकर के लोग मुंबई और महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट चलाते हैं और बड़े दलड़ से लोगों को खिलाते हैं, उनको लेकर के सारी चीज़ें साफ तौर से रख दी गई हैं और उनकी तरफ से बाई मेल और बकायदा एक कागज़ के तौर पे हर रेस्टोरेंट पे ये सारी जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन रखी है वो पहुंच गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके में और तस्वीरों के माध्यम से देखें ये मुंबई का भारत कैफ़े होटल है और भारत कैफ़े होटल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और रोज़ाना यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, खाना खाते हैं और कुछ देर पहले ही अब भारत कैफ़े से खाना खा करके दो सज्जन हमारे साथ यहाँ मिले हैं, बाहर निकले हैं। सबसे पहले बताया क्या ऑर्डर किया था आपने?
3: हमने ऑर्डर दिए टेबल पे बैठे वो पानी पीने उन्होंने दिया, बिना बोले पानी पीने दिया और अच्छा सर्विस देते भारत कैफे वाले। और दूसरा ये जो अभी जो सर्कुलर निकाला है, ऑर्डर जो निकाला है मुंडे साहब ने, तुकाराम मुंडे साहब ने, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो आगे चल के ये बोलना चाहता हूँ, जैसा महाराष्ट्र में पब्लिक रहता है, उन्होंने जो ऑर्डर यहाँ निकाला वैसा पूरा इंडिया में हर एक स्टेट में ऐसा स्ट्रिक होना चाहिए। बहुत अच्छा आदमी है और ऐसा ही आदमी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हित के लिए, लोगों का आरोग्य का सवाल आता है, तो ये बहुत अच्छा कर रहे तुकाराम मुंडे जी।
2: अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप जाकर किसी होटल में बैठे खाने के लिए और उन्होंने नॉर्मल पानी नहीं दे करके आपको बोतल की पानी पकड़ा दी?
4: बहुत ऐसे होटल में होता है, लेकिन भारत कैफे में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत ऐसे होटल है कि अपन नाश्ता मंगाएंगे तो पानी चाहिए, पैक बंद बॉटल चाहिए, तो मतलब वो पानी का पैसा अलग लगाते हैं और ये ग्राहकों की लूट करते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि तुकाराम मुंडे जैसे कार्यक्षम अधिकारी यहाँ आए हैं, ऐसे अधिकारी हर खाते में, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार, ये शिष्टाचार हो गया है। हर डिपार्टमेंट में तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी रहेंगे।
2: बेसिकली मतलब आप खुश हैं, आप एफडीए के इस फैसले से खुश हैं? क्या खाए आप? बार बार दांत पे अपनी जीभ लगा रहे, क्या खा के ऑर्डर क्या किया था?
4: हमने यहाँ ऑर्डर किया था पूरी और हुसल किया था। लेकिन
2: मतलब ये तेल से, ऑयल से निकली हुई चीज है, तो ऑयल ठीक ठाक था?
4: नहीं, ऑयल ठीक ठाक था। और ये भारत कैफे का ऑयल और ये सर्विस बहुत अच्छा है,
2: मतलब ये भारत कैफे होटल एक तरीके से अच्छा है। लेकिन साहब, मैं आपसे एक सवाल बहुत अहम यहाँ पे मैं जरूर पूछना चाहूंगा। बहुत जगह ऐसे हम बैठते हैं, एक ही ऑयल में तली जा रही चीजें, चलो पानी की तो बात हो गई। आपको ऐसा लगता है कि ये भी एफडीए ने जो फैसला लिया ये भी सही है?
3: ये भी बहुत सही है, क्योंकि डबल बार जो ऑयल जो एक बार यूज किया वापस यूज करते हैं, तो उससे बॉडी को, हेल्थ को, आदमी का हेल्थ को उसको साइड इफेक्ट होता है। लेकिन वो धीरे धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसा काम होता है। और ये जो मुंडे साहब ने जो किया बहुत अच्छा कर रहे हो, और इनका बदली नहीं होना चाहिए। ये 2-3 साल रहे तो पूरा क्लीन हो जाएगा जो चल रहा है वो सब।
2: क्या क्या अच्छा करते हैं वैसे आप?
3: हाँ,
2: क्या बिजनेस है?
3: हमारा तो केमिस्ट फार्मेसी का शॉप है,
2: मेडिकल है। मतलब आप भी स्वास्थ्य,
3: हम भी ये बात को खुश है कि जो भी कर रहे बहुत अच्छे के लिए कर रहे।
2: तो बेसिकली अभी कुछ देर पहले ये दोनों जो है खा करके बाहर निकले थे, और साफ तौर से जो कमिश्नर साहब है उनके फैसले का फैसला लिया है। भारत कैफे होटल है, और मैं थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं किस तरीके से बड़े चाव से लोग यहाँ पर ऑर्डर मंगा रहे हैं, खा रहे हैं। और वाकई में जैसा कि ये कहा गया है, बताया गया है कि पहले ही पानी यहाँ पर सर्व हो जाती है। थोड़ा सा भीतर आते हैं और आप देखें ये जो थाली सजी हुई है, यहाँ पर एक बिस्लरी की बोतल तो रखी है, लेकिन उसके साथ में ही एक ग्लास में पानी भी रखा हुआ है। सिर्फ यही एक टेबल नहीं है, उसके पीछे का भी आप टेबल देखें, उसमें भी ग्लास का पानी रखा हुआ है। यानी कि फिलहाल ये जिस मैं रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, वो लोग यहाँ पर बाकायदा पानी दे रहे हैं, और कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई सादा पानी लें या फिर ठंडा पानी लें, इस तरह की चीजें तो फिलहाल देखने नहीं मिल रही।
1: धर्मेंद्र, एक और चीज
2: लिया गया है,
1: ये तो चलिए एक रेस्टोरेंट की बात हो गई। ऐसे महाराष्ट्र में अनेकों रेस्टोरेंट हैं, अभी तक ये आदेश जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे इंडियंस होंगे जो चाहेंगे कि हर स्टेट में एफडीए का ये नियम बाकायदा लागू किया जाए। इसके पीछे रीजन यही है कि फूड कंटेमिनेशन या केमिकल कंटेमिनेशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जाए, उसका जो प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है वो ना पड़े। रीहीट जब करते हैं कुकिंग ऑयल को, उसका बहुत दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है, उसके बारे में भी कहा गया है कि ये नहीं करना है। ये मेक श्योर, ये सारी चीजें किस तरह से इनको, क्योंकि मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होगा, हर किसी के किचन में जाकर आपको एक चेक तो करना पड़ेगा, एक टीम भेजनी पड़ेगी कि क्या किया जा रहा है वहां पर, कितना टफ होने वाला है ये।
2: देखिए, आपको बताएं जिस तरीके से एफडीए ने कल मीटिंग ली थी, और स्पेशली जितने भी रेस्टोरेंट मुंबई और महाराष्ट्र में चलते हैं उन सभी को बुलाया गया था, और जो इनके बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो यूनियन चलाते हैं, जिसमें से आहार एक बहुत बड़ा नाम है, आहार को बुलाया गया। इसके अलावा भी दूसरी से कमेटी है, उन्हें बुलाया गया, बाकायदा मीटिंग बिठाई गई, और उन्हें ये बताया गया कि अब इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। जो कमिश्नर हैं इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सभी उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आहार जो है आज अपने अंदर आने वाले, अंतर्गत आने वाले जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनके मालिकों को बुलाएगा, और उन्हें भी ये सारी की सारी चीज़ें बताएगा कि बिल्कुल हमें जो है महाराष्ट्र शासन और ये एफडीए की साथ चलनी है, और जिस भी तरीके से ये धांधलेबाजी चल रही है सभी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि कई जगहों पर ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर जैसे ही कस्टमर बैठता है, कुछ खाने को मंगाता है, तो सादा पानी नहीं देके वो सीधे कहते ठंडा या फिर सादा पानी। लेकिन आजकल ये भी बहुत ज़्यादा लोग अपना ख्याल रख रहे हैं जो खाने वाले ग्राहक हैं, कि वो भी होटल के पानी ना पी करके, उनका ये मानना है कि अगर हम 200-500 रुपए के खाना खाते हैं तो उसमें 20-30 रुपए के पानी क्यों ना पिए, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो भी सामने से जो है अलग अलग कंपनियों के पानी मंगा लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मात्र जो पानी बिस्लरी की, बिस्लरी एक बड़ा ब्रांड है लेकिन उसके ही आसपास बहुत सारे ऐसी चीज, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं जो अपने पानी मार्केट में भेज दिए हैं और वो भी उनका भी बजट और रेट उतना ही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि क्या ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर बिस्लरी जैसे बड़े बड़े ब्रांड नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम के जो पानी है वो बेचे जा रहे हैं, तो कैसे होटल वाले उसे खरीदते, रेस्टोरेंट उसे कैसे खरीदते हैं, क्या वो रजिस्टर है, अगर नहीं है तो किस तरीके से कार्रवाई होगी। इन्हीं सारी चीजों पर एक बहुत बड़ा काम इस समय एफडीए की तरफ से चल रहा है, न केवल आहार और दूसरी जो यूनिटी है वो इनके साथ मिले हैं बल्कि एफडीए के भी तीन कमेटी बना दी गई है जो खुद सरकारी अफसर हैं जो अब आज से ही अलग अलग रेस्टोरेंट में जाएंगे।
1: एक ग्राहक बनकर के एफडीए की तरफ से जो नए नियम लागू किए गए हैं, चाहे वो पानी की बोतल से रिलेटेड हो या खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल, अगर ऐसा होता है कि किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
2: देखिए, सबसे पहले एफडीए जो है उस पर उस रेस्टोरेंट पर जाकर के उनके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। अगर वो रजिस्टर हैं तो उनके डॉक्यूमेंट क्या है, क्या गुमास्ता लाइसेंस उनके पास है, क्या फूड लाइसेंस उनके पास है, और अगर फूड लाइसेंस है भी तो क्या उन्होंने एक साल में अपने एफडीए में आकर के लाइसेंस को वापस से आगे बढ़ाया है और क्या कुछ खिला रहे, वो सारी चीज़ें क्या उन्होंने बताई है। अगर ये सारी कमियां पता चलती है एफडीए के अफसर को, एफडीए को ये, तो वो तुरंत ही उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस जो है पूरी तरह से रद्द कर देंगे। और फिलहाल एफडीए ने सामने से सारी ही कमेटियों को बुला करके ये कह दिया है कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सारे के सारे आकर के अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और बकायदा ये बताएं कि वो कौन कौन सी चीजें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो बकायदा वेरीफाई है।
5: बिल्कुल, इसके साथ ही कस्टमर को भी जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर जा रहे हैं आप क्या खा रहे हैं, आपको परोसा क्या जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल के लिए धर्मेंद्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा एंटरटेनमेंट की खबरों का रुख करते हैं। देखिए, इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले बड़े और छोटे पर्दे पर एंटरटेनमेंट का धमाल होगा।
1: जून के आखिरी शुक्रवार को एक साथ 16 फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं। आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं जो कल बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है।
6: बाल बुनना मकड़ी के लिए स्वाभाविक है मगर मक्खी के लिए वो चिंता का विषय हो सकता है।
7: अपने घर
8: इसको टच रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
9: अरे वो पुरानी चावल है।
10: मैं किस लिए फिल्म में?
11: ग्लैमर
12: सिनेमा घरों में होगा एंटरटेनमेंट का धमाल जब अक्षय कुमार सहित 32 से ज्यादा सितारों का कुनबा बड़े पर्दे पर करेगा कमाल। जी हाँ, वो पल नजदीक है जब थिएटर्स में मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज होने जा रही है।

0: और सिर्फ एक यही फिल्म नहीं बल्कि और भी ढेर सारी फिल्में सिने प्रेमियों का मनोरंजन करने के लिए बड़े और छोटे पर्दे पर आ रही है, वो भी एक ही दिन। गर्मी की छुट्टियां और सिर्फ एक यही फिल्म नहीं बल्कि और भी ढेर सारी फिल्में सिने प्रेमियों का मनोरंजन करने के लिए बड़े और छोटे पर्दे पर आ रही है, वो भी एक ही दिन। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले फिल्म प्रेमियों को एंटरटेनमेंट की शानदार सौगात मिलने जा रही है। जून का आखिरी शुक्रवार आ रहा है जो फुल फन और मस्ती से भरपूर होगा, क्योंकि ये शायद इस साल का ऐसा शुक्रवार होगा जब एक साथ 16 फिल्में सिनेमा घर में और OTT पर दस्तक देंगे। इनमें बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है वेलकम टू द जंगल, जो एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। वहीं हिंदी में जो दूसरी फिल्म कल सिनेमा घरों में आ रही है वो है नव्या चक्र, ये सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर है।
1: एक इंसान में कितनी पर्सनैलिटीज होती है ये ना मैं जानता हूँ, ना आप और ना वो इंसान खुद।
0: इसके अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं की भी कई फिल्में कल बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी, तो दक्षिण भारतीय दर्शकों के साथ साथ साउथ की फिल्मों के मुरीद दर्शकों को भी एंटरटेनमेंट का फुल जोश मिलने वाला है। कल साउथ की जो फिल्में रिलीज हो रही हैं उनमें तमिल की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा अंगीकारम है, तो तमिल की ही मिस्ट्री रोमांटिक थ्रिलर अंधरन भी है। इसके अलावा तमिल की कॉमेडी थ्रिलर कौन सिटी कल रिलीज होगी, तो इसी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी हॉट इन भी बड़े पर्दे पर आएगी। वहीं कन्नड़ की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर पंचमुखी भी कल रिलीज हो रही है। कन्नड़ की ही एक्शन थ्रिलर करूड़ भी बड़े पर्दे पर आने वाली है। कन्नड़ में ही एक और रोमांटिक एक्शन ड्रामा बाल रमन दिनागलु भी कल बॉक्स ऑफिस पर एंट्री करेगी, जबकि मलयालम की मिस्ट्री ड्रामा उईर भी कल रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, घर बैठे OTT पर एंटरटेनमेंट के शौकीन दर्शकों के लिए भी इस शुक्रवार को एक दो नहीं पूरी 6 फिल्में और वेब सीरीज का तोहफा मिलने जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है नितेश देशमुख की राजा शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। इसके अलावा नेहा धूपिया और पंकज त्रिपाठी की परफेक्ट फैमिली भी कल OTT पर स्ट्रीम होगी, जबकि रियलिटी शो अलाइंस भी कल से OTT पर दिखेगा, जिसे कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। वहीं मशहूर फिल्म बाहुबली की मेकिंग पर आधारित बाहुबली द टॉर्च बियरर भी कल से OTT पर देखी जा सकेगी। जॉन सीना और एरिक आंद्रे की कॉमेडी लिटिल ब्रदर भी OTT पर आने वाली है। वहीं स्पोर्ट्स ड्रामा लिंगअप को भी कल से OTT पर देखा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले पूरे हफ्ते से लेकर आगे तक के लिए फिल्म और मनोरंजन से संबंधित शो देखने के शौकीन दर्शकों के लिए एक ही साथ एक से बढ़कर एक पैकेट छोटे और बड़े पर्दे पर मौजूद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए, अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की बात कर ही रहे हैं, तो कल देश भर के सिनेमाघरों में वो दस्तक देने जा रही है। उससे एक दिन पहले यानी कि आज शाम को फिल्म का पेड प्रीव्यू देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में दिखाई भी देगा।
3: और देखिए, फिल्म की एडवांस बुकिंग भी फिलहाल शुरू हो चुकी है। अब तक वेलकम टू द जंगल ने 2 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी बीच मुंबई से लेकर मुरादाबाद तक फिल्म का जोरदार प्रमोशन भी चल रहा है।
4: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
5: एक जबरदस्त कहानी है।
6: और टाइटल क्या है फिल्म का?
5: वेलकम टू द जंगल। स्टार कास्ट है।
7: आज शाम जंगल में आप सभी का स्वागत है। ये हम नहीं, वेलकम टू द जंगल की टीम कह रही है, जिसका पेड प्रीव्यू फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले यानी आज शाम को रखा गया है। बॉलीवुड में इस साल पेड प्रीव्यू का ट्रेंड काफी बढ़ा है। वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए देश भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में पेड

0: म्हणजे टॉप का हिरो होता, टॉप का हिरो
1: रोलिंग।
2: शाम 7:30 बजे के बाद वेलकम टू द जंगल के शो सिनेमा घरों में दिखाए जाएंगे। इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रेटेजी ये है कि फिल्म कल यानी 26 जून को रिलीज होगी।
3: ये कोई पेंटिंग है
4: घोड़े के ऊपर गधा?
0: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
4: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार
2: 26 जून को वैसे तो शुक्रवार है ही, जब फिल्में आमतौर पर रिलीज होती हैं, दूसरे शुक्रवार को ही मुहर्रम की छुट्टी है। मेकर्स को उम्मीद है कि पेड प्रीव्यू के जरिए फिल्म को माउथ पब्लिसिटी मिलेगी, जिससे शुक्रवार को फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिल सकती है।
0: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: मुझे छपरी ने किया ना, अपने को भी करने का है।
2: वैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग 22 जून से शुरू हो चुके हैं। ट्विटर ट्रैकर सकनिल के मुताबिक वेलकम टू द जंगल ने पेड प्रीव्यूज और ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग को मिलाकर अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस बीच वेलकम टू द जंगल का जोरदार प्रमोशन जारी है। फिल्म के एक गाने घिस घिस में अक्षय के साथ डांस कर लाइमलाइट बटोर रही भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर और मां मुंबा देवी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची और फिल्म की कामयाबी की कामना की।
0: इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है।
2: अक्षरा सिंह ने इस खास मौके की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इन तस्वीरों में वो भक्तिभाव से भगवान के दर्शन करती नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में वो मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करती दिखाई दे रही हैं, तो कुछ तस्वीरों में अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ नजर आ रही हैं। अक्षरा सिंह ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, आज का दिन सच में मुझे निःशब्द कर गया, सिर्फ दिल में कृतज्ञता है। आज सपनों की राह पर खड़ी होकर सिद्धि विनायक बप्पा और माँ मुंबा देवी के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला। इस मौके पर अक्षय कुमार तो अक्षरा सिंह के साथ मंदिर नहीं गए, लेकिन कुछ दिन पहले अक्षय कुमार अक्षरा सिंह और दिशा पाटनी के साथ चार्टर प्लेन से मुरादाबाद पहुंचे, जहां एक यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के सामने फिल्म का जमकर प्रमोशन किया। इस दौरान अक्षय और अक्षरा ने फिल्म के भोजपुरी मिक्स गाने घिस घिस घिस पर लाइव डांस भी किया। मुरादाबाद जाने के दौरान टीम बरेली एयरपोर्ट पर रुकी थी, जहां दिशा पाटनी का घर भी है। बरेली एयरपोर्ट पर घटा एक वाकया इन दिनों सुर्खियों में हुआ ये कि दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी अक्षय कुमार की पसंद का घर का बना देसी खाना कढ़ी दही मिक्स वेज लेकर शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचे।
6: चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है।
7: गेंडे को मेंढक मत बोलना। तू बस कर, हां तो तू रिक्शा कर जा,
8: पहाड़ में जाओ तुम लोग।
2: लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें एयरपोर्ट के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। जगदीश पाटनी ने बताया कि मंगलवार सुबह बेटी दिशा ने अचानक फोन किया। उसने कहा अक्षय जी घर का खाना खाना चाहते हैं, इसलिए दोपहर में बरेली एयरपोर्ट पर खाना लेकर आ जाए। तुरंत मनपसंद देसी खाना बनवाया गया, जिसमें कढ़ी दही मिक्स सब्जी रोटी आदि शामिल थे। मुरादाबाद का इवेंट खत्म कर टीम वापस बरेली एयरपोर्ट लौटी। अक्षय कुमार को जब ये जानकारी मिली कि दिशा के पापा को एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं दिया गया, तो पूरी टीम के साथ वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए, जिसके बाद पूरी टीम ने घर के खाने का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
6: मेंढक की तरह फुदक रहा है।
7: गेंडे को मेंढक मत बोलना। तू बस कर, हां तो तू रिक्शा कर जा,
8: पहाड़ में जाओ तुम लोग।
7: आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल।
9: ट्रेलर खत्म।
10: अब देखिए 32 नामी गिरामी एक्टर्स अगर एक साथ फिल्म में हो तो डायरेक्टर के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। डायरेक्टर अहमद खान ने कैसे इस चुनौती का सामना किया और कैसे उन्होंने फरीदा जलाल को एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर फिल्म में शामिल किया है, वो आपको बताते हैं।
11: दरअसल अक्षय कुमार और फरीदा जलाल ने ऐसे तमाम सवालों के बड़े ही दिलचस्प जवाब भी दिए हैं। एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने ये जवाब दिए हैं, देखिए कैसा रहा ये इंटरव्यू।
12: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
0: एक जबरदस्त कहानी है।
13: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
14: ये 3 इडियट्स आई थी, बहुत बड़ी हिट थी। ये 32 इडियट्स है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड इट्स अ फन फिल्म। ये जो कहानी आपने कही, फेक फिल्म, 2000 करोड़ एंड क्या होता है, मैं इसके बारे में ना मैं जितनी इतनी जानकारी दे सकता हूँ कि बस कि एक फिल्म बन रही है जिसको 2,000 करोड़ रुपए दे के उसको फ्लॉप करना, उसमें खर्चा करके फ्लॉप करना, और फिर उसके अंदर क्या होता है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और उसके अंदर रियल कैरेक्टर्स कैसे आ जाते हैं, यानी कि रियल कैरेक्टर्स मैं जब कह रहा हूँ वो हैं ये फरीदा जी, रियल कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है विदाउट रियलाइजिंग कि ये रियल है और हम फेक हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर, एंड वो कंफ्यूजन आपका तभी सॉल्व होगा जब आप 250 रुपए देखे पिक्चर पर देखे.
1: आप क्या करें, आपने तो जान लिया.
14: इनको तो इसमें जानने की बात नहीं है, इन्होंने इनको पता है कि ये कॉमेडी फिल्म है तो आपकी भी छवि मस्ती वाली होगी.
1: होगी हाँ, यार एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन, वो तो है. अब देखिए आप जाके फिल्म कि किस किस्म की मस्ती है, क्या टोन है, क्या रिदम है, क्या डायलॉग है, क्या एक्शन है, बस देखते जाइए.
14: एक मुझे बात बताइए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने फरीदा जी की बहुत सारी फिल्में देखी है, हमने इनको हमेशा सीरियस रोल, हमने इनको ट्रेजेडी, रोना धोना, उन सब रोल इमोशनल रोल्स में हमेशा देखा है. यहाँ तक मुझे याद है ये इन्होंने मेरी एक माँ का रोल, मेरी माँ का रोल भी किया था, ऐलान फिल्म, वन ऑफ द वेरी वेरी वेरी गुड फिल्म विच आई विल ऑलवेज रिमेम्बर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. सो लेकिन इनका कभी हमने कॉमेडी में रूप नहीं देखा है. मैं ये कह सकता हूँ, और इतने सारे एक्टर हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे एक्टर हैं, आप फिल्म देखने के बाद सबसे पहले आप इन्हीं को याद करेंगे कि क्या कॉमेडी की है. इन्होंने कभी कॉमेडी ज़्यादा की नहीं है, लेकिन इस फिल्म के अंदर इन्होंने जो कॉमेडी की है वो अलग बात है. थोड़ा सा इनके हाथ पैर जोड़ने पड़े थे कि ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने जो करके दिखाया वो.
1: अब आप जब फिल्म देखे तब आप समझोगे कि क्या कह रहे हैं. दैट्स वेरी अंडरस्टैंड. सबसे बड़ी बात तो अहमद सर आए थे हमारे घर, वो मेरा बेटा है, ही इज जस्ट लाइक अ सन टू मी, एंड उनके लिए तो मुझे करना ही था चाहे कुछ भी था. बट व्हेन ही नरेटेड समथिंग ऑफ द फिल्म आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई सेड यस विद फुल जोश एंड फुल कमिटमेंट.
10: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद देखिए निर्जला एकादशी पर शुभ संयोग.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
13: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
15: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
13: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
16: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला-चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
17: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
18: Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in.
10: निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देश भर की पवित्र नदियों में किया जा रहा स्नान, सुख समृद्धि का मांग रहे वरदान.
19: निर्जला एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू, देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त, बाबा श्याम का आम से किया गया अलौकिक श्रृंगार.
10: मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर, मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इंतजाम.
11: महाराष्ट्र के हर होटल रेस्टोरेंट और ढाबों में हैंड वॉश साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध करवाना हुआ अनिवार्य, एफडीए ने जारी की गाइडलाइंस।
10: गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हुआ, आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी, आदेश तत्काल रूप से लागू।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: लंच टाइम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं धर्म कर्म की। देश भर में आज निर्जला एकादशी का व्रत है। माना जाता है कि व्रत साल भर की एकादशी का पुण्य दे सकता है। भीषण गर्मी, तपता सूरज और गले को सुखा देने वाली प्यास, लेकिन आस्था ऐसी कि भक्त पूरे दिन जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते।
1: और यही है निर्जला एकादशी का महाव्रत, जिसे सनातन परंपरा में जप, त्याग और आत्मसंयम की सर्वोच्च साधना मानते हैं। इस पावन अवसर पर देश भर में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या समेत तमाम तीर्थों की, जहां लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आज से 2 दिन का धार्मिक मेला शुरू हुआ। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के इस व्रत का पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान फलदायी होता है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के रहना, अर्थात इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करते हैं ना ही भोजन।
0: ये व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सब एकादशी में इसे काफी अहम भी माना जाता है और इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है।
1: चलिए अब तस्वीरें सीकर में लगे महामेले की। निर्जला एकादशी पर राजस्थान में सीकर के पास खाटू श्याम के मंदिर में 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। देश भर से लाखों श्याम भक्त मेले में पहुंचे हैं
0: और इस अवसर पर बाबा श्याम का शानदार श्रृंगार किया गया। विश्व विख्यात खाटू श्याम में बाबा श्याम के मेले में देश के कोने कोने से श्याम भक्त का हुजूम उमड़ रहा है। श्रद्धालु रिंग से खाटू पदयात्रा करते हुए खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं।
1: और देखिये निर्जला एकादशी पर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मंदिर को हरियाली के साथ अलग अलग आमों से बाबा श्याम के दरबार को मनमोहक रूप से सजाया। बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। एकादशी के मौके पर बाबा श्याम का कोलकाता से मंगाए गए गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल और ड्राई फ्रूट से भी भव्य श्रृंगार किया गया।
0: तो वहीं निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर गया जी के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण के दर्शन करने के लिए जिला के साथ साथ दूर दूर के श्रद्धालु

0: बहुत बड़ा महत्व होता है। माना जाता है कि विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु सभी श्रद्धालुओं की तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। चलिए अब बात भोलेनाथ की नगरी काशी की, जिसको अब विकास की एक नई सौगात मिलने वाली है। अगस्त महीने में रोपवे की शुरुआत होने जा रही है,
1: जिससे कि लोग वाराणसी कैंट से सीधे गुदियाला जा सकेंगे और वहां से आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि ये दूरी महज 16 मिनट में की जा सकेगी, वो भी बिना किसी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ के। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोपवे सेवा के किराए को भी तय कर दिया है, जो कि काफी हद तक बजट फ्रेंडली है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा था, उस ख्वाब को साकार करने में बाबा भोलेनाथ की नगरी में बन रहा ये रोपवे एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। बनारस एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा शहर होगा जहां घनी आबादी के बीच लोग जल्द ही रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। रोपवे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। कैंट से गोदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। माना जा रहा है अगस्त से इसका संचालन शुरू हो जाएगा।
1: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है, क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहां पहुंचने वाले यात्री, तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
0: काशी की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक वाले शहर के विकास में गोंडोला राइड गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक की जिस दूरी को पूरा करने में अभी 45 मिनट का वक्त लगता है, रोपवे के जरिए उसे महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस आसमानी सफर से पर्यटकों को न सिर्फ काशी का विहंगम दृश्य दिखाई देगा, बल्कि काशी विश्वनाथ का दर्शन अब और भी आसान और सुलभ हो सकेगा।
2: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे, यहाँ पर आएंगे तब।
3: बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए।
4: रोपवे के साथ साथ हम लोग को तो बेनिफिट होगा ही, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बीमार लाचार हैं, जो महिला बच्चे हैं, उन लोग को रोपवे से आने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से दर्शन करेंगे, उनको किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होगा। हम लोग के साथ सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
5: सफर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी ज्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है, हम लोग आते हैं ना बहुत दिक्कत होती है। रोपवे से बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और ये सुविधा ज्यादा हो जाएगी।
0: करीब 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 5 स्टेशन होंगे, कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया। रोपवे पर करीब 150 गोंडोला होंगी जिनसे यात्री सफर कर सकेंगे। एक गोंडोला में एक बार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। हर घंटे रोपवे से तकरीबन 3000 यात्री सफर करेंगे। रोजाना करीब 1 लाख यात्री सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बड़ी बात यह भी है कि रोपवे की टिकट भी बजट फ्रेंडली रखी गई है। कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक अधिकतम किराया 50 रुपए होगा, जबकि हर एक स्टेशन के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए चुकाना होगा, जबकि पूरे गोंडोला की बुकिंग 2000 रुपए में की जा सकेगी।
6: इसमें आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से लेके गोदौलिया तक 50-50 रुपीज, अगर कोई यात्री यहाँ उतरते हैं और वहाँ उतरते हैं तो 50 रुपया का है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग हम, जैसे अगर आप विद्यापीठ में उतरेंगे 10 रुपया का है, तो ओवरऑल पूरा होल स्ट्रेस के लिए 50 रुपया है। अगर वहाँ पे स्मार्ट पास लेंगे, जैसे आप लोग मेट्रो में देखते हैं स्मार्ट मास्क पार्ट लेते हैं, तो हम लोग 20% वहाँ पे डिस्काउंट का प्रोविजन रखे हैं सरकार ने, और इसके लिए और प्रीमियम गंडोला का भी प्रोविजन है। कोई कलेक्टिवली किसी एक गंडोला को ये लेना चाहते हैं तो 2000 रुपया का उसका किराया निर्धारण की गई।
0: तो बस चंद दिनों का इंतजार, जब बाबा भोलेनाथ की ये प्राचीन नगरी आधुनिक तकनीक और सनातनी संस्कृति के अद्भुत मेल की गवाह बनेगी और वाराणसी के बाशिंदे से लेकर सैलानी तक रोपवे से इस आसमानी सफर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो

0: रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: और अब खबर उत्तराखंड में चल रही देवताल तीर्थ यात्रा की। भारत चीन सीमा पर स्थित माणा पास में 18,600 फीट की ऊंचाई पर विराजमान देवताल हिमालय की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है।
2: और देखिए, बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र सरोवर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पसंदीदा मंजिल बन चुका है। रोजाना 100 से 200 यात्री देवताल पहुंचते हैं।
3: देवताल, वो सरोवर, वो झील जहां देवता स्नान करने आते हैं। भले ही एक मान्यता है, लेकिन इसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आपका मन भी से मानने को कर जाएगा। चांदी से चमकते पहाड़, रूई के फाहों से बिछी बर्फ और आसमान से बातें करती हिमालय की चोटियां। नजारा ऐसा माने ईश्वर धरती और आकाश के बीच बैठा कोई पेंटिंग बना रहा हो। और ये जगह धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं। शांत, शीतल, सुंदर, मनमोहक, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं, बस सुकून है जो हर तरफ फैला हुआ है। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर बसा भारत का आखिरी गांव माणा, और माणा के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर है देवताल झील, देश की सबसे ऊंची झीलों में से एक, जो न केवल श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है बल्कि सैलानियों के लिए सुकून के कुछ लम्हे समेटने की सबसे सुंदर जगह है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर ये पवित्र सरोवर इन दिनों पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पसंदीदा जगहों में शुमार है।
4: 18,600 फीट की ऊंचाई पर देवताल, जो कि भारत चीन सीमा पर बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अब यहाँ तक मार्ग खुल चुका है। तो जो देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचता है, खासकर वो लोग जो भारत सीमा दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। अब रोजाना यहाँ पे जो ऑनलाइन परमिट है, इनर लाइन पास मिलता है यहाँ पे, खासकर अब जो उत्तराखंड सरकार है, जो प्रशासन है, उन्होंने इस नियम को बहुत ही आसान बना दिया है। ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में यहाँ तक जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुँचने लगे हैं।
3: देवताल सरोवर साल के करीब 8 महीने भारी बर्फ की चादर में लिपटा रहता है। इन दिनों भी एक तरफ सरोवर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, जबकि दूसरी तरफ नीला पानी आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। चारों ओर बर्फीली चोटियाँ, निर्मल पानी और नीरव वातावरण मन को मोह लेता है। देवताल केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, फिर भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पवित्र जल अपने साथ घर ले जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मन को अथाह शांति और सुकून मिलता है। मान्यता है कि सरस्वती नदी का उद्गम यहीं से होता है। देवताल से सरस्वती नदी माणा गांव के केशव प्रयाग तक स्पष्ट दिखाई देती है। केशव प्रयाग में सरस्वती अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। 1965 तक यहाँ पर आवाजाही आसान होती थी। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते थे, लेकिन भारत तिब्बत व्यापार बंद होने के साथ ही यहाँ आवाजाही मुश्किल और पूरी तरह बंद कर दी गई थी, जिस कारण पहले यहाँ पहुँचना काफी कठिन था। लेकिन अब भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की सीमा दर्शन योजना के तहत देवताल पर्यटन को बढ़ावा मिला है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इनर लाइन परमिट आसानी से मिल रहा है। परमिट के लिए मेडिकल चेकअप और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। जांच में फिट पाए जाने पर ही किसी को अनुमति दी जा रही है। परिणाम स्वरूप अब रोजाना 100 से 200 यात्री देवताल पहुंच रहे हैं। साल 2015 में पहली बार एक दल देवताल पहुंचा था। उसके बाद धीरे धीरे मार्ग और सुविधाएं विकसित की गईं। आज सीमा दर्शन योजना के अंतर्गत आम श्रद्धालु भी इस दिव्य स्थल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देवताल हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा अनमोल खजाना है जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चमोली से कमल लेंसरोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जीएनटी में आगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आकाशदीप की शादी के रंग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं गोलमाल। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand and you won't lose your fingers. Over 1,000 games including slots and live dealers. And $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अब खबर क्रिकेटर आकाशदीप की शादी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में टीम इंडिया के क्रिकेटर आकाशदीप विवाह के बंधन में बंध गए हैं। आकाशदीप की शादी डेरी के अक्षता राज से हुई है। वाराणसी के एक 5-स्टार होटल में शानदार समारोह में आकाशदीप और अक्षता की काफी धूमधाम से शादी हुई।
2: और इस हाई प्रोफाइल शादी में सिंगर एक्टर पवन सिंह समेत कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। वरमाला के बाद लोगों ने तालियां बजाकर दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें जारी हैं, हम देखते रहिए टीएनटी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
14: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
15: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
16: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
17: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
19: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
19: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देशभर की पवित्र नदियों में किया जा रहा है स्नान, सुख समृद्धि का मांग रहे हैं वरदान। निर्जला एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू, देशभर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त, बाबा श्याम का आम से किया गया लौकिक श्रृंगार। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर, मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इंतजाम। महाराष्ट्र के हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में हैंडवॉश, साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य, एफडीए ने जारी की गाइडलाइंस। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी, आदेश तत्काल रूप से लागू। दुबई के ज्वेलर हेमंत करमचंदानी ने बेटे की बनाई लेगो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हीरो से जड़ी ट्रॉफी में बदला, 18 कैरेट सोने में 900 हीरे जड़े, ट्रॉफी की कीमत 76,50,000।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़, स्नान दान और पूजा पाठ में लगे भक्त, सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है निर्जला एकादशी, श्री भीमसेनी एकादशी के नाम से भी मशहूर। बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का मिलता है पुण्य फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की उपासना से पूरी होती है मनोकामना, पांडवों से जुड़ा है इस एकादशी का इतिहास। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा पाठ। हरिद्वार में भी निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा पाठ किया। निर्जला एकादशी पर गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर तैनात दिखे एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय पुलिस। अयोध्या में भी निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई डुबकी, विधि विधान से की पूजा पाठ। निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम को 2 दिवसीय उनका मेला शुरू, देशभर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया लौकिक श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार, भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। खाटू श्याम मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भीड़ को देखते हुए रिंग से खाटू श्याम मार्ग को नो व्हीकल जोन किया गया घोषित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 260 सीसीटीवी कैमरे, 400 स्थायी सुरक्षाकर्मी के अलावा 600 सुरक्षा गार्ड व 500 होमगार्ड्स की तैनाती। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए पीने का पानी का भी इंतजाम किया गया, बड़े कूलर पंखे इत्यादि की व्यवस्था। गया में निर्जला एकादशी को लेकर विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद सहित कई जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में विष्णुपद मंदिर में पूजा करने आए, भगवान का आशीर्वाद लिया। निर्जला एकादशी पर 3 बजे से खुला विष्णुपद मंदिर के पट, रात भर जुट गए थे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में तैनात दिखे जवान, श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनी। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदंबनाथन मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। महाकुंभाभिषेकम में वेदों के मंत्रोच्चार और पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद मंदिरों में गोपुरम और मूर्तियों का किया गया शुद्धिकरण। महाकुंभाभिषेकम के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया मंदिर का गेट, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई के वरसिद्धि विनयगर मंदिर में महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। महाकुंभाभिषेकम के बाद वरसिद्धि विनयगर मंदिर में भगवान की उतारी गई आरती, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। शिक्षा की सफलता का मॉडल बना ये सरकारी स्कूल, हर सुविधा से युक्त, रिजल्ट भी रहता है खास। पंजाब के ऑब्जर्वेशन होम में पहली बार शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जेल पहुंचे बच्चे अतीत को पीछे छोड़कर बना सकेंगे अपनी नई पहचान। लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल की धूम चारों ओर, गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है आयोजन। हर साल जून जुलाई में हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, बौद्ध संस्कृति की दिखती है झलक। वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें वायरल। दिल्ली में स्लोवेनिया गणराज्य का दूतावास पर धूमधाम से मनाया गया स्लोवेनिया का राष्ट्र दिवस, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भोपाल में साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत, सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। दिल्ली में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हुए शामिल। वाराणसी में बन रहे लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का केंद्रीय मंत्री किंजपुराम मोहन नायडू ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अलवर के डीएसपी कार्यालय में घुसा 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर। रांची में नशा मुक्ति के संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन, मंत्री सुदीव्य कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जयपुर में सीएम अजय लाल ने 631 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा विकास की गति को मिलेगा रफ्तार। वाराणसी में इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट्स की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री किंजरपुर राम मोहन नायडू हुए शामिल। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का आनंद लिया। अब और आधुनिक और टिकाऊ होंगी दिल्ली की सड़कें, रेखा सरकार ने 658 करोड़ रुपए की लागत से 270 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास को मंजूरी दी। बिहार में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का होगा विस्तार, अब 12 शहर होंगे सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित। समस्तीपुर के प्रसिद्ध चकोटी मठ पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पूजा अर्चना कर राज्य में सुख शांति समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विष्णु महायज्ञ और संत महाकुंभ कार्यक्रम में भी हुए शामिल, सीएम श्री महाविष्णु जी के 24 अवतार धाम का किया लोकार्पण। क्रिकेटर आकाशदीप की शादी हुई संपन्न, वाराणसी में अक्षिता राज के साथ लिए फेरे, बिहार के रोहतास से धूमधाम से निकाली गई बारात। आगरमालवा में सलोनी जैन की शादी बनी चर्चा का विषय, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया विशाल आशियाना। छह मंजिला है पक्षियों के लिए बनाया गया आशियाने का नाम है टावर, इस मंजिल पर पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर, रोजाना डालने जाता है परिवार। हर मंजिल पर बनाई गई है एक छत जिससे पक्षियों को मिलती है छाव, साथ ही तालाब किनारे होने के कारण पक्षियों के लिए पानी की भी पूरी व्यवस्था। श्रद्धालुओं का विश्वनाथ धाम आना भी होगा आसान, वाराणसी में जल्द शुरू होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। मात्र 50 रुपए होगा वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक की यात्रा का किराया, काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी किराए में 20% की विशेष छूट। गोवा में धूमधाम से मनाया गया साओ जुआओ महोत्सव, शानदार डोंगी परेड का भी किया गया आयोजन। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में जुटे लोग, नाच गाने के साथ दिखा गोवा के लजीज व्यंजन का जायका। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है ये त्योहार, मॉनसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है ये पर्व। गोवा के पारुल विश्वविद्यालय में ग्रैंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। रायपुर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण, खिलाड़ियों को भी किया सम्मानित। राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले जय मुंदड़ा आयरलैंड की T20 क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में आयरलैंड की ओर से खेलेंगे। 26 और 28 जून को डब्लिन में भारत के खिलाफ मैच, आक्रामक बॉलिंग और शानदार बैटिंग के लिए जय का आयरलैंड की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन। टोंक शहर में रहने वाले उनके परिवार में खुशी का माहौल, मां ने कहा बेटे ने सच किया सपना। 28 साल के जय 2021 में एमटेक की पढ़ाई करने स्टूडेंट वीजा पर गए थे आयरलैंड, इसी दौरान वहां नौकरी की और साल 2025 में उन्हें मिली आयरलैंड की नागरिकता। बड़ोदरा के कवि दुला काग सरकारी स्कूल में सीटें फुल, लंबी वेटिंग लिस्ट, पहली पसंद बना सरकारी स्कूल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं गोलमाल। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
5: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
6: What you got for me, Jack?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Good news today.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और चलिए हम नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
8: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती है, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देश भर की पवित्र नदियों में किया जा रहा है स्नान, सुख समृद्धि का मांग रहे हैं वरदान। निर्जला एकादशी पर बाबू खाटू श्याम का दो दिवसीय मेला शुरू, देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त, बाबा श्याम का आम से किया गया लौकिक श्रृंगार। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सेंटर, मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इंतजाम। महाराष्ट्र के हर होटल रेस्टोरेंट ढाबे में हैंड वॉश साबुन और साफ टॉवल उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य, FDA ने जारी की गाइडलाइंस। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का ID प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी। दुबई के जूला हेमंत करमचंदानी ने बेटे की बनाई लेगो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हीरो से जड़ी ट्रॉफी में बदला, 18 कैरेट सोने में 900 हीरे जड़े, ट्रॉफी की कीमत 76,50,000 रुपए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं फिर एक बार हम सास बहू और पेटिया का ये फ्रेश एपिसोड। ओ माय गॉड, ये गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और जिस तरह गर्मी के इस मौसम में हमारी त्वचा को होती है सही देखभाल की जरूरत, उसी तरह टीवी की कहानियों में भी रिश्तों को है प्यार से सींचने की जरूरत। तो बस आप भी सनस्क्रीन लगाकर नकारात्मक ऊर्जा से बचें और सिंपल और सौम्य स्किन केयर यूज कर अपनी लाइफ को एकदम सरल बनाएं। आज तो शेयर करेंगे हम आपके साथ खुद स्किन केयर टिप्स, उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।

0: राधिका और वीर की हल्दी की रस्म में होगा नाच गाना। वीर और राधिका का शुरू होगा रोमांस।
1: दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया, हो तेरे आगे पीछे घूम।
0: होगा उड़ने की आशा और तुम वीरा साथ मेरा का महासंगम एपिसोड। जोड़ियों का दिखेगा धमाल।
2: अरे, अरे, अरे,
0: मुंबई जाएगी नयनिका, घरवाले करेंगे नया तमाशा। वसुधा के आचार के एड शूट में मॉडल बनेगी चंद्रिका। लास्ट शेफ के मंच पर आएंगे टीम खतरों के खिलाड़ी। और देखेंगे रियलिटी के सतरंगी रंग सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: पानी की पर्याप्त मात्रा तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है रिश्तों में बैलेंस। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है हमारी इस अगली कहानी में, जहां हो रहा है सॉर्ट ऑफ डिसबैलेंस। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली कहानी की ओर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
1: ओ साथी रे,
2: मुंबई चली नयनिका, टिन्नी हुई इमोशनल, घर में शुरू हुआ नया तमाशा।
3: मॉम एक सेल्फिश और मतलब इंसान है।
2: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका मुंबई जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सभी लोग पहुंच गए हैं उसे अलविदा कहने के लिए। असल में नयनिका ने ये सच नहीं बताया है कि वो मुंबई में अपना इलाज कराने जा रही है, क्योंकि उसे कुछ बड़ी बीमारी हुई है जो नयनिका ने सबसे छुपाई है। ऐसे में देखिए कैसे उसकी बेटी टिन्नी हो रही है इमोशनल, और बाकी घर वाले भी उसे विदा कर रहे हैं, और अपने दिल पर बोझ लेकर नयनिका मुंबई के लिए निकल पड़ी है।
4: नयनिका भी बहुत कश्मकश में है, क्योंकि वो चाहती है कि अपनी बेटी के लिए उसको थोड़ा और वक्त चाहिए। तो वो ये सोच रही है अभी कि अगर वो मुंबई में उसको एक दो दिन ऊपर लग जाएंगे तो अब वो घर पर क्या बोलेगी, क्योंकि जो उसकी माँ है और श्रेया है उनको तो यही लगेगा कि ईशान इसका फ़ैन है, ईशान के साथ बातचीत है। तो अगर ये लेट हुई तो वो ईशान के साथ ही घूम रही होगी, जबकि वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए और क्लिनिकली चेक करवाने के लिए वो हॉस्पिटल में उसको एक आधो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आगे कि एक्चुअली में क्या है, क्या वो रुक कर ईशान के साथ टाइम स्पेंड करेगी या फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे और ईशान उसके साथ रहेगा नहीं रहेगा। फॉर देट यू हैव टू वॉच सैराब।
2: वहीं दूसरी तरफ नयनिका के मुंबई जाने के बाद शुरू हो गया है घर में तमाशा, जहां पर देखिए कैसे इंद्राणी और श्रेया मिलकर भड़का रही है टिन्नी को उसकी माँ नयनिका के खिलाफ। लेकिन यहां टिन्नी भी अपनी माँ का साथ देते हुए उल्टा इंद्राणी को ही खरी खोटी सुना देती है और वहां से चली जाती है।
5: आप
3: क्या कहने की कोशिश करिए मम्मी, मॉम को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अचानक से इतना प्यार, इतना कंसर्न, पहले तो कभी भी आपने उनके बारे में नहीं पूछा।
5: पूरा दिन निकल गया और घर की बहू बाहर एक फोन करके बता तो सकती थी कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसे अकेले कभी नहीं पूछती।
3: एक सेकेंड, क्या कहा आपने? घर की बहू? किस घर की बहू बताइए मुझे। तुम्हें एक चीज समझ लीजिए, मेरी मॉम के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिएगा और ये शब्द तो दोबारा कभी यूज मत कीजिए। मेरी मॉम इस घर की बहू नहीं है, उसकी बेटी की एक वाइफ है। जब आपको ठीक लगे, आपकी सुविधा हो, अब मॉम को इस घर की बहू बना दीजिए, और जब सुविधा ना हो उन्हें ऐसा भेज देती है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, और किसी और को बेटे की वाइफ का दर्जा नहीं, ऐसा नहीं होने दू। बस
2: अपनी कोशिशें लगातार कर रही है इंद्राणी और श्रेया, और लगता है कि इन्हें मौका भी मिल गया है। असल में टिन्नी ने ईशान को फोन किया था, लेकिन ईशान ने टिन्नी को कई सारी बातें सुना दी हैं और टिन्नी को ये लग रहा है कि उस वक्त उसकी माँ नयनिका भी वहीं मौजूद थी जिसने इशान को कुछ भी नहीं कहा और अपनी बेटी के खिलाफ बातें सुन ली। ऐसे में टिन्नी काफी अपसेट है और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं इंद्राणी और श्रेया जो उसे भड़का रहे हैं उसकी माँ नयनिका के खिलाफ। और लगता है कि इंद्राणी और श्रेया अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गए हैं क्योंकि टिन्नी अब अपनी माँ नयनिका से नफरत करने लगी है। देखिए कैसे उसके बारे में गलत बातें कही जा रही है। टिन्नी को बाकी लोग समझा रहे हैं लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में इंद्राणी और श्रेया को तो मौका मिल गया है माँ बेटी को अलग करने का।
3: अकेला महसूस करती है मतलब उसके पास अधिकार है एक अनजान लड़के के घर में जाके रहने का? कैसी बातें कर रही हो जया? क्या ये इस घर का रिवाज है? ऊपर से बड़ी बड़ी बातें हैं। वो मेरा भाई नहीं दोस्त है। अरे कैसा दोस्त? शर्म आनी चाहिए उसे। वो एक ऐसे लड़के को दोस्त बनाना चाह रही है दीदी का दोस्त बनने का लायक। चलो छोड़ हमारी बातें छोड़ो, कम से कम उसे अपनी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए कि नहीं। और तब मॉप उसके साथ ही थी जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। क्या हाय वो मॉप छोटी बच्ची नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं कुछ करूंगी तब उसे समझ आएगा।
6: मॉम एक सेल्फिश और मतलब इंसान है। ईशान के पास दौलत शौहरत सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने खुद को उसके हवाले भेज दिया। तेरे कुछ गलत नहीं कहा मैं, जो बात मैं मॉम के साथ नहीं रहूंगी कभी नहीं। जिनके पास कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ऐसे कई औरतें होती है जिनके पास हस्बैंड नहीं रहते, उन्हें जीने के लिए, उनको लाइफ जीने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ती है? दोस्त बनाने की जरूरत पड़ती है? ऐसे तो मॉम को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अचानक से अभी उनको दोस्त चाहिए। मॉम सिर्फ मतलब ही नहीं बल्कि एक घटिया औरत है। मतलब उन्होंने मुझे पाता खोजा है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने का हक क्या है? वो मेरी माँ है, एक माँ अपनी बेटी को पालेगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
3: अरे प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, छोटो माँ अनुषा बोल रही है कि बेचारी परेशान है। बेटा उन्होंने जी उन्होंने कहा कि आपकी पेट के लिए फिक्र नहीं है। अनुषा बोल रही अब भी सपोर्ट में बात करेंगे आप।
2: यानी कि नयनिका को जिस बात का डर था वही हुआ। अब देखना होगा कि जब टिन्नी को सच पता चलेगा कि असल में नयनिका तो अपना इलाज करवाने गई है तब क्या होता है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: साफ और स्वस्थ त्वचा के लिए सही चीजों का संतुलन जरूरी है। उसी तरह हमारी टीवी की दुनिया में है प्यार तकरार इमोशंस ड्रामा का परफेक्ट मिक्स, जिसे लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जहां हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन लेकर आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
2: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज के बीच चल रही है शर्ट को लेकर खींचातानी। असल में ईशा जा रही है आईपीएस ट्रेनिंग के लिए, ऐसे में वो अपना सामान पैक कर रही है और उसी सामान के बीच वो रख रही है सूरज का शर्ट भी, जिसे देख लेता है सूरज। बस फिर क्या, सूरज ईशा से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन ईशा करने लगती है आनाकानी। भाई ईशा वो शर्ट तो इसीलिए रख रही है ताकि सूरज की याद आए तो उसकी शर्ट उसके पास ही हो, लेकिन उसी शर्ट को लेकर ईशा और सूरज एक दूसरे के साथ खींचतानी करने लगते हैं।
7: आज तुम दोनों मेरे हाथ से पिटोगे। एक आईएएस ऑफिसर है, दूसरी आईपीएस बनने वाली है। ये दोनों को बच्चों की तरह झगड़ना बंद नहीं हुआ।
8: ताइमा डांट लगाती है, ताइमा ईशा का सपोर्ट लेती है कि मेरी बेटी को दे दे शर्ट, ये ऐसे सब मत कर। तो वो कैसे अभी ताइमा का ईशा के तरफ झुकाव, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी से चेंज हुई और सबका इन्वॉल्वमेंट, सब आ रहे हैं। खुशबू भाभी प्राउड होकर ईशा से बातें कर रही है कि मेरी ननन ने इतना अचीव कर लिया, मैं बहुत प्राउड हूँ। आरव भी आता है, कहता है ईशा तेरा सपना था आईएएस ऑफिसर बनना, पापा कभी नहीं चाहते थे गुलाब सिंह का, क्योंकि शुरू से दिखा रहे ईशा को आईएएस बनना है, प्रोमो ये था। तो उसमें गुलाब सिंह कभी नहीं चाहते थे और मैं ईशा बन गई आईपीएस। तो उसी बीच ये सारे प्राउड मोमेंट्स जाते हैं, सब एक एक तोहफा ले आते हैं।
2: अब ताई माँ ने आकर ईशा और सूरज दोनों को ही फटकार लगा दी, लेकिन ईशा ने जाकर ताई माँ से अपने दिल की बात कही और बताया कि वो सूरज की शर्ट उसकी याद में रखना चाहती है। बस फिर क्या, ताई माँ ने खुश होते हुए सूरज के हाथों से वो शर्ट छीनकर ईशा को ही दे दी और ईशा का साथ देते हुए सूरज की क्लास लगा दी। ऐसे में सूरज ताई माँ का ये बिहेवियर देखकर हैरान हो रहा है।

0: आते टाइम देख रहे हो ना रिया काव्या, टाइम आपको जितना लाड प्यार करना था कर लिया हम सबसे, अब सारा लाड प्यार अपनी नई बिटिया रानी पर लूंगा।
1: अरे मैं भूल गई, ये अचार जीजी ने तेरे लिए दिया था लेकिन चुटकी ने मेरे बैग में रख दिया, अब ये ले जा लेकिन किसी को खिलाना मत समझी। हाँ ले रख ले।
2: भाई ताई माँ ने तो अपनी तरफ से ईशा को तोहफा दे दिया, लेकिन घर का हर एक सदस्य आ गया है ईशा को अपनी याद में अपनी तरफ से एक तोहफा देने के लिए, और ईशा पूरे परिवार का ये प्यार पाकर बहुत खुश हो रही है। खैर ईशा ने तो तैयारी कर ली है आईपीएस की ट्रेनिंग में जाने के लिए। इसी बीच वहाँ पर आ जाते हैं बाबूजी भी, जो आते के साथ ईशा को न सिर्फ आशीर्वाद देते हैं बल्कि देते हैं गुड न्यूज भी, जिसे सुनकर ईशा और सभी घर वाले बहुत खुश हैं।

0: तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है शो का। और इसी बीच पापा जी का भी सपना होता है कि वो स्कूल खोले, तो ईशा पूछती है पापा जी आपका सपना, क्योंकि वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ईशा तुम्हारा सपना पूरा हो गया और भी सारे सपने पूरे करो। तो उसी बीच वो अपने स्कूल का मुझे इनविटेशन लेटर देते हैं कि देखो मैं स्कूल खोलूंगा तो सबसे पहले चीफ गेस्ट तुम रहोगी, लिखा होता है उसमें IPS ईशा सिंह। तो ईशा भी इमोशनल हो जाती है कि IPS ईशा सिंह लिखा है, इतने सब खुश है। तो मतलब वो फैमिली हैप्पी फैमिली मोमेंट दिखाते हैं कि कैसे ईशा को भेज रहे हैं हॉस्टल, सब पैकिंग कर रहे हैं, सब पैकिंग वैकिंग में लगे हैं भेजने के लिए। तो ये एक हैप्पी मोमेंट, और वो कार्ड इसलिए देते हैं इन्विटेशन कार्ड।
1: कलर्स के सीरियल मन्नत में जल्द होने वाली है मन्नत और विक्रांत की मुलाकात। असल में मन्नत को जो नया बिजनेस

0: लिए मुंबई, और फिर आगे के हम डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे, राइट? कहीं मुंबई हो जाएंगे. ओके, थैंक यू.
1: तो नाउ शी इज़ कॉल्ड ओवर अंकित एंड द बिजनेस का जो भी उनका देख रेख कर रहे हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स विक्रांत, विच अभी मन्नत को नहीं पता. तो अभिमन्यू इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम, एंड उसमें उनकी जो वहाँ पे जो भाभी हैं जो स्वाति जी प्ले कर रही हैं, तो वो यू नो वो बताती हैं कि वो मन्नत को जानना होता है कि कौन कौन है फैमिली में, क्या क्या है. तो वो शी ट्राइज एंड आस्क, अरे आप तो हेल्दी लग रही हैं, बाकी सब भी हेल्दी हैं क्या? तो उसमें वो बता देती हैं कि ये तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं. तो उसमें बोलते बस एक अभिमन्यु ही है, तो ये बोल एक अभी ही है, तो ऐसे करके बोलती है. तो मन्नत को एकदम सडनली कुछ ऐसा फील होता है कि अभी अभी कौन, तो वो बताती है अभिमन्यु एंड ऑल दैट. So that's how it is. वहाँ पे वीडियो कॉल पे भी हल्का हिट एंड मिस है, बट देन मन्नत डिसाइड्स कि अब इनको बुला ही लेते हैं, देखते हैं कि कौन लोग हैं.
2: खैर, अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर मन्नत भी हैरान है, और अब तो वो भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन है अभिमन्यु. यानी जल्द ही मुंबई में जब समरागी अंकित और मान्यता अभिमन्यु आएंगे तो उनकी मुलाकात मन्नत से हो ही जाएगी. वहीं दूसरी ओर मान्यता का डर डर कर बुरा हाल हो रहा है. हाल ही में गुंडों ने घर पर मान्यता पर हमला किया था. हालांकि विक्रांत ने उसे बचा लिया है और उसे संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मान्यता अब भी डरी हुई है. ऐसे में समरागी भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मान्यता अपना डर अपनी बहन को बताती है कि उसे डर गुंडों का नहीं बल्कि अभिमन्यु की यादों से है. मन्नत ढूंढ रही है एक साल से, और विक्रांत को कुछ याद नहीं है. एंड एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, जैसे हमने देखा लीप के बाद जो विक्रांत है, जो अभिमन्यु है, वो बहुत ही यू नो डिफरेंट है विक्रांत के कैरेक्टर से. एंड एसेंस ऑफ विक्रांत तो डेफिनेटली होगा ही उनमें, बट जो उनका ढंग है और जो उनको कहा गया है कि उनकी कैसी यू नो कैसा उनका पूरा सराउंडिंग है, सब कुछ डिफरेंट है. तो उनको रिमाइंड कराना या फिर उनको बताना, उन कॉन्फ्रेंटेशन पहले तो देखना कि है, और अपने यकीन पे यू नो भरोसा होना कि यार सही था, सही वेट किया एंड ऑल दैट. सो एक्साइटिंग तो है, देयर आर लाइक इट्स नाइस, इट्स वेरी स्वीट आल्सो. खैर, समरागी ने मान्यता को समझा तो दिया है, और विक्रांत भी मान्यता से वादा कर रहा है कि उसे छोड़कर नहीं जाएगा. अब देखना होगा क्या मान्यता का डर जल्द ही यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि जल्द ही ये सभी मुंबई जो जाने वाले हैं. टीवी के सीरियल रिमझिम से सामने आया है हुनरहाली का वो वीडियो, जहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि हुनरहाली जो कि मोहिनी का किरदार निभाती है, वो सेट पर ऑफ कैमरा कितना मस्ती करती है, चाहे वो को स्टार्स हो या फिर हो प्रोडक्शन हाउस की टीम, सबके साथ उनका सबके साथ उनकी मस्ती जारी रहती है.
3: देख रहे हो, मोहिनी मैम का जादू और पावर, रानी सा है वो. चेंज करने के बाद मिलते हैं.
4: लाइट चली गई है, मोहिनी मैम का बाल टॉन्ग करना है, और मैंने मच्छर दादा को बोला क्योंकि मोहिनी मैम उनका ही सुनती है, उनको भी सुनना पड़ेगा.
5: मिरर के ऊपर इतने सारे डब्बे रख दिए हैं, देखो
6: मिरर जा रहे हैं.
5: गाँव टाइम है भाई, लाडले का आज निकलना है, उसको जन्मदिन है उसका, गाँव जाएगा.

0: जैसे लिड इंजन में वहाँ से पूरा
1: वो ऐसा
2: समझ गए आप लोग समझ गए मुझे तो नहीं आया समझ
3: भाई ये तो क्रू मेंबर्स के साथ हुनर हाली के तूतू मैमे वाले किस्से हैं, लेकिन अब देख लीजिए कि कैसे वो अपने को स्टार्स के साथ ऑफ कैमरा मस्ती करती हैं और सबकी फेवरेट है क्योंकि इनका बात बात पर शायराना अंदाज जो दिखाई देता है।
4: देख रहा
5: है हम एक थॉट में क्या बगला क्या करें जो बोलते गया है वो
6: भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है
2: हसीना होती है तो निकल क्या
4: गोद में जब होती है हसीना तो चेहरे पे आ जाता है पसीना जो आज हमारे लाडले के चेहरे पे आया जब उसके गोद में थी रिमझिम के रूप में
2: दादा मोहिनी मैम का फेवरेट खाना क्या है
7: अरे सोयाबीन चिल्ली है जी चाइनीज आइटम
2: चिल्ली यहाँ से
4: बोल रहे हैं बट अभी देखते हैं कि क्या याद आ रहा है आया ही नहीं देखा हमारे शाही पनीर बन रहे हैं यहाँ नमक थोड़ा और कर दो बहुत अच्छे अरे पराठे बनाते बनते तो एक अमली करते हैं पराठा किसको खाना है पहला जो है पराठे का पहला बाई आपको अपनी बहू को हमने स्वीकार कर लिया है वो उसके लिए भी एक ब्यूटी
8: आप सबसे बात करके आप सबको हमारी ऑफ स्क्रीन करती थे जो ये रूप मैडम ने दिखाई है हमारी सारी पोले खोली है जो ये रूप मैडम ने बिहाइंड द सीन्स की इनको शुक्रिया कीजिए इनकी वजह से सब कुछ आप तक पहुंचा है
9: अब खूबसूरत स्किन के लिए हंसना और तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है और हमारे लाफ्टर शेफ्स ऐसे ही मस्ती भरी डोज लेकर हाजिर हैं हमारे लिए वेल किचन में तो पक रही है एक हंसी वाली रेसिपी जो लेकर आएगी हमारी स्किन पर नेचुरल ग्लो तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको आपके फेवरेट लाफ्टर शेफ्स के पास और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग

0: लाफ्टर शेफ के सेट पर लगा खतरों के खिलाड़ी का तड़का। जी हाँ, इस हफ्ते कलर्स टीवी के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में खतरों के खिलाड़ी का इंटीग्रेशन हुआ। तो यहाँ पर आपको लाफ्टर शेफ के कलाकारों के साथ साथ खतरों के खिलाड़ी भी नजर आए, जिनमें शामिल थे अविनाश मिश्रा, रूहानिका धवन, अविका गौर, करण वाही और रुबीना दिलैक। पर ये सब इस साल खतरों के खिलाड़ी में दिखने वाले हैं और उसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका में पूरी हो गई है। अपने नए शो खतरों के खिलाड़ी को प्रमोट करने के लिए सब पहुंचे लाफ्टर शेफ के सेट पर, जहां पर सभी लाफ्टर शेफ से इंटरेक्ट किया।
1: लगा सनसेट है भाई तेरा, फुल सेट है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा।

0: is not true.
1: वैसे यहां पर ऋत्विक धनजानी है जो दोनों शोज में नजर आ रहे हैं। वैसे यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों शोज किए हैं। वैसे इस हफ्ते इन लोगों का कुछ खास स्वैग होगा, लेकिन सबका अट्रैक्शन का केंद्र थी भारती, जो हर बार हंसती मुस्कुराती नजर आई।

नजरिया। और इन सब के बीच में है तेजस्वी और करण, जो हर बार की तरह अपने कपल गोल्स लेकर सबको हंसाएंगे। तो उम्मीद है कि ये एपिसोड होगा मजेदार।

0: जिस तरीके से स्वस्थ त्वचा के लिए नियमित देखभाल जरूरी है, उसी तरह परफेक्ट डांस मूव्स के लिए मेहनत और अनुशासन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इंडियाज बेस्ट डांसर के इस मंच पर, जहां देखने को मिलेगा आपको एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट का परफेक्ट मिक्स। कैसे? ऐसे।
1: That's not true.

0: तुम्हारे जैसे लोगों के लिए।
1: अरे नानी जी, सत्रकाल सत्रकाल, कहाँ थी आप?
2: जी मैं जलंधर गई थी, मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरे को बड़े खुश हो के आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं।
1: कैसी हैं आप?
2: हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट।
1: ये वो निटिंग वाले?
2: हाँ, ये आजकल बहुत दूसरे तो फूल जो होते हैं वो तो मुरझा जाते हैं ना।
1: क्या बात,
2: ताजा। एक और बात है
1: जी जी,
2: और सोना जी बटके वाला छोटी सी आपकी देखी थी वीडियो उर्मिला जी के साथ, हमें लाइव देखना है हमने आपको अपने सामने।
3: बिल्कुल, चलिए।

0: It's not true. जैसे गर्मियों में त्वचा को सांस लेने की जरूरत है, उसी तरह हमारे सपनों को भी उड़ान की जरूरत है। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको उड़ने की आशा के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज। वेल, इस कहानी में भी कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है जो हमें इस कहानी से बांध कर रखता है। फिलहाल तो कहानी में आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, लेट्स चेक इट आउट।
1: साथ साथ आए साइली सचिन और अपराजिता रक्षित। दो सीरियल का हुआ महासंगम। अपराजिता को रक्षित से बचाती साइली। स्टार प्लस के दो दो सीरियल्स यानी कि उड़ने की आशा और ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा का हो रहा है महासंगम एपिसोड, जहां पर साथ साथ आ गई हैं ये दोनों जोड़ियां यानी कि रक्षित अपराजिता और सचिन साइली। असल में यहाँ पर एक डील साइन होनी है, साइली का फ्लोरल बिजनेस है और इसी की डील क्रैक करने के लिए रक्षित और अपराजिता यहाँ आए हैं। लेकिन इससे पहले कि ये डील होती और इनकी फॉर्मल मुलाकात होती, हो गया गोलमाल। असल में रक्षित और अपराजिता साथ आ ही रहे होते हैं कि अचानक अपराजिता की तबीयत खराब हो जाती है और ऐसे में रक्षित उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तभी वहाँ साइली आती है जो हो जाती है गलतफहमी का शिकार। उसे लगता है कि रक्षित अपराजिता को छेड़ रहे हैं और ऐसे में देखिए कैसे साइली का गुस्सा रक्षित पर फूट रहा है। हालांकि रक्षित उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साइली सुनने को तैयार ही नहीं। भाई साइली ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी रक्षित को खरी खोटी सुनाने में। इतना ही नहीं, उसने तो रक्षित को गुंडा भी कह डाला। भाई रक्षित उसे समझाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से अपराजिता भी बोलने की कोशिश कर रही है कि रक्षित उसके साथ ही है, लेकिन साइली तो साइली है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली। ऐसे में साइली सचिन को बुला रही है और साथ ही रक्षित भी चाहते हैं कि सचिन आखिर यहाँ आ ही जाए। तो फाइनली सचिन आ गया और वो भी हो गया गलतफहमी का शिकार।
2: थैंक गॉड बोला तुमने, इसके अंदर घुसने वाला।
3: आप
2: बात करूंगा।
1: लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, अपराजिता ने ये बता दिया कि रक्षित उसके साथ ही है और मामला सुलझ गया।
3: इनमें पहली बार अप्पू और रक्षित से हमारा इंटरेक्शन होता है। मुझे इतना पता था कि कोई बहुत बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं साइली से मिलने, एंड कुछ बिजनेस के मॉडल्स और सैंपल्स मैं उन्हें बनाकर दिखाती हूँ। सो दैट इज द होल थिंग। एंड मैंने देखा कि वो अप्पू परेशान हो रही, तो मुझे लगा कि रक्षित जी उसे परेशान करें। मुझे नहीं पता कि ये वही है जिन्हें मैं आज मीटिंग के लिए मिलने वाली हूँ। अब मैंने बहुत बुरा भला बोलना शुरू कर दिया उन्हें कि तुम ऐसे हो, लफंडर हो, लड़की छेड़ू हो एंड वॉट नॉट। एंड फिर सचिन को बुलाया तो केस की धुलाई करो, लड़की को छेड़ रहा है एंड ऑल दैट। अब उसके बाद थोड़ा टाइम क्या हुआ कि पता चला कि ये तो वही आदमी है जिसके साथ मुझे बिजनेस डील करनी है। एंड इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, बट देन आई एक्सप्लेन हिम व्हाट एवर आई हैव टू डू।
1: भाई मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब तक सचिन और साहिली को ये नहीं पता है कि जिनके साथ उन्हें डील करनी है वो कोई और नहीं बल्कि रक्षित और अपराजिता ही हैं। तभी तो जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो देखिए कैसे सचिन और साहिली उन्हें कोई और गुलदस्ता देते हैं, क्योंकि जो गुलदस्ता रक्षित को पसंद आया है वो तो उन्होंने बिजनेसमैन के लिए सजा कर रखा है जो कोई और नहीं बल्कि रक्षित ही है। और फाइनली गलतफहमियां दूर होती है और रक्षित बताते हैं वही हैं जो आए हैं यहाँ बिजनेस डील करने के लिए।
4: मैं तुमको क्या बोल रहे हैं, मैं टैक्सी की सचिन देशमुख, ये रावत मीने, ये गुलदस्ता इसने बनाया है। गुलदस्ता उनके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए अच्छा गुलदस्ता देंगे, अच्छे से मिलेंगे तो अभी अच्छा लगेगा सर। इसके लिए ये भी क्या होंगे,
5: क्या नाम लिखा है?

0: नहीं, अभी तो बिजनेस मीटिंग चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा इलेक्शन भी आ रहा है, जो प्रेसिडेंट बन रही है कुछ फूलों की एसोसिएशन का, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये काम मुझे मिले, ताकि मेरा थोड़ा नाम हो, लोगों को थोड़ा भरोसा और हो जाए, और फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ लोगों को।
1: तो भाई बिजनेस डील तो जब होगी तब होगी, फिलहाल तो बात करें बिहाइंड द सीन की, तो देखिए जब ये चारों मिले हैं तो शूटिंग के साथ साथ मस्ती भी चल रही है, तभी तो यहाँ लग रहे हैं ठहाके सीन के बीच में। भाई यही तो होते हैं पल जब एंजॉयमेंट के साथ शूटिंग भी होती है

0: तो फिर रक्षित और अपराजिता यहाँ से चले तो गए थे, लेकिन फिर एक बार अपराजिता लौट आई है। असल में अपराजिता सड़क पर किसी सोच में चल रही होती है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सचिन आकर उसे बचा लेता है और ले आता है अपने घर में साइली के पास।
1: वो मैडम ऐसी सड़क पर चल रही थी और साइली ने दूर से देखा गाड़ी एकदम ना रफ्तार रफ तेज आ रही है की तरफ। मैडम तो वो हेडफोन लगा के रखा था और एकदम कहीं सुन सुन सुन चल रही थी सड़क पे, तो साइली जैसे जैसे खींच रही है तो थोड़ा एक्सीडेंट होते होते रहेगा, तो मैडम के हाथ पे ना तो थोड़ा खरोच आ गया।
0: और देखिए कैसे साइली उसकी मरहम पट्टी कर रही है, साथ ही साथ अपराजिता साइली से अपने दिल का दर्द भी बांट रही है। भाई इन दोनों में तो सहेलियों जैसा रिश्ता बन चुका है।

0: इतना ही नहीं, अब तो रक्षित भी यहाँ आ गया है, यानी कि फिर एक बार ये चारों मिल गए हैं।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, टीम बहुत अच्छी है।
0: बारी आई अगले दिन की और देखिए कैसे अपराजिता और रक्षित कर रहे हैं साइली और सचिन को सपोर्ट। असल में साइली चुनाव लड़ रही है और उसके सपोर्ट में ये दोनों आ गए हैं। साइली के साथ साथ आज अपराजिता भी बन गई है महाराष्ट्रीयन लड़की, क्योंकि दोनों ने ही महाराष्ट्रीयन लुक जो अपनाया है, यानी कि साड़ी, नाक में नथनी, और पहुंच गई है अपराजिता अपनी नई दोस्त साइली को सपोर्ट करने के लिए। और सचिन के साथ रक्षित है। वैसे आपको बता दे, एक तरफ साइली है तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट चुनाव लड़ रही है मंदिरा। ऐसे में दोनों की टशने देखने लायक है। और आज है वोटिंग वाला दिन, यानी कि आज तय होगा कि साइली जीतेगी या फिर मंदिरा।
2: जब तुझे पता है कि तू हारने वाली है तो फिर क्यों आई है इधर? व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम।
0: और इन सब के बीच हो जाता है गोलमाल जब मंदिरा करती है चीटिंग और घूंघट ओढ़े कुछ लोग आते हैं वोटिंग करने के लिए। लेकिन ये तो लड़के निकले, वो भी मंदिरा की टीम के, जिसे रक्षित और सचिन दोनों ने ही पकड़ा और इनकी जमकर सभी ने धुनाई की।
3: मालूम है तेरे को कौन है ये लोग? नहीं मालूम है?
4: मुझे लगता है ये लोग वोट चोरी करने आए थे।
3: अरे कांटे वाली आंटी, तेरे को मालूम है कौन है ये लोग? नहीं मालूम है? मैं दिखा दे। इसके लिए वोट मिट डालने आए थे ये, भेज लेके क्या ऑफिसर साहब, तुमको कुछ मालूम ही नहीं है?
5: बहुत ही लाजवाब। इनफैक्ट स्वीति इज समवन जिसका काम मुझे हमेशा अच्छा लगा है, एंड आई मस्ट से, आई मीन इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जिस तरह की वर्क एथिक और जिस तरह की कमिटमेंट उनकी है काम को लेके, एंड द ओवरऑल वे दैट शी इज वेरी इज ट्रूली कमेंडेबल। मतलब बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही मिलजुल के काम करती हैं। And same with Shabir bhai, I think he's one of the most bindas people that I've met. मतलब जो उनके बारे में मैंने सुना था वो बिल्कुल सही है। In fact हम बहुत अच्छे से get along हुए, बहुत हमने bunkers की short के time, and I mean बहुत बहुत बहुत genuinely अच्छे और बहुत ही इजी गोइंग लोग है दोनों ही, तो बहुत मजा आया साथ में।
1: बहुत बहुत बड़े दिनों के बाद मैं महाराष्ट्र लुक में आई थी, नवारी पहना, और बहुत मजा आया मुझे। I really had a good time।
0: तो भाई वोटिंग में यहाँ फिलहाल तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक से अपराजिता की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में सचिन कहता है कि वो अपराजिता को डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसे में रक्षित और अपराजिता यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आएगा। तो भाई रक्षित और अपराजिता के जाने के बाद सचिन बाकी चीजों में बिजी हो गया था, लेकिन वहाँ किसी ने खेल कर दिया और साइली को मार दिया चाकू। ऐसे में दौड़कर सचिन साइली के पास गया है, लेकिन साइली घायल हो चुकी है।
5: उसके बारे में तो यही कहेंगे कि चाकू तो लग गया, अब ये चाकू लगने के पीछे की कहानी क्या है और क्या ड्रामा होता है इसके बाद, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि हमने शूट ही नहीं किया अब तक। मुझे पता नहीं इसके आगे क्या होता है, बट जैसे कि मैंने कहा, जब इंसान तरक्की के रास्ते पर होता है तो 100 दुश्मन होते हैं जो रास्ते में खड़े होते हैं, तो ये वही एक दुश्मन की निशानी है जो रास्ते में आगे खड़ा हो गया।
0: तो भाई अब देखना होगा कि साइली बच पाती है या नहीं, क्योंकि सचिन तो पता लगा कर ही रहेगा कि साइली को आखिरकार चाकू किसने मारा। तो अब देखते रहिए, कहानी में कई सारे ट्विस्ट और मोड़ आने बाकी है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: अच्छी अच्छी स्किन केयर तो हमें खुद से प्यार करना सिखाती है, और कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आते हैं यहाँ पर तुम हो ना के ये कंटेस्टेंट्स। अपनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर हम सबको इंस्पायर करते हैं और हमसे यही कहते हैं कि खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा तुम हो ना के इस मंच पर और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग।
7: जोरदार तालियां हमारी आज की सुपरस्टार्स सुधा चंद्रन जी, स्मिता बंसल, तनाज ईरानी और सुप्रिया शुक्ला जी के लिए।
8: हाय मम्मा, मैं जब छोटी सी थी तब से ही आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते आए हैं जहाँ सैटरडे और संडे शायद ही छुट्टी मिलता है।
9: मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कैमरे के आगे रहना, लेकिन मुझे लगता है ये किरदार निभाते निभाते कभी किसी की सास कभी किसी की माँ बनते बनते मैं एज अ मदर माई सेल्फ कभी कभी ऐसा लगता है शायद पीछे रह गई। एक बार जब मैं शूट से वापस आई तो मेरे वार्डरोब पे उसने एक नोट लिखा हुआ था, मम्मा आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। एक बार ऐसा हुआ, मैंने मम्मी जी को बोला कि मैं स्टाशा को ले जाती हूँ, सुला देती हूँ, स्टाशा मेरे पास आने से उसने मना कर दिया कि मैं दादी के साथ ही सोऊंगी। मेरे लिए तो मतलब वो इतनी बड़ी हार हो गई, मतलब वो गिल्ट रहेगा शायद पूरी लाइफ।
10: टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर है ऑल स्टेट्स में, तो ये आई थिंक सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल की है। रियल लाइफ हीरोइन तो मैं हूँ ही, लेकिन रियल लाइफ हीरोइन ये मेरे लिए गर्व की बात।
7: तो आप चैप्टर की बात खुली है सुधा जी, तो क्या लिखा था उन चैप्टर?
10: चैप्टर में मेरी कहानी लिखी गई थी और खास तौर से आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहानी बहुत ही जरूरी है। मैं डांसर हूँ, तो एक्सीडेंट के बाद जब मैंने अपना पैर खोया तो लोगों ने कहा सुधा कैसे तुम डांस करोगी।
7: किस उम्र में आपका एक्सीडेंट हुआ?
10: ये जब मैं 15 साल की। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि हम आपका पैर काट रहे क्योंकि गैंग्रीन सेट इन हो गया है। वहाँ के जो टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उन्होंने कहा अगर डांस नहीं है तो क्या। मैंने कहा डॉक्टर जब आप किसी चीज को खोते हो ना तब आपको पता चलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। 3 महीने में जयपुर फुट इन्वेंट हुआ, मैंने कहा बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जब मैंने डांस किया मेरे पापा आके उन्होंने मेरे पैर छुए, मैं अपनी बेटी के पैर नहीं छू रहा, मैं उस सरस्वती के पैर छू रहा हूँ जो मेरी बेटी के पैरों में विराजमान।
9: 21.5 में शादी हो गई थी हमारी, 22 साल में मेरी बड़ी बिटिया पैदा हुई थी।
7: मैं सुनाता हूँ।
9: हाँ, तो ये सुनाएंगे।
7: पटाने वाला मैं था एक्चुअली। मैं तो दिल्ली रहता था, वहाँ काम करता था। मैं एक प्रोजेक्ट हेड था एक सीरियल का, सो वो कास्टिंग हुई, ये मिलने के लिए आई, तो बस देखते ही मुझे लगा कि हाँ दैट दिस इज माई डेस्टिनी, शादी यही होनी है। मैंने तुरंत सबको बोल दिया कि तुम्हारी भाभी आ गई है। दिल्ली की बात। फिर हम लोग जब शूट के लिए निकलते थे तो एक मिनी बस में जाया करते थे। मिनी बस में ड्राइवर भी पूरा प्लांटेड था हमारा। मिनी बस में इनके साथ कोई नहीं बैठेगा क्योंकि लास्ट में मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा वहां पे। वापसी साथ में आए, ट्रेन से आ रहे थे तो मैंने प्रपोज किया। तो सीधा कहा कि भाई देखो तो तुझे शादी करना चाहिए, शादी तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, बट लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर था और हमारी शादी हो गई।
11: काम्या, अपनी गांव की सबसे ज्यादा क्या मिस करोगी मम्मी के बारे में?
12: उनके हाथ का खाना और उनके हाथ से खाना।
9: कहते हैं ना कि बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, हमारे होते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें पंख दे देने चाहिए, और ये हमें इतनी हिम्मत है कि हम इन्हें पंख दे पा रहे हैं कि ये अपने उड़ान उड़ सकते हैं।
11: मुझे लगता है कि जब एक माँ की बेटी जब जाती है दूर, शायद उन्हें लगता है कि मेरी एक फ्रेंड मुझसे दूर जा रही है, बट वो फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहेगी। एंड आई थिंक डॉटर्स आर देयर मदर्स बेस्ट फ्रेंड।
7: जोरदार तालियां हमारी आज की सुपरस्टार्स तनाज ईरानी और भक्तर ईरानी के लिए।
13: ये मैं टॉयलेट में लगाता हूँ लेकिन कभी लगाता नहीं हूँ।
14: टॉयलेट में लगाता हूँ कभी लगाता नहीं। टूथपेस्ट, टूथब्रश,
13: कोम, टूथपेस्ट टॉयलेट में लगाते। एक कट राजू वीरे ने डांस कर। हाँ, बस राजू वीरे ने डांस कर। ओके नाउ ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट,
15: सीधा सीधा,
13: बोथ हैंड्स सीधा, लेफ्ट
15: राइट राइट राइट
13: बिहाइंड स्टेम में। ओके, तू नाचियत कर, आखी जिंदगी नाचियत कर।
14: आई कांट हियर यू ओनली।
13: विमेन आर ऑलवेज राइट। 2005 में हम लोग मिले, रियलिटी शो किया। 2006 में उनके बर्थडे के दिन पे मैं तो ऑलरेडी घर के बाहर निकाल दिया गया था। मैं गाड़ी में रहा, दोस्तों के घर रहा। 8 अप्रैल को तनाज का बर्थडे था तो मैं गया। उस समय उनके घर वाले बोले इसको बाहर करो. So that day I was leaving and she caught me and she said मैं इसके साथ जाऊं. मैं हमेशा बोलता हूं मैं लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, लेकिन ये मेरी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट.
6: चलिए अब लेकर चलते हैं आप सबको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको कहानियों का टीआरपी मीटर. तो कौन सी कहानी ने ली है एक बड़ी छलांग, कौन पहुंचा है नंबर वन पर और कौन ड्रॉप हुआ है 5 से 10 पर. चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा यहां और दिखाते हैं आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग टीआरपी चार्ट.
0: गई है इस हफ्ते की टीआरपी चार्ट, तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते इस टीआरपी के रिजल्ट में क्या फेर बदल हुई है. तो भाई नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच गया है गंगा माई की बेटियां. स्नेहा और सिद्धू की शादी के बाद उनकी जिंदगी के ट्विस्ट लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं.
15: क्योंकि हमें नहीं पसंद है आपका कारोबार करने का तरीका. कि कौन सा तरीका है जो लोगों को टॉर्चर करता है. लोग छोड़ो, आपने तो हमारी माई को टॉर्चर की है वसूली के नाम पे. सली
16: आपकी और गंगा माई की दोस्ती की मर्यादा तेज प्रताप कब की हो चुका है.
0: नंबर टू पर है सीरियल वसुधा. भाई वसुधा में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. वसुधा की कहानी उसका बिजनेस वुमन बनना लोगों को खूब भाया.
15: भाई मारा राम जी, भाभी साहब पल में तोला पल में माशा है किसके टीम में यो समझ में ना आ रहा.
0: तीसरे नंबर पर है तुमसे तुम तक. भाई आर्या और अनु की शादी के बाद नए नए तमाशे हो रहे हैं जो देखना लोगों को पसंद आ रहा है.
17: चरण भैया
0: नंबर चार पर पहुंच गया है सीरियल नागिन 7.
18: सिर्फ मेरा
19: इस बार मेरी आग के सामने हर ताकत राख होगी.
0: नंबर पांच पर है क्योंकि सास भी कभी बहू थी अनुपमा और लाफ्टर शेफ.
20: मैंगो स्टिकी राइस.
21: वाओ, खत्म, गेम ओवर.
22: आपको लग रहा है हम खा पाएंगे?
23: ये रिस्क मैं नहीं लूंगा, पागल है.
0: छह पर पहुंचा है जगधात्री और तारक मेहता का उल्टा चश्मा.
24: वो रोकते नहीं उनको, उन्होंने तो कितनी बार कोशिश की पर बागेश्वर जी उनकी भी बात नहीं मान रहे.
25: तुमने पूछा नहीं मागा भाई से कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं?
24: मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत टेंशन है.
0: सातवें नंबर पर है उड़ने की आशा सपनों का सफर और ये रिश्ता क्या कहलाता है.
26: क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो?
27: पापा उदयपुर छोड़ के चले गए.
26: आप ये वीडियो देखो पहले.
28: फरमान पुत्र, हमारे लिए हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है ना. अभीरा को अकेला छोड़ दो. तुम्हारे इस प्लान की धज्जा नहीं उड़ाई ना तो मेरा नाम भी अभीरा शर्मा नहीं.
0: नंबर आठ पर है लक्ष्मी निवास और क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं.
29: And I'm sure reports तैयार नहीं हुई होंगी. फिर तुम वहां पर क्या कर रहे थे बताओ मुझे.
30: प्लीज सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा
0: हूँ. तो वही नंबर नौ पर पहुंच गए हैं तीन तीन सीरियल्स, उड़ने की आशा, बरेली के बच्चन और डॉक्टर आरंभ.
31: छोड़ के किसी पराए आदमी के साथ कहां चली गई यार.
0: तो वहीं दसवें नंबर पर है महादेव एंड सन्स, तुम देना साथ मेरा और मंगल लक्ष्मी. तो भाई इस हफ्ते तो टीआरपी की इस चार्ट में काफी फेरबदल हुई है और कई शोज टॉप 5 में भी आए हैं. अब देखना होगा अगले हफ्ते टीआरपी की इस चार्ट में क्या नए ट्विस्ट आते हैं और क्या फेरबदल होती है. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
6: अब यूं तो सूर्य की किरणों को हमारे लिए अच्छा बताया जाता है, लेकिन कभी कभी तेज धूप तो हमारी त्वचा को एकदम अचानक नुकसान पहुंचा देती है। और कुछ ऐसा ही होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जब आ जाती है वहां से चौंकाने देने वाली खबरें। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: शिवाय और आध्या की शादी के जश्न में एक खतरे ने दी दस्तक।
2: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। नजर डाल लीजिए दो दुनिया एक दिल के इस नए प्रोमो पर, जहां आध्या और शिवाय की शादी में आएगा किडनैपिंग वाला ट्विस्ट।

0: इतने साल हो गए अपने बच्चों से मिले हुए, अब वक्त आ गया है वापस उनके पास जाने का।
1: क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है 10 साल का लीप, और 10 साल बाद जेल से रिहा होकर घर वापसी कर रही है तुलसी। और देखिए कैसे घर आते ही उसने तमाशा देख लिया परिवार का।
2: इस तरफ ना तुम आ सकते हो, तुम्हारा ये शो बंद करो, ये सब
3: जितनी प्रॉब्लम है तो बंद कर लो अपने कान,
2: अब किसको गोली मारने आई, हर दिन मैंने यही दुआ मांगी कि आप जैसी माँ कभी किसी को नहीं,
0: ये बात
2: रुक जाइए, शांति निकेतन में अब आपके लिए कोई जगह नहीं,
1: लक्ष्मी निवास के सेट से देख लीजिए ये BTS नजारे, जहां पर शूटिंग भी चल रही है और मस्ती भी।

0: उसकी सवारी किधर जा रही है?
1: हो रहा है उड़ने की आशा और तुम देना साथ मेरा का महासंगम एपिसोड। ऐसे में देखिए कैसे कवर और श्रुति बना रहे हैं ये फन रील।
2: जा रही है
0: मसाला चाय पीने,
2: भूखी
0: भूखी मसाला चाय वाला तो फट से आउट, क्या बोले, एक नंबर है।
1: कलर्स टीवी के नए शो जूही मुई के लिए अप्रोच किया गया है कृष्णा सोनी को, जिन्हें आप पहले छोटी सरदारनी में देख चुके हैं।

0: तुम ठीक हो? तुम्हारे पापा का फोन आया था, उन्होंने याद दिलाया कि आज अष्टमी है, मैं एक कुमकुम ले आया था।
1: मुझे ना बहुत डर लगता है इन सपनों से, और पिछले कुछ वक्त से बार बार वो औरत मेरे सपने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सर।
0: हनु सपना ही था, तुम जो भी देखती हो, जिसे भी देखती हो, सब तुम्हारे दिमाग की बुनी हुई एक दुनिया है, सच कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।

0: हमारी पंचायत में सब लोगों को पता चल गया कि तुम ठाकुरायन दुर्गावती सिंह की बहू हो और नौकरी मांगने गई थी।
1: गंगा माई की बेटिया का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां दुर्गावती के गुस्से की वजह से हो गया है बवाल, लेकिन फिर भी स्नेहा नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। अब क्या होगा इसका अंजाम, ये देखना होगा।
2: नहीं आना चाहते आपके कारोबार में। हमारी माई ने कर्जा लिया है ठाकुरायन दुर्गावती जी से। माई ने जितना पैसा लिया है ना, उसका एक एक पाई लौटाएंगे सूद समेत आप। ये गंगा माई की बेटी स्नेहा कुमारी का वादा है। स्नेहा कुमारी का वादा था।
1: सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किए हैं ये नज़ारे, जहां वो अपने हस्बैंड जहीर संग मना रही हैं अपनी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी।

0: जिस तरह स्किन केयर सेल्फ लव की निशानी है, उसी तरह हमारी अनुपमा भी अपनी खुशियों और सम्मान को प्राथमिकता देना सीख रहे हैं। अनुपमा देखिए, अब सेल्फ लव तो बहुत ही जरूरी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है। वो अलग बात है कि हम अपनों के लिए खुद को भूल जाते हैं, लेकिन अब अनुपमा इस बात का ख्याल रख रही हैं। तभी तो बढ़ रही हैं वो अपनी जिंदगी में मुस्कुराकर आगे। लेकर चलते हैं आप सबको अनुपमा के पास।
1: अंश और प्रेरणा की मेहंदी में लगा डांस का तड़का, दिग्विजय संग अंश की दादी ने दिखाया जलवा, खुशी से झूम कर नाचे घर वाले, पुलिस के आने से लगा खुशियों पर ग्रहण।

0: स्टाफलेस के सीरियल अनुपमा में आज है अंश और प्रेरणा की मेहंदी। ऐसे में देखिए कैसे अनुपमा बा और बाकी के साथ लेकर पहुंच गई है मेहंदी, और देखिए कैसे पारंपरिक अंदाज में गरबा करते हुए वो मेहंदी की रस्म अदा कर रही है।
1: हाँ जी, तो हर गुजराती परिवार में ये एक प्रथा है, हम जब भी मेहंदी लगाते हैं या कोई भी शादी के फंक्शन करते हैं तो उसमें गुजराती में गाना गाते हैं, उसको कहते हैं गीत गावानू। तो हम सारी औरतें जो है घर की मेहंदी लेके आए, फूल लेके आए, जो भी डेकोरेशंस थे वो सब लेके आए और गीत गा रहे थे, गरबा नाच रहे थे, मज़ा आ गया।

परी के बोलने पर तो अनुपमा ने ब्रेक लगा दिया क्योंकि वो तो पहले रस्म करना चाहती है। ऐसे में घर में हंसी गूंज रही है क्योंकि घर में खुशियां जो आई है, लेकिन इन्हीं खुशियों में एक पल के लिए नजर लगने ही वाली थी जब परी गिरने वाली होती है, लेकिन दिग्विजय उसे संभाल लेता है यानी अपशगुन होने से रह जाता है। ऐसे में ये खुशियां और भी दुगनी हो जाती है। भाई मेहंदी की रस्म है, नाच गाना तो बनता है, इसलिए देखिए कैसे होने वाले दूल्हा दुल्हन यानी कि अंश और प्रेरणा अपनी ही मेहंदी की रस्म में डांस का तड़का लगाने लगते हैं और इसमें एक एक कर सभी लोग शामिल भी हो जाते हैं।

0: कलर का वैसे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बट सबने सेम ही डाला है, तो हमारे मोस्टली फंक्शंस में मैचिंग ही कपड़े पहनते हैं। मेरा आउटफिट बहुत अच्छा है, अंदर नॉर्मल कुर्ता पजामा है, ऊपर ये ओवरकोट है, और ये वैसे तो एक शेरवानी टाइप है, बंद भी होता है, बट मुझे ऐसे ओपन लुक दी गई है। बहुत कॉमन होता है ग्रीन कलर, और मोस्टली हर जगह वही यूज़ होता है, तो थोड़ा सा ये क्रिएटिव में हमारा कुछ अलग निकाला है, नहीं तो काफ़ी बेसिक हो जाता, वही मेहंदी पे ग्रीन और हल्दी पे येलो।
1: निशा मैम, करण, संयुक्ता मैम, हमारी जितनी भी क्रिएटिव टीम है, उन्होंने पूरा लुक क्रिएट करा है मेहंदी के लिए, और सबका कोठारी शाह सबका एक थीम है, सबने एकदम पर्पल कलर पहना है, बहुत सुंदर लग रहे हैं सबके सब, बहुत सुंदर लग रहे हैं
2: भाई। डांस का असली रंग तो तब जमता है जब सभी के साथ दिग्विजय को ले आया जाता है, और दिग्विजय भी खुशी से झूम उठते हैं। अब दिग्विजय यहाँ पर नाच रहे हैं तो भला अनुपमा कैसे पीछे रहती, भाई टशन दिखाना तो बनता है, इसीलिए देखिए वो भी पहुँच जाती है दिग्विजय संग ताल से ताल मिलाने और अपने डांस का टशन दिखाने पूरे परिवार संग।

0: डांस तो शाह परिवार का फोटे है, सबको नाचना सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। अब कोठारीज को भी हमने बदल दिया है, पहले उनको नाच गाने से बहुत दिक्कत थी, पर अब वो भी शामिल होते हैं सेलिब्रेशन में, खुल के नाचते हैं और सेलिब्रेट करते हैं।
1: अनुपमा और दिग्विजय ही नहीं बल्कि प्रेम और राही भी जमकर नाच रहे हैं पूरे परिवार के साथ।

0: वही खुशियाँ है ही ऐसी, लेकिन इनकी खुशियों में नजर लगाने के लिए वहाँ पर खड़ा है गौतम भी, जिसे इस घर की खुशियाँ देखी नहीं जा रही। और देखिए कैसे तभी झूमते नाचते घर में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि आ जाती है पुलिस अंश को गिरफ्तार करने के लिए।
1: ये
2: सब झूठ है अनुभव, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ये क्या कह रहे हैं आप?
3: रिपोर्ट किसने कराई है? हादसा हुआ कब?
2: हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया अनुभव सर।
4: देखिए गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
2: कौन सी लड़की, कौन लड़की?
5: ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि एक तो वैसे भी किसी के घर अगर खुशियां आई हो उसके उस टाइम पे अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो ऑब्वियसली आदमी थोड़ा बौखला जाता है। दूसरा, उसे पता है कि वो कभी गलत नहीं कर सकता, उसकी फैमिली को पता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। और ये जब सामने आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तब उसे समझ आता है कि ये किसी की चाल है। ऑल्दो ये नहीं पता लगता कि किसकी चाल है, बट उसे समझ आ जाता है कि ये उसे कोई फंसाने के लिए कर रहा है। अब ये प्रूव कैसे होगा कि हाँ वो सही है, प्रूव होगा भी या नहीं होगा, वो हमें देखना होगा।
6: हाँ, बहुत सारा ड्रामा होने वाला है अभी, ये बच्चे वाला ड्रामा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि परी का बच्चा गया, क्योंकि वो गिरी एकदम पेट के बल, बट सचिन जी जो हमारे हैं वो बचा लेते हैं। और उसके बाद फिर एकदम ही उसी के तुरंत बाद पुलिस भी आ जाती है अंश को लेने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा ड्रामा रिवील होने वाला है। तो ऑफकोर्स अनुपमा है, बिना मसाले के कैसे मजा आएगा।
7: यस, गौतम जी जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अंश और प्रेरणा की शादी ना हो, ताकि प्रांशी की जो कस्टडी है वो अंश और प्रेरणा को ना मिले। पर अब पूरा परिवार साथ है, जहाँ गौतम जी गलत होते हैं, कोठारीज भी अब बोलते हैं कि नहीं, यहाँ आप गलत हैं।
0: भाई अंश को तो घर वाले बखूबी जानते हैं, लेकिन पुलिस भी सबूत के साथ आई है, क्योंकि वो लड़की जिसने अंश के ऊपर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है, वो लड़की सभी घर वालों के सामने अंश को गुनहगार बता रही है। और अंश हैरान है, क्योंकि उसी लड़की की मदद अंश ने की थी बैचलर्स पार्टी के दौरान।
8: यही वो लड़का है जिसने मुझे मोलेस्ट किया है।
2: अरे क्या बोल, ये झूठ बोल रही है ये, तुम कैसे बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया
8: सर,
7: बच्चे बैचलरेट पार्टी मनाने गए थे, वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जहाँ अंश ने एक लड़की को बचाया एक लड़के से, तो उसने गौतम ने वहाँ पे फोटोज क्लिक कर दी एंड उसको गलत तरीके से पेश कर दिया। लड़की आ गई कह रही है इसने मुझे हैरिस किया। अब ये तो गलत है, बिना बात वो बस ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे और कैसे भी ये शादी तोड़ना चाह रहा है।
0: अनुपमा को तो पूरा यकीन है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अब उसे क्या पता कि ये सारा खेल गौतम का रचा हुआ है। हालांकि इसमें प्रेम सामने आता है जो अंश का साथ देता है, क्योंकि बैचलर्स पार्टी में प्रेम भी वहाँ मौजूद था।
9: इंस्पेक्टर साहब, अंश ने इस लड़की से कोई बदतमीजी नहीं की।
10: कोई सबूत है?
9: आपके पास क्या सबूत है कि इसने बदतमीजी की है?
0: खैर, पुलिस तो प्रेम की बात भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो सबूतों पर काम करती है और लड़की ने गौतम की मदद से पुलिस को सबूत दिए हैं। ऐसे में अब पुलिस अंश को गिरफ्तार करके ले जा रही है, सभी घर वालों के सामने वो अंश को घसीट कर ले जा रही है। फिलहाल तो मेहंदी की रस्म में लग गया है ब्रेक। अब देखना होगा कि जो अंश के ऊपर इल्जाम लगा है वो इल्जाम अंश के ऊपर से कैसे हटेगा और कैसे होगी प्रेरणा अंश की शादी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
11: नेचुरल ब्यूटी की सादगी अपनी अलग ही पहचान लेकर आती है। कुछ ऐसी ही अलग पहचान है यहाँ पर हमारी वसुधा की। एक्चुअली देखिए, इनकी सादगी हमें इनकी तरफ ट्रैक करती है ना, तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। वेल, इनकी कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। लेट्स चेक इट आउट।
0: चंद्रिका बनी देसी मॉडल, दादी की रोक टोक, वसुधा की परेशानी, टीवी के सीरियल वसुधा में आज चंद्रिका ने साड़ी छोड़ पहन लिया है देसी रजवाड़ी अंदाज और देखिए कैसे साज श्रृंगार कर वो पहुंच गई है सभी के सामने। ऐसे में चंद्रिका के पति देव तो अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर फिदा हो रहे हैं, शायरियां कर रहे हैं और तो और उसे ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं। असल में चंद्रिका बन गई है वसुधा के ब्रांड की एम्बेसडर और आज हो रहा है वसुधा के ब्रांड का एड शूट और उस एड शूट के लिए चंद्रिका पूरी तैयार होकर आई है और देखिए कैसे वो पहुंच गई है वसुधा के अचार का एड शूट करने के लिए, जिस पर चंद्रिका की सासू माँ बार बार रोक टोक कर रही हैं।
1: एक बार जबान में चढ़ गई, मन में घर घर की पसंद वसुधा का रजवाड़ी, एक बार जबान में चखा और मन वही आया, घर घर की पसंद वसुधा का रजवाड़ी
12: मॉडलिन ने लाइन गलत बोली है। कंपनी का नाम जो है ना वसुधा का रजवाड़ी चटका ना है, सिर्फ रजवाड़ी चटका है।
1: वसुधा, हमने तुम्हारे ब्रांड के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दिया, तुम्हें कोई दिक्कत
12: नहीं? आपने जो कह दिया वो हमारे लिए आखिरी वचन है देवी को।
1: इसका मतलब हमें दूसरा शॉट देने की जरूरत है। आप सबको
13: मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। यूजुअली मुझे ज्वेलरी पसंद नहीं है, फिर भी मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है जो नेक पीस वगैरह है, तो इसीलिए मुझे ड्रेस अप करके बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। ये ख़ास ये है कि ये वसुधा का जो अचार का ब्रांड है रजवाड़ी चटका, उसके लिए अभी मुझे माजीसा ने फेस बना दिया है मुझे उस ब्रांड का, और उसके लिए उनको बहुत ही ट्रेडिशनल लुक चाहिए, सो उन लोगों ने इसीलिए सब कुछ ट्रेडिशनल ही रखा हुआ है। कपड़े भी ऐसा है, यूजुअली मैं साड़ीज पहनती हूँ एस चंद्रिका, पर वो नहीं है, पर लहंगा चोली पहना है।
0: भाई वसुधा तो चंद्रिका की हर बात पर हाँ ही बोलती है, ऐसे में चंद्रिका वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी दादी ने आकर चंद्रिका को रोक लिया और तो और उन्होंने लाइन को लेकर भले ही कुछ ना कहा हो लेकिन चंद्रिका की एक्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इस पर वसुधा भी दादी को रोकने की कोशिश कर रही है, पर दादी उन्होंने तो तय कर लिया है कि वो चंद्रिका को सबक सिखा कर ही रहेंगी। तभी तो देखिए कैसे चंद्रिका के कहने पर वो पहुंच गई हैं एड शूट के लिए एक्टिंग करके दिखाने के लिए।
14: छोरी देख, बूढ़ी हो गई हूँ पर अंधी ना, और भगवान ने ना थोड़ी घड़ी अकल भी दे रखी है हमारे को, तो इतनो तो समझ में आवे कि थारो अचार जो है वो चम्मच कांटे से खाने वाले लोग ना खावेंगे, हाथ से चटकारे लेके खाने वाले लोग खावेंगे। और इसको चटकारो जो थो ना उसमें सैरी में दिक्कत थी, इसलिए इसने बोल कि फिर से कर।
1: हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं माता से, एड शूट हमेशा हमेशा क्लाइंट के हिसाब से होना चाहिए। हम फिर से शॉट लेंगे, बस आप हमें बता दीजिए कि ये चटका कैसे
14: है। अच्छा जी, हाँ चल जरूर सिखाऊंगा मैं तारे को, है कैसे अचार खावे हैं, चल सीख। तो ये है बाटल, इसने खोला और चम्मच से खावे, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इसने यूं निकाला और ऐसे चखना है। बोल, कर पावेगी ना? आ जा।
15: ना दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत है, हमें पहली बार में भी बेहतर से भी कहीं ज्यादा अच्छा फोटो मिला है।
14: तो
16: दादी पीछे पड़ गई है। उनका भी एक रीज़न है कि वसु के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो उनको नहीं समझ में आ रहा, तो वो उन दोनों की बॉन्डिंग के लिए ये काम कर रही है। वो

0: शूट करवा रही हूँ इसके अचार के लिए, और चंद्रिका से करवा रही हूँ क्योंकि चंद्रिका एक अपने रसूख वाली औरत है, उसको अपने रसूख से नीचे लेके आना मतलब ये कि बहुत बड़ी बात है।
1: केवल चंद्रिका और वसुधा को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी पता चल गया है कि दादी चंद्रिका को ह्यूमिलिएट करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए चंद्रिका ने अपनी सासू माँ की बात को माना और फिर से एड शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन दादी वहाँ पर भी पीछे पड़ गयी।
2: हाँ, मैं तो अच्छे से ही प्रमोट कर रही थी, पर माजी सा खुश नहीं है। वो बार बार कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करके बोल रही है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो लास्ट में मुझे भी गुस्सा आता है। मैं बोल रही हूँ बस इससे अच्छा और मैं नहीं हो पाएगा। वेरस पहले शॉट में ही पूरी क्रू को और वसुधा को पसंद आ गया था, पर माजी सा को पसंद नहीं आ रहा था।
0: मुझे पर्सनली लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, इतना थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑडियंस को हमारी कोई ये सास बहू का लड़ाई झगड़े बहुत पसंद है। और हाँ, एक बात और है कि इस झगड़े में थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी है कि ये मज़े भी आते हैं, बीच में इसको मार दिया उसको मार दिया, मतलब एक जगह अगर गुस्सा है तो एक जगह कॉमेडी भी चल रही है, तो पूरी तरह चटनी अचार कैरेक्टर है ये, तो उस वजह से हम एंजॉय कर रहे हैं इसको। और फोटोशूट चल रहा है, वसुधा का काम तो आगे बढ़ेगा।
2: एक्चुअली चंद्रिका कभी भी वसुधा के अगेंस्ट है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है, उसके तरीके अलग है करने का, वो बहुत ज़्यादा खुद स्ट्रांग है, इसलिए वो चाहती है कि वसुधा भी स्ट्रांगली सीखे, चीज़ों को करेक्टली सीखे, मतलब इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करती है चंद्रिका, तो इसीलिए ही उसने सब कुछ अकेले उसको करने को कहा, मतलब प्रूफ करो कि कर सकती हो, और वो चाहती भी है कि वो करे, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती, इसीलिए हर्डल्स भी ला रही है ताकि वो देखने के लिए वो कैसे उसको सॉल्व करती है।
1: भाई दादी ने तो तय कर लिया है कि वो चंद्रिका की परीक्षा पर परीक्षा लेती रहेंगी, और घर वाले भी दादी की इस हरकत से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब दादी ने फैसला कर लिया है कि वो चंद्रिका के साथ नई मॉडल लेकर आएंगी। अब ये नई मॉडल कौन होगी देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: घर की देखभाल हो या त्वचा की, निरंतर प्यार और ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आज यही मैसेज लेकर आई हैं हमारे लिए हमारी लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी भी तो कुछ ऐसा ही करती हैं ताकि लक्ष्मी निवास यूं ही बना रहे, आई मीन एक फैमिली स्प्लिट ना हो, यूं ही हमेशा हर सिचुएशन में ये दें एक दूसरे का साथ। अब थोड़ी बहुत नोक झोंक तो किसी भी फैमिली का पार्ट है। लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर।
4: देखा तेनु पहली पहली बार वे होने लगा।
1: वीर और राधिका की हल्दी की रस्म में लगा रोमांस का तड़का।
4: की हो गया दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया हो तेरे अग्गे।
1: करीब आ रहे हैं राधिका और वीर।
4: जदों तेरे हाथ चुम्मे सो
1: की रस्म में हुई दादी और मीनाक्षी को खुजली।

0: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में चौहान हाउस में शुरू हो गई है वीर और राधिका की हल्दी। ऐसे में राधिका तैयार होकर जैसे ही सभी की नजरों के सामने आई तो किसी और की नजरें टिके न टिके, लेकिन वीर की नजरें राधिका पर ही टिक गई और देखिए कैसे वो दीवानों की तरह राधिका के साथ ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर हल्दी की रस्म है, वीर हल्दी लगाने के लिए अपनी जगह पर बैठ भी जाते हैं और उनका उतावलापन देखकर तो लग रहा है कि जनाब बहुत खुश है।
1: सब एक्साइटेड हैं, उन दोनों की हल्दी है, वीर तो सुपर एक्साइटेड है और जैसा आपने देखा एकदम छलांग मार के बैठ गया अपनी हल्दी वाली पोजीशन।

0: पे अपनी ब्राइड की वेट कर रहे हैं, राधिका की वेट कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर रोमांटिक सीन होता है दोनों के बीच में। पहले तो क्या होता है कि चौहान वाले नर्मदा दादी हमारी हमें मना कर देती हैं कि लड़के को अलग हल्दी लगेगी, लड़की को अलग लगेगी, वो उनका कुछ पीछे मोटिव होता है उसके। बट रिचुअल ये है कि लड़के की उतरी हुई हल्दी लड़की को लगती है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि लड़के की उतरी हुई हल्दी लड़की को लगनी चाहिए। खैर वो माने नहीं।
1: भाई वीर के घर वाले तो मौका ढूंढ रहे हैं कि इस शगुन में कैसे भी करके एक न एक अपशगुन लाया ही जाए, लेकिन किस्मत वीर और राधिका के साथ है। तभी तो देखिए कैसे नाचते वक्त जब दूल्हा और दुल्हन एक ही जगह पर पहुंचे तो राधिका गिरने लगी और वीर ने उसे संभाल लिया और जाने अनजाने वीर के गालों की हल्दी राधिका के गालों पर जा लगी और दोनों के बीच रोमांटिक समा भी बन गया।

खैर, हिचकिचाते हुए राधिका ने अपने आप को संभाला और वीर के दोस्तों ने वीर को चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन भागा दौड़ी में जैसे ही वीर गिरने वाला था तो राधिका ने उसका हाथ थाम लिया और फिर से इनकी नजरें टकरा गई। अब जिस तरह से राधिका ने वीर को थामा हुआ है, वीर को तो लगा कि उसे कामयाबी मिल रही है। लेकिन तभी राधिका ने वीर से अपना हाथ छुड़ा दिया और जनाब सीधे नीचे जा गिरे, लेकिन फिर भी प्यार की दुनिया में गुम रहे।

0: मर जाने फिर जाने का नाम ही तो रिश्ते बन अरे प्यार में दिल टूट जाए
1: चाहे तो कमर टूट जाए
2: क्यों वाह कमाते
0: कमाता रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए ना तो भी हम कमर जी बना
3: के लिए इसी बात पे चलते
4: हैं। पहली बात तो ये शादी जो है मेरे मम्मी पापा ये चाहते थे कि वीर की शादी जहाँ तय है वहाँ पे शादी हो, और वीर ने अचानक से शादी तोड़ दी। वो दूसरी बात ये है कि हम लोग इतना रो रहे हैं, मेरी मम्मी रो रही हैं, पापा परेशान हैं, दादी की तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन वीर जो है सिर्फ राधिका के बारे में सोच रहा है। तो फिलहाल मुझे जो है ना चिढ़ हो गई अंदर से, मुझे लग रहा है कि चल क्या रहा है ये वीर के दिमाग में। वीर जो एक अलग ही लड़का था, जो माँ बाप पे जान छिड़कता था, बहन का कहना मानता था, वो आज की डेट पे पूरी तरह चेंज हो गया है। तो मैं इस बात पे भड़की हुई हूँ कि ये पूरा जो ब्रेन वॉश है वो राधिका ने किया है, और मैं नहीं चाहती कि राधिका के साथ शादी हो, इसीलिए मैं बहुत भड़की हुई हूँ। और आप देख सकते हो सीन में कि मैं प्रॉपर भड़की हूँ।
5: अब वीर के घर वाले राधिका से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन राधिका जो कि वीर से इन दिनों नाराज है, उसका दिल भी कहीं ना कहीं वीर के लिए धड़कने ही लगा है। खैर, राधिका की हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। सभी परिवार वालों ने एक एक कर राधिका को हल्दी लगानी शुरू कर दी। लेकिन इस हल्दी की रस्म में ट्विस्ट तब आया जब वीर की दादी जाने लगी, और वीर ने अपनी हल्दी की रस्म के लिए अपनी दादी को रोक लिया ताकि वो अपनी दादी के साथ हल्दी खेल सके, लेकिन दादी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि हल्दी में खुजली वाला पानी मिला जो है, और ये बात चंपा और रेवती को पता चल गई है। तभी तो दोनों इशारों ही इशारों में इस खेल का मजा ले रही है।
6: जी दुनिया कहाँ कहेगी कि नर्मदा देवी अपने पोते की हल्दी से डर गई?
7: सही भैया, इसमें से लगाइए ना।
8: ए लाओ लाओ लाओ हल्दी।
9: अरे हम
8: राजी वाले।
9: अरे नहीं लगाना है।
8: अरे कुछ
9: लगा कर रहे हो तो
8: अरे कर रहे हो लगा। अरे अरे अरे अरे
9: अरे कुछ छोड़ो ना।
8: अरे समझ नहीं
7: और लगाइए।
9: अरे अरे समझ में नहीं आ रहा बात का। हम कह रहे हैं हमको हल्दी ना लगानी है तो ना लगानी है।
4: माही ने हल्दी में खुजली वाला पानी मिला रखा है, और चंपा भाभी और मुझे पता चल गया। चंपा भाभी को पहले पता चला, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा इन्होंने यू नो कर दिया है हल्दी में।
10: तो बस मैं जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, ओह माय गॉड, तो ये माही क्या मिला रही है उसमें। तो मैंने देखा बॉटल में खुजली वाला पानी, मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है?
11: बिल्कुल।
10: तो फिर मैंने तो मैंने वो देखा, और वो आपको फ्लैशबैक में देखने मिलेगा कि मैंने क्या किया, बट मैंने उनको प्रोटेक्ट कर लिया खुजली लगने से। और फिर मैंने बोला इनको इनकी तरीके से सबक सिखाते हैं, फिर जिसने वो सब किया था दादी माही उन सबको ही वो लगवा दिया, और साथ साथ मीनाक्षी दी को भी।
5: अब वीर ने तो अनजाने में खुजली वाली हल्दी दादी को लगा दी, और तो और हल्दी गिरते वक्त जाकर सीधा माही के हाथ में भी लग गई, और खुजली वाली हल्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि दादी और माही दोनों ही परेशान होने लगी।

0: वहीं दूसरी ओर रेवती और चंपा ने मीनाक्षी को भी सबक सिखाना चाहा। तभी तो देखे कैसे रेवती मिलावटी हल्दी लेकर पहुंच गई मीनाक्षी के पास उसे लगाने के लिए।
1: मीनाक्षी दीदी, आप जो यहाँ पर अलग से खड़ी हैं, अरे आपकी बहन की हल्दी है, आप भी मजे कीजिए ना। मजे
2: समय ना पीक ऑफ द एंटरटेनमेंट चल रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। अगर आपने एक बार खोला और ये शो देखा तो आप इस शो को बंद करके कहीं और जा ही नहीं सकते। एंड यू शुड वॉच इट, क्योंकि शो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं इस पर काम कर रही हूँ, ऐश्वर्या हूँ, इसलिए नहीं कह रही, बल्कि मैं जेन्युइनली ये बात फील करती हूँ एज एन ऑडियंस भी। मैं कई बार जो सीन्स हैं, जो शो है, वो एकदम से एक टक देखती रहती हूँ। तो आप भी देखते रहिए और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, और बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है।
0: अब जैसी करनी वैसी भरनी, मीनाक्षी को सबक मिल ही गया, क्योंकि उसे भी जबरदस्त खुजली जो होने लगी।

0: खैर राधिका अपनी हल्दी की रस्म में परेशान है क्योंकि उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर टिकी हुई हैं और उसे इस तरह परेशान देख रहा है वीर भी, और वो भी हैरान है कि आखिर राधिका किसका इंतजार कर रही है। खैर अब ये परेशानी क्या है, वीर इसका पता लगा कर ही रहेगा। फिलहाल तो जनाब निकल पड़े हैं अपनी शादी के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि दूल्हे राजा को सहरा जो पहनना है। मुंबई से कैमरामैन अजय उगरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: तो स्वस्थ और सुंदर त्वचा का एक ही है राज कि आपको करनी है अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल। एक तो गर्मियों के इस मौसम में आप सनस्क्रीन लगाएं, सौम्य प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने को अच्छे से हाइड्रेट रखें, क्योंकि जितने अच्छे से आप अंदर से रहेंगे हाइड्रेट, उतनी ही ऊपर से आपकी स्किन करेगी ग्लो। लेकिन अब तो वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर स्किन। बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा वायुसेना में शामिल भारत की रक्षा प्रणाली को बनाएगा मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूत। भारतीय अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख, अमेजॉन भारत में करेगा $48 मिलियन का निवेश 2030 तक, एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में करेगा सहयोग। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का आईजी प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी, आदेश तत्काल रूप से लागू। हैंगआउट के लिए कोटा का सिटी पार्क बना छात्रों की पहली पसंद, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र यहां आकर बता रहे हैं सुकून के पल। निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देशभर के पवित्र नदियों में किया जा रहा है स्नान, सुख समृद्धि की मांग रहे हैं वरदान। निर्जला एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू, देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त, बाबा श्याम का आम से किया गया अलौकिक श्रृंगार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: मुंबई में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव। वाशिम में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। जलगांव में भी जोरदार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। अमरावती में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, निचले इलाकों में भरा पानी। अकोला में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 से 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। इंदौर के कई इलाकों में जमकर बरसे बदरा, सड़कों पर भरा पानी। एमपी के खरगोन में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से बाजारों में बाढ़ जैसे हालात, कई दुकान पानी में डूबे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। दार्जिलिंग में भारी बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा। भूस्खलन के चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद, सिक्किम और कलिम्पोंग से संपर्क टूटा। भूस्खलन के बाद प्रशासन सख्त, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। जम्मू कश्मीर की रियासी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। आज है निर्जला एकादशी, पवित्र नदियों के किनारे उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। स्नान दान और पूजा पाठ में लगे भक्त, सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है निर्जला एकादशी, तो वहीं भीमसेनी एकादशी के नाम से भी है मशहूर। बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का मिलता है पुण्य फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की होती है प्राप्ति। भगवान विष्णु की उपासना से पूरी होती है मनोकामना, पांडवों से जुड़ा है इस एकादशी का इतिहास। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती उतारी, विधि विधान से पूजा पाठ। हरिद्वार में भी निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा पाठ किया। निर्जला एकादशी पर गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर तैनात नजर आई एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय पुलिस। अयोध्या में भी निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई डुबकी, विधि विधान से पूजा पाठ। निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम का 2 दिवसीय मेला हुआ शुरू, देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त। बाबा श्याम को गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया अलौकिक श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार, भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। खाटू श्याम मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भीड़ को देखते हुए रिंगस से खाटू श्याम जी मार्ग को नो व्हीकल जोन किया गया घोषित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 260 सीसीटीवी कैमरास, 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 सुरक्षा गार्ड और 500 होम गार्ड्स की तैनाती। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए पीने का पानी भी इंतजाम किया गया, बड़े कूलर, पंखे और कई व्यवस्थाएं। गया में निर्जला एकादशी को लेकर विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद सहित कई जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया। निर्जला एकादशी पर 3 बजे से खुला विष्णुपद मंदिर के पट, रात भर जुट गए थे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में तैनात नजर आए जवान, श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल देखने को मिला, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कदमनाथ मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। महाकुंभ अभिषेकम में वेदों के मंत्रोच्चार और पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ मंदिरों के गोपुरम और मूर्तियों का किया गया शुद्धिकरण। महाकुंभ अभिषेकम के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया मंदिर का गेट, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तमिलनाडु के मेला दुथुराई के वरसिद्धि विनय नगर मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम का अनुष्ठान हुआ, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाकुंभ अभिषेकम के बाद वरसिद्धि विनयगर मंदिर में भगवान की उतारी गई भव्य आरती, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। शिक्षा की सफलता का मॉडल बना सरकारी स्कूल, हर सुविधा से लैस है, रिजल्ट भी रहता है खास। पंजाब के ऑब्जर्वेशन होम में पहली बार शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जेल पहुंचे बच्चे अतीत को पीछे छोड़कर बना सकेंगे अपनी नई पहचान। लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल की धूम देखने को मिली, तो वहीं गुरु पद्मा संभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है आयोजन। हर साल जून जुलाई में हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, बौद्ध संस्कृति की दिखती है झलक। वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें वायरल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरा पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
2: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: No.
4: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh, my God.
7: It's got to be deliciously desperate.
4: Why do these girls forgive him?
8: Well, she has a soft spot for troubled men.
7: Boo, bloody hoo.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
4: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र वायुसेना में शामिल भारत की रक्षा प्रणाली को बनाएगा मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूत। भारतीय अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख, अमेजॉन भारत में करेगा $48 मिलियन का निवेश, 2030 तक AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में करेगा सहयोग। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का ID प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी, आदेश तत्काल रूप से लागू। हैंगआउट के लिए कोटा का सिटी पार्क बना छात्रों की पहली पसंद, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र यहां आकर बिता रहे हैं सुकून के पल। निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देश भर की पवित्र नदियों में किया जा रहा स्नान, सुख समृद्धि का मांग रहे वरदान। निर्जला एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू, देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त, बाबा श्याम का आम से किया गया अलौकिक श्रृंगार।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
13: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। कोई मंत्रों को सिद्ध करता है तो कोई गुरु मंत्र लेता है। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन आज हम आपको मंत्रों के विज्ञान के बारे में बताएंगे कि आखिर मंत्रों को शक्तिशाली और असरदार क्यों माना जाता है। आज जानेंगे ऊर्जा और शक्ति से भरपूर मंत्रों का रहस्य, आखिर कैसे पड़ता है वैदिक मंत्रों का जीवन पर प्रभाव, और क्या है दिव्य मंत्रों का वैज्ञानिक महत्व। इन्हें जानने के बाद यकीनन आपका हर मंत्र जाप और भी उत्तम फलदायी होगा। गौर से देखिए।

मन में भक्ति का भाव लिए ईश्वर की कृपा पाने की चाह हर किसी की होती है। पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, ये सब सनातन संस्कृति के ही संस्कार हैं और इनको पूर्ण करते समय मंत्रों का आह्वान किया जाता है।

0: शिवार्पणम् भगवते सांब सदाशिव देवताय नमो नमः।
1: माना जाता है कि मंत्रों के सिद्ध होने से आपके कार्य पूर्ण होते हैं। धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों के जाप से सिद्धियां और शक्तियां हासिल की, क्योंकि मंत्रों में समाई है परमात्मा की शक्ति। हर मंत्र ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण होता है। भक्त और भगवान को जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है मंत्र। तमाम शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने में बहुत कारगर है वैदिक मंत्र। एक एक मंत्र डालता है आप पर असर। अनादिकाल से ही हिंदू धर्म में मंत्रों का अलग ही महत्व रहा है। आज हम आपको मंत्रों के रहस्य के बारे में बताएंगे, साथ ही जानेंगे कि इन मंत्रों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है।
2: मंत्र दृष्टा जो हमारे ऋषि मुनि जो कि एक तरीके से उस युग के वैज्ञानिक हैं, जिन्हें आज हम वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, तो उन्होंने मंत्रों को जो गणना की है, उसकी गणना जो है वो शब्दों को किस प्रकार से छंदों में बांट करके, सूत्रों में बांध करके, और इस प्रकार से उसका उच्चारण हो कि उसमें जो है वाइब्रेशन, जिसे कि हम कहते हैं कि तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों का ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होना, और उस देव या जिस ग्रह या जिस व्यक्ति के लिए वो मंत्र जाप किया जा रहा है उस तक अपना कनेक्शन होना, यानी जुड़ाव होना, ये होता है मंत्र।
1: मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक जाप करने से हर सुख, समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहां तक कि सिद्ध मंत्रों के जाप से मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के ही होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास पर जाप किया जा सके। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक। बीज मंत्र के साथ प्रयोग करने पर ऋचाएं और श्लोक भी पर्याप्त लाभकारी होते हैं। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक सामान्य मंत्र और एक व्यक्तिगत मंत्र।

0: वैदिक मंत्रों की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिनके जाप से ब्रह्मांड में अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। आम जीवन में कहीं ना कहीं हम आप भी किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण करते ही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मंत्रों के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है?
1: अपने यहाँ सबसे बड़े मंत्र गायत्री को माना जाता है, उसके अलावा मृत्युंजय महामंत्र है जिसका कि वैज्ञानिक परीक्षण भी बहुत बार हो चुका है कि वो जब किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए मृत्युंजय महादेव का मंत्र अथवा गायत्री मंत्र का जब जाप किया गया, उसको सुनाया गया है लगातार, तो उसके मानसिक और शारीरिक स्थिति में आश्चर्यजनक जो है परिवर्तन और सुधार दिखाई दिया है। तो मंत्रों का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर और इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है।
0: मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों की एक विशेष रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के साथ जब इन रंग और तरंग का तालमेल बैठता है तभी मंत्र लाभ करते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इनका जाप नुकसान कर सकता है और मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है। हमेशा अपने मनोदशा और तत्वों को देखकर ही मंत्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरे भावना से नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम स्वयं को ही बुरी तरह से नुकसान करेगा। पूजा उपासना में मंत्र जाप को सबसे उत्तम और प्रभावशाली बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन और भाग्य बदला जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं और ये किस तरह से हमारे ऊपर असर डालते हैं?
1: तो मंत्र बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए, उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्र पढ़ने की कई विधा है। उन विधाओं में एक मंत्र इस प्रकार से पढ़े जाते हैं जो जोर जोर पढ़े जाते हैं, यानी तेज आवाज में पढ़े जाते हैं, जिसका वाइब्रेशन तेजी से गूंजता है और सारे ब्रह्मांड में समाहित होता है। और कहा भी गया है कि शब्द यानी आवाज वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती। दुनिया में सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं लेकिन आवाज़ कभी भी नष्ट नहीं होती, वो ब्रह्मांड में सदैव के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। हम लोग जो कोई शब्द भी बोलते हैं तो वो भी वाइब्रेशन के माध्यम से ही हमें हमारे कानों में सुनाई देता है।
0: हर शब्द के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है, इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी रंग और तरंग होती है। जब ये शब्द व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खाते हैं तो काम करते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर, फिर मन और तब आत्मा पर असर डालते हैं। इनका असर शरीर में स्थित चक्रों के माध्यम से होता है। मुक्ति और मोक्ष की राह होगी आसान, मिलेगा सुख और समृद्धि का वरदान। तो मंत्रों के विज्ञान की समझ से आपकी उपासना भी पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आगे हम आपको मंत्र जाप में बरती जाने वाली सावधानियों और कुछ और रामबाण मंत्रों के बारे में बताएंगे जो आपकी कई दूसरी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: संसार का कोई भी कर्म तभी उत्तम परिणाम देता है जब उसे सही नियम से किया जाए। मंत्रों के जाप के भी कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखकर ही जाप करना चाहिए। तो आइए मंत्र जाप के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के नियम और उन्हें जपने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये जानते हैं।

0: मंत्रों से होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने की कारगर विधि मंत्रों के आह्वान से साधना होती है परिपूर्ण। मंत्रों का जाप आपके शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करता है। मंत्रों का नियमित जाप तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। ये मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। अलग अलग परेशानियों के लिए बताए गए मंत्रों का उच्चारण आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्रों के जाप में नियम और सावधानियों का विशेष महत्व है, क्योंकि गलत तरीके से मंत्रों का जाप आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
1: ऐसा कई बार पूछा जाता है, क्या मंत्र करते हुए रुक रुक कर कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप एक बार ध्यान लगाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा, एक घंटा, इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके किया जाता है। और उसमें हर मंत्रों की अलग अलग विधियां बताई गई हैं कि आप जब मंत्र समाप्त करते हैं तो आपको क्या बोलना है, फिर पुनः मंत्र प्रारंभ करना है तो क्या बोलना है। जैसे बहुत से मंत्रों के बाद ओम ओम भूर्भुव स्वः ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे रुक गए, फिर पुनः चालू करते समय ओम ओम भूर्भुव स्वः, इस प्रकार से दोबारा उस मंत्र को चालू कर सकते हैं।
0: तो आइए जानते हैं कि वैदिक मंत्रों के जाप में किन नियमों और सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। मंत्र जाप के लिए स्थान, समय और आसन एक ही होना चाहिए। मंत्र जाप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करनी चाहिए। मंत्र जाप के लिए सफेद या काले रंग का आसन उत्तम होता है। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए विशेष आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला प्रयोग करें। माला न हो तो उंगलियों से ही मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल स्पर्श न करें। तो मंत्र जाप करते हुए इन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सही तरीके से जाप करें तभी आपको मंत्र जाप का उत्तम फल प्राप्त हो सकेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मंत्र जाप के समय क्या जल ग्रहण कर सकते हैं।
1: इसके अलावा ये हमारा भौतिक शरीर है, एकदम से ये शरीर जो है परम गति पर और श्रेष्ठ स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो धीरे धीरे जाता है। तो जिस प्रकार से अभ्यास है, बहुत देर मंत्र करने के बाद व्यक्ति को यदि प्यास लगती है तो जल इत्यादि वो पी सकता है, फिर पुनः जो है आचमन करके पवित्री मंत्र पढ़ करके और मंत्र में ओम ओम भूर्भुव स्वः का उच्चारण करके पुनः से वह मंत्रों को कंटिन्यू कर सकता है, अर्थात पढ़ सकता है। जितनी भी उसकी नियमित संख्या करने की है वो कर सकता है, उसको एक चरण में, दो चरण में, तीन चरण में, दिन में चार चरण में, जितने चरण में करना चाहें उतने में कर सकते हैं। उन्हीं में से सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे प्रचलित में रामचरितमानस है, जिसका पाठ जो है छंद में किया जाता है और उसको जो है छांदिक रूप से आप आराम से करते हुए कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ महामंत्र के रूप में कहा जाता है।
0: मंत्र अगर मानसिक रूप से जपा जाए तो जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मंत्र जप के बीच में जल पीने की जरूरत पड़ती है तो आचमन से दो घूंट जल पी सकते हैं। मंत्रों का जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, ऐसे में उनका उच्चारण तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। मंत्र जाप को

0: चलाता है। ऐसे में उनका उच्चारण तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। मंत्र जाप को विधि पूर्वक किया जाए तो कई परेशानियों का अंत हमारी प्रकृति अपने आप ही खत्म कर देती है। मंत्रों का विज्ञान क्या है ये हमने आपको बताया। आगे हम आपको मानस के मंत्रों यानी रामचरित मानस के कुछ अचूक मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। बने रहिए।
1: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मंत्रों में असीम शक्ति होती है। मंत्रों के बारे में हमने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि मंत्रों के पीछे एक गंभीर विज्ञान है। चलिए हम आपको कुछ और मंत्रों की शक्ति के बारे में बताते हैं।

0: रामचरित मानस में है अचूक मंत्र जो संवार सकते हैं आपका जीवन। ऐसे महामंत्र जिनका जाप करने वाला सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं रामचरित मानस की पंक्तियों का पाठ कैसे किया जाता है। राम दरबार की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं या तुलसी दल तो जरूर अर्पित करें। तुलसी की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को कर सकते हैं। ये कुछ वो तरीके हैं जिनके बाद रामचरितमानस के मंत्रों का जाप किया जाता है। चलिए अब आपको अलग अलग मंत्रों की महिमा के बारे में बताते हैं।
1: कहा जाता है कि भाई मंत्र के तीन प्रकार से मंत्र का जाप किया जा सकता है। एक होता है जोर जोर से कर सकते हैं आप, उसको वो कुछ अलग मंत्र होते हैं। एक मंत्र होते हैं जिसमें जिह्वा हिलती है, यानी मुंह में आवाज़ नहीं आएगी लेकिन शब्द जिह्वा हिलते हुए बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे परम गति का मंत्र होता है अर्थात जिसमें मौन होता है, यानी जीभ जबान भी नहीं हिलेगी, होठ भी नहीं हिलेगा और एकदम मुंह बंद रहेगा और मानसिक रूप से मंत्र का जाप चल रहा होता है। ये जो मानसिक रूप से मंत्र का जाप हम करते हैं वो हमारे अंदर आत्म चेतना को जागृत करता है और चेतना की जो श्रेष्ठ अवस्था होती है उस अवस्था पर पहुंचने में हमारी मदद करता है और हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और जो मंत्र बोल करके किया जाता है उस मंत्रों का प्रभाव इस पूरे वातावरण में पड़ता है और उस जो जो लोग उसको सुन रहे होते हैं, जिन तक उन लोगों का वाइब्रेशन पहुँचता है, उन सब पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है।
0: रोजगार प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संकट खत्म करने के लिए जप ही नाम जन आरत भारी, मिटाई कु संकट होई सुखारी। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विवाह के लिए सुनो सिया सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। रोग नाश के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये कुछ वो मंत्र हैं जिनका जाप आपकी तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। तो आप भी इन मंत्रों की शक्ति को पहचानिए और इनके जाप से अपने जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
5: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
6: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show.

0: Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और अब खबर भोलेनाथ की नगरी काशी से, जिसको अब विकास की एक नई सौगात मिलने वाली है। अगस्त के महीने में रोपवे की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लोग वाराणसी कैंट से सीधे गोदौलिया जा सकेंगे और वहां से आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि ये दूरी महज 16 मिनट में पूरी की जा सकेगी, और वो भी बिना किसी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ के। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोपवे सेवा के किराए को भी तय कर दिया है, जो कि काफी हद तक बजट फ्रेंडली है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा था, उस ख्वाब को साकार करने में बाबा भोलेनाथ की नगरी में बन रहा ये रोपवे एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। बनारस एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा शहर होगा जहां घनी आबादी के बीच लोग जल्द ही रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। रोपवे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। कैंट से गोदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। माना जा रहा है अगस्त से इसका संचालन शुरू हो जाएगा।
1: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है, क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहाँ से बाबा काशीनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहां पहुंचने वाले यात्री, तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
0: काशी की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक वाले शहर के विकास में गोंडोला राइड गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक की जिस दूरी को पूरा करने में अभी 45 मिनट का वक्त लगता है, रोपवे के जरिए उसे महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस आसमानी सफर से पर्यटकों को न सिर्फ काशी का विहंगम दृश्य दिखाई देगा, बल्कि काशी विश्वनाथ का दर्शन अब और भी आसान और सुलभ हो सकेगा।
2: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आएंगे तब
3: बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए।
4: रोपवे के साथ साथ हम लोग को तो बेनिफिट होगा ही, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बीमार लाचार हैं, जो महिला बच्चे हैं, उन लोग को रोपवे से आने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से दर्शन करेंगे। उनको किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होगा। हम लोग के साथ सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
5: सफर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है, हम लोग आते हैं ना बहुत दिक्कत होती है। रोपवे से बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और इस सुविधा ज़्यादा हो जाएगी।
0: करीब 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 5 स्टेशन होंगे, कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया। रोपवे पर करीब 150 गोंडोला होंगी जिनसे यात्री सफर कर सकेंगे। एक गोंडोला में एक बार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। हर घंटे रोपवे से तकरीबन 3000 यात्री सफर करेंगे। रोजाना करीब 1 लाख यात्री सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बड़ी बात यह भी है कि रोपवे की टिकट भी बजट फ्रेंडली रखी गई है। कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक अधिकतम किराया 50 रुपए होगा, जबकि हर एक स्टेशन के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए चुकाना होगा, जबकि पूरे गोंडोला की बुकिंग 2000 रुपए में की जा सकेगी।
6: इसमें आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक 50-50 रुपीज, अगर कोई यात्री यहाँ उतरते हैं और वहाँ उतरते हैं तो 50 रुपये का है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग हम, जैसे अगर आप विद्यापीठ में उतरेंगे 10 रुपये का है, तो ओवरऑल पूरा होल स्ट्रेस के लिए 50 रुपया है। अगर वहाँ पे स्मार्ट पास लेंगे, जैसे आप लोग मेट्रो में देखते हैं स्मार्ट मास्क पार्ट लेते हैं, तो हम लोग 20% वहाँ पे डिस्काउंट का प्रोविजन रखे हैं सरकार ने। और इसके लिए और प्रीमियम गंडोला का भी प्रोविजन है। कोई कलेक्टिवली किसी एक गंडोला को ये लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये का उसका किराया निर्धारण की गई।
0: तो बस चंद दिनों का इंतजार, जब बाबा भोलेनाथ की ये प्राचीन नगरी आधुनिक तकनीक और सनातनी संस्कृति के अद्भुत मेल की गवाह बनेगी और वाराणसी के बाशिंदे से लेकर सैलानी तक रोपवे से इस आसमानी सफर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात करते हैं कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे, तो कुछ को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
8: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भूली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
9: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
11: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
12: No.
13: Oh, no.
14: Welcome to Get Real.
15: I got something to say.
14: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
13: Oh, my God.
16: It's got to be deliciously desperate.
17: Why do these girls forgive him?
18: She has a soft spot for troubled men.
16: Boo bloody who?
14: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
17: Love runs deeper than we know.
14: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
1: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। भारत में 48 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा अमेजॉन, 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का होगा फोकस, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी, आदेश तत्काल रूप से लागू। हैंगआउट के लिए कोटा का सिटी पार्क बना, छात्रों की पहली पसंद, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बिता रहे सुकून के पल। निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देश भर की पवित्र नदियों में स्नान, सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। निर्जला एकादशी के साथ शुरू हुआ बाबा खाटू श्याम का दो दिवसीय मेला, देश भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु, बाबा श्याम का आम से किया गया अलौकिक श्रृंगार।

श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मां बनना किसी महिला के करियर पर फुल स्टॉप नहीं, बल्कि जीवन और पेशेवर यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। बदलते दौर में दुनिया भर में ये समझ मजबूत होती जा रही है, मातृत्व को महिलाओं की पेशेवर तरक्की की बाधा नहीं माना जा सकता। और यही वजह है कि दफ्तरों से लेकर खेल के मैदान तक ऐसी नीतियों और व्यवस्थाओं की मांग बढ़ रही है, ताकि महिलाओं को मातृत्व और करियर के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। हाल ही में ICC ने रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जारी की है। इस दिशा निर्देशों का मकसद महिला क्रिकेटर्स को मैटर्निटी के बाद सुरक्षित, वैज्ञानिक और योजना के तहत खेल में वापसी का अवसर देना है। ये पहल बताती है कि मां बनने के बाद वापसी केवल शारीरिक फिटनेस का विषय नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, फैमिली सपोर्ट और संस्थान के समर्थन से भी जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण लंबे समय से मातृत्व, वर्क लाइफ बैलेंस और महिलाओं के लिए बेहतर वर्क कंडीशन जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखती रही। ऐसे में ICC की पोस्ट प्रेगनेंसी रिटर्न टू प्ले गाइडलाइंस को उनका समर्थन केवल एक सोशल मीडिया रिएक्शन नहीं, बल्कि उस व्यापक बहस का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें महिलाओं के करियर और मातृत्व को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ साथ देखने की बात की जा रही है। तो मां बनना करियर पर फुल स्टॉप नहीं है, आज चर्चा, आज बहस इसी पर होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ICC की इस नई पहल की सभी जगह खूब तारीफ हो रही है। असल में ICC ने महिला क्रिकेटर्स के लिए ये योजना बनाई है। ये मां बनने के बाद खेल में वापसी में मदद के लिए पोस्ट प्रेगनेंसी रिटर्न टू प्ले कार्यक्रम है। महिला T20 वर्ल्ड कप के दौरान आपको बता दें जारी की गई गाइडलाइंस ये 6 RS यानी रूल्स मॉडल पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें रेडी, रिव्यू, रिस्टोर, रिकंडीशन, रिटर्न और रिफाइन जैसे स्टेज तय किए गए हैं। इन अलग अलग चरणों में न्यू मदर्स को फिर से खेल के मैदान के लिए तैयार किया जाएगा। पहला स्टेज है रेडी, मतलब कि खिलाड़ी की शारीरिक मानसिक स्थिति का आकलन इसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा रिव्यू, मतलब डॉक्टर और विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य की समीक्षा। तीसरे चरण रिस्टोर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें शरीर के ताकत की रिकवरी करवाई जाती है। रिकंडीशन ट्रेनिंग का वो हिस्सा है जिसमें धीरे धीरे फिटनेस और ट्रेनिंग बढ़ाई जाएगी। फिर आता है रिटर्न, इसके जरिए नियंत्रित तरीके से खेल प्रतियोगिता में लौटना है। और आखिर में रिफाइन, जिसमें कि खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाना, लगातार निगरानी जैसे कि प्रोसेस को लागू किया जाएगा। बेशक ICC के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने महिला खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें मातृशक्ति पर, ICC का संकल्प समझना जरूरी है। तो दरअसल इस पहल के पीछे एक बेहद संवेदनशील सोच है, जिसे ICC चेयरमैन ने गाइडलाइंस जारी करते वक्त बयां भी किया है। चेयरमैन जय शाह का मानना है कि किसी खिलाड़ी को देश का प्रतिनिधित्व करने और मां बनने के बीच चुनाव ना करना पड़े, यानी उसे ऐसी किसी मजबूरी का सामना करना पड़े जिससे उसके करियर और फ्यूचर पर असर पड़े। वहीं ICC मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर फिलिपा इंगे का कहना है कि हमारा उद्देश्य सदस्य देशों को ऐसा माहौल बनाने में मदद करना है, जहां खिलाड़ी बच्चे के जन्म के बाद क्रिकेट में वापसी कर सके। कई देशों के पास पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और हमने इसे इस तरह तैयार किया है कि हर सदस्य देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसे अपना सके।

0: तो मातृशक्ति पर आईसीसी का जो ये बहुत बड़ा नियम जो सामने आया है, नए गाइडलाइंस सामने आए हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देविका मलिक, जो कि इंटरनेशनल पैरा एथलीट है, नेशनल यूथ अवार्ड विनर भी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ महिमा बख्शी जुड़ चुकी हैं, जो कि मैटरनल कोच हैं, ऑथर हैं बर्डिंग नेचुरली की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें हमारे साथ माया सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2015 सिंगापुर एंड सोशल एक्टिविस्ट भी वो हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीनल पाठक, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट है और सोशल एक्टिविस्ट है। मीनल, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारी संवाददाता सना फरजीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सना, आपके पास आते हुए देखिए, इससे पहले भी आज हालांकि आईसीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की है महिला क्रिकेटर्स की को लेकर, उस पर मुख्य तौर पर चर्चा है, लेकिन सबसे पहले जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही प्रतिक्रिया दीपिका पादुकोण की तरफ से, और ये पहली उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, ये हम भी जानते हैं। वो पहले भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर चुकी हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह से लंबे लंबे शिफ्ट्स उनके होते हैं, कई कई दिनों के बाहर उनके टूर्स लगते हैं, तो इस बात को लेकर भी वो कहती रही हैं। क्या कहेंगी आज भी मुखर तौर पर कहते हुए?
1: जी बिल्कुल, दीपिका पादुकोण एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने शायद पहली बार आकर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात किया है। हम इस इंडस्ट्री में ओवरवर्क को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है, और उसकी वजह से उनके हाथों से दो फिल्में गई हैं, स्पिरिट और कल्कि 2। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अभी वो अपना दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आप अपनी मटर्निटी लीव ले, आप अपने फैमिली और अपने काम को साथ साथ इक्वल टाइम दे। उन्होंने हमेशा इस बात की समर्थन की है और ये प्रमोट करती हैं, ये प्रोपोगेट करती हैं, और इसके अलावा उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है, और वन ऑफ द फ्यू फीमेल एक्ट्रेसेस है जिन्होंने आकर सामने से ये बात कहा कि मैं इतने घंटे काम करूंगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी समय देना है। और इसलिए जब वो आज सेलिब्रेट कर रही है आईसीसी का ये डिसीजन, तो वो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी और उनके बिलीव्स को कहीं ना कहीं इशारा करता है।
0: सना, आपसे एक और सवाल यहां पर करते हुए, चूंकि आप मुंबई की लाइफ और खास करके बॉलीवुड या फिर वहां पर टीवी इंडस्ट्री है उसकी लाइफ को बहुत नजदीक से देखती हैं, ये बताइए वहां पर वाकई बहुत एरियाटिक होते हैं वहां पर सुबह से लेकर, क्योंकि बहुत कुछ है, कॉस्ट सारा देखा जाता है, आप रेंट आउट करते हैं, जगह रेंट आउट करते हैं, लोग आते हैं, हायर होते हैं, बहुत खर्च उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके बावजूद इराटिक शेड्यूल्स होते हैं, कई बार महीनों के शेड्यूल्स होते हैं जो आपको आउटडोर जाकर करना होता है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस करना किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है और इतनी तरीके के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर कभी कैमरा काम करना बंद कर दिया, दो घंटे के लिए वो नहीं रिपेयर हो पा रहा है, तो दो घंटे आपकी शूट ऑटोमेटिकली डिले हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली हैं, और सारे लोग एक्टर्स और प्रोडक्शन सब इस बारे में बात करते हैं कि ये क्रिएटिव माध्यम की जो इंडस्ट्री है वहां पे आप नहीं कर सकते हो कि आप स्पेसिफिक आस्क करें, लेकिन एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज जो शायद आते हैं अपने वैनिटी में बैठते हैं मेकअप करके चले जाते हैं, बट मेकअप आर्टिस्ट जो कि इतनी सारी महिलाएं काम करती है, उनके परिवार घर पे हैं, बट उन्हें एक्टर्स से पहले आना पड़ता है, एक्टर्स के बाद वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज बट टेक्नीशियंस जो इस इंडस्ट्री में हर एक लोग इन्वॉल्व है, उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। एंड जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो इंडियन सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि मदर्स जो है वो घर पे रहे, या एटलीस्ट वो फैमिली को उस तरीके के टाइम दे, क्योंकि बच्चे जो है वो मां से जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, प्रेगनेंट में जो उनका हाथ होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल, और इस वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम अलग अलग बॉलीवुड की जो रिलेटेड मैगजीन्स है उसमें भी हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सना, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। देविका मलिक हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल पैरा एथलीट। सबसे पहले देविका के पास जाते हुए, देविका, चुनौतियों के बारे में अगर हम बात की जाए तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर चुनौतियां नहीं आती हैं, और मुझे लगता है महिलाएं सक्षम है हर चुनौती का सामना करने के लिए, ये मैं मानती हूं। लेकिन खास करके आईसीसी ने जो ये गाइडलाइंस जारी किया है, और खास करके मैटर्निटी के फेज के बाद जब आप मदर जो है वो डिलीवर करती हैं बच्चे को, उसके बाद जब वापस लौटने की बात होती है उसको लेकर जो बातें कही गई हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
2: मैम, अगर आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लें तो कितने सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस हैं हमारे पास जो ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि मदरहुड इज नॉट अ डेट्रीमेंट फॉर अ वुमेन्स करियर. दीपिका पल्लिकल के बारे में हम जानते हैं, मैरी कॉम के बारे में हम जानते हैं. मेरी मदर का केस अगर आप ले लें तो वो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी, तब वो ऑलरेडी मेरे समेत दो बच्चों की माँ थी. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि कितनी सक्सेसफुली महिलाएं रिटर्न करती हैं स्पोर्ट में जब उनके पास सही सपोर्ट सिस्टम होता है. लेकिन अभी तक ऐसा था कि जो महिलाएं स्पोर्ट में रिटर्न कर पा रही थी, ओलंपिक लेवल तक जाके परफॉर्म कर रही हैं. इनफैक्ट बहुत सारे दुनिया भर में केसेस ऐसे हैं, आर्चर्स हैं जिन्होंने, आर्चर्स हैं, शूटर्स हैं जिन्होंने प्रेग्नेंट होते हुए, इनफैक्ट इवन ट्रैक रनर्स हैं जिन्होंने प्रेग्नेंट होते हुए बहुत ही हाई लेवल के रेसेस रन किए हैं और
0: बिल्कुल
2: मेडल्स विन, इंक्लूडिंग ओलंपिक्स. तो अब जब हमारे को ऐसा एक गाइडलाइन मिलता है और ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो ये जो अचीवमेंट है ये कुछ लोगों तक सीमित ना रह के, जो जैसे अगर मैं अपनी मदर का ही एग्जांपल लूं, तो सिर्फ उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद, मदरहुड के बाद स्पोर्ट पे रिटर्न नहीं किया है, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसेबिलिटी के बाद उन्होंने स्पोर्ट में रिटर्न किया है,
0: बिल्कुल
2: चेस्ट पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद. लेकिन हम इन सारी महिलाओं को एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितना मुश्किल उनके लिए ये सफर रहा है, और क्योंकि वो उन्होंने खुद एक अपने लिए रास्ता तय किया है. लेकिन अब अगर ये पॉलिसी के तहत उनको मदद हो जाएगी और पूरा
0: बिल्कुल, जिस
2: सिस्टम
0: संस्थान में आप करते हैं काम या फिर जहां पर आप काम कर रहे हैं या आप खेल रहे हैं, अगर वो अथॉरिटी आपके साथ हो, वो अथॉरिटी आपके फेवर में बात करे, तो बहुत बड़ी ताकत निश्चित तौर पर आपको मिलती है. महिमा, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप मेटर्नल कोच भी हैं, आप ऑथर भी रह चुके हैं, बर्थिंग नेचुरली आपने लिखा है, आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा, अगर हम चैलेंज के तौर पर देखें, तो आपको क्या लगता है महिमा, सबसे बड़ा चैलेंज एक महिला के लिए क्या होता है आफ्टर डिलीवरी, एक मां बनने के बाद, और वो भी खास करके जो प्रोफेशनल वुमेन है उनके लिए?
3: सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है पहली बात तो मदर की खुद की रिकवरी, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसके शरीर में उसके हार्मोन्स, उसका मानसिक हेल्थ, सब कुछ बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है. तो जितना जरूरी उसका 9 महीने का प्रेगनेंसी जर्नी होता है, उतना जरूरी उसका पोस्टपार्टम जर्नी भी रहता है, जहां पे उसकी पोस्ट डिलीवरी बॉडी को, मेंटल हेल्थ को रिकवर होना होता है. आपने सुना होगा बहुत सारी मदर्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी गुजरती है, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, और टाइम लगता है मदर्स को एक वापस से प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आने के लिए. ये तो फिजिकल चेंजेस और मेंटल हेल्थ चेंजेस हो जाते हैं, साथ ही साथ बच्चे की जिम्मेदारी भी लेना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, और उसके साथ खुद के जो चेंजेस है बॉडी को, उसके साथ अपनी एक आइडेंटिटी वापस से आइडेंटिफाई करना, ये सारी चेंजेस के साथ मदर को एक नई जिंदगी की शुरुआत दोबारा से करनी होती है. अगर वर्किंग मदर है उसको इन सारे चेंजेस के साथ वापस अपने ऑफिस रूटीन में भी आना होता है. आजकल 6 मंथ्स की मटर्निटी लीव तो सबको ही दी जाती है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद जब वापस से आप अपना वर्क लाइफ रिज्यूम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे को किधर छोड़े, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में है नहीं है, बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, इतनी सारी चीजें एक मदर के माइंड में चल रही होती है. तो इन सब चैलेंजेस के साथ मदर को अपना वर्किंग रूटीन वापस रिज्यूम करना काफी डिफिकल्ट रहता है.
0: बिल्कुल, नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से. नितिन, आपसे सबसे पहले तो एक बार फिर से हम क्रिस्प वे में सुन लेना चाहेंगे कि आईसीसी ने मुख्य तौर पर ये जो गाइडलाइंस निकाली है वो गाइडलाइंस क्या क्या है, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो क्रिकेटर्स, जो मदर क्रिकेटर्स हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जब वो मदर बनने के बाद वापस आती हैं, तो उनके लिए मुख्य तौर पर यहां पर क्या चुनौतियां होती हैं ग्राउंड में?
4: नहीं देखिए, ऑफकोर्स ये पॉलिसी के ऊपर में आईसीसी काफी दिनों से काम कर रहा था. ओरिजिनली ये आइडिया आईओसी और फीफा का था, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो फीमेल एथलीट्स होते हैं उनको पोस्ट प्रेगनेंसी रिटर्न करने में, वापस से मैदान में आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और स्पेशली क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को. यही वजह रही कि आईसीसी ने सोचा कि एक ऐसी डिजाइन, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा प्लान लेके आ जाए हमारे फीमेल क्रिकेटर्स के लिए, जो कि उनको पोस्ट प्रेगनेंसी से अगर वो वापस आ रही हैं तो उनको वहां पर मदद करे. अब ये पूरा प्लान क्या है, ये पूरा जो प्रोग्राम है ये क्या चीज है, ये एक 16 वीक का एक प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग तरीके से फीमेल एथलीट्स को बताया जाएगा कि आपको क्या करना है. डॉक्टर्स की टीम होगी, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होगी, वो सब मिलके एक एक हर केस के लिए अलग अलग प्लानिंग करेंगे. और इसमें बेसिक बात ये है कि 6 आर का ये प्रोग्राम है. 6 आर का मतलब हुआ रेडी, उसका मतलब हुआ रिव्यू, उसका मतलब हुआ रीस्टोर, उसके बाद आता है रिकंडीशनिंग, और फिर आता है रिटर्न, और उसके बाद आता है रिवाइव। यानी कि ये सारे जो हर स्टेज है, यहाँ पर आपको पिछले 16 हफ्ते में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेज में आपको क्या करना है, वो सब सारी चीजें आईसीसी ने डिजाइन करके और रेडी कर दी हैं। पहला स्टेज आता है आपका, यू नो, आपको मेंटली चेक करने का, आपको फिजिकली चेक करने का। अगर वहां पर डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ अब ये यू नो मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि काफी चीजें फीमेल्स को जो है वो देखनी होती है, अगर वो मेंटली प्रिपेयर है, फिजिकली प्रिपेयर है, फिर उनका सेकंड स्टेज आता है कि उनको यू नो कंडीशनिंग की जाती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको चेक करना होता है। फिर उसके बाद 8 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स और फिजियोज की परमिशन के हिसाब से आपको जो है दौड़ने की परमिशन मिलेगी, और फिर एंड में आपको फाइनल रिटर्न टू प्ले का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको हर फीमेल क्रिकेटर्स को यू नो फॉलो करना पड़ेगा, और आई थिंक आईसीसी ने इसको बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान की खिलाड़ी बिस्मा मारूफ वो प्रेग्नेंट होने के बाद जो है वापस ही नहीं कर पाई क्रिकेट के अंदर में। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर आपको फिजिकली बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेंटली आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। तो आईसीसी की सोच यह है कि कोई भी ऐसी एथलीट नहीं हो, कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं हो जो वापसी ना कर पाए मैदान पर दोबारा।
0: नितिन, खास करके आज जब हम देख रहे हैं, अगर हम भारत की ही बात करें, क्योंकि विदेशों में जो पॉलिसीज है वहां पर बहुत पहले से लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं, और बहुत पहले से काफी सहूलियत महिलाओं को दी जा रही है रिस्पेक्टिव उनके फील्ड्स में और खास करके क्रिकेट में भी। लेकिन अगर हम सिर्फ अभी भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हम देख रहे हैं जिस तरह से महिलाओं ने परचम अपना बुलंद कर रखा है, और महिला क्रिकेट टीम जो हमारी है वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम हम कहें तो गलत नहीं होगा, वो हो गई है। ऐसे में आईसीसी की ये गाइडलाइंस उनके लिए कितनी मददगार आपको लगती है?
4: नहीं, डेफिनेटली बहुत मददगार है, न सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए। देखिए, ये एक शुरुआत है, आईओसी ने शुरुआत की, फीफा ने शुरुआत की, अब आईसीसी ने शुरुआत कर दी है, और स्पेशली चूंकि आईसीसी गवर्निंग बॉडी, पैरेंट बॉडी है जो पूरे विश्व में जो क्रिकेट को संचालन करती है, तो भारत भी उसके अंदर में आता है, और जितनी भी हमारी जो इस वक्त क्रिकेटर्स हैं उनके फ्यूचर में ये पॉलिसी जो है बहुत काम आने वाली, क्योंकि बहुत बारी ऐसा मौका आया जब हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो पोस्ट प्रेगनेंसी कभी मैदान पर वापस ही नहीं आ पाए। तो यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया गया, आपको उसको फॉलो करना है, और ये चीज भूल जानी है कि अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, उनकी सोच ही यही है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो रिटर्न है उसका परसेंटेज बढ़े, ना कि कम हो। ये इसीलिए इस प्रोग्राम को बनाया आईसीसी ने, और अगर सिर्फ इंडिया में, अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, डेफिनेटली उनको फायदा होगा, और मैं तो ये कहता हूं कि शायद बाकी जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे एसोसिएशंस हैं, वो भी इससे सीख लें। हम देखते हैं कि हमारे बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं, हमारी हॉकी प्लेयर्स हैं, इन सभी लोगों के लिए एक ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि भारत में जितने भी तरीके का खेल खेला जाता है, उन सभी एसोसिएशंस को आईसीसी की इस पॉलिसी से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह पर हमारा पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो उसी परसेंटेज में है। लड़कियां जो है वो लड़कों से कहीं ज्यादा ही जाकर प्रदर्शन कर रही हैं, आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, किसी भी स्पोर्ट्स में, डिसिप्लिन में उठा के देख लीजिए, हर स्पोर्ट में उनका पार्टिसिपेशन है। तो ऐसी पॉलिसी ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही है, चूंकि स्पोर्ट्स से काफी आप जुड़े रहते हैं, तमाम वहां से अपडेट हमें देते रहते हैं, तो बहुत नजदीक से आप तमाम चीजों को देखते हैं। नितिन, आपके पास आगे भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल माया, आपके पास आते हुए, मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2015 रह चुकी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप दोनों ही चीजों के बारे में, यानी कि दो दुनिया के बारे में आप माया हमें बता सकती हैं। एक तो ये जो शोबिज की दुनिया है ना, उसके बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि अक्सर खबरें वहीं से आती हैं, और बहुत ज्यादा हम समझते हैं इस बात को कि आपको अटमोस्ट प्रेशर ये रहता है 24 घंटे कि आपको अच्छा दिखना है, आपको सुंदर दिखना है, आपको एक सर्टेन वे में फिट दिखना है, ये जबरदस्त प्रेशर एंड 24/7।
5: देखिए श्वेता जी, जब मैं बहुत जब शादी हो गई मेरी काफी तकरीबन 15 साल बाद, ऐसी आई वॉज फिजिकली फिट, तो मैंने जब अदिति को उतरकर मेरी मित्र हुआ करती थी, तो मैंने भी प्लान किया कि अदिति जीत कर आई है तो व्हाई डोंट यू, मैं भी क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने ऐसी सर्टन सर्कल में बात करी तो लॉट्स ऑफ पीपल एडवाइज मी कि भाई अब इतने साल बाद, बच्चे होने के बाद तुम क्या करोगी, बच्चे संभालो, घर बैठो। तो एक तरह का उस टाइम के लिए मेरा बड़ा टास्क, मेरे लिए चैलेंजिंग था कि हम शादीशुदा महिलाओं की एक आप बाउंड्री एक अपने आप से अपने समाज में क्लिक कर दिए कि नहीं, आपके लिए बच्चे हैं, किचन है, और आप वहीं तक सीमित रहिए। और मैंने फिर उसको एक टास्क की तरह लिया श्वेता, और मैंने आप यकीन नहीं कीजिए, विदाउट मैंने एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी फिजिकल फिटनेस, मेरे को शादी के 15 साल बाद आप ये सोचिए कि मैंने जो अपना छोटा सा फर्स्ट क्राउन जीता जिसकी मुझे कवरेज मिली, और उसके 1 साल 8 महीने के अंदर मैंने मैक्सिमम क्राउन होल्डर विनिंग अवार्ड मतलब टाइटल लिया, टोटल 8 क्राउन जीते जिसमें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल भी थे, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज एशिया, मिसेज इंटरनेशनल फ्रॉम यूएसए, रशिया, सिंगापुर। तो ये सब करने के बाद सिर्फ इसलिए कि साबित करना पड़ा कि शादीशुदा महिलाओं के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, पोस्ट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी कुछ नहीं होता, ये हम लोगों ने जो हम पितृसत्तात्मक हम समाज में रहते हैं, पुरुषों के समाज में रहते हैं, वो उनकी एक सोच है। देखिए शादीशुदा, मैं आपको बताती हूँ, ये सब करने के बाद हम एक शो कर रहे थे और उसके बाद कभी ये इतना चलन नहीं हुआ था, तो हमने कहा चलिए मिसिज का कुछ एक प्रेजेंट वगैरह करते हैं। तो जो हमारे स्पॉन्सर थे उनके पहले शब्द सुनिएगा श्वेता, अरे आप क्या मिसेज कर रही है, मिसेज में क्या होता है, मिस का कीजिए, लड़कियों का कीजिए। और आज उसके बाद देखिए कि आपके उस समय के बाद देखिए आज महिलाएं किस कदर अपना परचम, चाहे फैशन इंडस्ट्रीज हो, जैसे
0: बिल्कुल कोई ऐसा फील्ड नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा माया जी फील्ड नहीं है जहां पर महिलाएं ना हो और अपना परचम ना बुलंद किया हो। यहाँ पर मीनल, बिल्कुल आती हूँ आपके पास, यहाँ पर मीनल आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हम सभी प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और साथ ही साथ मदर भी हैं हम में से ज्यादा, तो ये बताइए कि आफ्टर डिलीवरी वैसे अगर देखा जाए तो एक शरीर को रिकवर करने के लिए लगभग कितना समय लगता है?
6: इट्स जितना टाइम हमने बेबी के लिए निकाला एटलीस्ट उतना तो लगता ही है, 9 months, बट आइडली टेक्स अ ईयर फॉर अ पर्सन टू फुली कम आउट ऑफ इट, फुली रिकवर, एंड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल रिकवरी, अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो मेंटल रिकवरी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो जे गाइडलाइंस निकाली गई है जे शाह के थ्रू, इसमें उन्होंने वो मेंटल वेलनेस के बारे में भी जिक्र किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन और उस एस्पेक्ट को कंसिडर ही नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि फिजिकली अगर वुमेन यू नो इज फीलिंग गुड और वो बाकी सारा काम कर रही है तो शी इज डीम्ड टू फिट एंड लाइक ज्वाइन एनी वर्क स्पेस। एंड आई एम वेरी हैप्पी इन अ सेंस की दिस विल सेट एन एग्जाम्पल for not just the other sports foundations and sports you know corporations but also for all other workspaces ki you have to make your workplaces more inclusive for women. It is a very difficult task to come back to a normal routine after giving birth to another life. It's like a second birth for a woman. So you know aap sirf ye soch ke ki aapne unko 6 mahine ka ek you know maternity leave diya tha, now everything has to come back to normal, aap aisa nahi soch sakte. This is not ki aapne bas 6 mahine ka leave de diya to khatam.
0: Meenal, aap bhi is baat ko manti hain, kyunki aap bhi working hai, aap bhi is baat ko manti hain ki aaj bhi hamare desh mein khaas karke, kyunki foreign mein to maine dekha hai wahan par bahut respect hai, even if during pregnancy bhi agar offices mother jati hain to wahan bhi bahut khayal rakha jata hai, bahut tarah ki cheeze hain. Yahan par agar Bharat ki baat kare to IT culture कि जब से यहां पर आया है तो मल्टीनेशनल कंपनीज यहां आई है तो वहां हमने देखा अब क्रचेस बनने शुरू हो गए हैं, अब महिलाओं को थोड़ा वक्त दिया जाता है, बच्चे वहां रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट ये है कि अगर एक बार किसी कोई महिला अगर मां बन गई तो उसके बाद वो छुट्टियां भी ज्यादा लेंगी, उसके बाद शी इज लाइक अ बर्डन, अब वो पता नहीं बैक टू नॉर्मल कब होगी, पहले की तरह कब होगी, आपको ऐसा लगता है?
6: एब्सोल्युटली, और यही सोच बदलनी है। You know, people who, जो ये वुमेन का एक सक्सेस साइकिल है वो इस बात पे रोक दिया जाता है बिकॉज नाउ यू कैन नॉट हैव अ करियर बिकॉज नाउ यू हैव किड्स, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी एज वुमेन आर एब्सोल्युटली मतलब हम बिल्कुल सक्षम है कि हम अपना घर भी संभाल लें, बच्चे भी संभाल लें और उसके साथ साथ हम अपने करियर को भी 200% ध्यान दें। This is absolutely possible. बस थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, the way they, you know, जैसे ICC आगे बढ़ के आया है for supporting their women cricketers. I just believe कि सभी वर्क स्पेसेस पे भी अगर ऐसे कुछ पॉलिसीज और ऐसा कुछ इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज आ जाएंगी, सो आई एम श्योर दैट वुमेन विल रीच फार मोर हाइट्स देन व्हाट दे आर अचीविंग टुडे। ऐसा नहीं है कि आज वो पीछे है, आज भी बहुत आगे बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं यू अंडरस्टैंड दैट सपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड बिकॉज ये सब अकेले करना तो डिफिकल्ट ही है ना,
0: यू
6: नीड।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा महिमा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये समझना चाहेंगे, कई आर्टिकल्स जब मैं गो थ्रू कर रही थी तो मैंने उसमें देखा, आपने चूंकि बुक लिखा है तो आपने भी काफी कुछ पढ़ा होगा, केस स्टडीज आपने भी पढ़ी होगी, तो कई जगह तो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स से ये भी कहते हुए सुना है कि उनके अप्रेजल्स उस समय में नहीं हुए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, बिकॉज उनको कहा गया कि आप उतना काम नहीं कर पा रही थी जितना आप यूजुअली करती थी पहले, इसलिए उनके अप्रेजल्स नहीं हुए।
3: देखिए ये सच है, इस तरह के चैलेंजेस मदर्स को प्रेगनेंसी में देखने पड़ते हैं। हम अगर बात करें, बहुत बड़े बड़े अच्छे कॉर्पोरेट कंपनीज भी आज की डेट में इंडिया में है जो कि बहुत हद तक पेरेंटहुड को सपोर्ट करते हैं, उनकी पेरेंटल लीव पॉलिसीज भी बहुत अच्छी है, मटर्निटी लीव पॉलिसीज भी बहुत अच्छी है, और फ्लेक्सीबिलिटी आवर्स भी रहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में उनको किसी तरह की तकलीफ है उनको वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज, यहाँ की मेजॉरिटी कंपनीज इंडिया में आज भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि नहीं सपोर्ट करते हैं और उनको अलग तरह के इमोशनल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट प्रमोशंस, प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, न्यूली मैरिड वुमेन, इस तरह की फीमेल्स को कई बारी अनफॉर्चुनेटली जॉब रिक्रूटमेंट्स के टाइम अलग से एक बायस तरीके से उन लोगों को अलग तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। और ये भी बोलना चाहूंगी कि इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को डिले करती हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उनके वर्कप्लेस पे प्रमोशंस, उनका करियर अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ज्यादातर महिलाएं आजकल लेट 30s में अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं।
0: एचआर में भी ये चीज पूछ ली जाती है, जो अनमैरिड होती हैं उनसे पूछ लिया जाता है भाई आप जॉब करते साथ शादी तो नहीं कर लेंगी, या फिर अगर किसी की शादी हो गई है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि आप अभी फैमिली प्लान तो नहीं कर रही है। सी दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड।
3: हार्ड फैक्ट, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, कई महिलाएं जो हैं गुजरी है, बहुत सारी महिलाओं ने मुझे बताया भी है, और उनको उनका मेंटल हेल्थ कितना अफेक्ट होता है क्योंकि वो इस वजह से अपनी प्रेगनेंसी टाइम से प्लान करने से डरती हैं और प्रेगनेंसी डिले करती हैं। तो बहुत बार आप देखेंगे कि महिलाओं को इस बात पे जज किया जाता है कि मदर इन लॉज खास करके बोलती हैं कि फीमेल्स जो हैं वो चाहती हैं कि उनका बॉडी खराब ना हो, इस वजह से वो प्रेगनेंसी टाइम से प्लान नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है, द मेजर रीजन इज दैट वुमेन आर स्केयर्ड कि उनका करियर अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एचआर पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर एक महिला अपनी प्रेगनेंसी एक सर्टेन एज पे प्लान कर रही है तो क्या उसका करियर अफेक्ट होगा नहीं होगा। आई थिंक वी नीड स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज फॉर प्रेगनेंसी
0: पॉलिसीज के साथ साथ मुझे लगता है कि मीरल, मुझे लगता है आपसे बाद में, मैं एक ब्रेक के बाद ये जानना चाहूंगी, पॉलिसीज के साथ साथ बहुत जरूरी है लोगों का माइंडसेट चेंज होना, हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का इस मामले में माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है कि अगर एक महिला मां बनी है तो उसके बाद उसके करियर का वो फुल स्टॉप है, दी एंड है, इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज।
7: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
8: Tech is moving fast, and employers want people who get it. At WGU, you'll earn a computer science degree that teaches you the skills behind AI. Online, accredited, built for what's next. Get started at WGU.edu.
9: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
11: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: तो मां बनना करियर पर फुल स्टॉप नहीं है। आईसीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस, जो कि महिलाओं के, खास करके जो महिला एथलीट है, मां बनने के बाद बहुत बड़े तौर पर एक मददगार वो साबित हो सकती है, उनका बैकबोन वो साबित हो सकती है उनके करियर, प्रोफेशनल करियर को लेकर। इसी पर चर्चा कर रहे हैं तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देविका, आपके पास आते हुए, आईसीसी ने तो अभी अब ये गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैदान में एक महिला एथलीट को किस तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानियां अभी झेलनी होती है या उन्हें दिक्कत होती है, आप क्या कहेंगे?
2: जी, प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, एक तरफ हम कह रहे हैं कि बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये नहीं समझते हैं कि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो वो एक बच्चे को नहीं, वो एक दुनिया के सिटीजन को जन्म दे रही है। आगे जाके वो बच्चा भी वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है, आगे जाके वो बच्चा भी दुनिया के एडवांसमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए एक माँ को ये सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत ही जरूरी है, कि हम उनको एक बर्डन की तरह ट्रीट ना करें कि आप माँ बन गई हैं तो अब आप वर्कफोर्स पे बर्डन है या आप सिस्टम पे बर्डन है। आप जब एज अ मदर आप एक सिटीजन कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस दुनिया के लिए, और जैसा कि हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि कॉर्पोरेट में मेटर्निटी लीव का जो एक कल्चर है वो बहुत टाइम से चला आ रहा है और धीरे धीरे ये मानसिकता भी बदल रही है, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक करियर है। जो जैसे एथलीट्स हैं वो 10 साल 15 साल डेडिकेट करके एक ओलंपिक मेडल बनाते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी कंट्री को जिताते हैं, तो वो भी एक करियर है, और जितना हक एक कॉर्पोरेट में करियर होने वाली महिला को है कि वो वापस वर्कफोर्स ज्वाइन करें, उतना ही हक एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयशा सर ने पहले तो इक्वल पे का जो इजाद किया आईसीसी के थ्रू, और अब ये महिलाओं के लिए उन्होंने ये गाइडलाइंस लाए हैं, तो सबको पता है कि माँ बनना एक महिला के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पे कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे वो इससे उठती हैं, हम सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस के थ्रू जो स्टीरियोटाइप्स हैं और जो स्टिग्माज हैं जो हम एसोसिएट करते हैं मदरहुड से, धीरे धीरे हम उनसे दूर जाते रहेंगे और मदरहुड को एक नेचुरल करियर प्रोग्रेशन का पार्ट हम समझेंगे, और यही एक सबसे बड़ा बदलाव है जो आएगा ऐसी गाइडलाइंस के थ्रू। एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आईसीसी एंड जयशा सर, और हम पैरा स्पोर्ट्स में भी और बाकी सभी स्पोर्ट्स में भी मुझे लगता है कि इससे एक प्रभाव पड़ेगा,
0: कहीं ना कहीं ये नजीर बने और बाकी फ्रेटर्निटी भी जो है स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी इसको अपनाए, हम तो यही चाहेंगे। माया जी, आपके पास आते हुए, आपको नहीं लगता है कि आज भी, चाहे वो घर में हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच में हो, आप अपने रिश्तेदारों के बीच में हो, जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं ये गिल्ट फील कराया जाता है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा, आप अपने घर से ज्यादा, आप काम पर ध्यान दे रही हैं, काम पर फोकस कर रही हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए?
5: देखिए श्रोता जी, अब मैं बात करूंगी सारे सोशल सेक्टर पे, आप भी जानती हो मैं बहुत समय से सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ, मैंने इन वाले पहलुओं पर बड़ा काम किया है। अब आप सुनिए, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ और वो इसी समाज से उठा के देती हूँ, जो केसेस मैंने भी फेस करे, लोगों के इनकी काउंसलिंग भी करी। एक वर्किंग लड़की की शादी होती है और पति कहता है कि हम लोगों ने मकान का लोन लिया है, हम अभी बेबी प्लान नहीं कर सकते हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, पहले हम दोनों वर्क करके इसको चीजों को शॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद अपनी फैमिली प्लानिंग करके आगे बढ़ाएंगे, वो समय मांगता है। उसके साथ उसी बच्ची के ऊपर एक इन लॉज का प्रेशर रहता है कि एक साल हो गया, दो साल हो गया, तुम बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही हो, समाज में लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहती है, वो उसके साथ समस्या ये होती है कि वो अपनी लाइबिलिटी सुधारे या सामाजिक स्तर को बैलेंस करने के लिए सास ससुर की बातें सुनूं। तो एक महिला को ये एहसास कराया जाता है, देखिए हम कहते हैं कि माँ बनना एक आशीर्वाद है, आप उसे कर्ष मत बनाइए, आप उसको महिला के लिए ये उसके लिए मत बोलिए कि माँ बनना एक बुरी चीज है, माँ बनना हर महिला के लिए एक आशीर्वाद है, कोई बुरी दुआ नहीं है। तो उसको जब इस तरह के एक्सपीरियंस से निकलना पड़ता है तो ये स्थिति एक तो बड़ी खराब होती है कि वो महिलाएं माँ बनने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो दूसरी बात आती है, मैं अभी हाल ही में एक अपने एरिया में एक बैंक में थी, सेंट्रल बैंक, नेशनलाइज बैंक में थी, और उसके बच्चे को लेकर वो बैंक में अपनी बगल में उसने बच्चे को पालने में प्रेम में लिटाया हुआ था और वहां पे वो बैंक में काम कर रही थी और पूरा बैंक उसको सपोर्ट कर रहा था। बच्चा अगर रोया तो एक दूसरा कुलीग जो थोड़ा सा फ्री था उसने आया और उस बच्चे को उठा के उसको पैम्पर किया। तो मुझे लगता है इस तरह की एक सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर बच्चे को देखो 6 मंथ्स की मैटरनिटी हम लोग अगर देते हैं वो बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए होती है, महिला की बॉडी की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। जो सक्षम महिलाएं होती हैं, जैसे मैं सुन रही थी गांव देहात में महिलाएं अपना बच्चा पैदा खेत में करके वो गोदी में उठ ले आती थी नाल काट के, ये भी किस्से हैं और आज भी ऐसा होता है। महिला की बॉडी अपने आप में बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है अगर वो मेहनत कश महिला है, लेकिन जो 6 मंथ का मेटर्निटी लीव होता है उसके बच्चे की देखभाल के लिए होता है, लेकिन उस 6 मंथ के बाद का जो पीरियड होता है वो सबसे समस्या होती है कि हर ऑफिस अलाउ नहीं करता बच्चे के लिए, हर ऑफिस अलाउ नहीं करता टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए।
0: बहुत चीजें बदल जाती हैं, बहुत चीजें बदल जाती है भाई जी। मीनल आपके पास आते हुए, देखिए हम सभी इस बात को समझते हैं कि वंस यू बिकम अ मदर उसके बाद आप सिर्फ आप एक इंसान नहीं रहती, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल आप नहीं रहती हैं, आप उससे बढ़कर बहुत कुछ हो, आपका मल्टीफेसेड हो जाता है। देखिए आपका पूरा रूटीन बदल जाता है क्योंकि आपको लेट नाइट फीड कराना है बच्चे को। अब जो अगर आप पहले मॉर्निंग अगर कर रही थी मॉर्निंग शिफ्ट, तो आप मॉर्निंग करने में आपको उतनी ही दिक्कत होगी, या इवन इफ घर में देखभाल के लिए कौन है कौन नहीं है, एक बच्चे के साथ जो इमोशनल जुड़ाव हो जाता है 4-6 महीने रहने के बाद, उसको तोड़कर फिर से वापस आना ऑफिस में, और ऑफिस आने के बाद फिर ऑफिस का ये एक्सपेक्टेशन कि आप उसी तरीके से ऑफिस में स्टेप अप करें या कदम रखें जैसे आपने 6 महीने पहले रखा था, या फिर जब आप मदर नहीं बनी थी तब आपने रखा था, तो ये कितना प्रेशर है, आप ये समझ रही हैं? मीनल आपकी आवाज नहीं आ रही है।
6: So, जी दिस एग्जैक्टली दिस माइंडसेट इज व्हाट नीड्स टू बी रिविजिटेड, बिकॉज आपको इसी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से देखना है। आई एम श्योर कि वो सारी की सारी यू नो लेडीज जो अपना वर्क वापस रिज्यूम करती हैं, वो उसी माइंडसेट के साथ करती हैं कि अब हम अपने जॉब पे जाकर अपना 200% फिर से देंगे एंड वी डिवोट आवरसेल्व्स टू द जॉब। नाउ द आइडिया हियर इज कि जो आसपास का सपोर्ट सिस्टम है ना, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एंगेज। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस एंड यू नो हाईलाइट दिस पॉइंट कि बच्चा हो जाना या प्रेगनेंट हो जाना कहीं पर भी वुमन की परफॉर्मेंस को हैम्पर नहीं करता है और उसकी करियर ट्रेजेक्ट्री को भी हैम्पर नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड अ बेबी तो हम अच्छी प्रेजेंटेशंस और अच्छी डील्स और अच्छी डिस्कशंस नहीं कर पाएंगे अब। ऐसा बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑन द ग्राउंड रूल या ऑन द ग्रास रूट लेवल मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और कॉन्शियस हो जाते हैं ये सोच के कि अभी हमने बेबी को बर्थ दिया है और अभी हमें अपने आप को और प्रूव करना है इस समाज में, तो हम थोड़ा और ही करते हैं। सो द ओनली थिंग विच वी नीड इज अ लिटिल बिट सपोर्ट और एक वो जो कहते हैं ना एक ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द कलीग्स एंड एम्प्लॉयज, और अगर इसके साथ पॉलिसीज आ जाए जैसे अब क्रिकेटर्स के लिए पॉलिसीज आ गई हैं, सो नथिंग लाइक इट व्हेन यू नो कि आपके सपोर्ट पे पॉलिसीज भी खड़ी हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि वुमेन विल फील मोर सेफ टू रिटर्न टू देयर वर्क एम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे विल नो कि अब पॉलिसी इज ऑल्सो सपोर्टिंग देम और नोबडी कैन जस्ट टेक अवे देयर यू नो ड्यू विच इज
0: वो हैप्पीली वापस आना चाहेंगे अपने वर्क प्लेस में। बिल्कुल महिमा आपके पास आते हुए, जो मीनल भी बता रही थी आपके पास आते हुए, आपको क्या लगता है यहां पर कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है हमारा पहले से ही है उसके ऊपर वाकई बहुत काम करने की यहां पर जरूरत है, और न सिर्फ क्रिकेट में, अभी तो आईसीसी ये पॉलिसी लेकर के आई, मुझे लगता है कि भारत में जहां कहीं भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, हर जगह महिलाओं के लिए कुछ इसी तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए।
3: जी बिल्कुल, डेफिनेटली विमेन पॉलिसीज पहले से काफी बेहतर हुई हैं, ऐसा नहीं है, और बेहतर हो सकती हैं। अभी भी बहुत एरिया है जिसमें काम करना बाकी है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्रेगनेंसी का एक पॉलिसी आना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, IVF प्रेगनेंसीज होती हैं, जहां पे महिलाओं को बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया जाता है, उनके लिए ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है। तो खास करके प्रेगनेंसी के लिए अभी भी उतनी पॉलिसीज नहीं है कि बहुत सारी महिलाओं को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। कुछ कुछ कंपनीज में देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज में नहीं दिया जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम सब अगर थोड़ा सा वोकलाइज होके इस सब्जेक्ट को थोड़ा और एम्फसाइज करें कि प्रेगनेंसी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस कैसे स्ट्रांग करें कि ताकि महिलाओं को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, वर्क फ्रॉम होम दी जाए, अगर उनके डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया है, अगर उनका हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है और उनको घर से बाहर निकलना मना किया है, उनको ऑफिस से जॉब छोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो प्रेगनेंसी पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा अभी एम्फसाइज करना जरूरी है।
0: बिल्कुल मीनल, यहां पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो अभी अभी इन्होंने कहा महिमा ने, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जनरलाइज भी नहीं कर सकते हैं। इवन इफ अगर हम पीरियड्स की भी बात करते हैं तो हर महिला अलग अलग तरीके से उसको फेस करती है, किसी को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, किसी को प्रॉब्लम कम होती है, किसी का पेनफुल होता है, किसी का नहीं। सिमिलरली प्रेगनेंसी भी वैसी ही होती है, डिलीवरी भी, उसमें किसी को सिजेरियन अगर हुआ है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम लेगा रिकवर करने में उसकी बॉडी।
6: So I think यहाँ पर ना मुझे एक कंसेप्ट है ना, टू ग्लोरीफाई बाउंसिंग बैक, ये वाला प्रेशर वुमेन के ऊपर से हटा देना चाहिए। एंड यू नो द वे इट इज नॉट जस्ट इन द फिजिकल अपीयरेंस, अदरवाइज ऑल्सो यू नो जिस टाइप से प्रेशर बनाया जाता है तो वो आई बिलीव गर्ल्स और लेडीज अपने में इतना ले लेते हैं कि वी हैव टू बाउंस बैक टू आर ओरिजिनल फिगर ऑल्सो इन सिक्स मंथ्स,

0: बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मां बनने का मतलब कतई नहीं है कि अपने सपनों की जो उड़ान है, आपके जो पंख है, उसको आप काट दें या आप रोक दें। जो सिस्टम है तमाम, जो समाज है हमारा, आसपास जो लोग हैं, उन्हें अब साथ आने की जरूरत है, उन्हें खड़े होने की जरूरत है और अपने सोच को बदलने की जरूरत है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं, पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे।
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
6: अब मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: उसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो आमतौर पर निजी स्कूलों का ही नाम लिया जाता है, लेकिन वडोदरा का कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल सरकारी शिक्षा के सफलता का मॉडल बना है। शिक्षा और सुविधाओं के मामले में इस स्कूल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आलम यह है कि स्कूल की सीटें फुल हैं और एडमिशन के लिए लंबी लाइन है। स्कूल को नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ रहा है।
2: गुजरात के वडोदरा में यह है कवि दुला काग प्राइमरी स्कूल। स्कूल सरकारी है लेकिन पढ़ाई और सुविधाओं के मामले में बड़े बड़े निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। तभी तो ये स्कूल वडोदरा में माता पिता की पहली पसंद है। एडमिशन के लिए लाइन लगी है लेकिन यहाँ सीटें पहले से फुल हैं। कवि दुला काग स्कूल वडोदरा ने शाला प्रवेशोत्सव 2026 से पहले ही नो एडमिशन बोर्ड लगा दिया है क्योंकि सीटें भर चुकी हैं।
3: स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक हमें पूरे जो रूम गवर्नमेंट्स की ओर से दिए गए हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक हमने एडमिशन बच्चों को दिया है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट हमें और सुविधाएं देगी तो हम और एडमिशन भी कर सकेंगे। इस बार फर्स्ट टाइम हमने ये बोर्ड लगाया, लेकिन दो साल से बच्चों की 200 प्लस वेटिंग हमारे स्कूल में रहता ही है। अंग्रेजी मीडियम में 225 वेटिंग है और गुजराती मीडियम में भी 200 प्लस वेटिंग है।
2: असल में बात जब क्वालिटी एजुकेशन की आती है तो आमतौर पर निजी स्कूलों का ही नाम सामने आता है, लेकिन वडोदरा के कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल ने ये धारणा तोड़ दी है। 2010 में स्थापित और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित इस स्कूल ने लगातार अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन, आधुनिक ढांचागत सुविधाओं और विद्यार्थियों के विकास के सर्वांगीण दृष्टिकोण के लिए अपनी पहचान बनाई है।
4: अभी अभी न्यू शिफ्ट हुई हूं यहां पर मुंबई से, तो अभी मैंने तो ये ऑनलाइन सर्च किया था स्कूल, तो मुझे लगा नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल जैसा रहेगा यहाँ पर, तो मैंने तो ये सोचा कि चलो पैसे भी बच जाएंगे और ये सब सोच के मैंने इधर डाला था। पर इधर तो एकदम प्राइवेट से भी, मतलब जैसे प्राइवेट में फैसिलिटी रहता है ऐसा ही इसमें, और यहाँ पे अच्छा खाना देते हैं बच्चे लोग को, खाना और फिर नाश्ता भी रहता है और सुखड़ी देते, मतलब वो तो कितना हेल्दी रहता है ना, जैसे घी और उसके अंदर घी इतना डाला हुआ रहता है और काजू बादाम पिस्ता, मतलब वो मैंने भी खुद खाया हुआ है घर पे, बच्चे डिब्बे में लेके आती है, तो मेन फूड क्वालिटी भी अच्छा है और टीचर भी बहुत यहाँ पे सपोर्टिव है।
2: स्कूल की इन उपलब्धियों के कारण इसे गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना में भी शामिल किया गया है। सुविधाओं की बात करें तो 1700 स्टूडेंट्स वाले इस प्राइमरी स्कूल में एयर कंडीशन्ड कंप्यूटर और साइंस लैब, मॉडर्न लाइब्रेरी, इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासरूम, खेल का मैदान, औषधि बोटैनिकल गार्डन और हरा भरा सुंदर सुव्यवस्थित स्कूल परिसर, 3 बिल्डिंग और 24 क्लासरूम हैं। 9 और क्लासरूम अभी और मिलने वाले हैं। जाहिर है स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ेगी और इसके 2000 तक हो जाने की उम्मीद है।
5: जैसे कि यहाँ पे गेमिंग लेक्चर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए टूल्स है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड सॉक्स शूज इटीसी चीज़ें हमको दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे हमको बहुत मतलब मज़ा आता है पढ़ने में। यहाँ के टीचर्स वेल एजुकेटेड है और यहाँ पे जो टीचर्स हैं हम उनसे फ्रेंडली रहते हैं और हम उनसे कोई भी क्वेश्चन बिना किसी डर के या फिर बिना किसी तकलीफ के पूछ सकते हैं।
2: बच्चे इस स्कूल में आकर खुश हैं, जो बाहर हैं वो यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई की आधुनिक सुविधाओं के लिए मोटी फीस नहीं भरनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ देख कर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे क्या ऐसा भी होता है।
6: ये नन्हा पपी अपनी अनोखी अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क किनारे बैठा पपी ऐसे चलने की कोशिश करता है मानो उसके पैर काम नहीं कर रहे हो। राहगीर भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करता है अचानक सामान्य तरीके से दौड़ने लगता है। उसकी इस मजेदार हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया है। वीडियो देखकर कई लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग के मामले में ये पपी बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे सकता है। गांव की एक महिला ने देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। महिला ने पंखे में रस्सी बांधकर एक बाल्टी लटका दी और उसके चारों तरफ बर्फ जमा दी। पंखा घूमते ही बाल्टी भी घूमने लगी और कुछ ही समय में दूध से स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार हो गई। बिना किसी महंगी मशीन के अपनाई गई ये तकनीक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर इस देसी हुनर की जमकर तारीफ हो रही है। पक्षियों से प्रेम की कई कहानियां सामने आती रहती है, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। एक महिला कौए को अपनी गोद में सुलाकर उसे दुलार करती हुई नजर आती है। वो बड़े प्यार से उसके सिर और पंखों पर हाथ फेरती है और उसकी मालिश भी करती है। कौआ भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उसके पास आराम करता हुआ दिखाई देता है। इंसान और पक्षी के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बिहार का एक मासूम बच्चा अपनी नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। डांट पड़ने के बाद बच्चा गुस्से में अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चेतावनी देता नजर आता है। वो मासूम अंदाज में कहता है कि वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। हालांकि उसकी बातों में गुस्से से ज्यादा बचपन की मासूमियत झलकती है। प्रिंसिपल भी बच्चे की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो देखकर लोग बच्चे की भोली भाली नाराजगी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। माँ की सीख को गंभीरता से लेने वाला ये छोटा बच्चा इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चे को सिखाया गया था कि कोई भी चीज खाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि रसगुल्ला खाने से पहले उसे पानी में धोने लगा। हाथ में रसगुल्ला लेकर वो नल के पास रखे पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे खाता है। उसकी मासूम समझ और भोलेपन को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां, और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
11: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए जैसा जैसा मौसम होता जा रहा है ना, हमारे यहाँ जो चाय आती है, चाय का रंग मिजाज टेस्ट भी वैसा होता जा रहा है। आपको बता दें आज जो चाय हमारे यहाँ आई है उसमें लौंग भी है, है ना। सो अभी चूंकि बारिश का हल्का मौसम है, गला भी आपका सरगम खराब है।
12: हाँ, थोड़ा बहुत तो है वैसे, मतलब मौसम जो है गुड न्यूज तो लेकर आया ही है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत बीमारियां भी लेकर आता है,
11: तो उसके लिए है ना हमारी अच्छी वाली चाय
12: और सारी बातें भी
11: बिल्कुल। तो ये चाय की बात तो हम करेंगे, ये वो तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो जब तक सारी चर्चा होगी गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत सारी खबर आपको बताएंगे। लेकिन मानसून ने चुकी रफ्तार पकड़ ली है, उसकी खबर सबसे पहले होगी। 2 दिन पहले मानसून महाराष्ट्र में था, अब यूपी की दहलीज तक आ पहुंचा है, तो कैसे 9 दिन की सुस्ती के बाद फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है मानसून, इसकी हम बात करेंगे।
13: नमस्कार, मैं शुगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। भारत में मानसून का इंतजार तो बेसब्री से हो ही रहा है, तो वहीं यूरोप इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त फ्रांस के लोग झेल रहे हैं, तो कैसे गर्मी से चल रहा है यूरोप का ग्रीष्म युद्ध, इसकी तस्वीरें आई हैं, वो दिखाएंगे आपको।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच वास्तव। तो देखिए बात मौसम की तो करेंगे ही, क्योंकि मानसून का हम सभी को इंतजार है, और आगे बात भूकंप से ठीक पहले वेनेजुएला में आए उस अलर्ट की भी करेंगे, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। देखिए उसके बाद से ही ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या आपका स्मार्टफोन यानी कि आपका मोबाइल फोन भी भूकंप को भाप सकता है, तो इसके बारे में डिटेल से आगे होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन
15: टीआईटी भोपाल जेन ज़ी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स
11: चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्य का वरदान दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद भारत में 48 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा अमेज़न 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर होगा फोकस जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ कुत्ते की फोटो रेबीज वैक्सीन सर्टिफिकेट देना जरूरी आदेश तत्काल रूप से लागू
13: हैंगआउट के लिए कोटा का सिटी पार्क बना छात्रों की पहली पसंद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बिता रहे सुकून के पल
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को
13: पता नहीं ये इंतजार कब खत्म होगा इतना लंबा इंतजार खिंच जाएगा किसी को आइडिया नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में तो देखिए गुड न्यूज आ गई है कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई गुड न्यूज टुडे पर गुड न्यूज के साथ ही शुरुआत करते हैं और चाय पर चर्चा में इस वक्त की गुड न्यूज यही है कि एक तो लॉन्ग वाली चाय जिसके बारे में श्वेता ने शुरुआत में बता दिया इसके साथ ये जोड़ देते हैं कि इंतजार जो है देश के करोड़ों लोगों का वो फाइनली खत्म होगा क्योंकि गुड न्यूज ये आई है वेदर डिपार्टमेंट से कि मानसून अब पूरी स्पीड पकड़ चुका है मुंबई में जोरदार बारिश के बाद अब मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है मानसून ने और गर्मी की तपिश से फिलहाल लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है
12: बिल्कुल शगुफ्ता हम सभी बहुत लंबे समय से ये बात पूछ रहे थे कि मॉनसून कब आने वाला है और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि कुछ दिनों की सुस्ती के बाद अब मॉनसून की जो चाल है वो तेज हो गई है मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अब उसकी नजर उत्तर प्रदेश पर है ऐसे में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों की निगाहें भी आसमान और बादलों पर टिकी हुई है कि आखिरकार मॉनसून कब आएगा

0: सैटेलाइट मैप में बादलों में ढका ये हिंदुस्तान आज की सबसे खुशनुमा तस्वीर है। वजह है मौसम की सुपर रफ्तार। कुछ दिन पहले मॉनसून जिस तरह अटका था उसके बाद से चिंता जताई जा रही थी कि आखिर होने क्या वाला है, लेकिन मुंबई पहुंचकर मानो मॉनसून में जान आ गई और अब हाल ये है कि मॉनसून मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुका है, गुजरात के छोटे से हिस्से में एक्टिव हो चुका है और जल्द ही यूपी में भी एंट्री लेने वाला है। मॉनसून ने जो अब चाल पकड़ी है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मामला देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हो चला है। 9 दिन की देरी से चल रहा मॉनसून अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को इसने गुजरात और मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली। खास बात यह है कि पिछले अलनीनो वाले साल 2023 में भी मॉनसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश में दस्तक दी थी। फिलहाल मॉनसून पूरे महाराष्ट्र को कवर कर चुका है और अब तेजी से उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मॉनसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। रविवार से इसकी रफ्तार और तेज होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों में देश के बाकी हिस्सों तक भी मॉनसून पहुंच सकता है और झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। हालांकि मॉनसून की रफ्तार बड़ी है लेकिन बारिश का आंकड़ा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी भी देश में सामान्य से 42% कम बारिश दर्ज हुई है। जहां इस समय तक करीब 120 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी वहीं सिर्फ 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। देश के 71% जिलों को अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार है। ऐसे में अगले 10 दिन केवल देश ही नहीं बल्कि इन इलाकों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मॉनसून के जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की संभावना है, यानी अपने तय समय 27 जून से करीब 10 दिन की देरी से राजधानी में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। फिलहाल आसमान से संकेत अच्छे हैं, मॉनसून की रफ्तार भी संतोषजनक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मॉनसून की ये सुपर स्पीड बारिश के घाटे को पूरा कर पाएगी और क्या जुलाई देश के लिए मन भर मॉनसून वाला साबित होगा। अब ऐसे में तमाम सवालों की आबरू इन बादलों के बरसने पर ही टिकी है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए मुझे लगता है बारिश की तस्वीरें देख के सुकून मिलता है, नहीं?
2: We feel so good. हमें बाहर बिठा दो ना, हम बाहर बैठ के शो कर लेंगे, है ना?
1: यहाँ नहीं चेंज शगुफ्ता, लेकिन यहाँ नहीं, अभी गर्मी हो गई है वापस से।
2: हाँ अभी तो हो गई, मतलब मौसम अगर अच्छा है तो अपने ऑफिस का प्रेमिसेस काफी अच्छा है,
3: लेकिन थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, मॉनसून भी बस दस्तक देने ही वाला है, फिर बाहर बैठकर चाय पे चर्चा।
2: आपको तो नहीं जाने की, मैं ही मना कर दूंगी, सरगम नहीं जाएगी, सरगम स्टूडियो में, क्योंकि हम जानते हैं ना।
1: एग्जैक्टली, लेकिन देखिए फिर भी अगर भारत की बात करें, आप देखिए हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान ले लीजिए, महाराष्ट्र के कुछ विदर्भ के एरियाज ले लीजिए, दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी और अलग तरह की गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो भारतीय हैं कहते हैं ना कि जो जहां रहता है वो एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से। लेकिन अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो हम यूरोप की दिखाने जा रहे हैं। आपको दरअसल हम बता दें कि देखिए यहाँ क्लाइमेट को, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हीट वेव जो इस वक्त फ्रांस में चल रहा है उससे बहुत लोग परेशान हैं।
2: बिल्कुल, देखिए पूरे फ्रांस में भीषण गर्मी की वजह से पब्लिक लाइफ काफी प्रभावित हो रही है। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अस्पतालों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। अब ये मान लीजिए कि फ्रांस में ये हीट वेव लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
4: आमतौर पर जिन यूरोपीय देशों का मौसम सुहावना रहता है, उन यूरोपीय देशों में लोग आज बेतहाशा गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं। इन देशों में फ्रांस भी 46 डिग्री तापमान के चलते भीषण गर्मी की चपेट में है। लोग बाग घर के अंदर हों या बाहर, गर्मी की तपिश से बचने के लिए जरूरी उपाय आजमा रहे हैं। कई लोग बाजारों में चहलकदमी करते हुए हाथ के पंखे से ही खुद को कूल रखने की कोशिशों में जुटे हैं, तो कई लोग समर ड्रिंक से ही अपने सूखते हलक को तर करते दिख रहे हैं। इंसान ही नहीं, जानवर भी गर्मी के इस टॉर्चर से बचे नहीं हैं, सो उनको भी कुछ ऐसे वाटर थेरेपी के साथ गर्मी में कूलिंग दी जा रही है। यहाँ रहने वाले स्टीफन जैसे कई और लोग भी हैं जो ये चिंता जता रहे हैं कि अगर क्लाइमेट ऐसे ही बदलता रहा तो भविष्य का मौसम निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होगा।
5: Les générations futures vont pouvoir supporter plus de chaleur. Si c'est la journée, si c'est l'été le plus frais des 10 prochaines années, c'est inquiétant.
4: फ्रांस एक ऐसा देश है जहां एयर कंडीशन की सुविधा हर जगह नहीं है, इसलिए इस बार पड़ रही भीषण गर्मी का असर यहां के स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐतिहासिक इमारत और खेल इवेंट्स पर खासकर पड़ा है। इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव चल रही है, लोग गर्मी से परेशान हैं। स्थानीय हो या फिर बाहर से आकर यहाँ रह रहे लोग, सबको इस गर्मी का ताप झेलना पड़ रहा है।
6: Je trouve ça fait peur, surtout qu'on voit que les professionnels nous disent qu'après, ce sera encore plus chaud que ça. Donc non, franchement, ça fait pas plaisir, quoi, ça fait peur.
7: The day is hot, of course, but I think the worst part for me is the night. Like, you get so bad sleep compared to when it's a bit cooler. That's for sure my worst.
4: जाहिर है, जबरदस्त गर्मी और ऊपर से हीट वेव से लोग हलकान हो रहे हैं, कैसे न कैसे खुद को गर्मी से बचाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी का असर ये भी कि देर रात तक खुले रहने वाले आइफिल टावर को भी दोपहर में ही बंद किया जा रहा है, ताकि यहाँ के कर्मचारियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं यहाँ का ऐतिहासिक लूवर म्यूजियम भी बुधवार से शनिवार तक सामान्य समय से 2 घंटे पहले बंद रखने की जानकारी है। देश में पिछले एक हफ्ते से लू चल रही है और सूरज की तीखी तपिश को देखते हुए अब एहतियातन फ्रांस में हाई अलर्ट है, क्योंकि यहां गर्मी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी मेटियो फ्रांस ने जानकारी दी है कि बीते बुधवार यानी 24 जून को फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर गर्मी का एक नया रिकॉर्ड बना। इस रिकॉर्ड तोड़ तापमान ने बीते हफ्ते देश में चल रही हीट वेव के दौरान एक दिन पहले बने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बुधवार को पूरे फ्रांस में 24 घंटे का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार यानी 23 जून के मुकाबले 0.1 डिग्री ज्यादा था। राजधानी पेरिस में भी जून के महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज करने का नया रिकॉर्ड बना। पिछले हफ्ते शुरू हुई इस हीट वेव के दौरान फ्रांस में जून के महीने और अब तक के सबसे ज्यादा तापमान के कई स्थानीय रिकॉर्ड टूट गए हैं। बस ये समझिए कि फ्रांस समेत कई और यूरोपीय देशों में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। मौसम के जानकार मानते हैं कि अगर आने वाले दिनों में तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल तो फ्रांस के साथ पूरे यूरोप में ये हीट वेव लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात क्रिकेट की कर लेते हैं। तो टीम इंडिया के यंग बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी को आज कौन नहीं जानता, लेकिन वैभव ही नहीं बल्कि उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। 10 साल के आशीर्वाद स्थानीय क्रिकेट में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी कैसे सबको प्रभावित कर रही है, सबको इम्प्रेस कर रही है, इसके बारे में आगे आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वैभव को लेकर फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये कंफर्म है कि वो इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ होंगे, यानी वो इंडिया के लिए खेलने वाले हैं, मगर ड्रेसिंग रूम में उनके इंतजाम सबके साथ नहीं होंगे।
1: बिल्कुल, आपको बता दें ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी उम्र महज 15 साल है। ऐसे में वैभव अंडर 16 कैटेगरी में आते हैं, तो ब्रिटेन के कानून के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी को सीनियर खिलाड़ियों से अलग कैसे अलग ट्रीट किया जाएगा और कहां कहां वैभव को अपने साथी खिलाड़ियों के साथ रखा जाएगा, ये सबको जानिए इस रिपोर्ट में।
2: अब देखिए 15 साल की उम्र है, बल्ले से बड़े बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाला नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन इंग्लैंड दौरे पर इस युवा क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी चर्चा उसके छक्के नहीं बल्कि उसका ड्रेसिंग रूम बन गया है। इंग्लैंड के कानून और ECB के सख्त सुरक्षा नियमों की वजह से वैभव को सीनियर खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम दिया जाएगा।

0: जिस खिलाड़ी को क्रिकेट की दुनिया में तूफान कहा जा रहा है वो तूफानी बल्लेबाज इंग्लैंड पहुंच चुका है, वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ होंगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनके इंतजाम सबसे अलग होंगे। वजह है उनकी उम्र। महज 15 साल के वैभव अंडर 16 कैटेगरी में आते हैं। ब्रिटेन के कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र का खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम और शावर सुविधाएं साझा नहीं कर सकते। हालांकि वैभव टीम इंडिया के मुख्य ड्रेसिंग रूम में टीम मीटिंग, रणनीति और मैच से जुड़ी चर्चाओं में शामिल हो सकेंगे, लेकिन कपड़े बदलने के दौरान उनके लिए खास नियम लागू होंगे। ECB के मुताबिक तकनीकी तौर पर अलग कमरा जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प अलग चेंजिंग रूम ही है। वैभव के लिए यही नियम आयरलैंड दौरे पर भी लागू होंगे। यहाँ के क्रिकेट ग्राउंड में भारत को 3 अलग अलग कमरे दिए गए हैं ताकि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हो सके। ECB और क्रिकेट रेगुलेटर पहले से ही भारतीय मैनेजमेंट के संपर्क में हैं ताकि वैभव की सभी जरूरतों का ख्याल रखा जा सके। इस दौरे की एक और खास बात ये है कि वैभव के माता पिता पूरे टूर में उनके साथ रहेंगे। वो टीम होटल में ही ठहरेंगे। BCCI साफ कर चुकी है कि उनके माता पिता की यात्रा और ठहरने का पूरा खर्च बोर्ड उठाएगा। ECB का मानना है कि परिवार की मौजूदगी से युवा खिलाड़ी को हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। जाहिर सी बात है कि मैदान पर वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से सीनियर खिलाड़ियों की तरह धमाल मचाएंगे, अपनी उम्र से कम बड़े बॉलर्स की गेंदों की धुनाई करेंगे, लेकिन मैदान के बाहर उन्हें अब भी एक बच्चे की तरह विशेष सुरक्षा मिलेगी। यही वजह है कि क्रिकेट में शायद पहली बार किसी खिलाड़ी के शॉट से ज्यादा उसके ड्रेसिंग रूम की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हैं, जो इन आंकड़ों को से साफ समझ में आ जाएगा आपको। महज 10 साल की उम्र में आशीर्वाद ने अपने बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने 119 गेंदों पर शानदार 178 रन की विस्फोटक पारी 68 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का दम दिखा दिया है। आशीर्वाद की इस यादगार पारी में चौकों और छक्कों की जमकर बरसात देखने को मिली। उन्होंने 19 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आशीर्वाद ने बल्ले से कमाल दिखाया हो। इसी महीने एक स्थानीय मैच में उन्होंने 87 गेंदों पर 103 रन बनाकर शतक भी जड़ दिया। शगुफ्ता,
2: बिल्कुल पता नहीं किन किन का आशीर्वाद है इनके ऊपर, तभी ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और नाम भी ऊपर से आशीर्वाद है। अब देखिए, वैभव सूर्यवंशी की तरह आशीर्वाद के क्रिकेट सफर के पीछे भी उनके पिता की बड़ी भूमिका है। पिता खुद उनकी तैयारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और फिलहाल आशीर्वाद बिहार में क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आशीर्वाद अपने परिवार के 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। कम उम्र में उनकी तकनीक, उनकी टाइमिंग और आक्रामक अंदाज उन्हें भविष्य का उभरता हुआ सितारा बना रहा है।
3: और अब खबर एक्टर आर माधवन से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। माधवन तो पहले ही सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन जब वो पद्म सम्मान समारोह में पहुंचे तो उनकी घड़ी ने भी सुर्खियां बटोर ली। क्यों, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
4: श्री माधवन रंगनाथन, कला अभिनय।

0: माधवन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल होने की वजह उनका पद्म सम्मान भी है और दूसरी वजह उनकी ये स्पेशल घड़ी भी है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में हुए पद्म सम्मान समारोह में सबकी निगाहें माधवन पर रही, तो साथ ही साथ उनका शानदार लिबास और खास तौर पर उनकी ये घड़ी भी चर्चा में आ गई। ये घड़ी क्यों खास है और ये घड़ी इतनी महंगी क्यों है, इसकी भी वजह दिलचस्प है। असल में माधवन की ये घड़ी न केवल बेशकीमती है बल्कि एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है। दुनिया भर में सिर्फ 10 लोगों के पास ये घड़ी है। जाहिर है पद्मश्री सम्मान की खास घड़ी पर माधवन ने ये अनूठी घड़ी पहनी तो इसकी चर्चा होना लाजमी है, और इसलिए भी कि ये घड़ी न केवल लाखों की है, कीमत के हिसाब से इसकी खूबियां भी काबिले गौर हैं। बताया जा रहा है कि माधवन की ये घड़ी टाइटन नेबुला जलसा रेंज की है। 40 लाख की ये घड़ी 18 कैरेट रोज गोल्ड केस से सजी है। इसके मार्बल डायल पर एक मिनिएचर पेंटिंग लगी है। घड़ी पर लगी पेंटिंग जयपुर के हवा महल से इंस्पायर्ड है। माधवन के लिए बड़ी बात है कि जब उनके जीवन में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित होने की घड़ी आई तो ये शानदार घड़ी उनकी कलाई पर मौजूद रही, और उस ऐतिहासिक घड़ी की गवाह ये घड़ी भी बनी जब माधवन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वैसे जितनी तारीफ की जाए मैडी की उतनी कम है ना?
2: बिल्कुल, अभी मैं आपको किस्सा भी बता रही थी,
1: इंटरेस्टिंग वाला
2: किस्सा। देखिए, अब लगता है कि माधवन यहाँ पहुंच गए, लेकिन कभी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे जमशेदपुर में। आपको बता दे एक छोटा सा किस्सा, जमशेदपुर में जिस एरिया में हम रहते थे उसको सुनारी बोलते हैं, उसके पास एक एरिया था, वो उसे कदमा कहते हैं। तो ये कदमा में रहा करते थे, और एक बार जब वो वहां पर आए थे, टाटा वालों का एक अपना एरोड्रोम है, एरोड्रोम ही उसको बोलते हैं, वो प्राइवेट एयरपोर्ट है उनका, तो उनके ऑफिसर्स आते हैं, तो उसमें एक बार आए थे और मैंने बहुत कोशिश की थी उनसे मिलने की, लेकिन समाओ मैं मिल नहीं पाई। बट हाँ, बहुत खुशी होती है कि आपके शहर से कोई इतना बड़ा नाम आज यहाँ पर पहुंचा है।
1: चलिए रुक को डाइवर्ट करते हैं थोड़ा सा और अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। भोलेनाथ की नगरी काशी को विकास की नई सौगात मिलने वाली है। अगस्त महीने में रोपवे की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लोग वाराणसी कैंट से सीधे गोदोलिया जा सकेंगे और वहां से आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे।
2: देखिए, बड़ी बात यह है कि ये दूरी महज 16 मिनट में ही की जा सकेगी, वो भी बिना किसी ट्रैफिक या फिर भीड़ भाड़ के। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोपवे सेवा के किराए को भी तय कर दिया है, जो कि काफी हद तक बजट फ्रेंडली है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा था, उस ख्वाब को साकार करने में बाबा भोलेनाथ की नगरी में बन रहा ये रोपवे एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। बनारस एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा शहर होगा जहां घनी आबादी के बीच लोग जल्द ही रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। रोपवे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। कैंट से गोदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। माना जा रहा है अगस्त से इसका संचालन शुरू हो जाएगा।
1: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है, क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहां पहुंचने वाले यात्री, तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
0: काशी की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक वाले शहर के विकास में गोंडोला राइड गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक की जिस दूरी को पूरा करने में अभी 45 मिनट का वक्त लगता है, रोपवे के जरिए उसे महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस आसमानी सफर से पर्यटकों को न सिर्फ काशी का विहंगम दृश्य दिखाई देगा बल्कि काशी विश्वनाथ का दर्शन अब और भी आसान और सुलभ हो सकेगा।
2: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आएंगे तब
3: बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुंच जाओगे बाबा के यहाँ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए।
4: रोपवे के साथ साथ हम लोग को तो बेनिफिट होगा ही, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बीमार लाचार हैं, जो महिला बच्चे हैं, उन लोग को रोपवे से आने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से दर्शन करेंगे, उनको किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होगा। हम लोग के साथ सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
5: सफर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है, हम लोग आते हैं ना बहुत दिक्कत होती है। रोपवे से बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और इस सुविधा ज्यादा हो जाएगी।
0: करीब 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 5 स्टेशन होंगे, कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया। रोपवे पर करीब 150 गोंडोला होंगी जिनसे यात्री सफर कर सकेंगे। एक गोंडोला में एक बार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। हर घंटे रोपवे से तकरीबन 3000 यात्री सफर करेंगे। रोजाना करीब 1 लाख यात्री सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बड़ी बात यह भी है कि रोपवे की टिकट भी बजट फ्रेंडली रखी गई है। कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक अधिकतम किराया 50 रुपए होगा, जबकि हर एक स्टेशन के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए चुकाना होगा, जबकि पूरे गोंडोला की बुकिंग 2000 रुपए में की जा सकेगी।
6: इसमें आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक 50-50 रुपीस, अगर कोई यात्री यहाँ उतरते हैं और वहाँ उतरते हैं तो 50 रुपये का है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग हम जैसे अगर आप विद्यापीठ में उतरेंगे 10 रुपये का है। तो ओवरऑल पूरा होल स्ट्रेस के लिए 50 रुपया है। अगर वहाँ पे स्मार्ट पास लेंगे, जैसे आप लोग मेट्रो में देखते हैं स्मार्ट मास्क पार्ट लेते हैं, तो हम लोग 20% वहाँ पे डिस्काउंट का प्रोविजन रखे हैं सरकार ने। और इसके लिए और प्रीमियम गंडोला का भी प्रोविजन है। कोई कलेक्टिवली किसी एक गंडोला को ये लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये का उसका किराया निर्धारण की गई।
0: तो बस चंद दिनों का इंतजार, जब बाबा भोलेनाथ की ये प्राचीन नगरी आधुनिक तकनीक और सनातनी संस्कृति के अद्भुत मेल की गवाह बनेगी और वाराणसी के बाशिंदे से लेकर सैलानी तक रोपवे से इस आसमानी सफर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या वाकई भूकंप से पहले वेनेजुएला में लोगों के स्मार्टफोन पर आया था अलर्ट।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चार पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
9: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। भारत में 48 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा अमेजॉन, 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर होगा फोकस, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी इससे मजबूती। हैंगआउट के लिए कोटा का सिटी पार्क बना छात्रों की पहली पसंद, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बिता रहे हैं सुकून के पल।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो
7: तो देखिए, बीते 24 जून को वेनेजुएला में सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप आया, यहाँ 7.1 और 7.5 तीव्रता वाले दो पावरफुल भूकंप आए, कई इमारतें ढह गईं और बड़े पैमाने पर काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन यहाँ पर भूकंप के दौरान गूगल ने कई यूजर्स को झटके महसूस होने से ठीक पहले अलर्ट भेज दिए थे। ऐसे में आपको लगता है कि हमारे फोन में अगर अलर्ट आ जाए तो भूकंप जैसे सिचुएशन से हम निपट सकते हैं।
9: आजकल भी तो आ रहे हैं ना, कितने सारे अलर्ट हमने फोन में अभी डाउन किए हैं, लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी आई थिंक सरकार की तरफ से, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। पहले आप अवेयर नहीं थे इस बारे में, अब आप अवेयर हो जाते हैं।
12: बिल्कुल, अभी रिसेंटली हम अभी देखे होंगे शगुफ्ता, मैं जब अभी हाल फिलहाल नागपुर से आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एकदम से हम सारे लोग बैठे हुए थे और वहां पे अलार्म जैसे बजता है, वैसे फोन पे अलार्म बजा और जब मैंने चेक किया बाकी लोग चूंकि वहीं रहते हैं तो वो लोग आराम से थे, मैंने कहा ये क्या है, देखा तो पता चला कि उसमें ये लिखा हुआ था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक आपको लग सकता है, इसीलिए घर से बाहर ना निकले। तो ऐसा अलर्ट मैंने पहली बार देखा था। फिर अभी कुछ दिनों से हम दिल्ली NCR में देख रहे हैं शुभता, हाँ। कि तेज आंधी बारिश आएगी आपके इलाके में और वो भी लिखा रहता है कि अगले 3 घंटों में 80 से 100 के स्पीड में हवा यहाँ चलेगी, तो तमाम चीजें रहती है, तो ये बहुत मददगार
9: हो सकता है। अब देखिए, इस त्रासदी जिसकी हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक, ऐसी सिचुएशन को भांपने का तरीका निकाला है गूगल का ये एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम, फिर से चर्चा में है, अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। तो चलिए यहाँ आपको ये बताते हैं और समझाते हैं कि सिस्टम भूकंप के झटके महसूस होने से पहले यूजर्स को अलर्ट कैसे भेज देता है।
13: क्या आपका स्मार्टफोन भूकंप आने से पहले आपको चेतावनी दे सकता है? सुनने में भले किसी साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन अब ये हकीकत है। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्हें झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले ही गूगल का अलर्ट मिल गया था। तो क्या ये दावे सही है, और अगर सही है तो क्या गूगल को भूकंप से पहले झटकों की जानकारी मिल सकती है? वेनेजुएला में भूकंप के बाद तमाम लोगों के दावे कितने सही है इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन गैजेट के जानकार मानते हैं कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा भूकंप सेंसर भी है। दरअसल हर आधुनिक स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर नाम का एक सेंसर लगा होता है, यही सेंसर फोन की स्क्रीन को घुमाने का काम करता है, लेकिन इसके साथ ही ये कंपन को भी महसूस कर सकता है। जब किसी इलाके में जमीन के भीतर हलचल शुरू होती है तो वहाँ मौजूद एंड्रॉइड फोन उस शुरुआती कंपन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद फोन गूगल के एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है। अगर एक ही इलाके से बड़ी संख्या में फोन ऐसे सिग्नल भेजते हैं तो गूगल के सर्वर समझ जाते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को तुरंत चेतावनी भेज दी जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भूकंप की शुरुआती तरंगे और नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे अलग अलग होती है। भूकंप के दौरान सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है जो बेहद कमजोर होती है लेकिन बहुत तेज गति से चलती है। इसके बाद एस वेव आती है जो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्मार्टफोन पी वेव को महसूस कर लेता है और कुछ ही सेकंड में गूगल तक सूचना पहुंच जाती है। इस दौरान गूगल के पास लोगों को चेतावनी भेजने का समय मिल जाता है। गूगल का दावा है कि दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा एंड्रॉइड फोन एक नेटवर्क का हिस्सा है, यानी करोड़ों स्मार्टफोन मिलकर एक विशाल भूकंप चेतावनी प्रणाली की तरह काम कर रहे हैं। अलर्ट भी 2 तरह के होते हैं, हल्के झटकों के लिए बी अवेयर अलर्ट और तेज झटकों के लिए टेक एक्शन अलर्ट कहा जाता है। इन अलर्ट के साथ सुरक्षा संबंधी जरूरी जानकारी भी दी जाती है। भूकंप को शुरुआती झटकों को भाप कर अलर्ट भेजने की सुविधा भारत में भी 2023 से मौजूद है। एंड्रॉइड 5 या उससे ऊपर के ज्यादातर मोबाइल इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते उनका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: चलिए अब बात कर लेते हैं ब्राजील में रह रही 3 बहनों की जो अपनी उम्र को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही है। इनकी उम्र आपको बता दें कि 100 साल से ऊपर है। गिनीज बुक में तो इनका नाम आया ही है। अब इन पर रिसर्च करने की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक। ये समझना चाह रहे हैं कि भाई 100 साल तक कोई कैसे जिंदा रह सकता है।
9: मुझे मतलब तो डाउट लगता है आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए। दिस इज सीरियसली इंस्पायरिंग कि
12: exactly.
9: किस तरह का लाइफस्टाइल होगा, किस तरह की जीवन शैली इनकी होगी कि 100 साल से ऊपर की ये उम्र जी पाए।
7: शगुफ्ता, कई रिपोर्ट्स भी इनफैक्ट आ चुके हैं कि आप कैसे 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। बट आप देखिए इस केस में सबसे खास बात क्या है कि 3 बहनें हैं। आप अपने सिब्लिंग्स के साथ पूरा लाइफ लॉन्ग उनके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं और वो 100 साल की उम्र के बाद भी एक साथ है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें सबसे ज्यादा उम्र दराज महिलाओं के तौर पर चिन्हित किया है।
12: बिल्कुल, आपको बता दें कि इन तीनों को गिनीज ने दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र दराज जीवित बहनों के रूप में चिन्हित तो किया ही है, साथ ही अब रिसर्च भी इन पर होने वाली है।
14: तस्वीरों में नजर आ रही ये 3 बहनें बेहद खास हैं। अपनी उम्र को लेकर ये खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली की उम्र 109 साल, दूसरी 104 साल और तीसरी बहन 103 साल की हैं। लेकिन इतनी बढ़ती उम्र में ठीक तरीके से चलना फिरना, खुद को संवारना, रोजमर्रा के काम करना और सबसे बड़ी बात अपने आसपास की हलचलों को बखूबी समझना, इस तिकड़ी की यही उपलब्धियां दुनिया को हैरान कर रही हैं। यही वजह है कि अब इनकी लंबी उम्र के राज को समझने की कोशिशें हो रही हैं। आज ब्राजील की इन तीनों बहनों की कुल उम्र 316 साल है और इन्हें इसी महीने गिनीज ने दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज जीवित बहनों के रूप में चिन्हित किया है। दरअसल इन तीनों बहनों के जरिए रिसर्च करने वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लंबी उम्र का आखिर राज क्या है। शायद बहनों की इस तिकड़ी की मदद से इसका जवाब जानने में रिसर्चर्स को मदद मिल पाए।
15: A partir do exame de DNA, a gente procura os genes protetores. Tá? E a gente sabe que são vários, não é um só. Então, quanto mais pessoas a gente tiver que passam dos 100 anos, e principalmente famílias com vários centenários, maior vai ser a precisão da pesquisa no sentido de identificar esses genes de longevidade.
14: दरअसल साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट मयाना जेट्स की अगुवाई में एक स्टडी हो रही है जिसके तहत डीएनए लॉन्गवे प्रोजेक्ट नाम का एक अध्ययन किया जा रहा है। इस स्टडी का मकसद उम्र बढ़ने के पीछे के बायोलॉजिकल कारणों का पता लगाना है। इन तीनों बहनों के मामले से मिली जानकारी वैज्ञानिकों को ये बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उम्र में भी शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत क्यों बने रहते हैं। इस रिसर्च के तहत 90 से 100 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना उन लोगों से की जाएगी जिनमें कमजोरी, मानसिक क्षमता में गिरावट या पुरानी बीमारियां हैं, ताकि लंबी उम्र से जुड़ी खूबियों का पता लगाया जा सके। इन तीनों में से 104 साल की बुजुर्ग जोरेट बताती हैं कि उनकी इतनी उम्र तक जीवित रहने के पीछे उनकी माँ का बेहद अहम रोल रहा है, जो खुद भी 100 साल तक जीवित रही।
16: Segredo vem desde do nascimento. O principal, a alimentação materna, que é importante demais. E a minha mãe, que era uma mulher que vivia para a família, ela amamentava até não poder mais, até entrar na outra alimentação. E a outra alimentação, ela fazia em casa, com tudo plantado em casa.
14: वहीं 103 साल की जुलीना और 109 साल की लेविटा कहती हैं कि अच्छा वातावरण और सेहतमंद खाना उनकी सेहतमंद उम्र के एक बड़े फैक्टर रहे हैं। उस समय को उन्होंने अपने बचपन और जवानी में खूब जिया, जिसका फायदा उन्हें आज तक मिल भी रहा है।
17: Pegar peixe, depois ia cozinhar o peixe e depois ia fazer caranguejo, pirão de caranguejo, muito bom. É isso que a gente tá aqui, porque tudo era bom, tudo fresco, não tinha geladeira, não.
18: Eu tive uma infância boa, e adolescente também. Até eu ser boa, não vou reclamar, né?
14: तीनों बहनों की ये टिकरी अपनी बेहतरीन उम्र के लिए सेहतमंद पर्यावरण, अच्छा और पौष्टिक खाने को ही क्रेडिट देती हैं और आज भी दुनिया के लिए ये जरूरी फैक्टर्स हैं। यही वजह है कि साओ पाउलो यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर्स इन तीनों बहनों के डीएनए को एनालाइज करने जा रहे हैं, जिससे इनके जेनेटिक्स का अंदाजा लगाया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि इनकी लंबी उम्र के पीछे उनके पूर्वजों की कितनी अहम भूमिका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए अब आपको जंगल से आई हुई गुड न्यूज देते हैं। तीन अलग अलग जगहों से आई है ये शानदार खबरें, जिसमें कई जंगली जानवर चहलकदमी करते हुए कैमरा में कैद हुए हैं। कहीं जंगल में घूमती हुई बाघिन, कहीं एशियन लेपर्ड कैट का रेस्क्यू, तो कहीं ट्रेंड हाथियों संग इंसानों की गश्ती का वीडियो, जिससे जानवर और इंसान के बीच पनप रहे संघर्ष को कम किया जा सके।
19: छत्तीसगढ़ में गरिया बंद के इन जंगलों में अब बाघ की दहाड़ सुनाई देने लगी है। ये तस्वीरें गरिया बंद के उदती सीता नदी टाइगर रिजर्व की है। यहाँ लंबे अरसे के बाद एक बाघिन के पाए जाने की तस्दीक की गई है। वैसे तो इस जंगल में तमाम जानवर पाए जाते हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित इस अभयारण्य में बाघों की कमी रही है। लेकिन अब NTCA कैमरा और AI की मदद से की गई निगरानी के बाद ये गुड न्यूज मिली है कि एक बाघिन इस इलाके को अपना आशियाना बना रही है।
20: उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में जो अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 जो जारी है, उसके अंतर्गत जो है एक सुखद परिणाम सामने है, जिसमें एक बाघिन ये जो है फोटोज और वीडियोज जो है लगातार ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं, और ऐसी आशंका है कि वो अपने जो है अपनी टेरिटरी जो है इस टाइगर रिजर्व में बना रही है। ये 8 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई बाघिन ने जो है उदंती को अपना घर बनाया।
19: अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मणिपुर में मिले अनोखे प्राणी एशियन लेपर्ड कैट की। इसे मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के क्वातका गांव के एक घर से रेस्क्यू किया गया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गांव के एक घर में इसी प्राणी के छिपे होने की खबर मिली थी, और इसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसके बारे में खबर दी, तो इसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया। माना जाता है कि प्रिंडेलर्स बेगालेंसिस प्रजाति के इस प्राणी का वजूद अब खतरे में है, लिहाजा इस इलाके में इसके पाए जाने से इसके बचे रहने की उम्मीद बढ़ गई है। अब आपको दिखा रहे हैं केरलम के पलक्कड़ की खास तस्वीरें। ये तस्वीरें उन हाथियों की हैं जिन्हें कुमकी हाथी कहा जाता है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित हाथी पलक्कड़ के इस जंगली इलाके में इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष को रोकने में मददगार साबित हो रहे हैं। इलाके में इन हाथियों की मदद से गश्त लगाई जा रही है, ताकि जंगल में लगाई गई सोलर फेंसिंग पर नजर रखी जा सके और जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी बचाव हो सके।
1: Now we have started our patrolling, that too day driving operation and night patrolling. And we are not doing the same time patrolling. Like we are doing, our three teams are going and different times they are doing the patrolling. Sometimes like 8 p.m. to 11, sometimes 10 to 2, sometimes 2 to 5. And this time we are not doing the patrolling at the boundary. So inside some coop road we have done our patrolling. So when we are doing the inside patrolling and while doing the patrolling, we are inspecting our solar fencing under mission solar fencing, and we are making sure the वोल्टेज शुड बी मेंटेन्ड एंड आवर सोलर फेंसिंग शुड बी प्रॉपरली फंक्शनल।
21: मकसद यही है कि जंगली जानवरों खास तौर से जंगली हाथियों को इंसानी बस्तियों की ओर जाने से रोका जा सके और नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: देखिए गोवा का जिक्र जब भी होता है तो आमतौर पर हमारे जहन में समंदर और बीच की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन आज हम आपको गोवा की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो गोवा की संस्कृति और परंपरा का अद्भुत मेल दिखाती है।
12: आपको बता दें 24 जून को गोवा में बेहद रोमांचक साओ जोआओ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे एक ओर मानसून के आने का प्रतीक भी माना जाता है तो दूसरी ओर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मोत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है।
22: गोवा की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपरा का अनूठा संगम है साओ जोआओ, जून के महीने में मनाया जाने वाला सबसे चर्चित और अनोखा उत्सव, जिसे मानसून की शुरुआत का प्रतीक कहा जाता है। हर साल की तरह 24 जून को कैथोलिक ईसाई समुदाय ने इसे बेहद उत्साह के साथ मनाया। वैसे तो ये उत्सव पूरे गोवा में ही मनाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोवा के सियोलिम गांव में इसका सबसे भव्य और पारंपरिक आयोजन होता है। यहां सजी धजी पारंपरिक नावों की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत का जश्न देखने लायक होता है। परंपरा के मुताबिक लोग ताजी पत्तियां, लताओं और फूलों से बने खूबसूरत और रंगीन मुकुट पहनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोपेल कहा जाता है। ये प्रकृति की प्रचुरता और हरियाली के प्रति आभार जताने का तरीका है।
23: बढ़िया फेस्टिवल है, एंजॉयमेंट है, पूरा पब्लिक भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं।
22: ये उत्सव ईसा मसीह के समकालीन संत जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत चर्च में उत्सव के दौरान कई युवा पारंपरिक वेशभूषा में नावों पर नाचते नजर आए तो कई लोग किनारे मस्ती करते इस उत्सव का गवाह बने। परंपरा के मुताबिक लोग संत जॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए कुओं, नदियों और तालाबों में कूदते हैं। इसे खुशी की छलांग कहा जाता है। इस त्योहार के जरिए परिवारों और ग्रामीणों को नवविवाहित बेटियों के पतियों के साथ घुलने मिलने और जश्न मनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। गोवा से रावाजी दत्ताराम देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: चलिए यहाँ रुकेंगे इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि 80 साल के बुजुर्ग का टूटा हुआ वायलिन देख मदद करने को कैसे आगे आए आनंद महिंद्रा।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इस

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: News Pak. Rah Sachaiki, Rad Novaji.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: देखिए 32 नामी गिरामी एक्टर्स अगर एक साथ एक फ्रेम में हो या फिल्म में हो तो डायरेक्टर के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
9: बिल्कुल, तो डायरेक्टर अहमद खान ने कैसे इस चुनौती का सामना किया और कैसे उन्होंने एक्ट्रेस फरीदा जलाल को एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर फिल्म में शामिल किया है। अक्षय कुमार और फरीदा जलाल ने ऐसे तमाम सवालों के बड़े ही इंटरेस्टिंग जवाब देखे, आप भी देखिए।
10: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
11: एक जबरदस्त कहानी है।
12: और टाइटल क्या है फिल्म का?
11: वेलकम टू द जंगल।
13: आप क्या करें, आपने तो जान लिया आदि सच्चाई।
14: इसमें जानने की बात नहीं है, इन्होंने इनको पता है कि ये कॉमेडी फिल्म है तो आपकी भी छवि मस्ती वाली ही होगी।
13: होगी हाँ, यार एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन, वो तो है। अब देखिए आप जाके फिल्म कि किस किस्म की मस्ती है, क्या टोन है, क्या रिदम है, क्या डायलॉग है, क्या एक्शन है, बस देखते जाइए।
14: एक मुझे बात बताइए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने फरीदा जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हमने इनको हमेशा सीरियस रोल, हमने इनको ट्रेजेडी, रोना धोना, उन सब रोल इमोशनल रोल्स में हमेशा देखा है। यहाँ तक मुझे याद है ये इन्होंने मेरी एक माँ का रोल, मेरी माँ का रोल भी किया था, ऐलान फिल्म, वन ऑफ द वेरी वेरी वेरी गुड फिल्म विच आई विल ऑलवेज रिमेम्बर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सो लेकिन इनका कभी हमने कॉमेडी में रूप नहीं देखा है। मैं ये कह सकता हूँ, और इतने सारे एक्टर हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे एक्टर हैं, आप फिल्म देखने के बाद सबसे पहले आप इन्हीं को याद करेंगे कि क्या कॉमेडी की है। इन्होंने कभी कॉमेडी ज्यादा की नहीं है, लेकिन इस फिल्म के

0: अंदर इन्होंने जो कॉमेडी की है वो अलग बात है, थोड़ा सा इनके हाथ पैर जोड़ने पड़े थे कि ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने जो करके दिखाया वो।
1: अब आप जब फिल्म देखे तब आप समझोगे कि क्या क्या है। That's very understand. सबसे बड़ी बात तो अहमद सर आए थे हमारे घर, वो मेरा बेटा है, ही इज जस्ट लाइक अ सन टू मी, एंड उनके लिए तो मुझे करना ही था चाहे कुछ भी था, बट व्हेन ही नरेटेड समथिंग ऑफ द फिल्म आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई सेड यस विद फुल जोश एंड फुल कमिटमेंट। एंड सेट पे जाने के बाद जो हुआ वो तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप चाहती हूँ चाहे आप फिल्म में ही देखे, कुछ और ही हो गया सेट पर। एंड थैंक्स टू दिस जेंटलमैन नेक्स्ट टू मी, माय डार्लिंग, आई लव यू अक्षय, व्हाट यू डन टू मी, सो दैट्स इट।
0: 32 एक्टर थे, कोई आता था कोई जाता था, कोई
1: बहुत
0: कभी कभी कभी उसमें से सिर्फ 14 जन होते थे, 16 जन होते थे। तो उस फिल्म को, इस फिल्म को एक एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में अपने रखना, वो एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन का ही काम हो सकता है, और वो और उस टेक्नीशियन को एक एडिटर भी होना पड़ेगा। तो इसने एक समझदारी का काम किया था अहमद ने, उसने क्या किया था, अपने जो एडिटर था उसको एक टेंट दे दिया था, जैसे ही शॉट होता था वो शॉट उस एडिटर के पास चला जाता था और वो एडिट करता था। एडिट करके से ना उसको पता चल जाता था कि ये शॉट मिसिंग है, ये शॉट में ये होना चाहिए, ये शॉट में ये होना चाहिए, अगर इस एंगल मिलेंगे ये दो एक्टर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कैमरा को घुमा के इस एंगल से ले लेते हैं। एंड दैट ओनली अ गुड टेक्नीशियन कैन डू, विच ही मैनेज्ड इट अलोंग विद द देयर इज नथिंग बिगर देन द कैरेक्टर, द कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। सुनील्स कैरेक्टर हैज टू put me down because he doesn't like me in the film. Mujhe bhi mauka milta, I have to put Sunil down because I don't like him. Ab, it is not, how can you make a film if you start taking things personally? You cannot take personally. So that is what the whole thing is. And that is what I was also trying to explain her. Jab pehle din hum mile the, maine inko kaha tha, ma'am, aisa aisa koshish kar lete, aap try to kariye. Pehle thoda hichkichaye, phir unhone kiya, किया तो ऐसा किया, आई कैन नेवर फॉरगेट।
2: अरे तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं।
3: वो कांता भाई फटके मारने ना तो जमीन पे मार इधर।
2: तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उस पे लगाऊं क्या?
4: एक मिनट एक मिनट, ये बात बात पे झगड़ा क्या करते हो यार?
5: ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है।
4: गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर, हां तो तू रिक्शा कर जा,
2: बाहर में जाओ तुम लोग।
4: आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल।
6: ट्रेलर खत्म, पैसा हजाम।
7: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: एक बुजुर्ग जो किसी शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोजाना कई घंटों तक सड़क किनारे एक टूटा वायलिन बजा रहे हैं, इनका ये इमोशनल कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए कोलकाता की सड़कों पर वायलिन बजाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करने वाले 80 साल के बुजुर्ग भगवान मलिक, जिनकी संघर्ष भरी कहानी सोशल मीडिया पर आने के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 80 साल के इस गरीब बुजुर्ग के हुनर की तारीफ की और उनकी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया है।
1: चलिए इसी के साथ चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना ही, कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी ढेर सारी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। भारत में 48 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा अमेजॉन, 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर होगा फोकस, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। महाराष्ट्र के होटल और रेस्टोरेंट को एफडीए के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त में पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। हैंगआउट के लिए कोटा का सिटी पार्क बना छात्रों की पहली पसंद, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बिता रहे हैं सुकून के पल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। पिछले एक दशक में भगवान भोले की नगरी काशी का कायाकल्प हो चुका है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी आधुनिकता के रास्ते पर फर्राटा भरती जा रही है। इसी कड़ी में काशी को आज मिली है एक और अनोखी सी सौगात। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी के लाल बहादुर एयरपोर्ट पर देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज कर दिया। यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर राम मोहन नायडू ने इस इजी कनेक्ट सर्विस की शुरुआत कर दी है। हब एंड स्पोक मॉडल का लाभ काशी के लोगों के साथ ही यहां आने वाले विदेशी सैलानियों को भी मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, तो जवाब जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।

0: जब भी मैं वाराणसी आता हूँ एक अलग शक्ति का महसूस यहाँ पे करने को मिलता है। यहाँ की हवा हो, पानी हो, धरती हो, मिट्टी हो, हर चीज में, हर कंकर में शंकर की शक्ति यहाँ पे नजर आती है। तो हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है ये।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पहली बार सांसद बनने के बाद से विकास के राजमार्ग पर लगातार फर्राटे भर रही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी ने गुरुवार को कामयाबी की एक और माइलस्टोन इबारत लिखी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने हब एंड स्पोक विमान सेवा का शुभारंभ कर काशी को वैश्विक मानचित्र के महत्वपूर्ण शहरों के बीच स्थापित कर दिया है। रामबाबू नायडू ने चार यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर सिविल एविएशन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली शानदार सौगात काशीवासियों को दी। आपको बता दें कि हब एंड स्पोक मॉडल देश में पहली बार काशी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुरू हुआ है।
0: हिस्सा है कि हब एंड स्पोक ऑपरेशन जो काफी दिन से भारत इंतजार कर रहा था कि कब शुरू होगा, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आज हमारे भारत में इतिहास रचाने वाली ये वाराणसी धरती से आज शुरू हो रही है। इसके लिए हम सबको आनंद भी है, गौरव भी है।
1: हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होने के पहले दिन 180 यात्री विमान से रवाना हुए, जिसमें से 26 यात्रियों को दिल्ली से 6 अलग अलग देशों की कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गई। इसमें 3 विदेशी यात्री भी शामिल रहे। आपको बता दें कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुरू हुआ देश का पहला हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ से विदेश जाने वाले यात्रियों की हर मुश्किल को आसान कर देगा। हब एंड स्पोक मॉडल का उद्देश्य देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों से बड़े पैमाने पर आसान इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस सेवा के शुरू होने के बाद विदेश जाने वाले यात्रियों का इमिग्रेशन क्लियरेंस वाराणसी एयरपोर्ट पर ही हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक बार लगेज चेकिंग हो जाने के बाद बड़े एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए दोबारा इसकी जरूरत नहीं होगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान में बोर्डिंग होने के बाद 17 इंटरनेशनल शहरों के लिए आसानी से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी। साफ है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत वाराणसी जैसे शहरों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, जहां से यात्री आसानी से एयर इंडिया के बड़े नेटवर्क का एक्सेस पा सकते हैं।
2: अब वाराणसी का यात्री अपने इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत यहीं से करेंगे। चेकिंग, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रिया यहीं पूरी होगी। उसके बाद वह दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट के माध्यम से दुनिया के विशिष्ट गंतव्यों तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेंगे बिना पुनः इमिग्रेशन, कस्टम अथवा बैगेज चेकिंग की औपचारिकताओं के से गुजरे। यह केवल पैसेंजर कन्वीनियंस का विषय नहीं है, यह भारत की एविएशन सॉवरेंटी का भी एक प्रश्न है। दशकों तक भारत के अनेक यात्री विदेशी हब्स पर निर्भर रहे, आज हम उस व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय यात्री विश्व से जुड़ने के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स और भारतीय एयरलाइंस को अपनी पहली पसंद बनाएं।
1: काबिले गौर है कि वाराणसी के बाद इस इजी कनेक्ट सेवा को अमृतसर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। अगले 6 हफ्तों तक हर हफ्ते एक नए शहर में इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके बाद इन शहरों के यात्रियों के लिए विदेश की यात्रा पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगी। काशी को निश्चित रूप से इस उड्डयन क्रांति का अग्रदूत बनने का गौरव हासिल हुआ है। साल 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, सिविल एविएशन के क्षेत्र में हब एंड स्पोक मॉडल उसका एक अहम हिस्सा है।
0: तो इसका जिस गति से हम तेज गति से ये सिविल एविएशन में हमने बढ़ोतरी की, उसको एक दूसरे लेवल पे अभी पहुंचाने की जरूरत थी। और ये आता है हमारे विजन, जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है, उसमें अगर भारत को विश्व में एक ताकत भर का एक देश अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे 10, 15, 20 साल की सोचनी पड़ेगी। उसमें से हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत में एक डोमेस्टिक ट्रैवल को ही ताकत ना दे, इंटरनेशनल ट्रैवल को भी ताकत देना चाहिए। उसी से हमारा एक विजन से आता है ये हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा। और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उसे कनेक्ट किया जाए।
1: जो लोग टियर 2 और टियर 3 शहरों से दुनिया के बड़े बड़े शहरों की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें पता है कि एक यात्रा के लिए दो दो एयरपोर्ट्स पर उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। पहले टियर 2 या टियर 3 शहरों के एयरपोर्ट पर तमाम औपचारिकताओं से गुजरना और उसके बाद हब एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोबारा उन्हीं औपचारिकताओं से गुजरना यात्रा के उत्साह को ठंडा कर देता है। हब एंड स्पोक मॉडल ऐसे यात्रियों के लिए राहत का बड़ा पैगाम लेकर आया है।
0: आज से पहले ऐसा होता था कि वाराणसी से अगर कोई आदमी देश के बाहर कोई भी शहर जाना चाहता हो तो उसको एक हब वाले एयरपोर्ट में जाना पड़ता है। अगर हम माने उदाहरण के लिए दिल्ली, तो वाराणसी से दिल्ली एक डोमेस्टिक फ्लाइट में वो यात्री जाता है और वहां पे टर्मिनल के बाहर आना पड़ता है, लगेज के साथ आना पड़ता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जिस टर्मिनल से उसी शहर में शुरू हो रही है उस टर्मिनल में वापस उसको पूरे लगेज के साथ उसको जाके फिर वहां पे इमिग्रेशन, वहां पे कस्टम, वहां पे सारे ये जो चीजें हैं वहां पे करके फिर वहां से दिल्ली से लंदन या दिल्ली से अमेरिका या दिल्ली से दुबई उनको जाना पड़ता है।
1: कहने की जरूरत नहीं कि वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 25 जून 2026 का दिन खुशियों का ऐतिहासिक पैगाम लेकर आया है। आने वाले 6 हफ्तों में 6 और टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों के लिए खुशियों की यही सौगात मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ तो हो गया, जल्द ही काशी के लोगों को देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में काशी के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था वो अब बनकर तैयार है। उम्मीद है कि अगस्त महीने में काशी के लोग गोंडोला राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। खास बात यह है कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के किराए का खुलासा भी कर दिया है। वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक के इस 4 किलोमीटर लंबे रोपवे का अधिकतम किराया ₹50 और न्यूनतम किराया ₹10 तक तय किया गया है। हालांकि स्मार्ट कार्ड धारकों को इस किराए में थोड़ी सी रियायत जरूर मिलेगी। साफ है कि काशी के लोगों के साथ ही वहां जाने वाले सैलानियों को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

0: हब एंड स्पोक मॉडल के बाद काशी के लोगों को रोपवे की अनूठी सौगात भी जल्द ही मिलने वाली है। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी VDA ने दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के किराए का ऐलान कर दिया है। VDA ने वाराणसी कैंट से गदौलिया तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले गोंडोला का अधिकतम किराया 50 रूपए जबकि न्यूनतम किराया 10 रूपए निर्धारित किया है।
1: इसमें आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से लेके गदौलिया तक 50-50 रुपीस, अगर कोई यात्री यहाँ होते हैं और वहाँ उतरते हैं तो 50 रुपया का है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग हम जैसे अगर आप विद्यापीठ में उतरेंगे 10 रुपया का है। तो ओवरऑल पूरा होल स्ट्रेस के लिए 50 रुपया है। अगर वहाँ पे स्मार्ट पास लेंगे जैसे आप लोग मेट्रो में देखते हैं स्मार्ट पास पार्ट लेते हैं तो हम लोग 20% वहाँ पे डिस्काउंट का प्रोविजन रखे हैं सरकार ने। और इसके लिए और प्रीमियम गंडोला का भी प्रोविजन है। कोई कलेक्टिवली किसी एक गंडोला को ये लेना चाहते हैं तो 2000 रुपया का उसका किराया निर्धारण की गई।
0: आपको बता दें कि वाराणसी रोपवे का शिलान्यास 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 3.25 साल बाद पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट करीब करीब तैयार है। कैंट से गदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने में इस अनोखे प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर दिया जाएगा। इस रोपवे के शुरू होने के बाद वाराणसी कैंट से गदौलिया तक की करीब 4 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी हो सकेगी, जबकि आज यही दूरी तय करने में करीब 45 मिनट का समय लगता है।
2: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतर कर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहाँ पहुँचने वाले यात्री तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
0: एशिया के इस पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का लाभ सिर्फ काशी वासियों को ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम हिस्से से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए इन श्रद्धालुओं को अब संकरे रास्तों और ट्रैफिक जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि करीब 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 4 स्टेशन होंगे। वाराणसी कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोडोलिया। रोपवे पर करीब 150 गोंडोला होंगी जिनसे यात्री सफर कर सकेंगे। एक गोंडोला में एक बार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। हर घंटे रोपवे से तकरीबन 3000 यात्री सफर करेंगे। रोजाना करीब 1 लाख यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि अगस्त में रोपवे के संभावित उद्घाटन की खबर से काशी वासियों के साथ ही यहां आने वाले सैलानी भी गदगद है।
3: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे। यहां पर आएंगे तब
4: बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ। और इससे बढ़िया क्या चाहिए?
5: रोपवे के साथ साथ हम लोग को तो बेनिफिट होगा ही। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बीमार लाचार हैं, जो महिला बच्चे हैं, उन लोग को रोपवे से आने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से दर्शन करेंगे। उनको किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होगा। हम लोग के साथ सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
6: सफर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इतनी ज्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है। हम लोग आते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। रोपवे से बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और ये सुविधा ज्यादा हो जाएगी।
0: दरअसल इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, गोंडोला राइड के दौरान स्थानीय लोगों और सैलानियों को काशी का विहंगम नजारा देखने को मिलेगा जो अपने आप में एक शानदार एहसास होगा। साथ ही काफी दूर से ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर का दर्शन भी कर सकेगा। काबिले गौर है कि इस परियोजना के तहत विकसित किए गए स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से गोंडोला राइड के दौरान यात्रियों को एक अलग ही अनुभव मिलेगा। इसमें संदेह नहीं है कि ये रोपवे लगातार हाईटेक हो रही काशी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एशिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे बाबा विश्वनाथ की नगरी की पहचान और भी मजबूत होगी और ये आधुनिक परिवहन प्रणाली के साथ आगे बढ़ेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

गजब का इत्तेफाक ये है कि ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र बना बनारस अब आधुनिकता का मॉडल शहर बनता जा रहा है। इसी साल काशी को एक और अनोखी सौगात मिलने वाली है। काशी में बन रहे पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि अगले साल इस स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का आयोजन भी करवाया जाएगा। कमाल तो ये भी है कि आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहे स्टेडियम का फ्लेवर शिव, गंगा और काशी की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है, यानी दर्शकों के लिए यहां मैच के रोमांच के साथ आध्यात्मिकता का स्पर्श भी प्राप्त होगा।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान माने जाने वाली दुनिया की प्राचीनतम काशी नगरी अब आधुनिकता की दौड़ में काफी आगे निकल चुकी है। काशी के निरंतर विकास की अद्भुत कड़ी है गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया था और अब इसका 90-95% काम पूरा हो चुका है। वाराणसी के गंजारी में बनकर तैयार हो रहा यह स्टेडियम कई महीनों में दुनिया का सबसे अनूठा क्रिकेट स्टेडियम है, क्योंकि इसे शिवगंगा और काशी की संस्कृति की थीम के साथ तैयार किया गया है।
1: पूर्वांचल का पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग 90% तक बनकर तैयार हो गया है और खास बात यह है कि यह बीसीसीआई का देश का पहला अपना क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है और इस समय हम उसी क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बाहर की ओर खड़े हैं और शिव और गंगा और काशी की थीम पर ये क्रिकेट स्टेडियम लगभग 31 एकड़ में 451 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो जिस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ की त्रिशूल के आकृति के रूप में इसके फ्लडलाइट को रूप दिया जा रहा है, तो वहीं इसकी छत अर्धचंद्राकार बनाई गई है। तो ठीक सामने जो लॉन्च दिख रहा है वे डमरू की आकृति का है और जो सीढ़ियां हैं जिसमें ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 30,000 लोग बैठेंगे वे पूरी तरह से गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा उकेरा जा रहा है। तो वहीं एंट्री पॉइंट पे जो प्रवेश द्वार है वो बिल्वपत्र यानी बेलपत्र की आकृति में देखने को मिलेगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही इसकी शुरुआत इसका शिलान्यास अब से लगभग सितंबर 2023 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द 2027 के पहले इसका लोकार्पण भी होगा।
0: शिव गंगा और काशी की थीम पर तैयार हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अनेक अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेडियम को सेंसर बेस्ड तकनीक पर तैयार किया जा रहा है जिसका फायदा ये है कि लगातार 3 घंटे भी मूसलाधार बारिश होगी तो मात्र 20 से 25 मिनट में सेंसर बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम से पानी को निकालकर आधे घंटे में मैच दोबारा शुरू कराया जा सकेगा।
2: ये आईसीसी स्टैंडर्ड पे टोटल डिजाइन है ग्राउंड और नॉर्मल स्टैंडर्ड 65 मीटर का होता है, 76 मीटर है रेडियस, जिसका ड्रेनेज इस तरह से डिजाइंड है कि अगर एक घंटे भी बारिश तेज हो जाएगी ना तो आधे घंटे के अंदर इसका सारा ड्रेन आउट हो जाएगा पानी। इस तरह से ग्रेविटी सिस्टम और पाइपिंग किया हुआ है जो भी अंडरग्राउंड है सारा। सबसे बड़ा चैलेंज त्रिशूल, त्रिशूल का डिजाइन इंटेंट और एक्चुअल डिजाइन ड्राइंग देख के और उसको फिर मूर्त रूप देना वाकई में किस ढंग से आ रहा है क्या। एक बार दो बार तो हमने डिजाइन फेल किया और उसको मतलब उस टाइप से मैं दिख नहीं रहा था, फाइनली तीसरी बार हमें कंक्लूड हो गया था।
0: सेंसर बेस्ड तकनीक के अलावा प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला ड्रेसिंग रूम बनाया गया है, साथ ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच के आधार पर इसकी पिच को तैयार किया गया है। इस स्टेडियम की पिच में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मिट्टी की जगह रेत और कंकड़ का प्रयोग किया गया है। पिच पर केमिकल के इस्तेमाल से विशेष तरीके से घास को उगाया गया है। जाहिर है इस स्टेडियम का निर्माण देखकर काशी के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
3: बहुत बड़ी सौगात है बनारस के लिए और हम लोगों के लिए भी। हमारे बनारस में लोग अब मैच देखने आ गए, जो बनारस वाले दूसरे जगह देखने जा रहे थे आज लोग बनारस में देखने आएंगे। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे यहाँ स्टेडियम बन गया और हम लोग दूसरे शहर जा रहे थे, दूसरे प्रदेश जा रहे थे, अब दूसरे प्रदेश के क्या विदेश के भी लोग हमारे यहाँ आएंगे। अब बहुत जल्दी आप लोगों का ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें मैच भी होगा बहुत जल्दी।
0: अध्यात्म और अत्याधुनिकता के अनोखे संगम के साथ तैयार हो रहे इस स्टेडियम में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। एसटीपी के माध्यम से यहां प्रयोग होने वाला जो सीवरेज का पानी है उसे ट्रीट करके दूसरे कामों में लाया जाएगा। ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल कार वॉशिंग, प्लांटेशन और सफाई वगैरह कामों में किया जा सकेगा। संभावना है कि करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम में इस वर्ष के अंत तक ट्रायल मैच खेले जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि साल 2027 में बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्रिकेट का पहला मैच खेला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चालू होने के बाद यह स्टेडियम काशी वासियों के लिए नए सिरे से रोजगार का भी सृजन करेगा।
3: बहुत गर्व है और हमारे बनारस में जो स्टेडियम बना है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, इसलिए कि हमारा आप नाम आगे होगा और थोड़ा रोजगार भी मिलेगा और कुछ नाम भी होगा।
0: दरअसल वाराणसी के लोगों को पिछले 12 सालों से एक ऐसा सांसद मिला जो संयोग से देश का प्रधानमंत्री भी है। ये हकीकत है कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कायाकल्प में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसका असर यहाँ के लोग अब शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो काशी के कायाकल्प की ऐसी बहुत सारी और भी तस्वीरें आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जीएनटी।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है? और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी और मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूत। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल कल बड़े पर्दे पर होने जा रही है रिलीज। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी समेत तमाम सितारे। कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म 13, मेरा नाता, ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। हिंदी के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी कल सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार भी नजर आएंगे। एक तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी कल रिलीज होने जा रही है। एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए कल रिलीज होने जा रही है फिल्म सुपर गर्ल। सुपरमैन की ही कजिन कारा जोन एल किरदार पर आधारित है फिल्म। सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है फिल्म राजा शिवाजी। रितेश देशमुख के लीड रोल और निर्देशन में बनी इस फिल्म में जेनेलिया भी नजर आए। नेटफ्लिक्स पर कल स्ट्रीम होने जा रही है बेहतरीन ड्रामा कॉमेडी सीरीज परफेक्ट फैमिली। मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी। ओटीटी पर हो रही है लॉकअप की वापसी, अब इसका सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इस जेल थीम वाले रियलिटी शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे। Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगा एक नया अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो अलायंस, जिसे अभिनेता कुणाल केमू होस्ट करेंगे। जॉन सीना और एरिक आंद्रे की लिटिल ब्रदर कल से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो जाएगी। फिल्म मिर्जापुर का टीजर रिलीज, 4 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा गया है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने थाईलैंड में मनाई शादी की दूसरी सालगिरह, एक दूसरे की आंखों में डूबे नजर आए। प्रेग्नेंट समांथा रूथ ने मैटरनिटी ब्रेक का किया ऐलान, एक्ट्रेस ने कंफर्म की प्रेगनेंसी। अगले साल 25 जून 2027 को रिलीज होने जा रही है पंजाबी फिल्म रन्ना धन्ना, दिलजीत दोसांझ नजर आएंगे। ऑस्कर वोटिंग पैनल में शामिल होंगे विशाल भारद्वाज समेत फिल्म जगत की 6 हस्तियां। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने कुल 529 लोगों को भेजा निमंत्रण। अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन फिल्म का टाइटल रिलीज, मेकर्स ने फिल्म में अजय देवगन का चौहान के रूप में पहला लुक रिलीज किया।
9: 15 लाख फौजी, 35,000।
8: बड़े पर्दे पर फिर से देखेगी ऐसा किट और रामन्ना की सुपरहिट जोड़ी, राजकुमार हिरानी ने किया कंफर्म। राजकुमार हिरानी ने की 3 इडियट्स के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इस बार 20 साल के टाइम लीक के साथ आगे बढ़ेगी कहानी। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरी की शानदार 34 साल, इस उपलब्धि के जश्न में शामिल हुए किंग खान। फिल्म बादशाह के टाइटल ट्रैक बादशाह ओ बादशाह पर मारी एंट्री। वेमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से भारतीय टीम का मुकाबला, आपसे कुछ ही देर में मैनचेस्टर में खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए इंडिया का जीतना जरूरी, फिलहाल ग्रुप ए में शामिल तीनों टीमों के 3 मैचों में 4-4 अंक। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजेय रहा है भारत। टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 3 बार आमने सामने हुई है दोनों टीमें, तीनों बार भारतीय टीम को जीत मिली। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने कॉल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक। साई सुदर्शन के फर्स्ट क्लास करियर का यह 9वां शतक, इस बेहतरीन पारी में 19 चौके शामिल। कल से शुरू हो रही है भारत और आयरलैंड की 2 मैचों की T20 सीरीज। IPL 2026 के बाद मैन इन ब्लू की यह पहली T20 सीरीज। टी20 सीरीज से एक दिन पहले मैच के समय में हुआ एक घंटे का बदलाव। 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया है समय। क्रिकेटर शिवम दुबे ने जन्मदिन पर पत्नी अंजुम खान के साथ सोशल मीडिया पर एक भावुक और प्यारा सपोर्ट शेयर किया। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो फेंका। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के से एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया। कोटा में सिटी पार्क बना शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र, अलग अलग थीम पर विकसित किए गए जोन में बांटा गया है। पार्क में कृत्रिम कैनाल में बोटिंग, आकर्षक ग्लास हाउस, विशाल एम्फी थिएटर भी नजर आया। यहां प्री वेडिंग शूट, म्यूजिक वीडियो और विभिन्न शूटिंग गतिविधियां भी लगातार हो रही हैं। 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। किताबों के बोझ से दूर प्रकृति की गोद में राहत पाने रोजाना आते हैं करीब 1200 युवा। कर्नाटक के हॉस्पेट में तुंगभद्रा बांध पर लगाए गए 33 नए स्प्लेवे गेट्स का उद्घाटन किया गया। देश की रक्षा प्रणाली होगी और मजबूत, वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। हवा में अड़ता हुआ एक रडार स्टेशन है नेत्रा, जो आसमान से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही हवा में ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देता है। 27 जून से सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे शामिल। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने ऐलान किया। भारत में $48 मिलियन का निवेश करेगा अमेजॉन। 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर फोकस। तमिलनाडु को 300 नई बसों की सौगात, मुख्यमंत्री विजय ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान में शुरू हुआ मेगा कोचिंग टर्मिनल, जयपुर के खातीपुरा में हुआ दरभंगा अमृत भारत ट्रेन का मेंटेनेंस। गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मोरबी में ब्लड डोनेशन का अनोखा रिकॉर्ड, एक साथ 5,551 ने किया रक्तदान। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हो गया अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ भी जरूरी। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है मलबा, खराब मौसम के कारण इन ऑपरेशनों में आ रही काफी मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। कोलकाता में कई इलाकों में मानसून की शानदार वापसी, मौसम हुआ सुहाना। लगातार आंधी बारिश के बीच लोगों को गर्मी से मिली राहत, भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में संत समाज का आगमन शुरू, बाबा बर्फानी के जयकारों से गुंजायमान हुआ परिसर। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईडी विस्फोटक, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने के लिए प्राचीन बूढ़ा केदारनाथ मंदिर पहुंच रहे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है यह पवित्र धाम, पूरा 12 महीने दर्शन करने के लिए खुला रहता है बूढ़ा केदार। मान्यता है कि महाभारत के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे थे पांडव। चमोली की पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर की दूर पवित्र धारा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की उतारी आरती विधि विधान के साथ पूजा पाठ। हरिद्वार में भी निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा पाठ की। निर्जला एकादशी पर गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। घाटों पर तैनात दिखे एसडीआरएफ गोताखोर और स्थानीय पुलिस। अयोध्या में भी निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई पवित्र डुबकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम को 2 दिवसीय मेला हो गया शुरू। देश भर से पहुंचे लाखों श्याम भक्त। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूलों तथा ड्राई फ्रूट्स के साथ अलौकिक श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार। भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। खाटू श्याम के मेले को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। भीड़ को देखते हुए रिंगस से खाटू श्याम जी मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं 260 सीसीटीवी कैमरे। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए पीने के पानी का व्यापक इंतजाम। बड़ी संख्या में कूलर और पंखे कई भी व्यवस्था की गई। गया में निर्जला एकादशी को लेकर विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहानाबाद नवादा अरवल औरंगाबाद सहित कई जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। निर्जला एकादशी पर 3 बजे से खुला विष्णुपद मंदिर के पट। रात भर जुटे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में तैनात नजर आए जवान। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 साल बाद श्री कंदमनाथन मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभाभिषेकम

0: महाराष्ट्र में होटल्स को मुफ्त देना होगा पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। एफडीए ने अखबारों में खाना परोसने पर भी लगा दी रोक। इसके साथ ही केमिकल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए फूड ग्रेड पैकेजिंग का इस्तेमाल जरूरी। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले फूड बिजनेस को एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के जरिए सालाना फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करवाना अनिवार्य। रेस्टोरेंट्स या कैफे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में स्लोवेनिया गणराज्य का दूतावास पर धूमधाम से मनाया गया स्लोवेनिया का राष्ट्रीय दिवस। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भोपाल में साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। दिल्ली में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन किया गया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। वाराणसी में बन रहे लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अलवर के डीएसपी कार्यालय में घुसा 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया डे केयर सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस। रांची में नशा मुक्ति के संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, मंत्री सुदिव्य कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल ने 631 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा विकास की गति को मिलेगी रफ्तार। वाराणसी में इजी कनेक्ट हब एंड स्पोफ फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी गई है, केंद्रीय मंत्री ने इसका शामिल होकर उद्घाटन किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का आनंद लिया। शिक्षा की सफलता का मॉडल बना ये सरकारी स्कूल, हर सुविधा से लैस। पंजाब के ऑब्जर्वेशन होम में पहली बार शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जेल पहुंचे बच्चे अतीत को पीछे छोड़कर बना सकेंगे अपनी नई पहचान। लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल की धूम, गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है आयोजन। हर साल जून जुलाई में हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, बौद्ध संस्कृति में दिखती है झलक। वाराणसी में शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें वायरल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना।

0: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गोवा का जिक्र जब होता है आमतौर पर हमारे जहन में समुंदर और बीच की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन आज हम आपको गोवा की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो गोवा की संस्कृति और परंपरा का अद्भुत मेल दिखाती है। 24 जून को गोवा में बहुत रोमांचक साओ जुआओ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे एक और मानसून के आने का प्रतीक माना जाता है, जो दूसरी ओर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मोत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है।
4: गोवा की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपरा का अनूठा संगम है साओ जुआओ, जून के महीने में मनाया जाने वाला सबसे चर्चित और अनोखा उत्सव, जिसे मानसून की शुरुआत का प्रतीक कहा जाता है। हर साल की तरह 24 जून को कैथोलिक ईसाई समुदाय ने इसे बेहद उत्साह के साथ मनाया। वैसे तो ये उत्सव पूरे गोवा में ही मनाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोवा के सियोलिम गांव में इसका सबसे भव्य और पारंपरिक आयोजन होता है। यहां सजी धजी पारंपरिक नावों की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत का जश्न देखने लायक होता है। परंपरा के मुताबिक लोग ताजी पत्तियां, लताओं और फूलों से बने खूबसूरत और रंगीन मुकुट पहनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोपेल कहा जाता है। ये प्रकृति की प्रचुरता और हरियाली के प्रति आभार जताने का तरीका है।
5: बढ़िया फेस्टिवल है, एंजॉयमेंट है, पूरा पब्लिक भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं।
4: ये उत्सव ईसा मसीह के समकालीन संत जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत चर्च में प्रार्थनाओं के साथ हुई, जिसके बाद एक ब्रास बैंड ने जुलूस को आयोजन स्थल या इलाके के तालाब तक पहुंचाया। उत्सव के दौरान कई युवा पारंपरिक वेशभूषा में नावों पर नाचते नजर आए, तो कई लोग किनारे मस्ती करते इस उत्सव का गवाह बने। परंपरा के मुताबिक लोग संत जॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए कुओं, नदियों और तालाबों में कूदते हैं। इसे खुशी की छलांग कहा जाता है। इस त्योहार के जरिए परिवारों और ग्रामीणों को नवविवाहित बेटियों के पतियों के साथ घुलने मिलने और जश्न मनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। गोवा से रावाजी दत्ताराम देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं, पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां, और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
13: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरों को FDA के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर।
13: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। निर्जला एकादशी सनातन परंपरा में सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान के दर्शन से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और यही वजह है कि राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी धाम में आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है, आज है आत्मनियंत्रण मोक्ष प्राप्ति का अवसर। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में 2 दिवसीय निर्जला एकादशी मेले की शुरुआत हो चुकी है और लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू पहुंच रहे हैं। वहीं हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक श्रद्धालुओं ने इस पवित्र दिन पर आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया।

0: आस्था का मेला, भक्तों की कतार, मंदिर से लेकर देवालय तक हर भक्त अपने आराध्य की कर रहा है जय जय का। संगम तट हो या फिर हरिद्वार, श्रद्धालु भक्ति धुन में रमे नजर आए। देश भर में निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है, उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू धाम, जिसे बाबा श्याम की नगरी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम की नगरी में 2 दिवसीय मेला शुरू हो चुका है। बाबा श्याम के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त सीकर पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। हर भक्त इस इंतजार में है कि निर्जला एकादशी के मौके पर अपने आराध्य बाबा के दरबार में हाजिरी लगा ले।
1: मैं यहाँ 3 साल से बाबा की सेवा कर रहा हूँ। जब भी आया था उसमें बहुत ज्यादा परेशानी थी, लेकिन आज बाबा के आने से बहुत सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। जय श्री कृष्ण।
2: हम लोग बिहार से आए हैं, बहुत बाबा का नाम सुने हैं, बहुत अर्जी लगा के बाबा के द्वारे आए हैं। बाबा हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करे।
3: जय राम जी, हमारे परिवार के साथ में आए हैं। भगवान सबको देता है, सभी को देंगे, और दर्शन करते हैं।
0: निर्जला एकादशी के पावन मेले पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पूरा खाटू धाम भक्ति में डूबा नजर आ रहा है और मंदिर को फूलों के साथ साथ अलग अलग किस्मों के आमों से भव्य रूप से सजाया गया है। आम से सजे इस अनूठे दरबार की छटा देखते ही बन रही है। पीले, हरे और सुनहरे रंग के आमों से की गई सजावट बाबा के दरबार की शोभा को और बढ़ा रही है। निर्जला एकादशी पर आस्था की एक ऐसी ही तस्वीर अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक देखने को मिली। पवित्र नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए।
4: हम लोग स्नान किए हैं, दान दक्षिणा किए हैं, पंडित जी के यहाँ दान दक्षिणा करके अब जा रहे हैं।
5: आज भीम शनी एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। जैसा कि कहा गया है, अरे एकादशी व्रत कोई करिए, एकादशी सब कोई करिए, व्रत है बड़ा पावन।
0: कहा जाता है कि हरिद्वार हरि का धाम है और निर्जला एकादशी का दिन श्री हरि की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर भक्त स्नान दान के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। सुबह से गंगा घाटों पर अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। बिहार के गया जी में भी भक्ति की छंटा दिखाई दी। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण के दर्शन करने के लिए गया जिला के साथ साथ दूर दूर के श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान विष्णु के चरण की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
6: गया विष्णु धाम में आज जेठ एकादशी का महापर्व है और विष्णु और तुलसी माँ का सारे श्रद्धालु गया विष्णु धाम में बहुत श्रद्धा से पूजा करने आते हैं और हर मनोकामना जो निर्जला व्रत से पूर्ण हो जाती है, इसीलिए श्रद्धा से हम लोग बहुत निर्जला व्रत करते हैं।
0: दरअसल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन आने वाली निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
7: एकादशी का दान बहुत बड़ा दान है, इसको कहा गया निराजली एकादशी। जो 12 महीना एकादशी बढ़ता है, अगर 12 महीना एकादशी कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते तो ये एकादशी जरूर कीजिए। इसी का नाम है भीम शैली एकादशी।
0: निर्जला एकादशी के एक व्रत का पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान फलदायी होता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के रहना, अर्थात इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करते हैं और ना ही भोजन। ये व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है। सीकर से हिमांशु शर्मा और गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
8: रेस्टोरेंट में बैठते ही सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है, नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर? और कई बार बिना पूछे ही टेबल पर पानी की बोतल रख दी जाती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में ऐसा करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एफडीए ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों को बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अखबार में खाने परोसने और इस्तेमाल किए हुए तेल को दोबारा प्रयोग करने पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। ऐसे में आज की हमारी जो अगली गुड न्यूज है, यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है, वो है रेस्टोरेंट में मुफ्त पानी जरूरी, खरीदने की नहीं मजबूरी। जी हाँ, एफडीए कमिश्नर ने कहा है कि सेफ खाना और पानी मिलना एक बुनियादी अधिकार है। साथ ही ये भी कहा है कि एफडीए अधिकारी ये ध्यान दे कि फूड सेफ्टी नियम पूरे साल लगातार लागू रहे। आखिर क्या है नए नियम और ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: रेस्टोरेंट की टेबल पर रखी पानी की बोतल और बिल में जुड़ते अतिरिक्त रुपये। अब इस पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र एफडीए ने नया नियम बना दिया है। एफडीए के इस आदेश के बाद अब महाराष्ट्र में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर फूड सर्विस देने वाली जगह ग्राहकों को पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने साफ कर दिया है कि किसी भी ग्राहक को बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। होटल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी फूड सर्विस देने वाली जगह ग्राहकों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। यानी अब रेस्टोरेंट में ग्राहक के सामने सिर्फ एक विकल्प नहीं होगा, अगर ग्राहक सामान्य पीने का पानी चाहते हैं तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ मुनाफे के लिए पानी की बोतल बेचने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। हालांकि एफडीए की ये पहल केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा रेस्टोरेंट की टेबल से लेकर किचन के अंदर तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र एफडीए ने खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। पानी की बोतल से शुरू हुई ये पहल अब पूरी थाली तक पहुंच चुकी है। साफ पानी, सुरक्षित खाना, वैध लाइसेंस और अखबार पर खाना परोसने, इस्तेमाल किए हुए तेल पर रोक भी इस आदेश में शामिल है। दरअसल सड़कों और ढाबों पर अक्सर आपने देखा होगा कि समोसे, पकौड़े या अन्य खाद्य पदार्थ अखबार पर रखकर परोस दिए जाते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में इस पर भी सख्ती होगी। एफडीए ने अखबार में खाना परोसने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वजह है अखबार की स्याही में मौजूद केमिकल जो खाने के संपर्क में आकर शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र एफडीए का संदेश साफ है, ग्राहक सिर्फ पैसे देकर खाना नहीं खरीदता, बल्कि वो सुरक्षा, गुणवत्ता और भरोसा भी खरीदता है। ऐसे में अब रेस्टोरेंट की चमक दमक से ज्यादा उसकी स्वच्छता मायने रखेगी। मेन्यू की लंबाई से ज्यादा जरूरी होंगे सुरक्षा मानक और मुनाफे से पहले ग्राहक की सेहत को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अच्छी सेवा का मतलब सिर्फ स्वादिष्ट खाना परोसना नहीं, बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भोजन उपलब्ध कराना भी है। और अगर कोई रेस्टोरेंट, होटल या कैफे या फिर अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटर इन फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि गंभीर या बार बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द भी हो सकता है। जाहिर है एफडीए ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों पर किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और कुछ दिन पहले मानसून जिस तरह से अटका था उसके बाद से चिंता जताई जा रही थी कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन मुंबई पहुंचकर मानो मानसून में जान आ गई। और अब हाल ये है कि मानसून मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुका है, गुजरात के छोटे से हिस्से में एक्टिव हो चुका है और जल्द ही यूपी में भी एंट्री लेने वाला है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है महाराष्ट्र में मानसून मैजिक। जी हाँ, आपको बता दें मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। शहर के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और आसपास के जिलों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे बारिश से मुंबई वासियों को गर्मी से राहत तो मिली है, तापमान में गिरावट के साथ शहर में मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले कुछ दिन ऐसा ही वेदर रहने की संभावना है। जाहिर है मानसून पूरे महाराष्ट्र को कवर कर चुका है और अब तेजी से उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ेगा।
2: मुंबई में दो दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद आज बारिश ने विश्राम ले लिया है। मुंबई में सुबह कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन कहीं भी दो दिन पहले या कल जिस तरीके से जलजमाव देखने को मिला था वैसी स्थिति मुंबई में कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। फिलहाल मुंबई का तापमान जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस है और आज के लिए मौसम विभाग द्वारा मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि मुंबई में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है तो कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बरसात होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ कल आधिकारिक तौर पर मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि की कि मुंबई में मानसून का आगमन हो चुका है।
1: ट्रैफिक सिग्नल पर जब गाड़ियां रुकती है तो अक्सर कुछ मासूम चेहरे भी नजर आते हैं। कोई शीशा साफ करता है तो कोई हाथ फैलाकर मदद मांगता है। लेकिन अब अहमदाबाद की पुलिस ने एक ऐसी पहल की है कि इन्हीं हाथों में किताबें आ गई हैं और सिग्नल पर भटकते कदम स्कूल की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है सड़क से स्कूल तक बच्चों का सवरता भविष्य। आपको बता दें कि गुजरात में चल रहे कन्या केलवणी शाला प्रवेशोत्सव के तहत भिक्षुक परिवारों के 33 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है और जब ये बच्चे अहमदाबाद के अनुपम स्मार्ट प्राथमिक स्कूल में पहुंचे तो इन बच्चों का पहले स्वागत किया गया, जिसे देखकर स्कूल परिसर में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और माता पिता की आंखों में उम्मीद। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अधिकारी बनने का सपना देख सकता है। दरअसल शिक्षा वो ताकत है जो गरीबी की पीढ़ियों को तोड़ सकती है और पढ़ाई है जिससे वो बच्चे आज जो सिग्नल पर खड़े दिखाई देते हैं वही बच्चे कल देश का भविष्य बन सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वो कार्यरत थे, उस समय गुजरात में शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत कराई गई थी जिसका 24वां संस्करण इस साल जारी है। और गुजरात की बात करें तो लगभग 400 से अधिक आईएएस आईपीएस विधायक और सांसद और समेत नेताओं द्वारा गुजरात के अलग अलग स्कूलों में जाकर जो छात्र स्कूलों से दूर हैं उन्हें स्कूल प्रवेशोत्सव के तहत स्कूल में प्रवेश दिलाया जा रहा है। खास करके अहमदाबाद की बात करें तो आज थलतेज की सरकारी स्कूल में 30 से ज़्यादा जो बच्चे अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षा मांग रहे थे उनका रेस्क्यू किया गया है और थलतेज की सरकारी स्कूल में उनका दाखिला कराया गया है।
1: छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। 10वीं की छात्रा महिमा राजपूत का सिलेक्शन राष्ट्रीय स्पेस मिशन शक्ति 7 के लिए हुआ है। महिमा 108 देशों की छात्राओं के साथ इस स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है 10वीं क्लास की महिमा बनाएंगी सैटेलाइट। जी हाँ, आपको बता दें महिमा का अंतरिक्ष विज्ञान तक का ये सफर चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने मिशन शक्ति 7 के लिए आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय चयन परीक्षा में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के जरिए देश भर के हजारों प्रतिभागियों के बीच अपनी जगह बनाई।

0: ये है रायपुर की महिमा, क्लास 10 में पढ़ती हैं और अब ये सैटेलाइट बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। महिमा राजपूत का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन शक्ति सेट के लिए हुआ है। महिमा देश भर से आए आवेदनों के बीच कई चरणों की ऑनलाइन चयन प्रक्रिया को पार कर नेशनल फाइनलिस्ट बनी है।
1: वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि मिशन शक्ति सेट प्रोजेक्ट भी चल रहा है करके, फिर उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद में बच्चों का ऑनलाइन ट्रेनिंग चली है। 21 मॉड्यूल्स हुए हैं, उसमें 21 मॉड्यूल्स में 365 लेसन्स थे। हर लेसन्स के बाद में उसमें एक्टिविटीज होती हैं, कुछ उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सारा चीज कंप्लीट होने के बाद में उनका जो सिलेक्शन हुआ, तो ओवरऑल जो नेशनल लेवल फेज वन का जो सिलेक्शन था उसमें मेरे दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद में फिर उन दो बच्चों में और अदर जो कंट्रीज के जो बच्चे थे उन सब में इंटरव्यू हुआ है नेशनल लेवल फेज वन के लिए। तो नेशनल लेवल फेज वन के लिए महिमा का सिलेक्शन हुआ है।
0: महिमा दुनिया भर के 108 देशों की छात्राओं के साथ स्पेस साइंस मिशन में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
2: जब मैम ने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद कुछ मॉड्यूल्स आए थे जिसमें आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है साइंस के बारे में, लाइट के बारे में, वो क्लियर हुआ। उसमें टोटल 21 मॉड्यूल्स थे और 365 लेसन्स थे, जिसकी मदद से हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसमें ट्रेनिंग करवाया गया कि कैसे सैटेलाइट्स बनाते हैं। उसमें टोटल 108 कंट्रीज शामिल।
0: अगस्त 2026 में नई दिल्ली में 8 दिनों का शक्ति सेट वर्कशॉप होगा, जिसमें महिमा समेत 108 देशों की छात्राएं मिलकर 2 सैटेलाइट बनाएंगी। शक्ति सेट मिशन के तहत बनने वाले 2 सैटेलाइट्स में से एक को चंद्रमा के ऑर्बिट यानी कक्षा में भेजा जाएगा, जबकि दूसरा चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्राएं सिर्फ स्पेस साइंस की पढ़ाई नहीं करेंगी, बल्कि भविष्य के असली स्पेस मिशंस में आने वाले चैलेंजेस को भी करीब से महसूस कर पाएंगी।
1: अगस्त में 23 अगस्त से बच्चे इंडिया आएंगे, अदर कंट्रीज के बच्चे इंडिया आएंगे दिल्ली में, और हमारे बच्चे भी इंडिया ही जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। तो वहाँ पे बच्चे सैटेलाइट बनाएंगे, जिसमें 2 सैटेलाइट्स वे बनाएंगे। एक जो रहेगा वो मून के ऑर्बिट के लिए रहेगा, दूसरा सैटेलाइट जो रहेगा वो मून के सरफेस के लिए रहेगा। तो 2 सैटेलाइट बनाएंगे। अक्टूबर में बच्चे एंड साइंटिस्ट, इसरो के जो साइंटिस्ट रहेंगे, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे उसको।
0: महिमा का नाम उन चुनिंदा छात्राओं में शामिल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: विदेश यात्रा का सपना तो लाखों लोग देखते हैं, लेकिन छोटे शहरों से निकलने वाली यात्रियों के लिए यह सपना अक्सर लंबी लाइनों, बार बार की जांच और घंटों की मशक्कत से होकर गुजरता है। लेकिन अब इस परेशानी को कम करने के लिए देश में पहली बार एक ऐसा मॉडल शुरू हुआ जो हवाई सफर का अनुभव पूरी तरह बदलने जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है पूरी दुनिया का वाराणसी से इजी कनेक्ट। जी हां, कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा मुश्किल सफर होता है और विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, खास करके जब छोटे शहरों से उड़ान भरने वाले यात्रियों को एक ही यात्रा में दो दो बार एयरपोर्ट की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब हवाई यात्रा को आसान बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हब एंड स्पोक मॉडल का देश में पहली बार काशी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुभारंभ हो गया है।
4: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अब सिर्फ आध्यात्मिक नगरी ही नहीं बल्कि एयर कनेक्टिविटी के नए युग की भी गवाह बन रही है। अब यात्रियों को बार बार चेकिंग से गुजरने की परेशानी खत्म होगी। अब दिल्ली के जरिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ना पहले से ज्यादा आसान होगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुरू हुआ हब एंड स्पोक मॉडल देश के विमानन क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस मॉडल के जरिए छोटे शहरों से आने वाले यात्रियों की परेशानियों को आधा कर दिया गया है, जिससे उनकी विदेश यात्रा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।
5: आज हमारे भारत में इतिहास रचाने वाली ये वाराणसी धरती से आज शुरू हो रही है, इसके लिए हम सबको आनंद भी है, गौरव भी है। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा, और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उसे कनेक्ट किया जाए।
4: हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होने के पहले दिन 180 यात्री विमान से रवाना हुए, जिनमें से 26 यात्रियों को दिल्ली से 6 अलग अलग देशों की कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गई। इनमें 3 विदेशी यात्री भी शामिल रहे। हब एंड स्पोक मॉडल का उद्देश्य देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों से बड़े पैमानों पर आसान इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस सेवा के शुरू होने के बाद विदेश जाने वाले यात्रियों का इमिग्रेशन क्लियरेंस वाराणसी एयरपोर्ट पर ही हो जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक बार लगे चेकिंग हो जाने के बाद बड़े एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए दोबारा इसकी जरूरत नहीं होगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान में बोर्डिंग होने के बाद 17 इंटरनेशनल शहरों के लिए आसानी से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी। साफ है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत वाराणसी जैसे शहरों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, जहां से यात्री आसानी से एयर इंडिया के बड़े ग्लोबल नेटवर्क का एक्सेस पा सकते हैं।
5: अब वाराणसी का यात्री अपने इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत यहीं से करेंगे। चेकिंग, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रिया यहीं पूरी होगी। उसके बाद वह दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट के माध्यम से दुनिया के विशिष्ट गंतव्यों तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेंगे बिना पुनः इमिग्रेशन, कस्टम अथवा बैगेज चेकिंग की औपचारिकताओं के से गुजरे।
4: वाराणसी के बाद इस इजी कनेक्ट सेवा को अमृतसर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। अगले 6 हफ्तों तक हर हफ्ते एक नए शहर में इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके बाद इन शहरों के यात्रियों के लिए विदेश की यात्रा पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगी।
5: भारत के अनेक यात्री विदेशी हब्स पर निर्भर रहे, आज हम उस व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय यात्री विश्व से जुड़ने के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स और भारतीय एयरलाइंस को अपनी पहली पसंद बनाएं, और इस पहल का सबसे बड़ा लाभ हमारे टियर 2 और टियर 3 शहरों को मिलेगा, उनके यात्रियों को मिलेगा। वाराणसी, अमृतसर, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और देश के अन्य शहर अब केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, वो सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक पर्यटन, वैश्विक शिक्षा और वैश्विक व्यापार से जुड़ेंगे।
4: जो लोग टियर 2 और टियर 3 शहरों से दुनिया के बड़े बड़े शहरों की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें पता है कि एक यात्रा के लिए 2-2 एयरपोर्ट्स पर उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। पहले टियर 2 या टियर 3 शहरों के एयरपोर्ट पर तमाम औपचारिकताओं से गुजरना और उसके बाद हब एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोबारा उन्हीं औपचारिकताओं से गुजरना यात्रा के उत्साह को ठंडा कर देता है। ऐसे में हब एंड स्पोक मॉडल ऐसे यात्रियों के लिए राहत का बड़ा पैगाम लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आईपीएल में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट के दिग्गजों को चौंका दिया, ठीक उसी तरह उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी क्रिकेट के जानकारों को चौंका रहे हैं। महज 10 साल की उम्र में आशीर्वाद ने अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, बिहार में क्रिकेट का सुपर टॉर्नेडो। जी हाँ, आशीर्वाद सूर्यवंशी ने दोबारा शतक बनाकर अपनी क्रिकेट क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आशीर्वाद ने 119 गेंदों पर शानदार 168 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का दम दिखा दिया। आशीर्वाद की इस यादगार पारी में चौकों और छक्कों की जमकर बरसात देखने को मिली। उन्होंने 19 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आशीर्वाद ने बल्ले से कमाल दिखाया। इसी महीने एक स्थानीय मैच में उन्होंने सिर्फ 87 गेंदों पर 103 रन बनाकर शतक भी जड़ा था। वैभव सूर्यवंशी की तरह आशीर्वाद के क्रिकेट सफर के पीछे भी उनके पिता की बड़ी भूमिका है। पिता खुद उनकी तैयारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और फिलहाल आशीर्वाद बिहार में क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आशीर्वाद अपने परिवार के 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। कम उम्र में उनकी तकनीक, टाइमिंग और आक्रामक अंदाज उन्हें भविष्य का उभरता हुआ सितारा बना रहा है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
8: बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है? और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ।
1: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Schwarber to right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए काम। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
13: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव प्रकाश शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग दे दिए जाते हैं और लोग जो है बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिये, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावे की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का हाली वीडियो है और जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का वीडियो है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
14: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून यानी सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला किसी इमारत की खिड़की से एक छोटे बच्चे को लटकाती नजर आ रही है। इसमें महिला जिस कमरे में है उसमें से लगातार काला धुआं निकल रहा है और महिला बेसुध से नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो अलीगंज की हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम न घुट जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि निशब आज की घटना, जिसमें यह माँ की ममता की ताकत ऐसी होती है कि मौत सामने हो तब भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
13: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है अलीगंज का हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम ना घुटे। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावा के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान जो है बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। और देखिए, हमने इससे ध्यान से सुना, ये सुनने में अंग्रेजी लग रही थी। आप भी सुनिए इन आवाजों को और आपको समझ में आ जाएगा आगे आपको किस प्रकार से ये वीडियो नजर आता। देखिए, आग लगने के इस हादसे को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और इसमें सिर्फ विदेशी लहजा आपको सुनाई देगा। ये हमें कुछ अटपटा सा नजर आया और जाहिर सी बात है इसके बाद हमने लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके वीडियो और तस्वीरों की वायरल वीडियो के दृश्यों से मिलान किया तो ये बात सामने निकल कर आ गई कि वायरल वीडियो बिल्डिंग से ये बिल्कुल जुदा नजर आता है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों से इसे बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वीडियो को जिस लखनऊ के अलीगंज आग घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो इसके बारे में जानकारी जरूर निकलकर सामने आती, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हमको नजर नहीं आया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल ज़ाहिर तौर पर यह उठता है कि आग से बचाने के लिए बच्ची को खिड़की के बाहर लटकाती महिला का यह वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
14: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 8 अप्रैल 2010 की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला जिस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी वो 7 महीने की थी और उसका नाम जानीवाह था। ये वीडियो पड़ोस में ही रहने वाली माया टकर नाम की एक महिला ने बनाया था। एक खबर के मुताबिक ये आग न्यूयॉर्क सिटी के पेलहम पार्कवे हाउसेज में लगी थी और ये वीडियो इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का है। घर में धुआं भर गया था, इसलिए 18 साल की वैनेसा स्कॉट ने अपने 7 महीने की कजिन जानीवाह को खिड़की से बाहर निकाल कर लटका रखा था ताकि वो सांस ले सके। बाद में आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से वैनेसा और उनके परिवार के बाकी लोगों की जान बचाई थी। इस घटना में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों सहित 10 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से यह स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो लखनऊ तो क्या भारत का भी नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का साल 2010 का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
13: देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। जी हाँ, देखते ही देखते ये बात हजारों लोगों तक पहुंच गई और कई वाहन मालिकों के मन में सवाल भी खड़े हो गए। लेकिन क्या सचमुच E20 पेट्रोल में ऐसा कुछ है जो चींटियों को आकर्षित करता है? वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।

0: में प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले डॉलर को बचाने के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ वाहनों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो। छोटी छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हो। और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और इथेनॉल बनता ही गन्ने जैसी मीठी फसलों से, यानी फ्यूल टंकी चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की कसौटी पर उतारा। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल लेकर कैप को खोला जाता है, आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। और वीडियो में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल लिड पर लगी E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले लोगों को जरूर यह लगेगा कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की वजह से ही आ रही हैं। इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये सिक्किम का हमको नजर आया।
2: गाड़ी हो ना, मेरा गाड़ी से।
1: और देखिए, सिक्किम में इस तरह की भाषाएं अक्सर बोली जाती हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के आखिरी हिस्से में हमें गाड़ियों का नंबर प्लेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर SK लिखा हुआ है, मतलब वीडियो सिक्किम का ही है। वीडियो में E85 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। सर्च के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी E85 के पेट्रोल को बेचा जा रहा है। सिक्किम जैसे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध होने में अभी और समय लगेगा। E85 पेट्रोल केवल उन विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके इंजन इसके अनुकूल हो। अभी वर्तमान में पूरे देश में जो पेट्रोल मिल रहा है वो अधिकतर E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल दावे को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हाथ नहीं लगी जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने लगातार सर्च किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। सर्च के दौरान हमें पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट मिला। BPCL ने इस पोस्ट के जरिए अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर चल रही इन सभी खबरों की जांच की और इन्हें पूरी तरह से भ्रामक, निराधार और वैज्ञानिक प्रमाणों से परे बताया। कंपनी ने इसके पीछे कई मजबूत वैज्ञानिक कारण दिए। BPCL ने साफ किया कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। अंतिम प्रोडक्ट में चींटियों को आकर्षित करने वाला कोई भी मीठा तत्व बाकी नहीं रहता। ईंधन ग्रेड के एथेनॉल में विशेष प्रकार के डिनेचुरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तब भी पेट्रोल की अपनी स्वाभाविक हाइड्रोकार्बन गंध बरकरार रहती है। इथेनॉल की हल्की फुल्की महक इस तेज गंध के आगे दब जाती है। चींटियों को पेट्रोल की ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। साधारण पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन वाष्प बहुत कम होता है। मतलब कि ढक्कन खुला होने पर पेट्रोल कम उड़ता है। मतलब जब ढक्कन के पास से गैस या वाष्प भी बाहर नहीं निकलेगी तो चींटियां या कोई अन्य कीट वहां इकट्ठा नहीं होगा। भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल दावे का सच लोगों को बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने एक्स अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर लिखा, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
8: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है
9: लगते हैं, और कई लोग उसके साथ नारे लगाने लगते हैं। इसी बच्ची का उत्साह, मासूमियत और जोश ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। बच्चों की शरारत और उनकी मासूमियत अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही बेहद क्यूट सा वीडियो ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वायरल क्लिप में एक नन्हे बच्चे ने अपनी माँ की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा गुलाब जामुन खाने की तैयारी में है, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखते हुए उसे सीधे

0: पानी के नीचे ले जाता है और धोने लगता है। मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी लगते ही गुलाब जामुन का सारा रस बह जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके दिमाग में बस माँ की यही सीख थी कि बिना धोए कुछ नहीं खाना। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। भिलाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्रेन का इंतजार करते करते उसने प्लेटफॉर्म को ही अपना स्टेज बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के के हाथों में जादू है। कभी वो फुटबॉल को अपनी एक उंगली पर टिका देता है और गेंद को लट्टू की तरह नचाने लगता है, तो अगले ही पल वो गेंद को हवा में उछालता है, घुटने से, सिर से, कंधे से टच करता है, पर गेंद नीचे नहीं गिरती। मतलब बॉल पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। पहाड़ी ड्रेस में एक लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ना कोई बड़ा सेट, ना हाई फाई कैमरा, बस सादगी, एनर्जी और एकदम बिंदास अंदाज। इस लड़की ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस, जरा भी बनावटीपन नहीं। हर बीट पर स्माइल, आंखों में मस्ती और पैरों में ऐसी थिरकन कि लगता है म्यूजिक उसकी बॉडी से ही निकल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बंदर किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर छत पर जा बैठता है और फिर उसे वापस करने के लिए जैसे अपनी ही शर्त रख देता है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बंदर एक मोबाइल फोन लेकर किसी मकान की छत पर आराम से बैठा हुआ है। नीचे मौजूद लोग उससे फोन वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे बंदर ने ठान ली हो कि बिना किसी फायदे के मोबाइल लौटाने वाला नहीं है। इसी बीच किसी व्यक्ति के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। बंदर को लुभाने के लिए उसे फ्रूटी का टेट्रा पैक दिखाया जाता है। जैसे ही बंदर की नजर जूस पर पड़ती है, उसका ध्यान मोबाइल से हटकर फ्रूटी पर चला जाता है। लोगों को उम्मीद बंधती है कि शायद अब बात बन जाए। कुछ ही देर के बाद बंदर को फ्रूटी दे दी जाती है। मजे की बात ये है कि जूस हाथ में मिलते ही बंदर भी अपनी तरफ से सौदा पूरा कर देता है और खुद आराम से फ्रूटी का मजा लेने लगता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
6: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि चूंकि गर्मी की छुट्टी होने वाली है, 5 दिन में पूरे देश में छा जाएगा मानसून। वहीं भविष्य की पुलिसिंग की झांकी, AI एनेबल्ड होने वाली दिल्ली पुलिस। इसके अलावा पासपोर्ट भी नहीं है नागरिकता का सबूत, आपका पासपोर्ट सिर्फ यात्रा दस्तावेज है। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए काम। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा निस्तनाबूत। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरों को एफडीए के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मॉनसून की, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले यह मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मॉनसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

0: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
1: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
0: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
2: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
3: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
0: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अगली अच्छी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर भारत मंडपम में 11वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो शुरू हो चुका है, जिसमें 25 से ज्यादा देशों की सुरक्षा एजेंसियां, डिफेंस मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और एक्सपर्ट्स शामिल हुए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में पुलिसिंग, होमलैंड सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी पर आधारित 300 से ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें मेड इन इंडिया टाइटो स्नाइपर राइफल और देश का पहला AI एनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल शामिल है।

0: एक से बढ़कर एक हथियार और एक से बढ़कर एक एआई आधारित टेक्नोलॉजी जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। ये प्रदर्शनी लगी है राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां 11वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो चल रहा है। इस एक्सपो में 25 से ज्यादा देशों की सुरक्षा एजेंसियां, डिफेंस मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और एक्सपर्ट्स शामिल हुए। इनमें कई भारतीय कंपनियां भी हैं जो अपने हथियारों और टेक्नोलॉजी की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्हीं में से एक है ये स्नाइपर राइफल टाइटो, जिसे शहरी इलाकों में सटीक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत इसका इंटीग्रेटेड सप्रेसर और आधुनिक डिजाइन है, जो भारत की बढ़ती रक्षा अनुसंधान क्षमता को दिखाता है।
1: ये आप एक जो देख रहे हैं स्नाइपर, इसका नाम है टाइटो, और टाइटो को पूरी तरीके से अर्बन कॉम्बैट के लिए बनाया गया। मतलब अगर मान लीजिए किसी शहरी इलाके में आपको किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो उस केस में टाइटो हमारी सेना के लिए, हमारी जो फोर्सेज हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। अर्बन वेपन इसको हम बोल रहे हैं, अर्बन कॉम्बैट वेपन,
2: अर्बन कॉम्बैट स्नाइपर राइफल। तो इसका जो कैलिबर का डायमेंशन है वो 7.62x35 है, जिसे 300 ब्लैकआउट भी कहा जाता है। और इसका जो वेट है ऑलमोस्ट विथ एक्सेसरीज इट्स 4.5 किलोस, जिसके साथ आपका साइट, बाईपॉड और ये सप्रेसर है जो इंक्लूडेड है। और ये इसलिए कॉम्पैक्ट है क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो, आप इसका बटस्टॉक, सप्रेसर, हर एक चीज़ को डिसमेंटल करके आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में क्या है कि आप ओरिजिनल स्नाइपर राइफल नहीं लेके जा सकते हो, जो होता है 9 किलो 10 किलो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सिटी या अर्बन वॉरफेयर में आप ये वेपन यूज़ कर रहे हो, तो इसका इफेक्टिव रेंज जो है 300 से लेके 350 मीटर्स, और सिटी में उतने की ज़रूरत है।
0: इस पुलिस एक्सपो में ये एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल भी चर्चा के केंद्र में है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म चलते फिरते ड्रोन घुसपैठ का पता लगाने, ट्रैक करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
1: ये एक एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है जो एक इंद्रजाल बेस्ड कंपनी, जो की हैदराबाद में बेस्ड है, उसने बनाया है। आफ्टर डूइंग एक्सटेंसिव ट्रायल with paramilitary forces in a real-time scenario on the border areas where it has proven, जहाँ पे इसकी क्षमता को हमने प्रूव किया है, हमने एक्चुअली रियल टाइम में ड्रोन्स को इसकी मदद से धराशाही किया है। और एक ऑपरेटर जो कि इस गाड़ी में यहाँ से यहाँ बैठ कर पूरे इस एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को ऑपरेट करता है। इस सिस्टम में एक खूबी ये भी है कि ये ऑटोनोमस मोड, फुली ऑटोमेटिक मोड पे भी काम कर सकता है।
2: मतलब पायलट नहीं चाहिए,
1: ऑपरेटर नहीं चाहिए।
2: ओके।
1: आप इसमें बहुत सारे बैरियर्स लगा सकते हैं, जोन्स बना सकते हैं, नो फ्लाई जोन, बफर जोन, अलर्ट जोन, ऐसे जोन बना सकते हैं, और कोई भी ड्रोन उसको अगर भेदने की कोशिश करेगा तो उसको ये सिस्टम अपने आप न्यूट्रलाइज कर देगा।
0: एक्सपो में एक रिमोट कंट्रोल टीयर गैस सिस्टम भी मौजूद है, जिसके जरिए पुलिस एक बार में ही 15 टीयर गैस लॉन्च कर सकती है। इसकी खासियत ये है कि इसे लोड करने के लिए जवान को अपने सुरक्षित वाहन से बार बार बाहर नहीं आना होगा।
1: अब यहाँ पर हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए जो टीयर गैस है उसे आसानी से पुलिस वाले फायर कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे। अमूमन ये गाड़ी के ऊपर लगा होता है, अभी भी लगा होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए पुलिस वालों को बार बार गाड़ी के बाहर आना पड़ता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इसकी खास बात क्या है कि इसे गाड़ी के अंदर, आप सेफ गाड़ी के अंदर बैठ जाइए और रिमोट के जरिए इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं।
3: देखिए इसमें क्या है, ये रिमोट कंट्रोल कार माउंट लॉन्चर है, इसमें 15 शॉट फायर कर सकते हैं एक बार में, और इसका कंट्रोल सारा जो है वो आपके इस रिमोट कंट्रोल में है जो गाड़ी के अंदर रहता है। तो आप ऑलरेडी किसी भी राइटर से सेफ हैं, आप अंदर गाड़ी के बैठे हो।
0: डीआरडीओ सीआरपीएफ द्वारा विकसित रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस भी पेश की गई, जो मुश्किल इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्षमताओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है।
1: ये आप देख रहे हैं रक्षिता बाइक एम्बुलेंस है, ये डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किसी भी घायल जवान को या घायल
4: कोई सिटीजन हो, कोई नागरिक हो, कोई मरीज भी हो आमतौर पर, तो उसे इस बाइक के जरिए ही लेकर आया जा सकता है। क्या खास बात है, आप देखिए, ये एक बाइक है, एक बुलेट है, और इसमें जब आप किसी पेशेंट को या फिर किसी घायल को बैठाते हैं तो आप उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं, आईवी फ्लूड आप यहाँ पर उसे चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसको भी आप लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो उसके हेल्थ पैरामीटर्स हैं।
5: कई सारे एरियाज होते हैं जहाँ एक कन्वेंशनल एम्बुलेंस पहुँच नहीं सकती है। ये प्रोडक्ट की इंटेंशन वही थी दैट कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ ये प्रोडक्ट पहुँच सके, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज से, इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा पहुँच सकें, एंड हमारा जो पीक से पीरियड होता है, गोल्डन आवर जैसे कहते हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड वी कैन सेव लाइव्स।
0: इन सब के अलावा इस 11वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में डीप फेक जैसी समस्या का झट से पता लगा लेने वाला सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, जो किसी भी गाड़ी या इंसान को भीड़ में आसानी से खोज सकता है, वो भी एआई की मदद से। वहीं पुणे से आए अमित जोशी नकली दवा, ड्रग्स, नकली फर्टिलाइजर की पहचान करने वाला सिंपल डिवाइस लेकर आए हैं।
6: हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोस के ऊपर ट्रेंड है, वो बताता है देखकर कि क्या जो वीडियो आपके सामने है वो रियल है या फेक है। उसके लिए देयर इज अ सॉफ्टवेयर वेयर व्हिच आई विल शो यू। आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से एक वीडियो था जिसको हमने टेम्पर किया है, जहाँ पर कभी विराट कोहली है, कभी बुमराह है, और ये जहाँ जहाँ भी फ्रेम्स के अंदर आता है हम उसको एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी टाइमलाइन के अंदर एक इंजेस्ट किया गया है फेस, जहाँ जहाँ भी वो इंजेस्ट किया जाता है हम बताते हैं कि कितना सस्पिशन है, हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक एआई जनरेटेड वीडियो थी, और उसके बाद हम उसके ऊपर,
4: मतलब ये जो ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स हैं ये क्या बता रहे हैं?
6: जो ग्रीन डॉट्स हैं वो बताते हैं कि क्या ये रियल है सेक्शन इस वीडियो का, और रेड डॉट बताता है कि क्या ये सेक्शन मैनिपुलेटेड है, क्या इसके अंदर एआई यूज किया गया था या नहीं किया गया था।
4: तो इस वीडियो में ये क्या बता रहा है?
6: सो इस वीडियो में आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि 30 सेकंड के अंदर 50% ऑफ द वीडियो व्हिच इज 15 सेकंड वो मैनिपुलेटेड थी।
5: सबसे पहले मशीन जिसका नाम है ट्रू स्कैन, थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी से है, ये आपको बताता है कि आप जो दवाई यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हमारे पास में फेक मेडिसिन है, काउंटरफिट मेडिसिन है, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, इसके लिए हमारे पास मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक है ही नहीं, तो इसको रोकने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। ये रमन पे काम करता है, आपको जो चेक करना है आप इसमें मेथड फीड कीजिए और उसको चेक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए ये एक डाइक्लोफेनेक है, अब इसमें डाइक्लोफेनेक सॉल्ट है या नहीं है हमें उसको मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और इसको यहाँ पे हमको रन करके देखना है बिना पैकेट को ओपन किए हुए, दवाई को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको विद इन अ मिनट आपको ये बताएगा कि ये जो सॉल्ट है इसमें प्रेजेंट वो है या नहीं है। आप देख रहे हैं मशीन में ये कितना टाइम ले रहा है, इसने पहले आपकी मेडिसिन को स्कैन किया, और इसमें बताया स्ट्रॉन्ग पास, मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं डाइक्लोफेनेक सॉल्ट का इसमें प्रेजेंट है। ड्रग का छोटा सा डिवाइस है जो पोर्टेबल है, कैरी, इसको हम कहीं भी कर सकते हैं। ये भी ड्रग की 6 कैटेगरीज को आपको पता करता है कि आपने क्या कंज्यूम कर रखा है इसके अंदर, ये भी सलाइवा बेस्ड कंपनी का है।
4: ठीक है, आप कुछ किसानों के लिए भी था मेरे ख्याल से?
5: यस, किसानों के लिए हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेम जो हमने ये डिवाइस था ये नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव के लिए था, लेकिन हमने क्या किया इसके अंदर फर्टिलाइजर्स जो हम हैं, जो फेक फर्टिलाइजर जो अभी मार्केट में आ रहे हैं उनको पढ़ने करने के लिए भी हमने इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कस्टमाइजेबल है, ये आप हेल्थ के लिए बोलो या नार्कोटिक्स के लिए बोलो, एग्रीकल्चर के लिए बोलो, ये किसी भी डिवाइस में इसको यूज कर सकते हो।
0: सरकारी एजेंसियों, पुलिस संगठनों और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स की भागीदारी के साथ ये एक्सपो देश में ही विकसित इनोवेशन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर भारत के हर दिन बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात पासपोर्ट की, जिसे अभी तक हम और आप भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय के हवाले से एक खबर के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, जबकि उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और व्यक्ति की पहचान दर्ज होती है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है?

0: जिनके पास भी भारतीय पासपोर्ट है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके की इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। जो पासपोर्ट केंद्र के प्रवेश द्वार पर डिजिटल टोकन नंबर लेने से शुरू होती है और दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट ग्रांट करने की अंतिम प्रक्रिया तक जाती है, उसके बाद ही आमतौर पर हाथों में नीले या नारंगी रंग का पासपोर्ट आ पाता है। भारतीय पासपोर्ट को लेकर ये आम धारणा है कि वो नागरिकता का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण या प्रूफ है। हालांकि अब ये धारणा टूटती हुई दिख रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा दस्तावेज है, ऐसे में उसको नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद भारतीय नागरिकता के आधार को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। दरअसल भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत मिलती है।
1: पासपोर्ट को लेकर दिए गए विदेश मंत्रालय के एक बयान के बाद इस बात को लेकर बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता का आधार आखिर क्या है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। 1967 के पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक ये नियम है कि विदेश मंत्रालय किसी भी नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट दे सकता है, लेकिन तमाम तथ्यों और तमाम वेरिफिकेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल है। लेकिन एक अहम बात इस एक्ट में ये भी है कि विदेश मंत्रालय को ये अधिकार है कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में, कुछ ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे लोगों को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है जो भारतीय नागरिक नहीं है। लिहाजा पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता।
0: देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें विदेश मंत्रालय ने ऐसे कई लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी किया जबकि वो भारतीय नागरिक नहीं थे। ऐसे में भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए सबसे भरोसेमंद दस्तावेज मान लेना गलत है।
1: तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिनमें विदेश मंत्रालय ने कई ऐसे खास लोगों को, भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला पासपोर्ट दिया है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें विदेश मंत्रालय ये पासपोर्ट उन लोगों को भी जारी करता है जिन्हें भारतीय मूल का नहीं माना गया है। लिहाजा भारतीय पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है।
0: ज्यादातर भारतीय पासपोर्ट को ही सबसे भरोसेमंद और पुख्ता दस्तावेज मानते हैं, वो इसे ही अपनी नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण भी मानते हैं। हालांकि विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पासपोर्ट भारतीयों की राष्ट्रीयता की पुष्टि भी करता है, लेकिन फिर भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद आखिर किन सरकारी दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के प्रूफ के रूप में मान्यता मिली है, इस पर बहस छिड़ गई है। दरअसल विपक्ष का दावा है कि SIR में सबसे पहले स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में पासपोर्ट भी शामिल है।
1: दरअसल ये सवाल MEA से इसलिए किया गया था क्योंकि SIR के तहत क्या पासपोर्ट को एक ऐसा सबूत माना जा सकता है जिसके जरिए आप अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। तो MEA ने ये बात कही कि पासपोर्ट को इसका आधार या इसका सबूत नहीं माना जा सकता, उसकी एक अलग प्रक्रिया, अलग प्रोविजंस है जिसके तहत आपको भारतीय नागरिकता का सबूत मिलेगा या आपको उसका प्रमाण मिल सकता है, लेकिन पासपोर्ट अकेला वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके तहत आप ये साबित कर सकें कि आप भारतीय नागरिक हैं या फिर आप भारतीय नागरिकता का प्रमाण इस डॉक्यूमेंट को मान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब यात्रा की जाती है तो यात्रा के दौरान आपको भारतीय मूल का एक प्रमाण विदेश में जरूर पासपोर्ट होल्डर्स को होता है, लेकिन भारत में जब SIR की प्रक्रिया हो रही है तो उस प्रमाण के लिए, उस रजिस्टर के लिए अकेला पासपोर्ट काफी नहीं है आपकी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए।
0: 2013 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में माना था कि गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी हो सकता है। ऐसे में किसी के पास केवल पासपोर्ट का होना नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। नागरिकता अभी भी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही मिलती या खत्म होती है।
2: मौजूदा स्थिति में भारत के नागरिक होने की क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? तो जो शर्तें हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप 1 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे हैं तो आप देश के नागरिक हैं। अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं तो आपके माता पिता दोनों को देश का नागरिक होना चाहिए, तब आपको देश की नागरिकता मिलेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट हमारा इस देश का है, हमारे माता पिता भी इसी देश के हैं, तो एक बर्थ सर्टिफिकेट अगर ये डॉक्यूमेंट हो गया और जो हमारे और एक आधार कार्ड पैन कार्ड या पासपोर्ट बनते हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन को अगर हम दिखाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिटीजनशिप को हमारे प्रूफ कर सकता है। लेकिन इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को लेकर अगर हम क्लेम करना चाहें कि ये नागरिकता प्रूफ करे, तो ये बिल्कुल नहीं है, जो कि MHA समय दर समय ये गाइडलाइन इश्यू करता रहता है। तो हालांकि पासपोर्ट एक सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है आपकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी पर्पज के लिए, लेकिन एकमात्र डॉक्यूमेंट नहीं माना सकता।
0: बहरहाल विदेश मंत्रालय का पक्ष साफ है, यानी सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन तब नागरिकता का अंतिम प्रमाण किसे माना जाए, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज पत्र।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
5: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं, पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
6: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
7: I have no idea how this election is going to play out.
6: Or want to catch up on your team's live play-by-play? It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी विचारों का ना मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो, अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े, कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें, या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें, इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। मेष राशि, मन की समस्या, मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहां हैं, पत्नी जहां हैं, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर।
हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहाँ रहते हैं वहाँ करेंगे, पत्नी जहाँ रहती है वहाँ करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की, और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा। तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे। सामान्य स्थितियों में दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा। दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, काम टालना ठीक नहीं होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। काली दाल का अगर दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है, करियर बदल सकता है इस समय। धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं, पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो,
और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे, पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का इंटरफेरेंस, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। और भगवान न करे चंद्रमा खराब है और मंगल भी गड़बड़ हो गया या मंगल की दशा आ गई उसमें उसी बीच में, तो शादी टूटनी ही है, परिवार वालों की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा, अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। केवल चंद्र खराब हो तो पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप तो होता रहता है लेकिन जिंदगी काट लेते हैं। अगर चंद्र भी खराब है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तब तो ये जानिए कि परिवार वालों के चक्कर में पति पत्नी का सेपरेशन जरूर होगा। क्या करना चाहिए? अब आप पत्नी हैं, आपके आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप उसको जरा सुधारिए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे। और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीजें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्या तनाव आपका कम होगा, समस्या हल होगी, आर्थिक समस्या भी हल होगी, संपत्ति का लाभ

देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया। तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं, और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो झुकाव भी ज़्यादा होता है, आकर्षण भी ज़्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज़्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है, प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज़्यादा होती है, और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं, तो आप विवाह के बाद चीज़ों के पीछे लॉजिक खोजते हैं, विवाह के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की, और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और कई कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं, शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए, शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे, दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए, चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए। घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए, और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें, तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उस।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट को एफडीए के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल रेस्टोरेंट के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस। आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है, तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा तमिलनाडु के दो बड़े मंदिरों में महाकुंभाभिषेकम के आयोजन की भी हो रही है।
5: तीन जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों ने जंगल में मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में यात्रियों के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए कई अभ्यास किए गए। आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी, आपदा जैसी स्थितियों को जांचने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तमिलनाडु के दो बड़े मंदिरों में कुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया। कांचीपुरम में 21 साल के बाद श्री कदम्बनाथर मंदिर में कुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया। कांचीपुरम महाकुंभाभिषेकम में वेदों के मंत्रोच्चारण, पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ मंदिरों के गोपुरम और मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया, और फिर महाकुंभाभिषेकम के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गेट खोल दिए गए। महिला दुथुराई के वर्सिद्धि विनेगर मंदिर में महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान किया गया। यहाँ इस अनुष्ठान के बाद वर्सिद्धि विनेगर मंदिर में भगवान की आरती उतारी गई, भक्तों ने खूब जयकारे भी लगाए। दोनों ही जगहों पर महाकुंभाभिषेकम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लद्दाख के सबसे बड़े और समृद्ध ऐतिहासिक हेमिस मठ में इन दिनों सालाना हेमिस फेस्टिवल की धूम है। कल से शुरू हुए दो दिनों तक चलने वाले इस भव्य महोत्सव का आयोजन गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होता है। इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण लामाओं द्वारा किया जाने वाला पवित्र छम नृत्य है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये उत्सव लद्दाख की समृद्ध बौद्ध संस्कृति, आध्यात्मिकता और स्थानीय जीवन दर्शन को गहराई से जानने और अनुभव करने का सबसे बेहतरीन मौका है। मुरादाबाद नगर निगम ने कंपनी बाग के पास बुजुर्गों के लिए अत्याधुनिक सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बनाया है। ये सेंटर मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बना है। इस डे केयर सेंटर में बुजुर्गों के लिए मनोरंजन और खेल का इंतजाम है। पुस्तकालय के अलावा यहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल और इंडोर गेम्स की व्यवस्था है। स्वास्थ्य और फिटनेस की सुविधा के साथ आरामदायक माहौल दिया गया है। यहाँ बुजुर्गों के साथ उनके परिवार के सदस्यों और बच्चों के लिए भी खास इंतजाम है, ताकि सभी एक साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें। पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड इस डे केयर सेंटर का मकसद बुजुर्गों का अकेलापन दूर करना, बातचीत करना और सक्रिय जीवन जीने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है। मोरबी में ब्लड डोनेशन का अनोखा रिकॉर्ड बना है। यहाँ के जेतपुर गाँव में ये रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन शुरू तो निजी कंपनी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए किया गया था, लेकिन सुबह से रात तक यहां ब्लड डोनर्स किसानों की भीड़ उमड़ती रही। एक दिन में यहां 5,551 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन कैंप में 12 ब्लड बैंक ने ब्लड एकत्रित किया। गुजरात में अब तक हुए ब्लड डोनेशन कैंप में जेतपुर ने एक ही दिन में एक ही जगह पर सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया है।
2: और अब बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बाद क्या देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। हॉर्मूज संकट के बाद कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल से घटकर अब करीब $73 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। लिहाजा कच्चे तेल के सस्ता होने के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ऑयल कंपनी पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती करेगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटने का असर सीधे पेट्रोल पंपों पर नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसमें कुछ समय लग सकता है।

0: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ही के दिनों में ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ वक्त पहले जहां तेल की कीमतों में भारी उछाल ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी थी, तो वहीं अब बाजार में राहत का माहौल दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई की स्थिति सुधरने और भू राजनीतिक तनाव कम होने से कीमतों पर दबाव बना है। इससे ऊर्जा आयात करने वाले देशों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड का भाव करीब $73 प्रति बैरल पर है, वहीं WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत करीब $70 प्रति बैरल है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी सस्ते होने वाले हैं। जैसे जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव कम होने लगा है, वैसे वैसे राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। सवाल तो ये भी है कि क्या कच्चे तेल में आई इस नरमी का फायदा भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी मिलेगा।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जब तेल के अर्थशास्त्र को देखते हैं तो मुझे लगता नहीं कि एक कोई आम आदमी को पेट्रोल पंप पे या डीजल पे ये जो कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है वो 2-2.5 महीने से पहले हो जाए। अगर कुछ लाभ होता भी है, तेल की कीमत कम भी होती है, मुझे लगता है कि वो होते होते दशहरे के आसपास पहुंच जाएगा। दशहरा ये जो 30 त्योहार का मौसम होता है भारत के अंदर, उसके आसपास हो सकता है पेट्रोल डीजल जो है थोड़ा सस्ता हो जाए। अगर जो है युद्ध दोबारा शुरू नहीं होता, अगर तेल जो है वो वर्ग सस्ता ही रहता है, तो इससे पहले कि आम आदमी को उसका लाभ मिले पेट्रोल पंप पे डीजल पे, तो दशहरे तक का समय लग जाएगा। मुझे मेरा गणित तो यही कहता है।
0: कई लोगों को उम्मीद है कि कच्चा तेल सस्ता होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी आएगी, हालांकि ऐसा तुरंत होना जरूरी नहीं। भारत में ईंधन की कीमतें केवल कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करती, इनमें केंद्र और राज्य सरकारों की टैक्स, रिफाइनिंग खर्च, परिवहन लागत और मार्केटिंग मार्जिन जैसे कई तत्व शामिल होते हैं। इसीलिए तेल सस्ता होने के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत मिलने में समय लगता है। अगर कीमतों में गिरावट लंबे वक्त तक बनी रहती है, तभी इसका असर खुदरा ईंधन दरों पर दिखाई दे सकता है। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा असर देश के आयात खर्च पर पड़ सकता है। अगर तेल लंबे समय तक सस्ता बना रहता है तो सरकार और तेल कंपनियों को आर्थिक राहत मिल सकती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सस्ता तेल अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के लिए सकारात्मक संकेत भी माना जाता है, क्योंकि परिवहन और उत्पादन लागत कम होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज अगर कच्चा तेल सस्ता है, चूंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो है MOU साइन हो गया, उसके रहते हुए जो बाजार के अंदर सेंटिमेंट्स काफी अच्छे हो गए हैं और तेल की कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो तेल की जो कीमत जो आप पे करते हैं, जिसका आप भुगतान पेट्रोल पंप पे जाकर के करते हैं पूरे देश के अंदर, चाहे पेट्रोल खरीदते हैं या डीजल खरीदते हैं या कैरोसिन खरीदते हैं या LPG खरीदते हैं, इसका एक साइकिल होता है, इसका एक अर्थशास्त्र है। तो आज अगर जो कीमत कम हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो कच्चे तेल की हुई है। अब वो कच्चा तेल जो है वो खरीदा जाएगा, उसके बाद समुद्री जहाज के रास्ते से उसको भारत लेके आया जाएगा, तो उसमें जहाज का भाड़ा भी होगा और उसमें इंश्योरेंस का भी कीमत होगी, और वो भारत पहुंचते पहुंचते जो साइकिल होता है वो लगभग ये मान के चला जाता है कि वो कहां से आ रहा है, लेकिन औसत जो साइकिल है ये 2 महीने का होता है। अर्थात ये हुआ है जो आज कच्चा तेल सस्ता बाजार में दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इससे पहले कि वो यहां पे आके रिफ्लेक्ट हो पेट्रोल पंप पे या रिफाइनरी में या भारत के अंदर, उसमें 2 महीने का समय लगता है, एक साइकिल है। तो जो आज आप पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं, ये वो वाला तेल है, वो कच्चा तेल है जिसे पेट्रोल डीजल बनाया गया रिफाइन करने के बाद, जो आज से 2 महीने या 2.5 महीने पहले खरीदा गया था।
0: हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आम लोगों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर मिलने में कुछ समय लग सकता है। अगर वैश्विक बाजार में तेल लगातार सस्ता बना रहता है तो सरकार और तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं। इससे पेट्रोल डीजल की दरों में कमी आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा सस्ता ईंधन परिवहन लागत कम कर सकता है, जिससे अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के पहले ब्रेंट क्रूड $72 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था और अब कच्चे तेल की मौजूदा कीमत युद्ध के पहले के भाव के बराबर पर आ गई है। इसीलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत देखने को मिल सकती है।
1: रूस से तेल लेकर के आते हैं, लगभग 40 दिन लग जाते हैं। सऊदी अरब वगैरह से लाते हैं तो हफ्ते भर के अंदर आ जाता है। ये डिपेंड करता है आप कहां से लेके आ रहे हैं। उसके बाद उसको रिफाइनरी में लेके आया जाता है, रिफाइनिंग होती है उसकी। रिफाइनिंग होने उसमें भी जाहिर है कि उसमें खर्चा होता है। उसके बाद जो है उसका जो पूरे देश के अंदर वितरण किया जाता है ट्रकों से, ट्रेनों से वगैरह वगैरह, उसका भी एक अर्थशास्त्र होता है, उसकी भी कीमत होती है। उसके बाद जो है जो पेट्रोल पंप जो होता है जहां से आम उपभोक्ता खरीदता है वहां सब जाता है, तो उसमें फिर कमीशन भी होता है, डीलर का कमीशन भी होता है। उसके साथ साथ केंद्रीय सरकार का टैक्स लगता है, सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं। जितनी भी राज्य सरकार है, चाहे किसी भी दल की राज्य सरकार हो, वो अपने टैक्स उस पर लगाते हैं। तो मोटा मोटा जितना भी जाके आप पेट्रोल पंप पे देते हैं एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए, उसमें से 50% तो सरकारों के पास जाता है। खाली केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों पे भी जाता है। तो ये आपस में दोनों टैक्स जो है दोनों के पास जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जो कीमत निकल करके आती है वो आप पेट्रोल पंप पे पे करते हैं।
0: सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें अपडेट कर दी हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का भाव 111.21 रुपए और डीजल 97.83 रुपए है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 108.01 रुपए और डीजल 99.66 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लिहाजा ये भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की इकोनॉमी के लिए बहुत मायने रखता है। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। भारत विदेशों से कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से मंगाता है। क्योंकि भारत विदेशों से करीब 85% कच्चा तेल खरीदता है, ऐसे में होर्मुज में किसी भी प्रकार की रुकावट देश के आयात बिल को बढ़ा सकती है, रुपए को कमजोर कर सकती है और महंगाई को बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वायुसेना में स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा शामिल कर लिया गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की कवायद जारी है। अब एक स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा को वायुसेना में शामिल किया गया है। नेत्रा हवा में उड़ता हुआ एक रडार स्टेशन है जो आसमान से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का शानदार आगाज हुआ। ये एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग तकनीक मंचों में से एक है। इस एक्सपो में अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। इस एक्सपो के मंच पर 25 से ज्यादा देश जुटे हैं। इस एक्सपो का मुख्य लक्ष्य भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी और उन्नत समाधान प्रदान करना है। राजस्थान के कोटा में सिटी पार्क शहर आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये पार्क अलग अलग थीम पर विकसित किए गए कई जोन में बटा है, जिसमें करीब 2.5 लाख पेड़ पौधों से पार्क को सजाया गया है। पार्क में कृत्रिम कैनाल में बोटिंग, आकर्षक ग्लास हाउस, विशाल एम्पी थिएटर और खुले ग्रीन एरिया ने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं। इससे शहर के टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है। यहाँ प्री वेडिंग शूट, म्यूजिक वीडियो और विभिन्न शूटिंग गतिविधियाँ भी लगातार की जा रही हैं। पार्क के 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विशाल बैंक्वेट हॉल बनाया जा रहा है। किताबों के बोझ से दूर प्रकृति की गोद में राहत पाने यहाँ रोजाना करीब 1200 युवा विजिट करते हैं, जिनसे मात्र 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जबकि आम नागरिकों के लिए एंट्री फीस 100 रुपए है। गुरुग्राम नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए हैं। गुरुग्राम नगर निगम ने डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पालतू डॉग्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। अब प्रशासन बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मालिक MCG की ऑनलाइन वेबसाइट या सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नगर निगम ने पालतू डॉग्स को लेकर कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं।
2: और अब बात निर्जला एकादशी की। आज देश भर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। राजस्थान में सीकर के खाटू श्याम में बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बिहार में गया के विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही, जबकि हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। भीषण गर्मी और लंबे इंतजार के बावजूद श्रद्धा अडिग रही। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।

0: केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी के बेला में उमड़ियो भक्तन को प्यार। खाटू धाम से लेकर गया तक और हरिद्वार से गंगा तटों तक हर जगह भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि रास्ते छोटे पड़ गए, लेकिन विश्वास नहीं। कहीं श्याम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं विष्णु चरणों में शीश झुक रहे हैं, तो कहीं गंगा की लहरों के बीच श्रद्धा अपना स्वरूप दिखा रही है। एक तरफ तपती धूप, दूसरी तरफ आस्था की ठंडी छांव, एक ओर निर्जल व्रत का कठिन संकल्प तो दूसरी तरफ भगवान के दर्शन की अटूट चाह। आज निर्जला एकादशी है, सनातन परंपरा का वो विशेष पर्व जिसे पुण्य, संयम और समर्पण का महापर्व माना गया है। राजस्थान के खाटू धाम में बाबा श्याम के दो दिवसीय मेले की शुरुआत होते ही लाखों श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। रिंगस से खाटू तक का रास्ता पदयात्रियों से भर गया। हर कदम पर जय श्री श्याम का उद्घोष सुनाई दे रहा था। लोग दूर दराज के राज्यों से पहुंचे और बाबा के दरबार में माथा टेक कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए। इस अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष तौर पर सजाया गया। आम, हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सूखे मेवों से सुसज्जित दरबार आकर्षण का केंद्र बना रहा। विशेष श्रृंगार ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। गर्मी को देखते हुए पानी, छाया, कूलर और पंखों तक की व्यवस्था की गई ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। खाटू श्याम में भक्तों की कतार तो लगी ही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के गया स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में भी सुबह से ही लंबी लाइन दिखी। भगवान विष्णु के पावन चरणों के दर्शन के लिए अगल बगल जिलों से पहुंचे श्रद्धालु धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पूरे परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध तरीके से गर्भगृह तक पहुंचाया गया ताकि दर्शन प्रक्रिया सुचारू तौर पर चलती रहे। धार्मिक मान्यता कहती है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली ये तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया उपवास और पूजा पूरे साल की 24 एकादशियों के समान फल देती है। इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में लोग भगवान विष्णु की आराधना, दान पुण्य और सेवा कार्यों में जुटे दिखाई दिए और मंदिरों में भजन, मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना का क्रम भी लगातार चलता रहा। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा तटों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर पहुंचे और पवित्र जल में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक संतोष प्राप्त किया। स्नान के बाद लोगों ने जरूरतमंदों को फल, जलपात्र, मिठाई, पंखे और दूसरी उपयोगी वस्तुएं भेंट की। मान्यता है कि इस अवसर पर किया गया दान विशेष महत्व रखता है।
1: अपने जीवन को हर प्रकार से, हर कष्टों से मुक्ति पाने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पर अगर किसी कारणवश पूरे 24 एकादशियों का उपवास कोई व्यक्ति न रह पाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये वाली जो पद्म पुराण में वर्णन आता है जिस प्रकार से, और महाभारत खंड में इसका वर्णन आता है कि निर्जला एकादशी एकमात्र अगर रख ले तो उसको पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। विधि इसकी विशेष तौर पर पुण्य क्षेत्र हरिद्वार, कुंभ क्षेत्र हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड आदि और अन्य कुंभ क्षेत्रों के अतिरिक्त पवित्र नदियों में या उनका ध्यान करके घर पर ही जो व्यक्ति स्नान करने के पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए श्वेत वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करके नारायण की पूजा करके निर्जल व्रत रखता है और द्वादशी का पारायण करते समय ही जल ग्रहण करता है, इस प्रकार करने से वो व्यक्ति पूरे 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है।
0: धार्मिक ग्रंथों में इस पर्व को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। कथा के अनुसार महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर इसी दिन कठोर उपवास रखा था। तभी से ये तिथि संयम और साधना का प्रतीक मानी गई है और इसी कारण लाखों लोग पूरे विश्वास के साथ इस पर्व का पालन करते हैं।
2: भीम से बात हुआ, भीम को कहीं कृष्ण भगवान कि हमको आप समझ जाइए, आप 12 महीना का 81 वर्ष कीजिए। कहीं कि हमको तो 12 महीना 81 नहीं चलेगा, हम एक दिन तो बिना खाए रह नहीं सकते हैं, तो हम पूरा 81 12 महीना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भीम को कहीं कि ये कोई 81 कीजिए या न कीजिए, ये निराजली एकादशी भीम सेनी एकादशी इसका नाम है। तो निराजली एकादशी साल में एक बार आता है, आज बृहस्पति गुरुवार है, बहुत बड़ा इसका है। ये समझे एकादशी व्रत करने से 2400 एकादशी करने का फल होता है।
0: कड़ी धूप, लंबा इंतजार, थकान भी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि मन में एक ही भावना थी, ईश्वर के प्रति समर्पण। कोई नंगे पांव चलकर पहुंचा, कोई घंटों कतार में खड़ा रहा, तो कोई गंगा तट पर मौन साधकर प्रार्थना करता दिखा। यही वो शक्ति है जो भारतीय संस्कृति को विशेष बनाती है। सीकर से हिमांशु शर्मा, गया से पंकज कुमार, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
4: आज भी शेयर मार्केट में थोड़ी बढ़त दिखाई दी। ऑटो, एविएशन और बैंकिंग शेयरों में बढ़त के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़े। सेंसेक्स 109.25 अंक बढ़कर 77,100.47 पर और निफ्टी 34.35 अंक बढ़कर 24,056 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल मार्केट में तेजी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। दिल्ली में बाजार में कम मांग और कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के चलते सोने चांदी की कीमतें गिर गई हैं। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आज दिल्ली में सोने की कीमत 2,800 रुपए घटकर 1,45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी 5,000 रुपए घटकर 2,26,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 94.39 पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक घरेलू इक्विटी मार्केट में सकारात्मक माहौल और डॉलर में मामूली कमजोरी ने रुपए को सहारा दिया है, इसीलिए एक डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा मजबूत दिखा है।
3: फ्राइडे पर वेलकम टू जंगल के साथ सिनेमाघरों और ओटीटी पर लगेगा मनोरंजन का मेला। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
5: सिनेमा घरों में कल फिल्मी फ्राइडे पर एंटरटेनमेंट का धमाल होने वाला है। जून के आखिरी शुक्रवार को एक साथ 16 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार हैं। थिएटर्स में अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल सीरीज रिलीज होने जा रही है। हिंदी में जो दूसरी फिल्म कल सिनेमा घरों में आ रही है वो है सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र। इसके अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं की भी कई फिल्में कल बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। फ्राइडे को घर बैठे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट के शौकीन दर्शकों को भी एक दो नहीं पूरी 6 फिल्मों और वेब सीरीज का तोहफा मिलने जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है रितेश देशमुख की राजा शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। नेहा धूपिया और पंकज त्रिपाठी की परफेक्ट फैमिली, जो कल से ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट का फुल डोज दर्शकों को मिलेगा। ओटीटी पर पॉपुलर रही सीरीज मिर्जापुर फिल्म के रूप में सिनेमा घरों में आएगी। फिल्म मिर्जापुर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के किरदारों मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया के पोस्टर्स जारी किए गए हैं। पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा गया है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। ये फिल्म 4 सितम्बर को रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड में इतने सालों से काम कर रहे शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म किंग को लेकर सुर्खियों में हैं। इसकी शूटिंग अब खत्म होने की कगार पर है। इस बीच एक्टर को मुंबई में स्पॉट किया गया। 24 जून की शाम, जब शाहरुख इंडस्ट्री में अपने 34 साल पूरे करने वाले थे, वो एक जश्न में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने अपनी प्रेजेंस से लोगों को इम्प्रेस किया। सुपरस्टार ने अपनी फिल्म बादशाह के टाइटल ट्रैक बादशाह ओ बादशाह पर एंट्री की और फिर उन्होंने अपने कई हिट गाने चांद तारे तोड़ लाऊं और ओम शांति ओम पर डांस किया। पिछले साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंधी साउथ की सुपरस्टार समांथा रूथ प्रभु अब मां बनने वाली हैं। जल्द ही समांथा और उनके पति राज निदिमोरू अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। अपनी प्रेगनेंसी की खबर को कंफर्म करते हुए एक्ट्रेस ने मैटरनिटी लीव लेने की बात की है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म माँ इंटी बंगारम की सक्सेस पार्टी में हैदराबाद में समांथा ने ये खुशखबरी दी। समांथा का कहना है कि आने वाले समय में वो अपने स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान देने के लिए कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बनाएंगी।
3: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्य का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा निस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट को FDA के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल रेस्टोरेंट के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस। और चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
8: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
3: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के होटल्स में अब कस्टमर्स को देना होगा मुफ्त पानी। महाराष्ट्र में अब सभी रेस्टोरेंट, होटल और ऐसी ही जगहों पर कस्टमर्स को मुफ्त पानी देना पड़ेगा। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA की ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। आपको बता दें कि FDA के ऑर्डर में अखबारों में खाना परोसने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही केमिकल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए फूड ग्रेड पैकेजिंग का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि बड़े फूड बिजनेस और चेन रेस्टोरेंट के मेन्यू में कैलोरी काउंट, संभावित एलर्जी और शाकाहारी या मांसाहारी स्टेटस के बारे में साफ और डिटेल जानकारी होनी चाहिए। FDA के इस फैसले के बाद अब कोई भी रेस्टोरेंट कस्टमर्स को बोतल वाला पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल है कि ये नियम किन किन जगहों पर लागू होगा। FDA का ये ऑर्डर सभी होटल्स, रेस्टोरेंट, खाने की जगहों, ढाबों, कैंटीन, कैफेटेरिया और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पर लागू होगा। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, केटरिंग यूनिट, मिठाई की दुकानों, बेकरिंग, फूड कोर्ट, जूस बार, किचन चेन रेस्टोरेंट के साथ साथ ई कॉमर्स और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को भी ये नए नियम फॉलो करने होंगे। आपको बता दें अगर कोई रेस्टोरेंट या फिर कैफे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है तो उस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2026 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पेनल्टी, केस और लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल किया जाना भी शामिल है। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने मुंबई में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
9: और रेस्टोरेंट मामले में हम मुंबई में पहुंचे हैं एक ऐसे रेस्तरां में जहां पर लोग अपने परिवार संग आते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं, अपने मन पसंद का खाना खाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और हमारे साथ में इसी रेस्टोरेंट के चीफ शेफ भी बैठे हैं, जिनसे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि FDA द्वारा जो कुछ फैसले लिए गए हैं वो कितना अमल कर रहे हैं। आप बताएं, सबसे पहले पानी की यहाँ बात हो रही है, आती ही रेगुलर पानी होटल द्वारा दिया जाना चाहिए कस्टमर को, उस तरह से 20-30 रुपए के जो पानी वो नहीं, आप ये मानते हैं और क्या आप ऐसा करते हैं?
10: यस, हमारे पास फिल्टर वाटर है और गेस्ट अगर आते हैं तो हम उनको फिल्टर वाटर सर्व करते हैं।
9: अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुकिंग में जो ऑयल इस्तेमाल होता है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे भी कुछ
10: ये बहुत सराहनीय कदम है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमारे रेस्टोरेंट में जो भी फूड सर्व होते हैं जैसे पास्ता हो गया, रिसोटो हो गया, सैलेड्स हो गया, ये सब वन टाइम कुकिंग का ही कमाल है। एक बार हमने अगर बनाया, कुछ सैलेड बनाया है या पास्ता बनाया, उसमें कोई भी ऑयल दोबारा यूज नहीं होता, वो एक बार बन के गेस्ट के पास जाता है और वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग हमेशा फ्रेश ऑयल ही यूज करते हैं।
9: अच्छा, जो कस्टमर्स आते हैं आपके कैफे में उनकी डिमांड ज्यादातर क्या होती है, रेगुलर वाटर्स की होती है या मिनरल वाटर या फिर वैसे?
10: एक्चुअली बहुत टाइप्स के गेस्ट आते हैं, बहुत बोलते हैं मुझे बोतल वाटर चाहिए, बहुत बोलते हैं मुझे रेगुलर वाटर चाहिए, तो ये तो गेस्ट का चॉइस है, बट मोस्टली हम लोग रेगुलर वाटर ही सर्व करते हैं अंटिल जब तक गेस्ट नहीं बोलता कि मुझे बोतल वाटर चाहिए।
9: हमारे साथ में इस किचन के जो ओनर हैं राहुल सिंह भी मौजूद हैं, तो आपने ये फैसला सुन ही लिया होगा। आपके यहाँ रेगुलर पानी आता है या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई सीधे पैसे देकर जो मिनरल वाटर टाइप है ना?
11: नहीं, हमारे यहाँ पर रेगुलर पानी भी ऑप्शंस है और पैक बॉटल भी ऑप्शन है। जैसे गेस्ट आके हमारे यहाँ पे बैठते तो हमारे सर्वर पहले उनसे पूछते हैं नॉर्मल वाटर या पैकिंग बॉटल, तो अगर वो पैकिंग बोले तो पैकिंग, अगर नॉर्मल बोले तो नॉर्मल। अच्छा। जो जैसा गेस्ट का कंफर्टेबल है वो हिसाब से हम उनको सर्व करते हैं।
9: नॉर्मल पानी जो आप देते हैं वो कितना सुरक्षा के साथ है, कितना साफ है, बताएं थोड़ा।
11: देखो, FDA का जब हम लाइसेंस लेते हैं तो उस टाइम पे हमें ये बताया जाता है कि हमें वाटर टेस्टिंग करानी पड़ती है। जो BMC से पानी आती है, जो BMC से पानी आता है उसका हम प्लांट लगाते हैं, मीन्स हमारे पास वाटर प्यूरीफायर होता है। ये वाटर प्यूरीफायर हमारे हैं जिसका हम लगाए हुए हैं और इसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों आते हैं। BMC से पानी आएगा वहाँ पे, यहाँ पे प्यूरीफाई होगा और प्यूरीफाई होने के बाद ये पानी जो है हमारे गेस्ट के लिए जाएगा। अच्छा। हमारे गेस्ट के लिए जाएगा तो हम प्यूरीफाई करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी आया डायरेक्टली हम उनको दे दिया, नहीं, प्यूरीफाई होके ही जाता है।
12: कभी इस तरह की कोई कंप्लेन आई है कस्टमर द्वारा कि आपका जो रेगुलर वाटर है, नॉर्मल वाटर, वो ठीक नहीं है?
11: मुंबई में स्थित जो लोग रहते हैं उनका कंप्लेन तो कभी नहीं आया है। जो बाहर से कभी आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो थोड़ा पानी का जो चेंजेस, टेस्ट चेंज होता है, उस रिगार्डिंग थोड़ी कंप्लेंट्स आती है, बाकी कोई नहीं आती।
12: अच्छा, ये भी कहा गया है कि एक बार जो ऑयल इस्तेमाल कर लिया जाता है, मैं आपके किचन में ही हूँ, एक बार जो ऑयल इस्तेमाल कर लिया जाता है फूड बनाने के लिए, वापस से आप उसको इस्तेमाल ना करें, तो इस पर आप अमल रखते हैं?
11: पर डे क्लीन होता है ऑयल, नेक्स्ट डे वो रिपीट नहीं होता।
12: अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अब नए कमिश्नर आए तुकाराम मुंडे, आपको क्या लगता है कि उनके आने से काफी हलचल हो गई रेस्टोरेंट में काफी, तो आपकी आप किस तरह से मान रहे हैं उनको, जान रहे हैं?
11: सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले भी वही थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस आज भी वही हैं, फॉलो हम पहले भी करते, फॉलो हम आज भी कर रहे हैं।
13: ऐसा होता है कि किसी का प्रेफरेंस होता है कि किसी को नॉर्मल वाटर चाहिए या फिर किसी को डिस्पेंसरी चाहिए, तो बेसिकली रेस्टोरेंट्स वालों को पूछना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं कि स्टिल वाटर चाहिए या फिर मिनरल वाटर चाहिए, तो बेसिकली वैसा प्रेफरेंस होना चाहिए उनके अंदर, उन्हें पूछना चाहिए कि आपको स्टिल वाटर चाहिए या फिर मिनरल वाटर चाहिए।
12: अच्छा, ये बताइए, आपको ऐसा लगता है कि नकली ऑयल या फिर ऑयल खराब होता है फूड में, खाने में, रेस्टोरेंट में, या फिर एक ऑयल को दो तीन बार यूज करना चाहिए?
13: सो अभी उसके ऊपर मैं एक बात बोलूँगा कि मेरे फैमिली रिलेटिव में उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह, सो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम लोग तेल को साफ करके नया करते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन वगैरह उसके ऊपर होते हैं। अभी अगर कोई जो जनरल नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं जो चेंज नहीं करते हैं, वो बेसिकली आना चाहिए कि तो वैसा होना तो नहीं चाहिए कि जिससे लोगों की हेल्थ खराब हो,
14: ये होना ही चाहिए। हाइजेनिक जितना बेटर होगा हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है, ये तो नेसेसिटी है। मतलब हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं तो इतना तो डिमांड कर ही सकते हैं कि हाइजेनिक फूड, क्योंकि हम उनको पे भी कर रहे हैं।
12: अच्छा, ये बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपसे बिना पूछे आपके सामने बिस्लरी या फिर ऐसा पानी जो बोतल बंद है वो लाकर रख दिया गया हो?
14: हाँ, होता है। अभी मेरे हिसाब से मेरे लिए वो बेटर एक्सपीरियंस है, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं पे करूँगा उसको। कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, तो फिर वो एक बार बस पूछना चाहिए। बट जो वो नॉर्मल पानी प्रोवाइड करते हैं वो भी मिनरल वाटर ही होना चाहिए, कि साफ करके प्रोवाइड करें, एक्वा वाटर होना चाहिए।
3: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद बैग क्लस्टर की, जिनका दायरा न सिर्फ तेजी से बढ़ा है बल्कि रोजगार के अवसर मिलने से यहां से होने वाले मजदूरों के पलायन पर फुल स्टॉप लगा है। मजदूर खुश है कि घर में काम मिल रहा है, अच्छी आमदनी हो रही है और काम के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। ये है मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक इलाके में मौजूद बैग क्लस्टर, जो मजदूरों की जिंदगी में बहार बनकर आया है। इस बैग क्लस्टर ने यहाँ श्रमिकों की जिंदगी बदल दी है। पहले यहाँ से पलायन कर मजदूर दिल्ली, पंजाब, मुंबई और नासिक के साथ देश के दूसरे बड़े शहरों का रुख करते रहे हैं। ऐसे कई मजदूर भी हैं जिनकी इस बैग क्लस्टर की वजह से करीब 30 साल बाद घर वापसी हुई है। घर में ही काम मिल जाने से मजदूर खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें काम की तलाश में घर से दूर भटकना नहीं पड़ रहा।
15: और यहाँ काम करके बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रहा है। अपने प्रदेश में, अपने राज्य में काम कर रहे हैं,
16: घर परिवार,
15: घर परिवार के साथ में रह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है।
16: यहाँ काम मिल रहा है, कितनी
17: बराबर मिल रहा है, काम
16: खुश है?
17: हाँ, खुश है।
16: अच्छी आमदनी हो रही है
17: जी, जैसा वहाँ होता था वैसा यहाँ भी हो जा रहा है मेरा।
16: अब मुंबई नहीं जाना,
17: नहीं जाना पड़ रहा है।
16: तो यहाँ पर काम मिला?
17: हाँ, मिल गया।
16: तो अब दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा?
17: नहीं जाना पड़ा,
16: अब यही काम मिल जा रहा है। खुश है?
17: हाँ, बहुत।
3: 30 सालों से घर से दूर रह रहे मजदूर अब परिवार के साथ रह पा रहे हैं, जिससे इनकी जिंदगी पहले से खुशहाल हो गई है। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से फायदा हुआ है। यही नहीं, परिवार की महिलाओं को भी यहां आसानी से काम मिल रहा है।
18: मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत हमको ये मिला था।
16: कितने श्रमिक आपके यूनिट में?
18: श्रमिक अभी 18 हैं, ऐसे तो 24 मशीन है लेकिन 18 श्रमिक है।
16: अच्छा, अनुमान लगभग कितने लोग काम कर रहे होंगे इस बैक क्लस्टर में? टोटल
18: 1000 प्लस है यहाँ।
16: ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे प्रदेश में, अब उनको वापस नहीं जाना पड़ रहा है, अब यही काम मिल रहा है।
18: हाँ, ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा था मौका, जब कोरोना काल के बाद कैसे बाहर से हमारे मतलब जो बिहारवासी वो लौट नहीं पा रहे थे।
19: मैं भी ये मेरा भी यहाँ यूनिट है।
20: और कितने लोग काम करते हैं आपकी यूनिट में?
19: मेरे यहाँ भी 15 लोग हैं, ऐसे 24 मशीन है। अभी
20: कितने लोग हैं उसमें जो दूसरे प्रदेश में काम करते थे अब आपके यहाँ मतलब बिहार में?
19: अभी इसमें 7 लोग हैं जो जेंट्स लोग हैं जो बाहर रहते थे अभी यहाँ काम कर रहे हैं।
20: अब लोग यहाँ खुश हैं?
19: एकदम खुश।
0: ये बैक क्लस्टर इन श्रमिकों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। यहाँ रोजगार मिलने के बाद कई श्रमिकों ने तो दूसरे राज्यों में वापस जाने का फैसला ही बदल दिया है। वो अपने परिवार के साथ रहकर यहाँ काम कर रहे हैं और रोजाना उनकी आमदनी भी हो रही है। बैक क्लस्टर यहाँ रोजगार सृजन का एक नया मॉडल बन चुका है, एम्प्लॉयमेंट हब की तरह विकसित हुआ है, जो न केवल स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दे रहा है बल्कि पलायन को कम करने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्राजील में 100 साल से ज्यादा उम्र की 3 बहनें सुर्खियों में, रिसर्चर पता कर रहे हैं इनकी लंबी उम्र का राज। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: वेनेजुएला में भूकंप से हुई त्रासदी के बाद कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद का वादा किया है। वहीं अमेरिका ने भी टीमें तैयार कर ली हैं। जल्द ही उसकी रेस्क्यू और मेडिकल टीमें वेनेजुएला पहुंच जाएंगी। मेक्सिको, पनामा, कतर, तुर्की, कोलंबिया, ब्राजील, ब्रिटेन, क्यूबा, बारबाडोस और अन्य कई देशों ने भी वेनेजुएला की मदद की बात कही है। यूरोपीय देशों में भी तापमान अब 45 से 46 डिग्री तक पहुंच रहा है। इन दिनों फ्रांस भी हीट वेव से जूझ रहा है। फ्रांस में भीषण गर्मी की वजह से पब्लिक लाइफ काफी प्रभावित हो रही है, लिहाजा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अस्पतालों और इमरजेंसी सर्विस को हाई अलर्ट पर रखा है। फ्रांस में हीट वेव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लोग घर के अंदर हों या बाहर, गर्मी की तपिश से बचने के लिए जरूरी उपाय आजमा रहे हैं। कई लोग बाजारों में चहलकदमी करते हुए हाथ में पंखे से खुद को कूल रखने की कोशिशों में जुटे हैं, तो कई लोग समर ड्रिंक्स से हलक को तर कर रहे हैं। ब्राजील की 3 बहनें अपनी उम्र को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। तीनों बहनों की उम्र 100 साल से ऊपर है। इन तीनों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ज्यादा उम्रदराज जीवित बहनों के रूप में दर्ज किया गया है। पहली की उम्र 109 साल, दूसरी 104 साल और तीसरी बहन 103 साल की है। अब वैज्ञानिक इन तीनों बहनों के जरिए लंबी उम्र के राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिसर्च के तहत 90 से 100 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना उन लोगों से की जाएगी जिनमें कमजोरी, मानसिक क्षमता में गिरावट या पुरानी बीमारियां हैं, ताकि लंबी उम्र से जुड़ी खूबियों का पता लगाया जा सके।
3: गोवा का जिक्र जब होता है तो आमतौर पर हमारे जहन में समंदर और बीच की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन आज हम आपको गोवा की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो गोवा की संस्कृति और परंपरा का अद्भुत मेल दिखाती है। 24 जून को गोवा में बेहद रोमांचक साओ जोआओ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे एक ओर मानसून के आने का प्रतीक माना जाता है तो दूसरी ओर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मोत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है।
21: गोवा की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपरा का अनूठा संगम है साओ जोआओ, जून के महीने में मनाया जाने वाला सबसे चर्चित और अनोखा उत्सव, जिसे मानसून की शुरुआत का प्रतीक कहा जाता है। हर साल की तरह 24 जून को कैथोलिक ईसाई समुदाय ने इसे बेहद उत्साह के साथ मनाया। वैसे तो ये उत्सव पूरे गोवा में ही मनाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोवा के सियोलिम गांव में इसका सबसे भव्य और पारंपरिक आयोजन होता है। यहां सजी धजी पारंपरिक नावों की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत का जश्न देखने लायक होता है। परंपरा के मुताबिक लोग ताजी पत्तियां, लताओं और फूलों से बने खूबसूरत और रंगीन मुकुट पहनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोपेल कहा जाता है। ये प्रकृति की प्रचुरता और हरियाली के प्रति आभार जताने का तरीका है।
22: बढ़िया फेस्टिवल है, एंजॉयमेंट है, पूरा पब्लिक भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे
23: हैं।
21: ये उत्सव ईसा मसीह के समकालीन संत जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत चर्च में प्रार्थनाओं के साथ हुई, जिसके बाद एक ब्रास बैंड ने जुलूस को आयोजन स्थल या इलाके के तालाब तक पहुंचाया। उत्सव के दौरान कई युवा पारंपरिक वेशभूषा में नावों पर नाचते नजर आए तो कई लोग किनारे मस्ती करते इस उत्सव का गवाह बने। परंपरा के मुताबिक लोग संत जॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए कुओं, नदियों और तालाबों में कूदते हैं। इसे खुशी की छलांग कहा जाता है। इस त्योहार के जरिए परिवारों और ग्रामीणों को नवविवाहित बेटियों के पतियों के साथ घुलने मिलने और जश्न मनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। गोवा से रावाजी दत्ताराम देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: हैमर थ्रो में अनुष्का यादव का कमाल, बना दिया नेशनल रिकॉर्ड और एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले खेल चक्कर।
3: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में एक मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। सेमीफाइनल की रेस के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला अहम है। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अब भारतीय टीम को हार मिलती है तो सेमीफाइनल की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। वैसे टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ भारत अजेय रहा है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमें अब तक 3 बार आमने सामने हुई हैं और 3 बार भारतीय टीम को जीत मिली है। इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ गोल में पहले अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट पर 333 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम के ओपनर साई सुदर्शन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 9वां शतक लगाया। उन्होंने 19 चौकों की मदद से 132 रन की पारी खेली। इस मैच से पहले तक साई सुदर्शन ने 40 फर्स्ट क्लास मैचों की 68 पारियों में 2672 रन बनाए थे। उन्होंने 8 शतक और 10 अर्धशतक लगाए थे। उनका औसत 39.29 का रहा है, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 213 रन रहा है। कल से भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। आईपीएल 2026 के बाद मेन इन ब्लू की ये पहली टी20 सीरीज है। इस सीरीज से पहले मैच के समय में 1 घंटे का बदलाव किया गया है। 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के चलते समय में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरुआती दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 साल की एथलीट अनुष्का यादव ने हैमर थ्रो में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए सभी को चौंका दिया। बागपत जिले के बालेनी गांव की किसान परिवार से आने वाली अनुष्का ने 67.02 मीटर का थ्रो कर 2017 में सरिता सिंह के बनाए 65.25 मीटर के 9 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अनुष्का देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक एथलीट भी बन गई हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया और 6 प्रयासों में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
2: इसी के साथ न्यूज़पत में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
4: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
6: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured.

0: by NCUA.
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है? और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी है विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
11: प्रेजेंटेड बाय
2: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: टीआईटी भोपाल जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
12: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन हुआ शुरू। सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्य का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA ने सख्त निर्देश दिए। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख दिखा रहा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थाओं में आग के खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों आवश्यक है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थाओं के लिए अनिवार्य है, और जिन्हें छात्र और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जिनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थाओं के मामले में सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी छात्र और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। यह समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थाओं में लापरवाही है तो उसे दूर करना सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता। बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं, लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है, पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहाँ पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है, और उसके बाद अब इन इलाकों पे जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाएं तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं, सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए।
2: जो लाइब्रेरी है या दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहाँ बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहाँ पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहाँ से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है, इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है, पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है, और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई, या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार, ओवरहेड वायर्स जो हैं, बिल्कुल खुले में पड़े हैं, कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं, कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में, और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ और पूरे गली में आग लग सकती है, कई लोगों की जान पर बना सकती है।
1: बरसों से सिर्फ सवाल ही उठते रहे हैं, ऐसी तस्वीर को देखने के बावजूद हम जागरूक नहीं होते। अब तो छात्र पूछें, उनके अभिभावक सोचें कि ऐसी बेतरतीबी में बच्चे पढ़ तो सकते हैं, सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी भी शहर में जाइए, कोचिंग संस्थानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या करें, हमारा फोकस पढ़ाई पर तो रहता है, सुरक्षा को हम तवज्जो नहीं देते।
4: क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक है?
5: सर ये खतरनाक है वाकई में, और यहाँ पे देखा कि ये पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू सब निकलने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी, और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए था कि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके।
4: अच्छा।
5: और ये तार पूरे देखिए, पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसका कोई
4: तार दिखाइए
5: इधर आइए, ये देखिए पूरे, अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई,
4: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
5: ना सर, पूरा देखिए लोहे का आएगा, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
4: और आप जो आए, ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया यहाँ पे?
5: नहीं सर, सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है, और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो से एक ही है जाने का रास्ता जो है वो एक ही, जबकि 2 होना चाहिए।
4: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है, और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए, ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट फैलता है, तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस गली की आप पहले स्थिति देखिए, उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए, लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे कि लखनऊ में हुआ था, तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का, कि वो खिड़कियों से कूदें। और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने, और उसमें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर और अंदाजा लगाइए इससे। ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की, वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है, जो पोस्टर है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
1: याद रहे, अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं, और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं,
4: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं ये किस तरीके की कैसी स्थितियों में है, कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पे। और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जाले देखिए, और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है, जाले लगे हुए हैं, बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है। इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आग पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग्स में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके पास नहीं होगा। कायदे से यहाँ अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये पूरी कोचिंग है, और नीचे तक अगर आप देखें, पहले तो ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई अग्निशमन यंत्र नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ नहीं लगा है, यानी आग लग गई तो उसे कैसे बुझाएंगे इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहाँ पे ये मीटर लगे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पर अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं उस तरफ, कि यहाँ पर भी आपको कोई आग बुझाने का साधन नहीं दिखेगा। कि ये जो पूरा इलाका है भोपाल का जोन 2, ये कोचिंग संस्थानों से पटा पड़ा। ऊपर भी अगर आप देखें तो अगर नीचे आग लग जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये रास्ता विकल्प बचता है उन छात्रों के पास आपात स्थितियों में बाहर निकलने का, लेकिन वो है नहीं पूरी तरीके से, वो भी ब्लॉक है, या तो एसी लगे हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कोचिंग बनानी थी वहां पे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये खतरा ज्यादातर उन कोचिंग संस्थानों पे है जो ऊपर की मंजिलों पे स्थित है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, ये पूरे कोचिंग संस्थान जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां तो निकलने के रास्ते हैं, कई सारे एग्जिट हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान ऊपर की इमारतों में चल रहे हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है।
1: आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल सेंटरों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस बेहद सख्त हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक फायर NOC अनिवार्य है। वहीं पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर अलार्म लगे होने चाहिए। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कम से कम दो चौड़े और सुरक्षित रास्ते हों। बेसमेंट में कक्षाएं चलाना या छात्रों को बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और हाँ, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। साथ ही कमरे में छात्रों की संख्या सुकृति क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, कोचिंग संस्थाओं में बच्चे अपने सपनों को आकार देने के लिए जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं है। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं, लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली। हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: वो इलेक्ट्रिक कार के लिए होता है,
3: जाएगा ये वर्किंग कंडीशन में। इनकी अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात, क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है? अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई?
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और JEE के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान न करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
0: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे? चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं। अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
0: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
4: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई, यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
1: हाँ बताया जाता है।
4: क्या बताया जाता है?
1: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
4: उसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
1: अभी मैं तो नया आया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं।
4: आपका क्या नाम है?
5: शेर अली।
4: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
5: RSSB फाउंड।
4: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए जैसे लखनऊ में हुई, कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
5: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
0: समझने और समझाने वाली बातें कई हैं, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
2: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहां व्यवस्थाएं अलग हैं, ग्राउंड प्लस फोर की है वहां व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे। और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण की शुरुआत किया है।
0: सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नियम नहीं है, सुरक्षित रहना एक अच्छी आदत है, क्योंकि आग से लड़ने का पहला हथियार दमकल की गाड़ी नहीं बल्कि जागरूकता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो क्या करना चाहिए पहले उसे समझिए। सबसे पहले हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, जरूरी सामान बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत स्थानीय फायर सर्विस को सूचना देनी है। अगर बिल्डिंग में धुआं भरा हो तो झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलना है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, केवल सीढ़ियों से नीचे उतरना है। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हाथ से उसकी गर्मी जांचनी होगी, अगर बहुत गर्म हो तो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करें। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क सकती है, बल्कि कंबल या मोटे कपड़े से आग को ढककर बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि सपनों की इन इमारतों में सिर्फ पढ़ाई नहीं सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन को नियम लागू करने होंगे, संस्थानों को जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें और आपको बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा। जयपुर से देव अंकुर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Hey, Buzz, you hear about the Switch?
1: He's right over there.
0: Not that Switch, our Switch to APG&E.
1: Well, we can do that?
0: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
1: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
0: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
1: To APG&E?
0: People love their flexible, affordable electricity.
1: Nice.
2: Learn more at APGE.com.
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: छू जाती ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए काम। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्य और वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

वेमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया। 19 गेंद रहते बांग्लादेश को 5 विकेटों से पटकनी दी। शेफ अली वर्मा ने खेली 53 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी। जयमिमा ने बनाए 26 रन। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजेय रहा है भारत। टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत की लगातार चौथी जीत। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने गोल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे है पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक। साई सुदर्शन के फर्स्ट क्लास करियर का यह 9वां शतक। इस बेहतरीन पारी में 19 चौके। कल से शुरू हो रही है भारत और आयरलैंड की 2 मैचों की टी20 सीरीज। आईपीएल 2026 के बाद मैन इन ब्लू की यह पहली टी20 सीरीज। टी20 सीरीज से एक दिन पहले मैच के समय में हुआ एक घंटे का बदलाव। 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया समय। क्रिकेटर शिवम दुबे ने जन्मदिन पर पत्नी अंजुम खान के साथ सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो फेंका। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया कारनामा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आयोजन। 25 से अधिक देशों ने लिया हिस्सा। 300 से ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन। पुलिस एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा रही भारत की पहली स्वदेशी स्नाइपर राइफल टाइटो की। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस पेट्रोलिंग व्हीकल इंद्रजाल भी शोकेस किया गया जिसके जरिए मार गिराने के अलावा अपने कंट्रोल में भी लिया जा सकता है दुश्मन के ड्रोन्स को। डीआरडीओ सीआरपीएफ द्वारा विकसित रक्षिता मोटरबाइक एम्बुलेंस भी पेश की गई। रेस्क्यू विद इंटरसेप्टर नाम की ये खास गाड़ी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर इंटरसेप्टर के साथ रेस्क्यू वाहन का भी करेगी काम। 27 जून से सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की दूसरी यात्रा होने जा रही है। इससे पहले साल 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, अब 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए। तत्काल सेवा की फीस में 5000 रुपए 1 जुलाई से नियम लागू। 28 जून से भारत फिर से शुरू करने जा रहा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर ने ऐलान किया। भारत में $48 बिलियन का निवेश करेगा अमेजॉन। 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर फोकस। संत कबीर नगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 475 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। शंघाई दुबई और कनाडा तक भेजे जाएंगे सहरसा में तैयार मखान। नए मखाना प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ हुआ। मखाना के प्रोसेसिंग प्लांट खुलने से किसानों में खुशी की लहर। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। हवा में उड़ता हुआ एक रडार स्टेशन है नेत्रा जो आसमान से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर बड़ी राहत दे दी। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हट गई पाबंदी। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर घर वापसी के लिए मध्य रेलवे चला रहा है 5 अतिरिक्त ट्रेन। प्रयागराज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल। बच्चियों में क्रिकेट के प्रति रुचि जगाने के लिए खोली गई खास क्रिकेट अकेडमी। अकेडमी में रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं 42 से ज्यादा लड़कियां। बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज भी नजर आई। कई टूर्नामेंट खेल चुकी हैं इस अकेडमी से निकली हुई महिला खिलाड़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल चुकी हैं कई लड़कियां। कोटा में सिटी पार्क बना शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र। अलग अलग थीम पर विकसित किए गए कई जोन में बांटा गया है। करीब 2.5 लाख पेड़ पौधे लगाए गए।
पार्क में कृत्रिम कैनाल में बोटिंग, आकर्षक ग्लास हाउस, विशाल एम्फीथिएटर भी नजर आया। यहां प्री वेडिंग शूट, म्यूजिक वीडियो और विभिन्न शूटिंग गतिविधियां भी लगातार आयोजित की जा रही हैं। किताबों के बोझ से दूर, प्रकृति की गोद में राहत पाने के लिए रोजाना आते हैं करीब 1200 से ज्यादा युवा छात्रों से लिया जाता है मात्र 50 रुपए शुल्क। कर्नाटक के हॉस्पेट में तुंगभद्रा बांध पर लगाए गए हैं 33 नए स्प्लेवे गेट्स, उद्घाटन। कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया भगवान रघुनाथ का जल विहार पर्व, ठंडे जल से हुआ भगवान रघुनाथ का दिव्य स्नान। इस दौरान खास देव प्रक्रिया के तहत पालकी में विराजमान होकर गर्भगृह से बाहर आए भगवान रघुनाथ। जल विहार पर्व में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम का 2 दिवसीय मेला शुरू, अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम दरबार। गया में निर्जला एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में आस्था का जनसैलाब, जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद समेत कई जिलों में श्रद्धालुओं की भीड़। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में संत समाज का आगमन शुरू, बाबा बर्फानी के जयकारों से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षाकर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात नजर आए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए दर्शन करने के लिए प्राचीन बूढ़ा केदार मंदिर पहुंच रहे हजारों की संख्या में श्रद्धालु, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहरों में से एक है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह पवित्र धाम पूरा 12 महीने दर्शन करने के लिए खुला रहता है। मान्यता है कि महाभारत के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे थे पांडव। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का मेला, बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर इस पवित्र धारा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। तमिलनाडु को 300 नई बसों की सौगात, मुख्यमंत्री विजय ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान में शुरू हुआ मेगा कोचिंग टर्मिनल, जयपुर के खातीपुरा में हुआ दरभंगा अमृत भारत ट्रेन का मेंटेनेंस। गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मोरबी में ब्लड डोनेशन का अनोखा रिकॉर्ड, एक साथ 5551 ने किया रक्तदान। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना हो गया अनिवार्य, आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ भी जरूरी। दिल्ली में स्लोवेनिया गणराज्य का दूतावास पर धूमधाम से मनाया गया स्लोवेनिया का राष्ट्रीय दिवस, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भोपाल में साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दिल्ली में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए।
वाराणसी में बन रहे लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का केंद्रीय मंत्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू ने किया निरीक्षण। अलवर के डीएसपी कार्यालय में घुसा 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मुरादाबाद में बुजुर्गों के लिए बनाया गया है केयर सेंटर, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस। रांची में नशा मुक्ति के संदेश के साथ जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, मंत्री सुदिव्य कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाई। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 631 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वाराणसी में इजी कनेक्ट हब एंड स्पोफ फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी गई, केंद्रीय मंत्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू शामिल हुए। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का आनंद लिया। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जेसीबी अन्य मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है मलबा, खराब मौसम के चलते हो रही है परेशानी। अरुणाचल प्रदेश के कई पानयूर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से तबाही सामने आई, इस प्राकृतिक आपदा की ड्रोन तस्वीरें। कोलकाता के कई इलाकों में मानसून की शानदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना, हावड़ा में 50 से 60 की स्पीड से चल रही हवाएं। लगातार आंधी बारिश के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली, भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल कल बड़े पर्दे पर होने जा रही है रिलीज, अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी नजर आएंगे। कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तेरा मेरा नाता, ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार भी नजर आएंगे। एक तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी कल रिलीज होने जा रही है, एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और चुनौतियों पर बनी हुई है फिल्म। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए कल रिलीज होने जा रही है फिल्म सुपर गर्ल, सुपरमैन की ही कजिन का रोल निभा रही है। सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है फिल्म राजा शिवाजी। नेटफ्लिक्स पर कल स्ट्रीम होगी ड्रामा कॉमेडी सीरीज परफेक्ट फैमिली, बतौर निर्माता एक्टर पंकज त्रिपाठी का पहला वेंचर। ओटीटी पर हो रही लॉकअप की वापसी, अब इसका सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आने जा रहा है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा एक नया अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो अलायंस, जिसे अभिनेता कुणाल खेमू होस्ट करेंगे। जॉन सीना और एरिक एंड्रे की लिटिल ब्रदर कल से नेटफ्लिक्स पर होने जा रही है रिलीज। फिल्म मिर्जापुर का टीजर हुआ रिलीज, 4 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा हुआ है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की चले।

0: इस बार 20 साल के टाइम लीप के साथ आगे बढ़ेगी कहानी। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे कर लिए 34 साल, जश्न मनाया। दुबई में एक ज्वेलर ने बनाया फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हीरो से जड़ा कीमती। दुबई में हेमंत करमचंदानी नाम के ज्वेलर ने बनाई है खास ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस रेप्लिका की पूरी दुनिया में हो रही धूम। दुनिया भर में नजर आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप का खुमार। इन खास केक्स में वर्ल्ड कप के हिस्से देखने को मिल रहे हैं। चीन के नाकू शहर में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1000 डांसर्स ने स्मार्ट रोबोट्स के साथ किया डांस। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर किया गया यह पारंपरिक नृत्य। परफॉर्मेंस में दिखाया गया टेक्नोलॉजी और संस्कृति का जबरदस्त मेल। मशहूर फैशन ब्रांड सेंट लॉरेंट ने पेरिस में आयोजित किया शानदार फैशन शो। डिजाइनर एंथोनी ने डिजाइन किया पूरा फैशन शो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature? Today.
1: कम से कम लोगों
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। कौन सी है विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
2: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: T20 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों का आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जलराशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व।

पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है? और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उसका दाम्पत्य जीवन, उसका वैवाहिक जीवन, और अगर पति पत्नी के बीच में परेशानी आने लगी तो। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातें अमूमन बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में इसको ज्योतिष शास्त्र कैसे देखता है, और अगर आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो इससे कैसे निपटा जाए, पंडित जी से इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी।
0: पंडित जी, बहुत से ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके बीच में छोटी छोटी चीजों पर बातें बढ़ जाती हैं और वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो मैं कहूंगी कि हर किसी की जिंदगी में यही हो रहा है।
1: जी देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी विचारों का ना मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो, अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े, कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें, इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी।
0: तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, मन की समस्या, मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, विवाह के बाद बहुत सी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। बहुत सी बार वो जानबूझकर होता है और बहुत सी बार ना चाहते हुए परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नौकरी का कारण है, पत्नी कहीं पोस्टेड है, पति कहीं नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से दूर हो गए, या तनातनी बहुत जल्दी शुरू हो गई और दूर दूर हो गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि पत्नी अपने मायके में ही रहती हो और पति कहीं दूर रह करके नौकरी करते हों। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। पहले जानते हैं कारण क्या है। देखिए, विवाह के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ गई, अगर राहु की दशा आ गई, तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी एक दूसरे से सामान्यतः दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि शनि राहु सेपरेशन जैसा करवा देते हैं। यहां पर दूर रहना पड़ता है करियर की वजह से, नौकरी की वजह से। पति विदेश चले गए, पत्नी की गवर्नमेंट जॉब थी इंडिया में, अपने देश में वो नहीं जा पाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ पाई, ये भी एक कारण बनता है। और ऐसा होता है कि बहुत बार कोशिश भी बहुत होती है कि पति पत्नी साथ में रह लें, एक साथ रहें, लेकिन पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। हर बार झगड़ा ही नहीं है, हर बार विवाद ही नहीं है, स्थिति परिस्थिति भी ऐसी बन सकती है। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहां हैं, पत्नी जहां हैं, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहां रहते हैं वहां करेंगे, पत्नी जहां रहती है वहां करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की, और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
0: बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे, करियर में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, काम टालना ठीक नहीं होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। काली दाल का अगर दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आप पहला सवाल किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी हमें मेल लिखती हैं कानपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1985। जन्म का समय सुबह के 11:35। जन्म स्थान है उन्नाव। मेल लिखती हैं कानपुर से। ज्योत्सना कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, मैं चाहती हूं कि मेरा वैवाहिक जीवन चले, सेपरेशन की नौबत ना आए, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो जाए। ज्योत्सना, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा समय आपका बेहतर नहीं है और आपको लगभग अगस्त 2026 तक इंतजार करना होगा। अगस्त 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका वैवाहिक जीवन कुशल रहे, मंगल रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप अपने प्रश्न हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का दूसरा प्रश्न रत्ना जी ने हमें लिखा है और रत्ना जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1975। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। रत्ना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मेरे साथ हमेशा लगी रहती हैं और इन समस्याओं की वजह से मेरी परेशानी बनी रहती है, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। रत्ना जी, ऐसा लगता है कि आपकी पारिवारिक जीवन की घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चंद्र का जो हाल है इसका मतलब ये है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन जैसा है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा है, तो मनोचिकित्सक से संपर्क करना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा काम करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, और सुबह शाम दोनों समय आप नारायण कवच का पाठ करिए। अगर नारायण कवच पढ़ना कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। अगर ऐसा निरंतर करना शुरू करें तो आपको लाभ अवश्य होगा।
0: कहते हैं कि विवाह के बाद जीवन में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद पति या पत्नी में से किसी की भी स्वास्थ्य में समस्याएं आने लगती हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था, और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा। तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे सामान्य स्थितियों में। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा, दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा, और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा।
0: तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल तुला वृश्चिक धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं।
1: तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है, करियर बदल सकता है इस समय, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें, काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहते हैं ना थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और खास तौर पर लोगों का कहना होता है कि परिवार वालों का शादी में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं, पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया, शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे, पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का इंटरफेरेंस, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और भगवान न करे चंद्रमा खराब है और मंगल भी गड़बड़ हो गया या मंगल की दशा आ गई उसमें उसी बीच में, तो शादी टूटनी ही है, परिवार वालों की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा, अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। केवल चंद्र खराब हो तो पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप तो होता रहता है लेकिन जिंदगी काट लेते हैं, अगर चंद्र भी खराब है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तब तो ये जानिए कि परिवार वालों के चक्कर में पति पत्नी का सेपरेशन जरूर होगा। क्या करना चाहिए? अब आप पत्नी हैं, आपके आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप उसको जरा सुधारिए, घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे, और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीजें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए, परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा।
0: बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं।
1: मकर राशि, करियर की समस्या तनाव आपका कम होगा, समस्या हल होगी, आर्थिक समस्या भी हल होगी, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है अगला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
1: जी, अगला प्रश्न दिलीप जी ने हमें लिखा है और दिलीप जी हमें मुरादाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1970, जन्म का समय रात में 8:30, जन्म स्थान है मुरादाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और आने वाला समय कैसा रहेगा? दिलीप जी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका व्यापार आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। अगस्त 2026 के बाद स्थितियां लगातार बेहतर होंगी। हालांकि कर्ज चुकाने में लगभग 1.5 वर्ष का समय आपको अभी लगेगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक, अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है और उसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो इस पर अपने प्रश्न आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से पूछ लेते हैं, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1999, जन्म का समय दोपहर के 1:10, जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। राहुल कह रहे हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा और क्या मेरा सेटलमेंट विदेश में हो सकता है? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं अभी आपको विदेश जाने की 2026-27 में कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई इंडिया में करें तो अच्छा है, 2-3 साल के बाद ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैनेजमेंट करने के बाद आप विदेश में जाएं और लंबे समय तक वहाँ रह सकें, लेकिन अभी कुंडली के हिसाब से भी और जो आने वाली स्थितियाँ हैं दुनिया की उस हिसाब से भी आपको विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा। आप इंडिया में ही गुजरात के अलावा कहीं से भी MBA कर लीजिए, गुजरात में भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडली कहती है कि दूर स्थान से MBA करेंगे तो आप जा सकते हैं। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों की लव मैरिज होती है और उस वक्त तो सब अच्छा होता है, लेकिन विवाह के बाद कुछ सालों के बाद परेशानियां आने लगती हैं और डिवोर्स के भी मुझे लगता है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, खैर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया, तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं, और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो झुकाव भी ज्यादा होता है, आकर्षण भी ज्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है, प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज्यादा होती है, और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं, तो आप विवाह के बाद चीजों के पीछे लॉजिक खोजते हैं, विवाह के बाद चीजों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की, और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और कई कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं। शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए, शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी।
0: आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
1: जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, इम्प्रूव करेगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, विवाह के मामलों में इस साल में विलंब हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
1: दर्शकों ने हमें पत्र लिखकर भी ये जिज्ञासा पूछी है, इसलिए हमने इसे लिया है। घर में पूर्वजों का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए? घर में पूर्वजों का चित्र दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे, साउथ वॉल पर लगाएंगे, ताकि जब आप उनकी पूजा करें तो आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो। वैसे भी पितरों की पूजा दक्षिण की तरफ चेहरा करके की जाती है, तो पूर्वजों की फोटो अगर आप दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे तो उनका चेहरा उत्तर की तरफ होगा, और जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आप दक्षिण की तरफ चेहरा कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
0: अब जान लेते हैं शुभ पहर क्या है।
1: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी।
0: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जब हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है।
1: जी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे? दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए, चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए। घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए, और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें, तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा।
0: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
2: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
3: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
2: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
4: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
5: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
2: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और ये खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत मंडपम में 11वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो शुरू हो चुका है। इसमें 25 से ज्यादा देशों की सुरक्षा एजेंसियां, डिफेंस मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और एक्सपर्ट्स शामिल हुए। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में पुलिसिंग, होमलैंड सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और आधारित 300 से ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। इसमें देखिए मेड इन इंडिया टायर 2 स्नाइपर राइफल और देश का पहला AI enabled एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल भी शामिल है।

0: एक से बढ़कर एक हथियार और एक से बढ़कर एक एआई आधारित टेक्नोलॉजी जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। ये प्रदर्शनी लगी है राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां 11वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो चल रहा है। इस एक्सपो में 25 से ज्यादा देशों की सुरक्षा एजेंसियां, डिफेंस मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और एक्सपर्ट शामिल हुए। इनमें कई भारतीय कंपनियां भी हैं जो अपने हथियारों और टेक्नोलॉजी की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्हीं में से एक है ये स्नाइपर राइफल टाइटो, जिसे शहरी इलाकों में सटीक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत इसका इंटीग्रेटेड सप्रेसर और आधुनिक डिजाइन है, जो भारत की बढ़ती रक्षा अनुसंधान क्षमता को दिखाता है।
1: ये आप एक जो देख रहे हैं स्नाइपर, इसका नाम है टाइटो, और टाइटो को पूरी तरीके से अर्बन कॉम्बैट के लिए बनाया गया। मतलब अगर मान लीजिए किसी शहरी इलाके में आपको किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो उस केस में टाइटो हमारी सेना के लिए, हमारी जो फोर्सेज हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। अर्बन वेपन इसको हम बोल रहे हैं, अर्बन कॉम्बैट वेपन,
2: अर्बन कॉम्बैट स्नाइपर राइफल। तो इसका जो कैलिबर का डायमेंशन है वो 7.62x35 है, जिसे 300 ब्लैकआउट भी कहा जाता है। और इसका जो वेट है ऑलमोस्ट विथ एक्सेसरीज इट्स 4.5 किलोस, जिसके साथ आपका साइट, बाईपॉड और ये सप्रेसर है जो इंक्लूडेड है। और ये इसलिए कॉम्पैक्ट है क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो, आप इसका बटस्टॉक, सप्रेसर, हर एक चीज़ को डिसमेंटल करके आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में क्या है कि आप ओरिजिनल स्नाइपर राइफल नहीं लेके जा सकते हो, जो होता है 9 किलो 10 किलो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सिटी या अर्बन वॉरफेयर में आप ये वेपन यूज़ कर रहे हो, तो इसका इफेक्टिव रेंज जो है 300 से लेके 350 मीटर्स, और सिटी में उतने की ज़रूरत है।
0: इस पुलिस एक्सपो में ये एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल भी चर्चा के केंद्र में है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म चलते फिरते ड्रोन घुसपैठ का पता लगाने, ट्रैक करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
1: ये एक एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है जो एक इंद्रजाल बेस्ड कंपनी, जो की हैदराबाद में बेस्ड है, उसने बनाया है। आफ्टर डूइंग एक्सटेंसिव ट्रायल with paramilitary forces in a real-time scenario on the border areas where it has proven, जहाँ पे इसकी क्षमता को हमने प्रूव किया है, हमने एक्चुअली रियल टाइम में ड्रोन्स को इसकी मदद से धराशाही किया है। और एक ऑपरेटर जो कि इस गाड़ी में यहाँ बैठकर पूरे इस एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को ऑपरेट करता है। इस सिस्टम में एक खूबी ये भी है कि ये ऑटोनोमस मोड, फुली ऑटोमेटिक मोड पे भी काम कर सकता है।
3: मतलब पायलट नहीं चाहिए,
1: ऑपरेटर नहीं चाहिए।
3: ओके।
1: आप इसमें बहुत सारे बैरियर्स लगा सकते हैं, जोन्स बना सकते हैं, नो फ्लाई जोन, बफर जोन, अलर्ट जोन, ऐसे जोन बना सकते हैं। और कोई भी ड्रोन उसको अगर भेदने की कोशिश करेगा तो उसको ये सिस्टम अपने आप न्यूट्रलाइज कर देगा।
0: एक्सपो में एक रिमोट कंट्रोल टीयर गैस सिस्टम भी मौजूद है, जिसके जरिए पुलिस एक बार में ही 15 टीयर गैस लॉन्च कर सकती है। इसकी खासियत ये है कि इसे लोड करने के लिए जवान को अपने सुरक्षित वाहन से बार बार बाहर नहीं आना होगा।
1: अब यहाँ पर हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए जो टीयर गैस है उसे आसानी से पुलिस वाले फायर कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे। अमूमन ये गाड़ी के ऊपर लगा होता है, अभी भी लगा होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए पुलिस वालों को बार बार गाड़ी के बाहर आना पड़ता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इसकी खास बात क्या है कि इसे गाड़ी के अंदर, आप सेफ गाड़ी के अंदर बैठ जाइए और रिमोट के जरिए इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं।
4: देखिए इसमें क्या है, ये रिमोट कंट्रोल कार माउंट लॉन्चर है। इसमें 15 शॉट फायर कर सकते हैं एक बार में, और इसका कंट्रोल सारा जो है वो आपके इस रिमोट कंट्रोल में है जो गाड़ी के अंदर रहता है। तो आप ऑलरेडी किसी भी राइटर से सेफ हैं, आप अंदर गाड़ी के बैठे हो।
0: डीआरडीओ सीआरपीएफ द्वारा विकसित रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस भी पेश की गई, जो मुश्किल इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्षमताओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है।
1: ये आप देख रहे हैं रक्षिता बाइक एम्बुलेंस है, ये डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किसी भी घायल जवान को या घायल
3: कोई सिटीजन हो, कोई नागरिक हो, कोई मरीज भी हो आमतौर पर, तो उसे इस बाइक के जरिए ही लेकर आया जा सकता है। क्या खास बात है? अब देखिए, ये एक बाइक है, एक बुलेट है, और इसमें जब आप किसी पेशेंट को या फिर किसी घायल को बैठाते हैं तो आप उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं, आईवी फ्लूड आप यहाँ पर उसे चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसको भी आप लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो उसके हेल्थ पैरामीटर्स हैं।
5: कई सारे एरियाज होते हैं जहाँ एक कन्वेंशनल एम्बुलेंस पहुँच नहीं सकती है। ये प्रोडक्ट की इंटेंशन वही थी दैट कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ ये प्रोडक्ट पहुँच सके, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज से, इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा पहुँच सकें, एंड हमारा जो पीक से पीरियड होता है, गोल्डन आवर जैसे कहते हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड वी कैन सेव लाइव्स।
0: इन सब के अलावा इस 11वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में डीप फेक जैसी समस्या का झट से पता लगा लेने वाला सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, जो किसी भी गाड़ी या इंसान को भीड़ में आसानी से खोज सकता है, वो भी एआई की मदद से। वहीं पुणे से आए अमित जोशी नकली दवा, ड्रग्स, नकली फर्टिलाइजर की पहचान करने वाला सिंपल डिवाइस लेकर आए हैं।
6: हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोस के ऊपर ट्रेंड है। वो बताता है देखकर कि क्या जो वीडियो आपके सामने है वो रियल है या फेक है। उसके लिए देयर इज अ सॉफ्टवेयर वेयर व्हिच आई विल शो यू। आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से एक वीडियो था जिसको हमने टेम्पर किया है, जहाँ पर कभी विराट कोहली है, कभी बुमराह है, और ये जहाँ जहाँ भी फ्रेम्स के अंदर आता है हम उसको एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी टाइमलाइन के अंदर एक इंजेस्ट किया गया है फेस, जहाँ जहाँ भी वो इंजेस्ट किया जाता है हम बताते हैं कि कितना सस्पिशन है, हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक एआई जनरेटेड वीडियो थी, और उसके बाद हम उसके ऊपर,
3: मतलब ये जो ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स हैं ये क्या बता रहे हैं?
6: जो ग्रीन डॉट्स हैं वो बताते हैं कि क्या ये रियल है सेक्शन इस वीडियो का, और रेड डॉट बताता है कि क्या ये सेक्शन मैनिपुलेटेड है, क्या इसके अंदर एआई यूज किया गया था या नहीं किया गया था।
3: तो इस वीडियो में ये क्या बता रहा है?
6: सो इस वीडियो में आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि 30 सेकंड के अंदर 50% ऑफ द वीडियो व्हिच इज 15 सेकंड वो मैनिपुलेटेड थी।
5: सबसे पहले मशीन जिसका नाम है ट्रू स्कैन, थर्मोफिशर साइंटिफिक कंपनी से है, ये आपको बताता है कि आप जो दवाई यूज कर रहे हैं वो असली है नकली है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हमारे पास में फेक मेडिसिन है, काउंटरफिट मेडिसिन है, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है। इसके लिए हमारे पास मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक है ही नहीं, तो इसको रोकने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। ये रमन पे काम करता है, आपको जो चेक करना है आप इसमें मेथड फीड कीजिए और उसको चेक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए ये एक डाइक्लोफेनेक है, अब इसमें डाइक्लोफेनेक सॉल्ट है या नहीं है हमें उसको मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और इसको यहाँ पे हमको रन करके देखना है बिना पैकेट को ओपन किए हुए। दवाई को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको विद इन अ मिनट आपको ये बताएगा कि ये जो सॉल्ट है इसमें प्रेजेंट वो है या नहीं है। आप देख रहे हैं मशीन में ये कितना टाइम ले रहा है। इसने पहले आपकी मेडिसिन को स्कैन किया, और इसमें ये बताया स्ट्रॉन्ग पास, मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं डाइक्लोफेनाक सॉल्ट का, ये इसमें प्रेजेंट है। ड्रग का छोटा सा डिवाइस है जो पोर्टेबल है, कैरी, इसको हम कहीं भी कर सकते हैं। ये भी ड्रग

0: ये भी ड्रग की 6 कैटेगरीज को आपको पता करता है कि आपने क्या कंज्यूम कर रखा है इसके अंदर। ये भी सलाइवा बेस्ड कंपनी का।
1: आप कुछ किसानों के लिए भी था मेरे ख्याल से?
0: यस, किसानों के लिए हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेम जो हमने ये डिवाइस था ये नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव के लिए था, लेकिन हमने क्या किया इसके अंदर फर्टिलाइजर्स जो हम हैं, जो फेक फर्टिलाइजर जो अभी मार्केट में आ रहे हैं उनको पढ़ने करने के लिए भी हमने इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कस्टमाइजेबल है, ये आप हेल्थ के लिए बोलो या नार्कोटिक्स के लिए बोलो, एग्रीकल्चर के लिए बोलो, ये किसी भी डिवाइस में इसको यूज कर सकते हो।
2: सरकारी एजेंसियों, पुलिस संगठनों और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स की भागीदारी के साथ ये एक्सपो देश में ही विकसित इनोवेशन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर भारत के हर दिन बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करेंगे पासपोर्ट की, जिसे अभी तक हम और आप भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय के हवाले से एक खबर के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ यात्रा दस्तावेज है, जबकि उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और व्यक्ति की पहचान दर्ज होती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण नहीं है तो फिर है क्या?
2: जिनके पास भी भारतीय पासपोर्ट है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी PSK किस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। जो पासपोर्ट केंद्र के प्रवेश द्वार पर डिजिटल टोकन नंबर लेने से शुरू होती है और दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट ग्रांट करने की अंतिम प्रक्रिया तक जाती है, उसके बाद ही आमतौर पर हाथों में नीले या नारंगी रंग का पासपोर्ट आ पाता है। भारतीय पासपोर्ट को लेकर ये आम धारणा है कि वो नागरिकता का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण या प्रूफ है, हालांकि अब ये धारणा टूटती हुई दिख रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा दस्तावेज है, ऐसे में उसको नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद भारतीय नागरिकता के आधार को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। दरअसल भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत मिलती है।
4: पासपोर्ट को लेकर दिए गए विदेश मंत्रालय के एक बयान के बाद इस बात को लेकर बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता का आधार आखिर क्या है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। 1967 के पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक ये नियम है कि विदेश मंत्रालय किसी भी नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट दे सकता है, लेकिन तमाम तथ्यों और तमाम वेरिफिकेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल है। लेकिन एक अहम बात इस एक्ट में ये भी है कि विदेश मंत्रालय को ये अधिकार है कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में, कुछ ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे लोगों को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है जो भारतीय नागरिक नहीं है, लिहाजा पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता।
2: देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें विदेश मंत्रालय ने ऐसे कई लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी किया जबकि वो भारतीय नागरिक नहीं थे। ऐसे में भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए सबसे भरोसेमंद दस्तावेज मान लेना गलत है।
4: तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिनमें विदेश मंत्रालय ने कई ऐसे खास लोगों को, भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला पासपोर्ट दिया है लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें विदेश मंत्रालय ये पासपोर्ट उन लोगों को भी जारी करता है जिन्हें भारतीय मूल का नहीं माना गया है, लिहाजा भारतीय पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है।
2: ज्यादातर भारतीय पासपोर्ट को ही सबसे भरोसेमंद और पुख्ता दस्तावेज मानते हैं, वो इसे ही अपनी नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण भी मानते हैं। हालांकि विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पासपोर्ट भारतीयों की राष्ट्रीयता की पुष्टि भी करता है, लेकिन फिर भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद आखिर किन सरकारी दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के प्रूफ के रूप में मान्यता मिली है, इस पर बहस छिड़ गई है। दरअसल विपक्ष का दावा है कि SIR में सबसे पहले स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में पासपोर्ट भी शामिल है।
4: दरअसल ये सवाल MEA से इसलिए किया गया था क्योंकि SIR के तहत क्या पासपोर्ट को एक ऐसा सबूत माना जा सकता है जिसके जरिए आप अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। तो MEA ने ये बात कही कि पासपोर्ट को इसका आधार या इसका सबूत नहीं माना जा सकता, उसकी एक अलग प्रक्रिया, अलग प्रोविजंस है जिसके तहत आपको भारतीय नागरिकता का सबूत मिलेगा या आपको उसका प्रमाण मिल सकता है, लेकिन पासपोर्ट अकेला वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके तहत आप ये साबित कर सकें कि आप भारतीय नागरिक हैं या फिर आप भारतीय नागरिकता का प्रमाण इस डॉक्यूमेंट को मान

0: airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां, और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: कि भाग्य
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25,000 देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख दिखा रहा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थाओं में आग के खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों आवश्यक है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थाओं के लिए अनिवार्य है और जिन्हें छात्र और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जिनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थाओं के मामले में सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी छात्र और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। यह समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थाओं में लापरवाही है तो उसे दूर करना सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता। बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं, लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है, पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहाँ पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है, और उसके बाद अब इन इलाकों पर जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाएं तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं, सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए।
2: जो लाइब्रेरी है, दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहां बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहां पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहाँ से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है, इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है, पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है, और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई, या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार, ओवरहेड वायर्स जो हैं, बिल्कुल खुले में पड़े हैं। कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं। कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में, और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है। ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ और पूरे गली में आग लग सकती है, कई लोगों की जान पर बना सकती है।
1: बरसों से सिर्फ सवाल ही उठते रहे हैं, ऐसी तस्वीर को देखने के बावजूद हम जागरूक नहीं होते। अब तो छात्र पूछें, उनके अभिभावक सोचें कि ऐसी बेतरतीबी में बच्चे पढ़ तो सकते हैं, सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी भी शहर में जाइए, कोचिंग संस्थानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या करें, हमारा फोकस पढ़ाई पर तो रहता है, सुरक्षा को हम तवज्जो नहीं देते।
4: क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक है?
5: सर ये खतरनाक है वाकई में, और यहाँ पे देखा कि ये पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू सब निकलने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी, और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए था कि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके।
4: अच्छा।
5: और ये तार पूरे देखिए, पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसके कोई
4: तार दिखाइए
5: देखिए पूरे। अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई,
4: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
5: ना सर, पूरा देखिए लोहे का आएगा, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
4: और आप जो आए, ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया यहाँ पे?
5: नहीं सर, सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है। और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो से एक ही है जाने का रास्ता जो है वो एक ही, जबकि दो होना चाहिए।
4: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है, और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए, ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट फैलता है, तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, उस गली की आप पहले स्थिति देखिए। उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं, और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकड़ जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए, लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे कि लखनऊ में हुआ था, तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का कि वो खिड़कियों से कूदें। और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने हैं, उसमें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर और अंदाजा लगाइए इससे। ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की, वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है, जो पोस्टर है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
1: याद रहे, अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं, और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं,
4: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं ये किस तरीके की कैसी स्थितियों में है, कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पे। और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जाले देखिए, और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है, जाले लगे हुए हैं, बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है। इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आग पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग
1: चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुँचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, कोचिंग संस्थाओं में बच्चे अपने सपनों को आकार देने के लिए जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं है। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है। ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं, लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली, हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: इलेक्ट्रिक कार के लिए होता है
3: जाएगा, ये वर्किंग कंडीशन में इनकी अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात, क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है, अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुंचाई।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग

0: इंस्टीट्यूट्स हैं, बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और जेईई के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान न करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
1: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे। चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
0: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं। अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
1: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
0: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई। यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
2: हाँ, बताया जाता है।
0: क्या बताया जाता है?
2: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
0: इसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
2: अभी मैं तो नया आया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं।
0: आपका क्या नाम है?
3: शेर अली।
0: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
3: RSSB फाउंड।
0: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, जैसे लखनऊ में हुई, कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
3: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
1: समझने और समझाने वाली बातें कई है, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
4: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहाँ व्यवस्थाएं अलग है, ग्राउंड प्लस 4 की है वहाँ व्यवस्थाएं अलग हो जाती है, तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे, और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण की शुरुआत किया है।
1: सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नियम नहीं है, सुरक्षित रहना एक अच्छी आदत है, क्योंकि आग से लड़ने का पहला हथियार दमकल की गाड़ी नहीं बल्कि जागरूकता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो क्या करना चाहिए पहले उसे समझिए। सबसे पहले हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, जरूरी सामान बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत स्थानीय फायर सर्विस को सूचना देनी है, अगर बिल्डिंग में धुआं भरा हो तो झुक कर या रेंगते हुए बाहर निकलना है, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, केवल सीढ़ियों से नीचे उतरना है, कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हाथ से उसकी गर्मी जांचनी होगी, अगर बहुत गर्म हो तो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करें, अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क सकती है, बल्कि कंबल या मोटे कपड़े से आग को ढक कर बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि सपनों की इन इमारतों में सिर्फ पढ़ाई नहीं सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन को नियम लागू करने होंगे, संस्थानों को जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें और आपको बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा। जयपुर से देव अंकुर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात करेंगे मॉनसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मॉनसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
4: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
5: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
4: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मॉनसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
6: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है, उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है, उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मॉनसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
7: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मॉनसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मॉनसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
4: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मॉनसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव प्रकाश शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग दे दिए जाते हैं और लोग जो है बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावे की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का खाली वीडियो है और जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का वीडियो है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
8: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून यानी सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला किसी इमारत की खिड़की से एक छोटे बच्चे को लटकाती नजर आ रही है। इसमें महिला जिस कमरे में है उसमें से लगातार काला धुआं निकल रहा है और महिला बेसुध से नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो अलीगंज की हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम न घुट जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि निशब्द आज की घटना जिसमें यह मां की ममता की ताकत ऐसी होती है कि मौत सामने हो तब भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है अलीगंज का हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम ना घोटे। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावा के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान जो है बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। और देखिए, हमने इससे ध्यान से सुना, ये सुनने में अंग्रेजी लग रही थी। आप भी सुनिए इन आवाजों को और आपको समझ में आ जाएगा आगे आपको किस प्रकार से ये वीडियो नजर आता। देखिए, आग लगने के इस हादसे को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और इसमें सिर्फ विदेशी लहजा आपको सुनाई देगा। यह हमें कुछ अटपटा सा नजर आया और जाहिर सी बात है इसके बाद हमने लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके वीडियो और तस्वीरों की वायरल वीडियो के दृश्यों से मिलान किया तो ये बात सामने निकल कर आ गई कि वायरल वीडियो बिल्डिंग से ये बिल्कुल जुदा नजर आता है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों से इसे बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वीडियो को जिस लखनऊ के अलीगंज आग घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो इसके बारे में जानकारी जरूर निकलकर सामने आती, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हमको नजर नहीं आया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि आग से बचाने के लिए बच्ची को खिड़की के बाहर लटकाती महिला का यह वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
8: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 8 अप्रैल 2010 की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला जिस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी वो 7 महीने की थी और उसका नाम जानीवा था। ये वीडियो पड़ोस में ही रहने वाली माया टकर नाम की एक महिला ने बनाया था। एक खबर के मुताबिक ये आग न्यूयॉर्क सिटी के पेलहम पार्कवे हाउसेज में लगी थी और ये वीडियो इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का है। घर में धुआं भर गया था, इसलिए 18 साल की वेनेसा स्कॉट ने अपने 7 महीने की कजिन जानीवा को खिड़की से बाहर निकाल कर लटका रखा था ताकि वो सांस ले सके। बाद में आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से वेनेसा और उनके परिवार के बाकी लोगों की जान बचाई थी। इस घटना में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों सहित 10 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से यह स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो लखनऊ तो क्या भारत का भी नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का साल 2010 का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। जी हां, देखते ही देखते ये बात हजारों लोगों तक पहुंच गई और कई वाहन मालिकों के मन में सवाल भी खड़े हो गए, लेकिन क्या सचमुच E20 पेट्रोल में ऐसा कुछ है जो चींटियों को आकर्षित करता है। वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।

0: भारत में प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले डॉलर को बचाने के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ वाहनों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो। छोटी छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हो। और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और इथेनॉल बनता ही गन्ने जैसी मीठी फसलों से, यानी फ्यूल टंकी चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की कसौटी पर उतारा। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल लेकर कैप को खोला जाता है, आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। और वीडियो में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल लिड पर लगी E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले लोगों को जरूर यह लगेगा कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की वजह से ही आ रही हैं। इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये सिक्किम का हमको नजर आया।
2: गाड़ी हो ना, मेरे गाड़ी से।
1: और देखिए, सिक्किम में इस तरह की भाषाएं अक्सर बोली जाती हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के आखिरी हिस्से में हमें गाड़ियों का नंबर प्लेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर SK लिखा हुआ है, मतलब वीडियो सिक्किम का ही है। वीडियो में E85 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। सर्च के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी E85 के पेट्रोल को बेचा जा रहा है। सिक्किम जैसे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध होने में अभी और समय लगेगा। E85 पेट्रोल केवल उन विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके इंजन इसके अनुकूल हो। अभी वर्तमान में पूरे देश में जो पेट्रोल मिल रहा है वो अधिकतर E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल दावे को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हाथ नहीं लगी जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने लगातार सर्च किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। सर्च के दौरान हमें पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट मिला। BPCL ने इस पोस्ट के जरिए अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर चल रही इन सभी खबरों की जांच की और इन्हें पूरी तरह से भ्रामक, निराधार और वैज्ञानिक प्रमाणों से परे बताया। कंपनी ने इसके पीछे कई मजबूत वैज्ञानिक कारण दिए। BPCL ने साफ किया कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। अंतिम प्रोडक्ट में चींटियों को आकर्षित करने वाला कोई भी मीठा तत्व बाकी नहीं रहता। ईंधन ग्रेड के एथेनॉल में विशेष प्रकार के डिनेचुरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तब भी पेट्रोल की अपनी स्वाभाविक हाइड्रोकार्बन गंध बरकरार रहती है। इथेनॉल की हल्की फुल्की महक इस तेज गंध के आगे दब जाती है। चींटियों को पेट्रोल की ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। साधारण पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन वाष्प बहुत कम होता है। मतलब कि ढक्कन खुला होने पर पेट्रोल कम उड़ता है। मतलब जब ढक्कन के पास से गैस या वाष्प ही बाहर नहीं निकलेगी तो चींटियां या कोई अन्य कीट वहां इकट्ठा नहीं होगा। भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल दावे का सच लोगों को बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने एक्स अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर लिखा, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के फ्यूल फिलर कैप, ईंधन भरने वाली जगह के ढक्कन पर चींटियां जमा हो रही हैं। एजेंसी ने आगे लिखा, सावधान, ये दावे झूठे हैं। E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। E20 फ्यूल में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को गाड़ी के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करे। इसके अलावा पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जाता है, इस दावे को भी गलत बताया गया। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। पेट्रोल में मिलाने से पहले इसे सख्त गुणवत्ता मानकों पर परखा जाता है। साफ है, E20 ईंधन और चींटियों के जमा होने के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अक्सर गाड़ियों के फ्यूल के कैप के पास गंदगी, खाने पीने की चीजों के गिरने या नमी की वजह से चींटियां आ सकती हैं, जिसे लोग गलत समझकर पेट्रोल से जोड़ रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर बिना जांच परख के शेयर की जा रही ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Good news today is really good. This is good. उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और इसी के साथ वक्त उछला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
6: देशभक्ति का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता, और इसका एक खूबसूरत उदाहरण हाल ही में वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने जोश और देश प्रेम से लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाघा बॉर्डर पर होने वाले रोजाना के समारोह के दौरान ये छोटी बच्ची दर्शकों के बीच बैठी है, लेकिन उसकी आवाज और जोश पूरे माहौल को खास बना देती है। वो पूरे उत्साह के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम की नारे लगाती है। उस बच्ची की आवाज में इतना जोश और आत्मविश्वास होता है कि आसपास बैठे लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कई लोग उसके साथ नारे लगाने लगते हैं। इसी बच्ची का उत्साह, मासूमियत और जोश ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। बच्चों की शरारत और उनकी मासूमियत अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही बेहद क्यूट सा वीडियो ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वायरल क्लिप में एक नन्हे बच्चे ने अपनी माँ की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा गुलाब जामुन खाने की तैयारी में है, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखते हुए उसे सीधे पानी के नीचे ले जाता है और धोने लगता है। मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी लगते ही गुलाब जामुन का सारा रस बह जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके दिमाग में बस माँ की यही सीख थी कि बिना धोए कुछ नहीं खाना। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। भिलाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्रेन का इंतजार करते करते उसने प्लेटफॉर्म को ही अपना स्टेज बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के के हाथों में जादू है। कभी वो फुटबॉल को अपनी एक उंगली पर टिका देता है और गेंद को लट्टू की तरह नचाने लगता है, तो अगले ही पल वो गेंद को हवा में उछालता है, घुटने से, सिर से, कंधे से टच करता है, पर गेंद नीचे नहीं गिरती, मतलब बॉल पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। पहाड़ी ड्रेस में एक लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ना कोई बड़ा सेट, ना हाई फाई कैमरा, बस सादगी, एनर्जी और एकदम बिंदास अंदाज। इस लड़की ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस, जरा भी बनावटीपन नहीं, हर बीट पर स्माइल, आंखों में मस्ती और पैरों में ऐसी थिरकन कि लगता है म्यूजिक उसकी बॉडी से ही निकल रहा है। इस खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 सालों के बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। इसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है, फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया है कि उसे देखकर लोग इसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांधी गई है और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बंदर किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर छत पर जा बैठता है और फिर उसे वापस करने के लिए जैसे अपनी ही शर्त रख देता है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बंदर एक मोबाइल फोन लेकर किसी मकान की छत पर आराम से बैठा हुआ है। नीचे मौजूद लोग उससे फोन वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे

0: किसी फायदे के मोबाइल लौटाने वाला नहीं है। इसी बीच किसी व्यक्ति के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। बंदर को लुभाने के लिए उसे फ्रूटी का टेट्रा पैक दिखाया जाता है। जैसे ही बंदर की नजर जूस पर पड़ती है, उसका ध्यान मोबाइल से हटकर फ्रूटी पर चला जाता है। लोगों को उम्मीद बंधती है कि शायद अब बात बन जाए। कुछ ही देर के बाद बंदर को फ्रूटी दे दी जाती है। मजे की बात ये है कि जूस हाथ में मिलते ही बंदर भी अपनी तरफ से सौदा पूरा कर देता है और खुद आराम से फ्रूटी का मजा लेने लगता है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
5: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है, वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
6: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
5: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
7: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
8: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने

0: प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
1: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख दिखा रहा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थाओं में आग के खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों आवश्यक है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थाओं के लिए अनिवार्य है और जिन्हें छात्र और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जिनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थाओं के मामले में सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी छात्र और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। यह समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थाओं में लापरवाही है तो उसे दूर करना सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता। बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं, लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है, पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहाँ पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है, और उसके बाद अब इन इलाकों पे जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाएं तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं, सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए।
2: जो लाइब्रेरी है, दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहां बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहां पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहां पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहां से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं, उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है, इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है, पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघरी गलियां हैं और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार ओवरहेड वायर्स जो हैं बिल्कुल खुले में पड़े हैं, कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं, कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ और पूरे गली में आग लग सकती है, कई लोगों की जान पर बना सकती है।
1: बरसों से सिर्फ सवाल ही उठते रहे हैं, ऐसी तस्वीर को देखने के बावजूद हम जागरूक नहीं होते। अब तो छात्र पूछें, उनके अभिभावक सोचें कि ऐसी बेतरतीबी में बच्चे पढ़ तो सकते हैं, सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी भी शहर में जाइए, कोचिंग संस्थानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या करें, हमारा फोकस पढ़ाई पर तो रहता है, सुरक्षा को हम तवज्जो नहीं देते।
4: क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक
5: है? सर ये खतरनाक है वाकई में, और यहाँ पे देखा कि ये पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू सब निकलने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी, और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए ताकि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके।
4: अच्छा।
5: और ये तार पूरे देखिए पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसका कोई
4: तार दिखाइए
5: देखिए पूरे। अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई,
4: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
5: ना सर, पूरा देखिए लोहे का आएगा, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
4: और आप जो आए, ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया है आपने?
5: नहीं सर, सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है। और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो से एक ही है जाने का रास्ता जो है वो एक ही, जबकि दो होना चाहिए।
4: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है, और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट फैलता है, तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस गली की आप पहले स्थिति देखिए, उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए, लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे कि लखनऊ में हुआ था, तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का, कि वो खिड़कियों से कूदें। और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने, और उसमें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर और अंदाजा लगाइए इससे। ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की, वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है, जो पोस्टर है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
1: याद रहे, अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं, और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं,
4: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं ये किस तरीके की कैसी स्थितियों में है, कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पे। और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जाले देखिए, और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है, जाले लगे हुए हैं, बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है। इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आंख पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग्स में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके पास नहीं होगा। कायदे से यहाँ अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये पूरी कोचिंग है, और नीचे तक अगर आप देखें, पहले तो ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई अग्निशमन यंत्र नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ नहीं लगा है। यानी आग लग गई तो उसे कैसे बुझाएंगे इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहाँ पे ये मीटर लगे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पर अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं उस तरफ, कि यहाँ पर भी आपको कोई आग बुझाने का साधन नहीं दिखेगा। कि ये जो पूरा इलाका है भोपाल का जोन 2, ये कोचिंग संस्थानों से पटा पड़ा। ऊपर भी अगर आप देखें तो अगर नीचे आग लग जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये रास्ता विकल्प बचता है उन छात्रों के पास आपात स्थितियों में बाहर निकलने का, लेकिन वो है नहीं पूरी तरीके से। वो भी ब्लॉक है, या तो एसी लगे हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कोचिंग बनानी थी वहां पे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये खतरा ज्यादातर उन कोचिंग संस्थानों पे है जो ऊपर की मंजिलों पे स्थित है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, ये पूरे कोचिंग संस्थान जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां तो निकलने के रास्ते हैं, कई सारे एग्जिट हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान ऊपर की इमारतों में चल रहे हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है।
1: आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल सेंटरों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस बेहद सख्त हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक फायर NOC अनिवार्य है। वहीं पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर अलार्म लगे होने चाहिए। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कम से कम दो चौड़े और सुरक्षित रास्ते हों। बेसमेंट में कक्षाएं चलाना या छात्रों को बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और हाँ, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। साथ ही कमरे में छात्रों की संख्या स्वीकृति क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, कोचिंग संस्थाओं में बच्चे अपने सपनों को आकार देने के लिए जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं है। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं, लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली। हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: वो इलेक्ट्रिक का के लिए होता है
3: जाएगा, ये वर्किंग कंडीशन में इनकी अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है, अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुंचाई।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और JEE के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान न करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
0: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे। चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं, अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
0: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
4: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई, यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
1: हाँ बताया जाता है।
4: क्या बताया जाता है?
1: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
4: उसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
1: अभी मैं तो नया आया हूँ। अच्छा, मेरे को इतना पता नहीं।
4: आपका क्या नाम है?
5: शेर अली।
4: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
5: RSSB फाउंड।
4: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए जैसे लखनऊ में हुई, कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
5: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
0: समझने और समझाने वाली बातें कई हैं, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
2: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहां व्यवस्थाएं अलग हैं, ग्राउंड प्लस फोर की है वहां व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे। और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण की शुरुआत किया है।
0: सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नियम नहीं है, सुरक्षित रहना एक अच्छी आदत है, क्योंकि आग से लड़ने का पहला हथियार दमकल की गाड़ी नहीं बल्कि जागरूकता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो क्या करना चाहिए, पहले उसे समझिए। सबसे पहले हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, जरूरी सामान बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत स्थानीय फायर सर्विस को सूचना देनी है। अगर बिल्डिंग में धुआं भरा हो तो झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलना है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, केवल सीढ़ियों से नीचे उतरना है। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हाथ से उसकी गर्मी जांचनी होगी, अगर बहुत गर्म हो तो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करें। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क सकती है, बल्कि कंबल या मोटे कपड़े से आग को ढककर बुझाने की कोशिश करें। क्योंकि सपनों की इन इमारतों में सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन को नियम लागू करने होंगे, संस्थानों को जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें और आपको बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा। जयपुर से देव अंकुर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: You hear it once and remember everything.
1: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
0: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात करेंगे मॉनसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मॉनसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
4: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोबेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
5: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
4: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मॉनसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
6: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
7: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मॉनसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
4: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मॉनसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव प्रकाश शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए संजिश के रंग दे दिए जाते हैं और लोग जो है बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावे की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का खाली वीडियो है और जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का वीडियो है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
9: रोड राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून यानी सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला किसी इमारत की खिड़की से एक छोटे बच्चे को लटकाती नजर आ रही है। इसमें महिला जिस कमरे में है उसमें से लगातार काला धुआं निकल रहा है और महिला बेसुध नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो अलीगंज की हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम न घुट जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि निशब आज की घटना, जिसमें यह मां की ममता की ताकत ऐसी होती है कि मौत सामने हो तब भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है अलीगंज का हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम ना घोटे। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावा के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान जो है बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। और देखिए, हमने इससे ध्यान से सुना, ये सुनने में अंग्रेजी लग रही थी। आप भी सुनिए इन आवाजों को और आपको समझ में आ जाएगा आगे आपको किस प्रकार से ये वीडियो नजर आता। देखिए, आग लगने के इस हादसे को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और इसमें सिर्फ विदेशी लहजा आपको सुनाई देगा। ये हमें कुछ अटपटा सा नजर आया और जाहिर सी बात है, इसके बाद हमने लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके वीडियो और तस्वीरों की वायरल वीडियो के दृश्यों से मिलान किया तो ये बात सामने निकल कर आ गई कि वायरल वीडियो बिल्डिंग से ये बिल्कुल जुदा नजर आता है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों से इसे बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वीडियो को जिस लखनऊ के अलीगंज आग घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो इसके बारे में जानकारी जरूर निकलकर सामने आती, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हमको नजर नहीं आया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि आग से बचाने के लिए बच्ची को खिड़की के बाहर लटकाती महिला का यह वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 8 अप्रैल 2010 की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला जिस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी वो 7 महीने की थी और उसका नाम जानीवाह था। ये वीडियो पड़ोस में ही रहने वाली माया टकर नाम की एक महिला ने बनाया था। एक खबर के मुताबिक ये आग न्यूयॉर्क सिटी के पेलहम पार्कवे हाउसेज में लगी थी और ये वीडियो इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का है। घर में धुआं भर गया था, इसलिए 18 साल की वेनेसा स्कॉट ने अपने 7 महीने की कजिन जानीवाह को खिड़की से बाहर निकाल कर लटका रखा था ताकि वो सांस ले सके। बाद में आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से वेनेसा और उनके परिवार के बाकी लोगों की जान बचाई थी। इस घटना में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों सहित 10 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से यह स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो लखनऊ तो क्या भारत का भी नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का साल 2010 का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। जी हां, देखते ही देखते ये बात हजारों लोगों तक पहुंच गई और कई वाहन मालिकों के मन में सवाल भी खड़े हो गए। लेकिन क्या सचमुच E20 पेट्रोल में ऐसा कुछ है जो चींटियों को आकर्षित करता है? वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।

0: भारत में प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले डॉलर को बचाने के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ वाहनों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो। छोटी छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हो। और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और इथेनॉल बनता ही गन्ने जैसी मीठी फसलों से, यानी फ्यूल टंकी चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की कसौटी पर उतारा। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल लेकर कैप को खोला जाता है, आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। और वीडियो में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल लिड पर लगे E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले लोगों को जरूर यह लगेगा कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की वजह से ही आ रही हैं। इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये सिक्किम का हमको नजर आया।
2: गाड़ी हो ना मेरा गाड़ी से।
1: और देखिए, सिक्किम में इस तरह की भाषाएं अक्सर बोली जाती हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के आखिरी हिस्से में हमें गाड़ियों का नंबर प्लेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर SK लिखा हुआ है, मतलब वीडियो सिक्किम का ही है। वीडियो में E85 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। सर्च के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी E85 के पेट्रोल को बेचा जा रहा है। सिक्किम जैसे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध होने में अभी और समय लगेगा। E85 पेट्रोल केवल उन विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके इंजन इसके अनुकूल हो। अभी वर्तमान में पूरे देश में जो पेट्रोल मिल रहा है वो अधिकतर E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल दावे को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हाथ नहीं लगी जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने लगातार सर्च किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। सर्च के दौरान हमें पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट मिला। BPCL ने इस पोस्ट के जरिए अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर चल रही इन सभी खबरों की जांच की और इन्हें पूरी तरह से भ्रामक, निराधार और वैज्ञानिक प्रमाणों से परे बताया। कंपनी ने इसके पीछे कई मजबूत वैज्ञानिक कारण दिए। BPCL ने साफ किया कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। अंतिम प्रोडक्ट में चींटियों को आकर्षित करने वाला कोई भी मीठा तत्व बाकी नहीं रहता। ईंधन ग्रेड के एथेनॉल में विशेष प्रकार के डिनेट्यूरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तब भी पेट्रोल की अपनी स्वाभाविक हाइड्रोकार्बन गंध बरकरार रहती है। इथेनॉल की हल्की फुल्की महक इस तेज गंध के आगे दब जाती है। चींटियों को पेट्रोल की ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। साधारण पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन वाष्प बहुत कम होता है। मतलब कि ढक्कन खुला होने पर पेट्रोल कम उड़ता है। मतलब जब ढक्कन के पास से गैस या वाष्प भी बाहर नहीं निकलेगी तो चींटियां या कोई अन्य कीट वहां इकट्ठा नहीं होगा। भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने वायरल दावे का सच लोगों को बताया है। PIB फैक्ट चेक ने अपने एक्स अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर लिखा, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के फ्यूल फिलर कैप, ईंधन भरने वाली जगह के ढक्कन पर चींटियां जमा हो रही हैं। एजेंसी ने आगे लिखा, सावधान, ये दावे झूठे हैं। E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। E20 फ्यूल में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को गाड़ी के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करे। इसके अलावा पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जाता है, इस दावे को भी गलत बताया गया। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। पेट्रोल में मिलाने से पहले इसे सख्त गुणवत्ता मानकों पर परखा जाता है। साफ है, E20 ईंधन और चींटियों के जमा होने के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अक्सर गाड़ियों के फ्यूल के कैप के पास गंदगी, खाने पीने की चीजों के गिरने या नमी की वजह से चींटियां आ सकती हैं, जिसे लोग गलत समझकर पेट्रोल से जोड़ रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर बिना जांच परख के शेयर की जा रही ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: देशभक्ति का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता, और इसका एक खूबसूरत उदाहरण हाल ही में वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने जोश और देश प्रेम से लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाघा बॉर्डर पर होने वाले रोजाना के समारोह के दौरान ये छोटी बच्ची दर्शकों के बीच बैठी है, लेकिन उसकी आवाज और जोश पूरे माहौल को खास बना देती है। वो पूरे उत्साह के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम की नारे लगाती है। उस बच्ची की आवाज में इतना जोश और आत्मविश्वास होता है कि आसपास बैठे लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कई लोग उसके साथ नारे लगाने लगते हैं। इसी बच्ची का उत्साह, मासूमियत और जोश ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। बच्चों की शरारत और उनकी मासूमियत अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही बेहद क्यूट सा वीडियो ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वायरल क्लिप में एक नन्हे बच्चे ने अपनी माँ की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा गुलाब जामुन खाने की तैयारी में है, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखते हुए उसे सीधे पानी के नीचे ले जाता है और धोने लगता है। मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी लगते ही गुलाब जामुन का सारा रस बह जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके दिमाग में बस माँ की यही सीख थी कि बिना धोए कुछ नहीं खाना। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। भिलाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्रेन का इंतजार करते करते उसने प्लेटफॉर्म को ही अपना स्टेज बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के के हाथों में जादू है। कभी वो फुटबॉल को अपनी एक उंगली पर टिका देता है और गेंद को लट्टू की तरह नचाने लगता है। तो अगले ही पल वो गेंद को हवा में उछालता है, घुटने से, सिर से, कंधे से टच करता है, पर गेंद नीचे नहीं गिरती, मतलब बॉल पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। पहाड़ी ड्रेस में एक लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ना कोई बड़ा सेट, ना हाई फाई कैमरा, बस सादगी, एनर्जी और एकदम बिंदास अंदाज। इस लड़की ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस, जरा भी बनावटीपन नहीं, हर बीट पर स्माइल, आंखों में मस्ती और पैरों में ऐसी थिरकन कि लगता है म्यूजिक उसकी बॉडी से ही निकल रहा है। इस खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 सालों के बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। इसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है, फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया है कि उसे देखकर लोग इसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांधी गई है और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बंदर किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर छत पर जा बैठता है और फिर उसे वापस करने के लिए जैसे अपनी ही शर्त रख देता है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बंदर एक मोबाइल फोन लेकर किसी मकान की छत पर आराम से बैठा हुआ है। नीचे मौजूद लोग उससे फोन वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे बंदर ने ठान ली हो कि बिना किसी फायदे के मोबाइल

0: जाता है। बंदर को लुभाने के लिए उसे फ्रूटी का टेट्रा पैक दिखाया जाता है। जैसे ही बंदर की नजर जूस पर पड़ती है, उसका ध्यान मोबाइल से हटकर फ्रूटी पर चला जाता है। लोगों को उम्मीद बंधती है कि शायद अब बात बन जाए। कुछ ही देर के बाद बंदर को फ्रूटी दे दी जाती है। मजे की बात ये है कि जूस हाथ में मिलते ही बंदर भी अपनी तरफ से सौदा पूरा कर देता है और खुद आराम से फ्रूटी का मजा लेने लगता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
5: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है, वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
6: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
5: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
7: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
8: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बाला

0: बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
1: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी की जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल बैग्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख दिखा रहा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थाओं में आग के खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों आवश्यक है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थाओं के लिए अनिवार्य है और जिन्हें छात्र और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जिनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थाओं के मामले में सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी छात्र और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। यह समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थाओं में लापरवाही है तो उसे दूर करना सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता। बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं। लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है। पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहाँ पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है। और उसके बाद अब इन इलाकों पे जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाए तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं। सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं? और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए?
2: जो लाइब्रेरी है या दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहां बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहां पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहां पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहां से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट, डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है। इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है, पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है, और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई, या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार ओवरहेड वायर्स जो हैं बिल्कुल खुले में पड़े हैं, कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं, कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में, और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ और पूरे गली में आग लग सकती है, कई लोगों की जान पर बना सकती है।
1: बरसों से सिर्फ सवाल ही उठते रहे हैं, ऐसी तस्वीर को देखने के बावजूद हम जागरूक नहीं होते। अब तो छात्र पूछें, उनके अभिभावक सोचें कि ऐसी बेतरतीबी में बच्चे पढ़ तो सकते हैं, सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी भी शहर में जाइए, कोचिंग संस्थानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या करें, हमारा फोकस पढ़ाई पर तो रहता है, सुरक्षा को हम तवज्जो नहीं देते।
4: क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक?
5: नहीं सर, ये खतरनाक है वाकई में, और यहाँ पे देखा कि ये पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू सब निकलने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी, और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए ताकि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके।
4: अच्छा।
5: और ये तार पूरे देखिए, पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसके कोई
4: तार दिखाइए
5: किधर आई, देखिए पूरी। अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई,
4: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
5: ना सर, पूरा देखिए लोहे का आएगा, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
4: और आप जो आए, ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया यहाँ पे?
5: नहीं सर, सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है। और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो सिर्फ एक ही है, जाने का रास्ता जो है वो एक ही, जबकि 2 होना चाहिए।
4: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है, और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए, ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट फैलता है, तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पे मौजूद हैं उस गली की आप पहले स्थिति देखिए, उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकड़ जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए, लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे कि लखनऊ में हुआ था, तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का कि वो खिड़कियों से कूदें। और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने, और उसमें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर, अंदाजा लगाइए इससे। ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की, वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है, जो पोस्टर है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
1: याद रहे, अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं, और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं,
4: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं ये किस तरीके की कैसी स्थितियों में है, कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पे, और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है, ये आप देख रहे हैं, ये आप जाले देखिए, और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है, जाले लगे हुए हैं, बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है, इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आग पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके पास नहीं होगा। कायदे से यहाँ अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये पूरी कोचिंग है, और नीचे तक अगर आप देखें, पहले तो ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई अग्निशमन यंत्र नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ नहीं लगा है, यानी आग लग गई तो उसे कैसे बुझाएंगे इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहाँ पे ये मीटर लगे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पर अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं उस तरफ, कि यहाँ पर भी आपको कोई आग बुझाने का साधन नहीं दिखेगा। कि ये जो पूरा इलाका है भोपाल का जोन टू, ये कोचिंग संस्थानों से पटा पड़ा। ऊपर भी अगर आप देखें तो अगर नीचे आग लग जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये रास्ता विकल्प बचता है उन छात्रों के पास आपात स्थितियों में बाहर निकलने का, लेकिन वो है नहीं पूरी तरीके से, वो भी ब्लॉक है, या तो एसी लगे हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कोचिंग बनानी थी वहां पे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये खतरा ज्यादातर उन कोचिंग संस्थानों पे है जो ऊपर की मंजिलों पे स्थित है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, ये पूरे कोचिंग संस्थान जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां तो निकलने के रास्ते हैं, कई सारे एग्जिट हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान ऊपर की इमारतों में चल रहे हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है।
1: आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल सेंटरों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस बेहद सख्त हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक फायर एनओसी अनिवार्य है। वहीं पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर अलार्म लगे होने चाहिए। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कम से कम दो चौड़े और सुरक्षित रास्ते हों। बेसमेंट में कक्षाएं चलाना या छात्रों को बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और हाँ, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। साथ ही कमरे में छात्रों की संख्या स्वीकृति क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, कोचिंग संस्थाओं में बच्चे अपने सपनों को आकार देने के लिए जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं है। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, ऐसे हादसे ना हो इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं, लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा, हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली। हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: वो इलेक्ट्रिक कार के लिए होता है, इसमें
3: जाएगा ये पार्किंग कंडीशन में। इनकी अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि पार्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात, क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है? अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई?
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और JEE के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान न करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
0: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे? चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं। अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
0: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
4: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई, यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
1: हाँ बताया जाता है।
4: क्या बताया जाता है?
1: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
4: उसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
1: अभी मैं तो नया आया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं।
4: आपका क्या नाम है?
5: शेर अली।
4: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
5: RSSB फाउंड।
4: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए जैसे लखनऊ में हुई, कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
5: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
0: समझने और समझाने वाली बातें कई है, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
2: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहां व्यवस्थाएं अलग हैं, ग्राउंड प्लस फोर की है वहां व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे। और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण की शुरुआत किया है।
0: सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नियम नहीं है, सुरक्षित रहना एक अच्छी आदत है, क्योंकि आग से लड़ने का पहला हथियार दमकल की गाड़ी नहीं बल्कि जागरूकता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो क्या करना चाहिए पहले उसे समझिए। सबसे पहले हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, जरूरी सामान बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत स्थानीय फायर सर्विस को सूचना देनी है। अगर बिल्डिंग में धुआं भरा हो तो झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलना है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, केवल सीढ़ियों से नीचे उतरना है। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हाथ से उसकी गर्मी जांचनी होगी, अगर बहुत गर्म हो तो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करें। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क सकती है, बल्कि कंबल या मोटे कपड़े से आग को ढककर बुझाने की कोशिश करें। क्योंकि सपनों की इन इमारतों में सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन को नियम लागू करने होंगे, संस्थानों को जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें और आपको बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा। जयपुर से देव अंकुर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: बात करेंगे मॉनसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
3: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है, वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
4: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
3: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
5: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
6: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है, उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
3: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव प्रकाश शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग दे दिए जाते हैं और लोग जो है बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावे की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का हाली वीडियो है और जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का वीडियो है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
7: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून यानी सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला किसी इमारत की खिड़की से एक छोटे बच्चे को लटकाती नजर आ रही है। इसमें महिला जिस कमरे में है उसमें से लगातार काला धुआं निकल रहा है और महिला बेसुध से नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो अलीगंज की हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम न घुट जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि निशब्द आज की घटना जिसमें यह मां की ममता की ताकत ऐसी होती है कि मौत सामने हो तब भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है अलीगंज का हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम ना घोटे। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावा के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान जो है बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। और देखिए, हमने इससे ध्यान से सुना, ये सुनने में अंग्रेजी लग रही थी। आप भी सुनिए इन आवाजों को और आपको समझ में आ जाएगा आगे आपको किस प्रकार से ये वीडियो नजर आता। देखिए, आग लगने के इस हादसे को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और इसमें सिर्फ विदेशी लहजा आपको सुनाई देगा। यह हमें कुछ अटपटा सा नजर आया और जाहिर सी बात है इसके बाद हमने लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके वीडियो और तस्वीरों की वायरल वीडियो के दृश्यों से मिलान किया तो ये बात सामने निकल कर आ गई कि वायरल वीडियो बिल्डिंग से ये बिल्कुल जुदा नजर आता है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों से इसे बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वीडियो को जिस लखनऊ के अलीगंज आग घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो इसके बारे में जानकारी जरूर निकलकर सामने आती, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हमको नजर नहीं आया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि आग से बचाने के लिए बच्ची को खिड़की के बाहर लटकाती महिला का यह वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
7: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 8 अप्रैल 2010 की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला जिस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी वो 7 महीने की थी और उसका नाम जानीवाह था। ये वीडियो पड़ोस में ही रहने वाली माया टकर नाम की एक महिला ने बनाया था। एक खबर के मुताबिक ये आग न्यूयॉर्क सिटी के पेलहम पार्कवे हाउसेज में लगी थी और ये वीडियो इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का है। घर में धुआं भर गया था, इसलिए 18 साल की वेनेसा स्कॉट ने अपने 7 महीने की कजिन जानीवाह को खिड़की से बाहर निकाल कर लटका रखा था ताकि वो सांस ले सके। बाद में आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से वेनेसा और उनके परिवार के बाकी लोगों की जान बचाई थी। इस घटना में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों सहित 10 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से यह स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो लखनऊ तो क्या भारत का भी नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का साल 2010 का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। जी हां, देखते ही देखते ये बात हजारों लोगों तक पहुंच गई और कई वाहन मालिकों के मन में सवाल भी खड़े हो गए। लेकिन क्या सचमुच E20 पेट्रोल में ऐसा कुछ है जो चींटियों को आकर्षित करता है? वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।

0: भारत ने प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले डॉलर को बचाने के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ वाहनों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो। छोटी छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हो। और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और इथेनॉल बनता ही गन्ने जैसी मीठी फसलों से, यानी फ्यूल टंकी चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की कसौटी पर उतारा। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल लेकर कैप को खोला जाता है, आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। और वीडियो में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल लिड पर लगी E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले लोगों को जरूर यह लगेगा कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की वजह से ही आ रही हैं। इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये सिक्किम का हमको नजर आया।
2: गाड़ी हो ना मेरा गाड़ी से।
1: और देखिए, सिक्किम में इस तरह की भाषाएं अक्सर बोली जाती हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के आखिरी हिस्से में हमें गाड़ियों का नंबर प्लेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर SK लिखा हुआ है, मतलब वीडियो सिक्किम का ही है। वीडियो में E85 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। सर्च के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी E85 के पेट्रोल को बेचा जा रहा है। सिक्किम जैसे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध होने में अभी और समय लगेगा। E85 पेट्रोल केवल उन विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके इंजन इसके अनुकूल हो। अभी वर्तमान में पूरे देश में जो पेट्रोल मिल रहा है वो अधिकतर E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल दावे को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हाथ नहीं लगी जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने लगातार सर्च किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। सर्च के दौरान हमें पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट मिला। BPCL ने इस पोस्ट के जरिए अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर चल रही इन सभी खबरों की जांच की और इन्हें पूरी तरह से भ्रामक, निराधार और वैज्ञानिक प्रमाणों से परे बताया। कंपनी ने इसके पीछे कई मजबूत वैज्ञानिक कारण दिए। BPCL ने साफ किया कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। अंतिम प्रोडक्ट में चींटियों को आकर्षित करने वाला कोई भी मीठा तत्व बाकी नहीं रहता। ईंधन ग्रेड के एथेनॉल में विशेष प्रकार के डिनेट्यूरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तब भी पेट्रोल की अपनी स्वाभाविक हाइड्रोकार्बन गंध बरकरार रहती है। इथेनॉल की हल्की फुल्की महक इस तेज गंध के आगे दब जाती है। चींटियों को पेट्रोल की ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। साधारण पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन वाष्प बहुत कम होता है। मतलब कि ढक्कन खुला होने पर पेट्रोल कम उड़ता है। मतलब जब ढक्कन के पास से गैस या वाष्प भी बाहर नहीं निकलेगी तो चींटियां या कोई अन्य कीट वहां इकट्ठा नहीं होगा। भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने वायरल दावे का सच लोगों को बताया है। PIB फैक्ट चेक ने अपने एक्स अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर लिखा, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के फ्यूल फिलर कैप, ईंधन भरने वाली जगह के ढक्कन पर चींटियां जमा हो रही हैं। एजेंसी ने आगे लिखा, सावधान, ये दावे झूठे हैं। E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। E20 फ्यूल में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को गाड़ी के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करे। इसके अलावा पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जाता है, इस दावे को भी गलत बताया गया। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। पेट्रोल में मिलाने से पहले इसे सख्त गुणवत्ता मानकों पर परखा जाता है। साफ है, E20 ईंधन और चींटियों के जमा होने के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अक्सर गाड़ियों के फ्यूल के कैप के पास गंदगी, खाने पीने की चीजों के गिरने या नमी की वजह से चींटियां आ सकती हैं, जिसे लोग गलत समझकर पेट्रोल से जोड़ रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर बिना जांच परख के शेयर की जा रही ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: देशभक्ति का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता, और इसका एक खूबसूरत उदाहरण हाल ही में वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने जोश और देश प्रेम से लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाघा बॉर्डर पर होने वाले रोजाना के समारोह के दौरान ये छोटी बच्ची दर्शकों के बीच बैठी है, लेकिन उसकी आवाज और जोश पूरे माहौल को खास बना देती है। वो पूरे उत्साह के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम की नारे लगाती है। उस बच्ची की आवाज में इतना जोश और आत्मविश्वास होता है कि आसपास बैठे लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कई लोग उसके साथ नारे लगाने लगते हैं। इसी बच्ची का उत्साह, मासूमियत और जोश ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। बच्चों की शरारत और उनकी मासूमियत अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही बेहद क्यूट सा वीडियो ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वायरल क्लिप में एक नन्हे बच्चे ने अपनी माँ की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा गुलाब जामुन खाने की तैयारी में है, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखते हुए उसे सीधे पानी के नीचे ले जाता है और धोने लगता है। मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी लगते ही गुलाब जामुन का सारा रस बह जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके दिमाग में बस माँ की यही सीख थी कि बिना धोए कुछ नहीं खाना। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। भिलाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्रेन का इंतजार करते करते उसने प्लेटफॉर्म को ही अपना स्टेज बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के के हाथों में जादू है। कभी वो फुटबॉल को अपनी एक उंगली पर टिका देता है और गेंद को लट्टू की तरह नचाने लगता है, तो अगले ही पल वो गेंद को हवा में उछालता है, घुटने से, सिर से, कंधे से टच करता है, पर गेंद नीचे नहीं गिरती, मतलब बॉल पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। पहाड़ी ड्रेस में एक लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ना कोई बड़ा सेट, ना हाई फाई कैमरा, बस सादगी, एनर्जी और एकदम बिंदास अंदाज। इस लड़की ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस, जरा भी बनावटीपन नहीं, हर बीट पर स्माइल, आंखों में मस्ती और पैरों में ऐसी थिरकन कि लगता है म्यूजिक उसकी बॉडी से ही निकल रहा है। इस खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 सालों के बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। इसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया है कि उसे देखकर लोग इसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांधी गई है और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बंदर किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर छत पर जा बैठता है और फिर उसे वापस करने के लिए जैसे अपनी ही शर्त रख देता है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बंदर एक मोबाइल फोन लेकर किसी मकान की छत पर आराम से बैठा हुआ है। नीचे मौजूद लोग उससे फोन वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे बंदर ने ठान ली हो कि बिना किसी फायदे के मोबाइल लौटाने वाला नहीं है। इसी बीच किसी व्यक्ति के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। बंदर को लुभाने के लिए उसे फ्रूटी का टेट्रा पैक दिखाया जाता है। जैसे ही बंदर की नजर जूस पर पड़ती है, उसका ध्यान मोबाइल से हटकर फ्रूटी पर चला जाता है। लोगों को उम्मीद बंधती है कि शायद अब बात बन जाए। कुछ ही देर के बाद बंदर को फ्रूटी दे दी जाती है। मजे की बात ये है कि जूस हाथ में मिलते ही बंदर भी अपनी तरफ से सौदा पूरा कर देता है और खुद आराम से फ्रूटी का मजा लेने लगता है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
2: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
3: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
2: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
4: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
5: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
2: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के

0: में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया, 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50, जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्ते नाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख दिखा रहा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थाओं में आग के खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों आवश्यक है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थाओं के लिए अनिवार्य है और जिन्हें छात्र और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जिनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थाओं के मामले में सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी छात्र और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। यह समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थाओं में लापरवाही है तो उसे दूर करना सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता। बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं, लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है, पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहां पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है, और उसके बाद अब इन इलाकों पे जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाएं तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं, सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए।
2: जो लाइब्रेरी है, दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहां बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहां पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहां पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहां से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है, इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है, पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है, और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई, या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार ओवरहेड वायर्स जो हैं बिल्कुल खुले में पड़े हैं, कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं, कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में, और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ और पूरे गली में आग लग सकती है, कई लोगों की जान पर बना सकती है।
1: बरसों से सिर्फ सवाल ही उठते रहे हैं, ऐसी तस्वीर को देखने के बावजूद हम जागरूक नहीं होते। अब तो छात्र पूछें, उनके अभिभावक सोचें कि ऐसी बेतरतीबी में बच्चे पढ़ तो सकते हैं, सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी भी शहर में जाइए, कोचिंग संस्थानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या करें, हमारा फोकस पढ़ाई पर तो रहता है, सुरक्षा को हम तवज्जो नहीं देते।
4: क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक है?
5: सर ये खतरनाक है वाकई में, और यहाँ पे देखा कि ये पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू से निकलने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी, और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए था कि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके।
4: अच्छा।
5: और ये तार पूरे देखिए, पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसके कोई
4: तार दिखाइए
5: देखिए पूरे, अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई,
4: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
5: ना सर, पूरा देखिए लोहे का आएगा, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
4: और आप जो आए, ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया यहाँ पे?
5: नहीं सर, सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है, और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो से एक ही है जाने का रास्ता जो है वो एक ही, जबकि दो होना चाहिए।
4: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है, और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट फैलता है, तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस गली की आप पहले स्थिति देखिए, उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए, लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे कि लखनऊ में हुआ था, तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का, कि वो खिड़कियों से कूदे। और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने, और उसमें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर और अंदाजा लगाइए इससे। ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की, वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है, जो पोस्टर है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
1: याद रहे, अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं, और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं,
4: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं ये किस तरीके की कैसी स्थितियों में है, कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पे। और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जाले देखिए, और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है, जाले लगे हुए हैं, बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है। इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आंख पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग्स में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके पास नहीं होगा। कायदे से यहाँ अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये पूरी कोचिंग है, और नीचे तक अगर आप देखें, पहले तो ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई अग्निशमन यंत्र नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ नहीं लगा है, यानी आग लग गई तो उसे कैसे बुझाएंगे इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहाँ पे ये मीटर लगे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पर अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं उस तरफ, कि यहाँ पर भी आपको कोई आग बुझाने का साधन नहीं दिखेगा। कि ये जो पूरा इलाका है भोपाल का जोन 2, ये कोचिंग संस्थानों से पटा पड़ा। ऊपर भी अगर आप देखें तो अगर नीचे आग लग जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये रास्ता विकल्प बचता है उन छात्रों के पास आपात स्थितियों में बाहर निकलने का, लेकिन वो है नहीं पूरी तरीके से, वो भी ब्लॉक है, या तो एसी लगे हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कोचिंग बनानी थी वहां पे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये खतरा ज्यादातर उन कोचिंग संस्थानों पे है जो ऊपर की मंजिलों पे स्थित है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, ये पूरे कोचिंग संस्थान जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां तो निकलने के रास्ते हैं, कई सारे एग्जिट हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान ऊपर की इमारतों में चल रहे हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है।
1: आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल सेंटरों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस बेहद सख्त हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक फायर NOC अनिवार्य है। वहीं पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर अलार्म लगे होने चाहिए। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कम से कम दो चौड़े और सुरक्षित रास्ते हों। बेसमेंट में कक्षाएं चलाना या छात्रों को बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और हाँ, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। साथ ही कमरे में छात्रों की संख्या स्वीकृति क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, कोचिंग संस्थाओं में बच्चे अपने सपनों को आकार देने के लिए जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं है। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, ऐसे हादसे ना हो इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं, लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली, हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: वो इलेक्ट्रिक कार के लिए होता है
3: जाएगा, ये वर्किंग कंडीशन में इनकी अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है, अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और JEE के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान ना करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
0: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे। चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं, अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
0: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
4: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई, यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
1: हाँ बताया जाता है।
4: क्या बताया जाता है?
1: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
4: उसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
1: अभी मैं तो नया आया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं।
4: आपका क्या नाम है?
5: शेर अली।
4: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
5: RSSB फाउंड।
4: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए जैसे लखनऊ में हुई, कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
5: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
0: समझने और समझाने वाली बातें कई हैं, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
2: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहां व्यवस्थाएं अलग हैं, ग्राउंड प्लस फोर की है वहां व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे। और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण का शुरुआत किया है।
0: सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नियम नहीं है, सुरक्षित रहना एक अच्छी आदत है, क्योंकि आग से लड़ने का पहला हथियार दमकल की गाड़ी नहीं बल्कि जागरूकता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो क्या करना चाहिए पहले उसे समझिए। सबसे पहले हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, जरूरी सामान बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत स्थानीय फायर सर्विस को सूचना देनी है। अगर बिल्डिंग में धुआं भरा हो तो झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलना है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, केवल सीढ़ियों से नीचे उतरना है। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हाथ से उसकी गर्मी जांचनी होगी, अगर बहुत गर्म हो तो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करें। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क सकती है, बल्कि कंबल या मोटे कपड़े से आग को ढककर बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि सपनों की इन इमारतों में सिर्फ पढ़ाई नहीं सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन को नियम लागू करने होंगे, संस्थानों को जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें और आपको बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा। जयपुर से देव अंकुर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
3: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है, वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
4: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
3: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
5: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है, उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है, उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
6: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है, उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
3: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव प्रकाश शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग दे दिए जाते हैं और लोग जो है बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावे की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का हाली वीडियो है और जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का वीडियो है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
7: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून यानी सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला किसी इमारत की खिड़की से एक छोटे बच्चे को लटकाती नजर आ रही है। इसमें महिला जिस कमरे में है उसमें से लगातार काला धुआं निकल रहा है और महिला बेसुध से नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो अलीगंज की हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम न घुट जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि निशब्द आज की घटना जिसमें यह मां की ममता की ताकत ऐसी होती है कि मौत सामने हो तब भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है अलीगंज का हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम ना घोटे। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावा के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान जो है बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। और देखिए, हमने इससे ध्यान से सुना, ये सुनने में अंग्रेजी लग रही थी। आप भी सुनिए इन आवाजों को और आपको समझ में आ जाएगा आगे आपको किस प्रकार से ये वीडियो नजर आता। देखिए, आग लगने के इस हादसे को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और इसमें सिर्फ विदेशी लहजा आपको सुनाई देगा। ये हमें कुछ अटपटा सा नजर आया और जाहिर सी बात है इसके बाद हमने लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके वीडियो और तस्वीरों की वायरल वीडियो के दृश्यों से मिलान किया तो ये बात सामने निकल कर आ गई। ये वायरल वीडियो बिल्डिंग से ये बिल्कुल जुदा नजर आता है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों से इसे बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वीडियो को जिस लखनऊ के अलीगंज आग घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो इसके बारे में जानकारी जरूर निकलकर सामने आती, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हमको नजर नहीं आया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल ज़ाहिर तौर पर यह उठता है कि आग से बचाने के लिए बच्ची को खिड़की के बाहर लटकाती महिला का यह वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
7: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 8 अप्रैल 2010 की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला जिस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी वो 7 महीने की थी और उसका नाम जानीवाह था। ये वीडियो पड़ोस में ही रहने वाली माया टकर नाम की एक महिला ने बनाया था। एक खबर के मुताबिक ये आग न्यूयॉर्क सिटी के पेलहम पार्कवे हाउसेज में लगी थी और ये वीडियो इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का है। घर में धुआं भर गया था, इसलिए 18 साल की वैनेसा स्कॉट ने अपने 7 महीने की कजिन जानीवाह को खिड़की से बाहर निकाल कर लटका रखा था ताकि वो सांस ले सके। बाद में आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से वैनेसा और उनके परिवार के बाकी लोगों की जान बचाई थी। इस घटना में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों सहित 10 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से यह स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो लखनऊ तो क्या भारत का भी नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का साल 2010 का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। जी हां, देखते ही देखिए ये बात हजारों लोगों तक पहुंच गई और कई वाहन मालिकों के मन में सवाल भी खड़े हो गए। लेकिन क्या सचमुच E20 पेट्रोल में ऐसा कुछ है जो चींटियों को आकर्षित करता है? वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।

0: भारत में प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले डॉलर को बचाने के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ वाहनों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो। छोटी छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हो। और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और इथेनॉल बनता ही गन्ने जैसी मीठी फसलों से, यानी फ्यूल टंकी चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की कसौटी पर उतारा। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल लेकर कैप को खोला जाता है, आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। और वीडियो में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल लिड पर लगी E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले लोगों को जरूर यह लगेगा कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की वजह से ही आ रही हैं। इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये सिक्किम का हमको नजर आया।
2: गाड़ी हो ना मेरे गाड़ी से।
1: और देखिए, सिक्किम में इस तरह की भाषाएं अक्सर बोली जाती हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के आखिरी हिस्से में हमें गाड़ियों का नंबर प्लेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर SK लिखा हुआ है, मतलब वीडियो सिक्किम का ही है। वीडियो में E85 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। सर्च के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी E85 के पेट्रोल को बेचा जा रहा है। सिक्किम जैसे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में इसे आम जनता के लिए उपलब्ध होने में अभी और समय लगेगा। E85 पेट्रोल केवल उन विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके इंजन इसके अनुकूल हो। अभी वर्तमान में पूरे देश में जो पेट्रोल मिल रहा है वो अधिकतर E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल दावे को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हाथ नहीं लगी जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने लगातार सर्च किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। सर्च के दौरान हमें पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट मिला। BPCL ने इस पोस्ट के जरिए अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर चल रही इन सभी खबरों की जांच की और इन्हें पूरी तरह से भ्रामक, निराधार और वैज्ञानिक प्रमाणों से परे बताया। कंपनी ने इसके पीछे कई मजबूत वैज्ञानिक कारण दिए। BPCL ने साफ किया कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। अंतिम प्रोडक्ट में चींटियों को आकर्षित करने वाला कोई भी मीठा तत्व बाकी नहीं रहता। ईंधन ग्रेड के एथेनॉल में विशेष प्रकार के डिनेट्यूरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तब भी पेट्रोल की अपनी स्वाभाविक हाइड्रोकार्बन गंध बरकरार रहती है। इथेनॉल की हल्की फुल्की महक इस तेज गंध के आगे दब जाती है। चींटियों को पेट्रोल की ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। साधारण पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन वाष्प बहुत कम होता है। मतलब कि ढक्कन खुला होने पर पेट्रोल कम उड़ता है। मतलब जब ढक्कन के पास से गैस या वाष्प ही बाहर नहीं निकलेगी तो चींटियां या कोई अन्य कीट वहां इकट्ठा नहीं होगा। भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल दावे का सच लोगों को बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने एक्स अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर लिखा, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के फ्यूल फिलर कैप, ईंधन भरने वाली जगह के ढक्कन पर चींटियां जमा हो रही हैं। एजेंसी ने आगे लिखा, सावधान, ये दावे झूठे हैं। E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। E20 फ्यूल में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को गाड़ी के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करे। इसके अलावा पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जाता है, इस दावे को भी गलत बताया गया। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। पेट्रोल में मिलाने से पहले इसे सख्त गुणवत्ता मानकों पर परखा जाता है। साफ है, E20 ईंधन और चींटियों के जमा होने के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अक्सर गाड़ियों के फ्यूल के कैप के पास गंदगी, खाने पीने की चीजों के गिरने या नमी की वजह से चींटियां आ सकती हैं, जिसे लोग गलत समझकर पेट्रोल से जोड़ रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर बिना जांच परख के शेयर की जा रही ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
6: Keep it on smooth jazz.
7: This is Roots Reggae
8: exclusively on TuneIn.
9: This is classic hip-hop
10: exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
11: देशभक्ति का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता, और इसका एक खूबसूरत उदाहरण हाल ही में वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने जोश और देश प्रेम से लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाघा बॉर्डर पर होने वाले रोजाना के समारोह के दौरान ये छोटी बच्ची दर्शकों के बीच बैठी है, लेकिन उसकी आवाज और जोश पूरे माहौल को खास बना देती है। वो पूरे उत्साह के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम की नारे लगाती है। उस बच्ची की आवाज में इतना जोश और आत्मविश्वास होता है कि आसपास बैठे लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कई लोग उसके साथ नारे लगाने लगते हैं। इसी बच्ची का उत्साह, मासूमियत और जोश ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। बच्चों की शरारत और उनकी मासूमियत अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही बेहद क्यूट सा वीडियो ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वायरल क्लिप में एक नन्हे बच्चे ने अपनी माँ की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा गुलाब जामुन खाने की तैयारी में है, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखते हुए उसे सीधे पानी के नीचे ले जाता है और धोने लगता है। मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी लगते ही गुलाब जामुन का सारा रस बह जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। उसके दिमाग में बस माँ की यही सीख थी कि बिना धोए कुछ नहीं खाना। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। भिलाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्रेन का इंतजार करते करते उसने प्लेटफॉर्म को ही अपना स्टेज बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के के हाथों में जादू है। कभी वो फुटबॉल को अपनी एक उंगली पर टिका देता है और गेंद को लट्टू की तरह नचाने लगता है, तो अगले ही पल वो गेंद को हवा में उछालता है, घुटने से, सिर से, कंधे से टच करता है, पर गेंद नीचे नहीं गिरती, मतलब बॉल पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। पहाड़ी ड्रेस में एक लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। ना कोई बड़ा सेट, ना हाई फाई कैमरा, बस सादगी, एनर्जी और एकदम बिंदास अंदाज। इस लड़की ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस, जरा भी बनावटीपन नहीं, हर बीट पर स्माइल, आंखों में मस्ती और पैरों में ऐसी थिरकन कि लगता है म्यूजिक उसकी बॉडी से ही निकल रहा है। इस खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 सालों के बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। इसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है, फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया है कि उसे देखकर लोग इसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांधी गई है और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बंदर किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर छत पर जा बैठता है और फिर उसे वापस करने के लिए जैसे अपनी ही शर्त रख देता है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बंदर एक मोबाइल फोन लेकर किसी मकान की छत पर आराम से बैठा हुआ है। नीचे मौजूद लोग उससे फोन वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे बंदर ने ठान ली हो कि बिना किसी फायदे के मोबाइल लौटाने वाला नहीं है। इसी बीच किसी व्यक्ति के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। बंदर को लुभाने के लिए उसे फ्रूटी का टेट्रा पैक दिखाया जाता है। जैसे ही बंदर की नजर जूस पर पड़ती है, उसका ध्यान मोबाइल से हटकर फ्रूटी पर चला जाता है। लोगों को उम्मीद बंधती है कि शायद अब बात बन जाए। कुछ ही देर के बाद बंदर को फ्रूटी दे दी जाती है। मजे की बात ये है कि जूस हाथ में मिलते ही बंदर भी अपनी तरफ से सौदा पूरा कर देता है और खुद आराम से फ्रूटी का मजा लेने लगता है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर

0: चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
1: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
0: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
2: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है, उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है, उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
3: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
0: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती है, पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया, 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50, जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में

बर्फानी के जयकारों की गूंज, शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू, सफल सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान, दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्तनाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को एफडीए के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख दिखा रहा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थाओं में आग के खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों आवश्यक है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थाओं के लिए अनिवार्य है और जिन्हें छात्र और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जिनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थाओं के मामले में सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी छात्र और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। यह समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थाओं में लापरवाही है तो उसे दूर करना सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता। बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं, लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है, पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहाँ पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है, और उसके बाद अब इन इलाकों पे जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाएं तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं, सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए।
2: जो लाइब्रेरी है, दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहां बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहां पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहाँ से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं, उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है, इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है, पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार ओवरहेड वायर्स जो हैं बिल्कुल खुले में पड़े हैं, कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं, कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ और पूरे गली में आग लग सकती है, कई लोगों की जान पर बना सकती है।
1: बरसों से सिर्फ सवाल ही उठते रहे हैं, ऐसी तस्वीर को देखने के बावजूद हम जागरूक नहीं होते। अब तो छात्र पूछें, उनके अभिभावक सोचें कि ऐसी बेतरतीबी में बच्चे पढ़ तो सकते हैं, सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी भी शहर में जाइए, कोचिंग संस्थानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आते हैं। क्या करें, हमारा फोकस पढ़ाई पर तो रहता है, सुरक्षा को हम तवज्जो नहीं देते।
4: क्या दिखा आपको अभी यहाँ पे, ये फेवरेबल कंडीशन है या फिर आपको लग रहा है कि ये खतरनाक है?
5: सर ये खतरनाक है वाकई में, और यहाँ पे देखा कि ये पूरे तार क्या है, देखिए आजू बाजू सब निकलने पूरी है, देखिए पूरा ओपन पड़ा हुआ पूरा तार भी, और यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि सिलेंडर जो होना चाहिए वो मतलब थोड़ा बाहर होना चाहिए था कि कभी कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति क्या उसको कम से कम उसका उपयोग भी कर सके।
4: अच्छा।
5: और ये तार पूरे देखिए पूरे नंगे पड़े हुए हैं ना, इसका कोई
4: तार दिखाइए
5: देखिए पूरे। अब यहाँ पे लोहे की ये भी है, अगर स्पार्किंग हुई,
4: अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तार में तो यहाँ करंट फैलेगा
5: ना सर, पूरा देखिए लोहे का आएगा, नुकसान ही होगा उसको जो भी हो।
4: और आप जो आए, ये जो एंट्री एग्जिट आपको अलग अलग दिखाया गया है आपने?
5: नहीं सर, सिंगल ही है, भी एक ही है, इन्होंने हमें पूरा एक ही बताया है। और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए, हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विंडो सिर्फ एक ही है, जाने का रास्ता जो है वो एक ही, जबकि दो होना चाहिए।
4: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है, और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट फैलता है, तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस गली की आप पहले स्थिति देखिए, उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए, सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए, लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे कि लखनऊ में हुआ था, तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का, कि वो खिड़कियों से कूदें। और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने, और उसमें आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर और अंदाजा लगाइए इससे। ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की, वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है, जो पोस्टर है, बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
1: याद रहे, अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं, और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं,
4: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं ये किस तरीके की कैसी स्थितियों में है, कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पे। और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जाले देखिए, और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है, जाले लगे हुए हैं, बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है। इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आंख पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग्स में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके पास नहीं होगा। कायदे से यहाँ अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये पूरी कोचिंग है, और नीचे तक अगर आप देखें, पहले तो ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई अग्निशमन यंत्र नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ नहीं लगा है, यानी आग लग गई तो उसे कैसे बुझाएंगे इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहाँ पे ये मीटर लगे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पर अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं उस तरफ, कि यहाँ पर भी आपको कोई आग बुझाने का साधन नहीं दिखेगा। कि ये जो पूरा इलाका है भोपाल का जोन 2, ये कोचिंग संस्थानों से पटा पड़ा। ऊपर भी अगर आप देखें तो अगर नीचे आग लग जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये रास्ता विकल्प बचता है उन छात्रों के पास आपात स्थितियों में बाहर निकलने का, लेकिन वो है नहीं पूरी तरीके से, वो भी ब्लॉक है, या तो एसी लगे हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कोचिंग बनानी थी वहां पे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये खतरा ज्यादातर उन कोचिंग संस्थानों पे है जो ऊपर की मंजिलों पे स्थित है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, ये पूरे कोचिंग संस्थान जो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां तो निकलने के रास्ते हैं, कई सारे एग्जिट हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान ऊपर की इमारतों में चल रहे हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है।
1: आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल सेंटरों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस बेहद सख्त हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक फायर NOC अनिवार्य है। वहीं पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर अलार्म लगे होने चाहिए। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कम से कम दो चौड़े और सुरक्षित रास्ते हों। बेसमेंट में कक्षाएं चलाना या छात्रों को बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और हाँ, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। साथ ही कमरे में छात्रों की संख्या स्वीकृति क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, कोचिंग संस्थाओं में बच्चे अपने सपनों को आकार देने के लिए जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा होगा, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं है। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं, लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर, हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा, हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली। हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: वो इलेक्ट्रिक का के लिए होता है
3: जाएगा, ये वर्किंग कंडीशन में इनकी, अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात, क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है? अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई?
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और JEE के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान न करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
0: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे? चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं। अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
0: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
4: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई, यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
1: हाँ, बताया जाता है।
4: क्या बताया जाता है?
1: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
4: उसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
1: अभी मैं तो नया आया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं।
4: आपका क्या नाम है?
5: शेर अली।
4: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
5: RSSB फाउंड।
4: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, जैसे लखनऊ में हुई कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
5: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
0: समझने और समझाने वाली बातें कई है, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
2: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहां व्यवस्थाएं अलग हैं, ग्राउंड प्लस फोर की है वहां व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे। और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण की शुरुआत किया है।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात करेंगे मॉनसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मॉनसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
4: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है, वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोबेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
5: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
4: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मॉनसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
6: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है। उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है। उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
7: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है, उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
4: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अमरावती से धनंजय साबले, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। 136 रनों के जवाब में शेफाली वर्मा ने जड़ी 50। जीत के साथ सेमीफाइनल्स के करीब पहुंची टीम इंडिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर में साधु संतों के आगमन शुरू। सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए कामना। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से मिलता है आरोग्यता का वरदान। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। हवा में ही दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान कर देगा नेस्त नाबूद। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से ज्यादा देश। महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को FDA के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने LPG सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़